0: कानूनी रास्ते थे सब इख्तियार किए। बार बार कहता रहा कि आप मुझे बताएं कि मेरे पास कौन सा रास्ता बचा है। चाली वजीर आजम से फोन पर रब्ते में कहा कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाएं। उन्होंने कहा कि पूछ कर बताता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कहने पर भी मुलाकात नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजेस हुक्म देते हैं कि इमरान खान का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में इलाज करवाया जाए, उस पर भी अमल नहीं होता। सुहेल अफरीदी ने कहा कि इंसाफ की तवक्को हो, मगर इंसाफ ना मिले तो आईन हमें इजाजत देता है कि हम पुरअमन एहतजाज करें। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी की जानिब से सूबे में अमन व अमान से मुतालिक इजलास तलब करने पर नोटिस लेते हुए अपनी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया। तमाम काबीना अरकान को इजलास में शिरकत की हदायत कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला लॉन्ग मार्च में मसरूफ थे और इसी दौरान उन्होंने काबीना का इजलास बुलाने की हदायत दी। ज़राए के मुताबिक काबीना के इजलास में इंतजामी सेक्रेटरीज को शिरकत करने की हदायत दी गई है। काबीना के इजलास के बावजूद लॉन्ग मार्च अपने शेड्यूल के मुताबिक ही जारी रहेगा। वफाकी दार हुकूमत में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की दावत देते हुए वाज़े किया कि मार्च और धरनों के खात्मे के बाद ही बातचीत का अमल मुमकिन हो सकेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2.5 साल की अनथक मेहनत और टीम वर्क के नतीजे में मुल्की मईशत को इस्तेहकाम मिला। उन्होंने जोर दिया कि बड़ी मुश्किल से हासिल होने वाला मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम कौम की आवाज़ और पाकिस्तान की अजमत के लिए नागुजीर है। वज़ीर आज़म का कहना था कि एक जानिब मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है तो दूसरी जानिब एहतजाज के बायस बरामदात दरामदात और मैनुफैक्चरिंग सेक्टर शदीद मुतासर होने का खदशा है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की पेशकश का जवाब देते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो लॉन्ग मार्च रोकने का कोई जवाब नहीं। मुज़ाकरात की पेशकश बराए नाम है, मुज़ाकरात सिर्फ पेशकश की हद तक हैं, कोई मस्बत कदम नहीं उठाया जाता। एमरजेंसी या गवर्नर राज नाफिज करने से नफरतें मजीद बढ़ेंगी। मुज़ाकरात एक मुसलसल अमल है और इसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। मुज़ाकरात की नाकामी का मलबा वज़ीर आला KP पर डालना बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का स्क्वाड इस्लामाबाद पहुंच गया। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज का पहला मैच जुमे के रोज रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। सामीन को बताते चलें कि आज GT और उसके गिर्दो नवा में पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 3 सेंट कमी का इम्कान है। इसी के साथ खबरें इख्तिताम पजीर हुई।
1: टोरंटो 360 टीवी आपका अपना 24/7 चैनल, तमाम IPTV बॉक्सेस, जादू बोल, शावा और जूम बॉक्स पर पाकिस्तानी या उर्दू सेक्शन में देखिए। टोरंटो बेस्ड पाकिस्तानी चैनल्स में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल। सुबह अजान फजर के बाद एक पारे की तिलावत उर्दू तर्जमे के साथ, इस्लामिक सेगमेंट, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम, सोशल इश्यूज, एजुकेशन और इंटरटेनमेंट के साथ साथ कॉमेडी प्रोग्राम भी। हर रात 8 और 10 बजे टोरंटो 360 स्पेशल प्रेजेंटेशन। पाकिस्तानी फीचर फिल्म रात 11 और दिन 1 बजे। शहर में होने वाली तकरीबात की कवरेज और बहुत कुछ। टोरंटो 360 टीवी पाकिस्तान की पहचान, आपका अपना 24/7 चैनल। टोरंटो 360 टीवी आपकी आवाज आपके अंदाज में।
2: टोरंटो 360 टेलीविजन चैनल आप एप्पल टीवी, अमेजन फायर टीवी, रोकू टीवी के साथ साथ ट्यूबलेव के थ्रू रॉजर्स पे भी हमारे निशान देख सकते हैं। हमारी ऐप भी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर पे जाकर टाइप कीजिए टोरंटो 360 टीवी। अच्छा, कल जब हम टॉक शो कर रहे थे तो एक साहब ने मुझे कहा था कि डॉक्टर के हवाले से कि एक डॉक्टर को बुलाया गया है। अताउल्ला तारड़ साहब जो हैं वज़ीर इत्तला'आत हैं, कल उनका एक बयान था कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज तलाल चौधरी साहब ने भी और राना सनाउल्ला ने भी इसकी तस्दीक की है कि बानी PTI के तबी मुआयने के लिए लंदन से एक डॉक्टर को अडयाला जेल बुलवाया गया है, उसकी तस्दीक हुई है। 10 अगस्त को बानी के तबी मुआयने की रिपोर्ट जब सामने आई है, डॉक्टर फरकाद आलमगीर ये इनका नाम है, तिबी मुआयना करने वाले मेडिकल बोर्ड में 4 डॉक्टर शामिल थे, डॉक्टर फराद आलमगीर, डॉक्टर आरिफ खान, डॉक्टर अख्तर अली बंदेशा और डॉक्टर अली आरिफ, ये मेडिकल टीम का हिस्सा थे। मेडिकल बोर्ड ने PTI का जो एन्जाइटी लेवल 3+ करार दिया था। मेडिकल बोर्ड ने ब्लड प्रेशर और एन्जाइटी लेवल कंट्रोल करने के लिए रोज़ाना 1 घंटा वॉक की सिफारिश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI को फैमिली से मुलाकात, अखबार, TV और किताबें फराहम करने की भी सिफारिश की गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने बानी की अहलिया से मुलाकातों में इजाफे की सिफारिश भी की थी। डॉक्टर फरकाद आलमगीर का नाम PTI के इलाज के लिए हालिया मजाकत अमल में भी सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक तबी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड वफाकी हुकूमत तश्कील दिया था। ये वो डॉक्टर हैं जो इंग्लैंड और लंदन और पाकिस्तान दोनों में इलाज करते हैं और यहाँ भी रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं, लेकिन اب اس کے اوپر تھوڑے سے خدشات لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو گئے, خاص طور پہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں یا عمران خان صاحب کو جو پسند کرتے ہیں, کہ عمران خان صاحب کی طبیعت کا اتنی خراب ہے کہ لندن سے ڈاکٹر کو بلوانا پڑا ہے اور پھر ان کے علاج کے لیے, ان کا بلڈ پریشر کہتے ہیں کنٹرول میں نہیں تھا اور اس کے بعد اب بہتر ہیں, اب کنٹرول میں ہیں, ٹھیک ہے طبیعت ان کی, لیکن ڈاکٹر تو یہاں بھی بہت ہوں گے. اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ فیملی, ان کی فیملی بھی ان سے علاج کرواتی رہی ہے, یہ بھی تھوڑی سی بات سامنے آئی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ فیملی کے ہی کہنے پر یا عمران خان صاحب کے کہنے پر ڈاکٹرز کو بلایا گیا ہو, لیکن ایک جو فیملی ڈاکٹر اور ہیں ان کو تو اجازت نہیں دی جاتی. تو اس معاملے پہ تھوڑا سا ابہام ضرور ہے کہ ان کی طبیعت کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں شک و شبہات ہیں, گو کیا اطلاع چوہر صاحب کہتے ہیں ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے, بالکل فٹ ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کی بہن نے بھی یہ بات کی تھی, لیکن اس بات پہ کہ لندن سے ڈاکٹر کو بلانا, تو اس پہ بہرحال لوگ خدشات کا اظہار تو ضرور کر رہے ہیں. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم, میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
5: Jab koi baat bigad jaye.
6: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
7: سہجا کیرلا آیورویدک ہربل کنسلٹیشن سینٹر, جہاں کیرلا ویدیا رتنا پی وی راج جو کہ خاندانی وید ہیں, نبض دیکھ کر جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں. بے شمار مریض ان کی ہربل دواؤں سے شفایاب ہو چکے ہیں. استھما, الرجی, سکن پرابلمز, کمر یا گھٹنوں کا درد, آرتھرائٹس, ہیئر پرابلم, گیس پرابلم, السر, لیڈیز پرابلم, ویٹ لاس, سورسز اور ساری بیماریوں کا علاج کر کے ان کا جڑ سے خاتمہ کرتے ہیں. برمپٹن اور اسکارپرو دو لوکیشن سے آپ کو سرو کر رہے ہیں. کال کیجیے 647-327-8111. It's 647-327-8111.
8: حج اسلام کا بنیادی رکن ہے اور ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ فریضہ حج ادا کرے. الخیر گروپ دنیا کا نمبر ایک حج گروپ ہے, جنہیں سعودی عرب کی طرف سے اس سال کا بہترین گروپ قرار دیا گیا ہے. پچھلے 30 سالوں سے بہترین حج اور عمرہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے اور اگلے سال حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو الخیر کے نارتھ امریکہ کے لیے ایکسکلوسیو آتھرائز ریپرزینٹیو سفر المومن سے رابطہ کریں. بہترین پیکجز, مکمل رہنمائی اور بہترین انتظامات. مزید معلومات کے لیے کال کیجیے سعد شیخ اور عارف شیخ 416-678-2743. اٹس 416-678-2743. یونی گلوبل ایڈوائزری انک آپ کے لیے لائے ہیں گورنمنٹ سپورٹڈ پروگرام کی ایک اور گولڈن اپرچونٹی. آپ گھر بیٹھے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور حکومت سے 50,000 سے 1,70,000 ڈالر تک کا لون حاصل کریں جس پر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. آن لائن کورسز جس میں کوئی ایگزام بھی نہیں ہے, کوئی کریڈٹ چیک نہیں, کوئی ایج لمٹ نہیں, کوئی پرسنل گارنٹی نہیں اور نہ ہی کوئی انکم ریکوائرمنٹ. ان کی فیس صرف $199 ہے. ابھی کال کر لیں 437-264-3175. اٹس 437-264-3175. کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی, تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 647-271-4147. 647-271-4147. ایس ایس آر آٹو ریپیئر 3438 شیپرڈ ایونیو ایسٹ اسکاربرو, وارڈن اور شیپرڈ کا انٹرسیکشن. 24/7 آٹو ریپیئر, ویری کلوز ٹو ہائی وے 401. تمام میجر ریپیئر ورک کرتے ہیں. باڈی شاپ, ایکسیڈینٹل ریپیئر, ڈینٹنگ پینٹنگ, انجن ریپیئر, آئل چینج, ٹائر چینج, بریک پیڈز اینڈ راؤٹر, ویل الائنمنٹ, بیٹری اینڈ اے سی
9: सर्विस 24/7 टोइंग सर्विस भी अवेलेबल है। SSR ऑटो रिपेयर कॉल नजीर चौधरी, अवैस चौधरी और मनीर हुसैन 6473217444। इट्स 6473217444।
2: बारबेक्यू टुनाइट की दूसरी लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में। 200 से ज्यादा लोगों की गुंजाइश, बड़ी पार्टीज भी आप अरेंज कर सकते हैं। बारबेक्यू आइटम्स बिहारी कबाब, सीख कबाब, कड़ाही, बिरयानी, ताजा नान और बेशुमार डिशेज। जायका वही और खूबसूरत सेकंड लोकेशन। पार्टीज की बुकिंग या मालूमात के लिए कॉल कीजिए 9052829868। बारबेक्यू टुनाइट की सेकंड लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में 9052829868।

0: सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ 6887 डिक्सी रोड मिसिसागा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4168143600।
1: आवर लोन एंड क्रेडिट कार्ड बिल keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
3: Jab koi baat bigad jaye.
4: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
5: Apne makan ki next month closing hai. Kuch socha TV aur appliances kahan se lene hai?
6: Haan, Brampton TV and Appliances, jahan special sale chal rahi. टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
5: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
6: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
5: दैट्स वंडरफुल।
6: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
5: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
6: ऑन बवेट जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस डॉट सी।
7: मैं रिपुदमन सिंह ढिल्लों ब्रैम्पटन के वार्ड 7 और 8 से एज ए सिटी काउंसिलर इलेक्शन रन कर रहा हूँ। मेरा एक ही मोटिव है, एज ए सिटी काउंसिलर ब्रैम्पटन के सिटी हॉल में अकाउंटेबिलिटी को लेके आया जाए, कम्युनिटी सेफ्टी के ऊपर काम किया जाए और ट्रांसपेरेंसी लेके आई जाए। सर, जितने भी हमारे सुनने वाले व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, मैं उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 26 अक्टूबर को वोट जरूर डालें और मुझे कामयाब करके एज ए सिटी काउंसिलर काम करने का एक मौका दें। और उससे पहले एडवांस पोल्स हैं 9, 10, 11 अक्टूबर और 16 और 17 अक्टूबर को एडवांस पोल्स हैं। अगर आपको रिपुदमन ढिल्लों के कैंपेन के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है या एडवांस पोल्स के बारे में बात करनी है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 6474602533। रिपुदमन ढिल्लों कैंपेन फॉर सिटी काउंसिलर ब्रैम्पटन वार्ड 7 और 8।
8: जी जनाब, वार्ड 7 और 8 से रिपुदमन ढिल्लों जो हैं वो सिटी काउंसिलर के उम्मीदवार हैं। हम आपको रोज बताते आ रहे हैं, वेरी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं। अगर आप उस रहते हैं उस वार्ड में तो जरूर इनको आप सपोर्ट कीजिए, इनको वोट दीजिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिपुदमन ढिल्लों जी, मजीद डिटेल कुछ उनसे बात करते हैं। रिपु जी, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
9: थैंक यू वेरी मच अर्शद भाई, और सबसे पहले तो आपको मैं और आपकी पूरी टीम को थैंक्स करना चाहूंगा कि आपने मुझे एक मौका दिया है कि मैं आपके लिसनर्स के साथ जो है इंटरेक्ट कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। और जैसे आपने बताया कि मेरा पूरा नाम रिपुदमन ढिल्लों और मैं ब्रैम्पटन के वार्ड 7 और 8 से एज ए सिटी काउंसिलर का इलेक्शन रन कर रहा हूँ।
8: अच्छा रिपु भाई, आप यहाँ से आप ऑलरेडी बड़े एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में, क्या खास तौर पे यहाँ पे इस वार्ड के मसाइल क्या हैं और आपका विजन क्या है, आप क्या चेंज लाएंगे?
9: अर्शद भाई, अगर ब्रैम्पटन की एज ए सिटी एज ए होल बात की जाए तो यस, कि ब्रैम्पटन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि जितने हम डोर नॉक कर रहे हैं उतनी ही प्रॉब्लम्स हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी भी घर ने कहा कि भी हम खुश हैं अभी, और ये एक बात हो सकती है कि भी उनको सेफ्टी के कंसर्न्स हैं, उनको हेल्थ के बहुत सारे कंसर्न्स हैं, और उनको अपने जो क्या कहते हैं रोड सेफ्टी के बारे में बहुत सारे कंसर्न्स हैं। पार्क्स में जाते हैं, रिक्रिएशन सेंटर, मतलब कोई भी चीज आप उठा लें, उनको हर एक फैमिली को कोई ना कोई कंसर्न है। तो मैं ये कहना और क्योंकि हमारे वार्ड में एक एजिंग पॉपुलेशन बहुत है, क्योंकि वार्ड 7 जो 8 है एजिंग पॉपुलेशन बहुत है, और उन क्या कहते हैं सीनियर्स को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं इस वार्ड में आज की डेट में।
8: ओके, और आप का विजन क्या अगर आप बनते हैं? आप अकाउंटेबिलिटी की तो हमेशा बात करते हैं, टैक्स की भी आप बात करते हैं कि जो डॉलर टू डॉलर जो होना चाहिए, क्या आप क्या करेंगे आते हैं तो यहाँ के लोगों के लिए क्या चेंज लाएंगे आप?
9: अर्शद भाई, सबसे पहले तो मेरा जो प्लेटफॉर्म है, मैं सबसे पहले तो एक अपने आप को 24 आवर एक्सेसिबल रखूंगा, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी की सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि जो भी रेजिडेंट्स फोन करते हैं या ईमेल करते हैं उनको जवाब नहीं आता। 2 महीने 3 महीने 4 महीने का तो बड़ा नॉर्मल सा टाइम है, और कुछ है कि रेजिडेंट्स है जो कि बहुत क्या कहते हैं, थोड़े से रेजिडेंट्स है जो कि कहते हैं कि हमें जवाब आ गया जी, ठीक है ना। अदरवाइज मोर देन 90% जो है वो खुश नहीं है। तो सबसे पहले एक एक्सेसिबिलिटी, आई विल बी अवेलेबल 24 आवर्स थ्रू माई ईमेल, और जो फोन करेगा तो उनको जो है कि मेरा जो एज ए सिटी काउंसिलर ऑफिस होगा उनकी कॉल भी रिटर्न करेगा, उनके जो क्या कहते हैं कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी जो है हम विद इन 24 आवर्स to 48 आवर्स के अंदर देंगे, ताकि रेजिडेंट को ये रहे कि उनकी जो अगर कोई जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर काम होना शुरू हो गया है। नंबर टू ट्रांसपेरेंसी की हम हमेशा से बात करते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी जो है एक

0: तरीके से ब्रैम्पटन सिटी में खत्म हुई पड़ी है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि जो भी पब्लिक कंसल्टेशन आ रही हैं, रेजिडेंट्स को पता नहीं है कि भी अगर कोई भी बाईलॉज में चेंजेस आनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना है, कोई भी और चीज दी जानी है, तो जो आप कह लें कि हैंडफुल ऑफ पीपल को ईमेल जाती है कि यार पब्लिक कंसल्टेशन है दैट इज बीइंग डन, और वो जो है कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी जो चीज है पास हो रही है, तो वो हम उन सारी चीजों को जो है कि भी ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, ताकि लोगों को कम्युनिकेट करेंगे, जो अपने जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, जो ब्रैम्पटन सिटी की वेबसाइट है, वहां पे रिकमेंड करेंगे कि प्लीज ये सारी चीजें जो है पब्लिक को पता होनी चाहिए, तो ये मेरा एक प्रॉमिस रहेगा। नंबर थ्री के ऊपर जो प्रॉपर्टी टैक्सेस की बात कर रहे हैं, यस, ईयर ओवर ईयर प्रॉपर्टी टैक्सेस बहुत बड़े हैं ब्रैम्पटन में, एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ द विक्टम, मैं ये विक्टम कहूंगा जी। तो मेरा जो एक प्लेटफॉर्म है कि प्रॉपर्टी टैक्सेस को फ्रीज किया जाएगा, लेकिन जब प्रॉपर्टी टैक्स को फ्रीज करने की बात आती है तो रेजिडेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि तो ये जो रेवेन्यू तो वो कहां से पूरा होगा। यस, हम जो है ब्रैम्पटन में हम सिर्फ इसको क्या कहते हैं जी, घर नहीं बनाने हैं, यहाँ पे हमें बिजनेसेस भी लेके आने हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस और मिड साइज बिजनेसेस हैं उनको प्रमोट भी करना, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, और अगर उनको कोई चीज की जरूरत है ब्रैम्पटन सिटी से तो वो भी हम जो उनके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेंगे, ताकि और उनसे नए नए आइडियाज उनसे मांगेंगे कि उनके साथ हम जो एक नई बेटर क्या कहते हैं अप्रोच क्या लेके आ सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो उनका बिजनेस बढ़े और रेजिडेंट्स जो हमारे बच्चे उनको ज्वाइन करें।
1: वेरी राइट, और चाहूंगा थोड़ा सा एडवांस पोल की भी डेट्स बता दीजिए, ताकि लोग अगर जो लोग मसरूफ हों 26 को कम अज कम एडवांस में वोट डाल दें एडवांस पोलिंग।
0: एब्सोल्युटली अर्शद भाई, जो एडवांस पोल्स है जी 9-10-11 अक्टूबर यानी कि इसी फ्राइडे को, जुमे वाले दिन, और उसके बाद सैटरडे संडे जो है एडवांस पोल्स है, और 16th and 17th यानी कि अगले सैटरडे और संडे को भी एडवांस पोल्स हैं, और ब्रैम्पटन के जो वार्ड 7 and 8 हैं उनके रेजिडेंट्स के लिए जो सबसे नियरेस्ट जो पोलिंग स्टेशन है वो एक है जी गौर मीडोज का रिक्रिएशन सेंटर, विच इज ऑन एग्जैक्टली एट गौर रोड एंड कैसल मोड का इंटरसेक्शन है, और उसके बाद ग्रीन ब्रॉय रिक्रिएशन सेंटर है, वहां पे आप वो क्या कहते हैं वोट डाल सकते हैं एडवांस में। और अगर किसी भी लिस्टर को एडवांस पोल्स के बारे में या हमारे कैंपेन के बारे में बात करनी है तो वो 647-460-2533 के ऊपर हमें कॉल कर सकते हैं, यानी कि रिपु दमन ढिल्लन यानी कि मेरा जो कैंपेन है एज ए सिटी काउंसिलर ब्रैम्पटन का वार्ड 7 and 8।
1: जी नंबर कॉल नोट कर लेंगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए 647-460-2533 रिपु दमन ढिल्लन सिटी काउंसिलर फॉर वार्ड 7-8 ब्रैम्पटन। रिपु भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, फिर इंशा दोबारा बात करते हैं आपसे।
0: थैंक यू वेरी मच अर्शद भाई।
1: जनाब हमारे साथ थे रिपु दमन ढिल्लन और वार्ड 7 and 8 सिटी काउंसिलर ब्रैम्पटन से सिटी काउंसिल उम्मीदवार। जनाब लास्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे और फिर आपकी लाइव कॉल्स लेंगे। स्टे ट्यून्ड, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, सीएमआर 101.3 एफएम।
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, आवाज का सफर दिल से देता।
3: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. Har kisam ki gaadiyon ki general aur electrical repair ke liye tashreef laiye. Oil change, tire change, lights repair, brakes, suspension, muffler service, engine services. Iske alawa safety inspection, 3D laser alignment ke saath saath new aur used tires bhi available hain. Drive through maintenance aur namaz ki sahulat bhi. Mia Ashraf saab ya Nabeel Ashraf saab se raabta kijiye 416-466-8782 416-466-8782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 पेप एवेन्यू। शबाना हसन फाउंडर ऑफ की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस इंक और उनकी टीम आपकी हर तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग में आपकी हेल्प कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, सुपरविजर इंश्योरेंस, विजिटर इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, RDSPs, RESPs, RRSPs, TSFAs, FHSAs के साथ साथ हेल्थ एंड डेंटल प्लान्स, डिसेबिलिटी एंड क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग और स्टेट प्लानिंग की प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए आज ही कॉल करें शबाना हसन 6479977224। Let's secure your financial future together. Call Shabana Hassan 647-997-7224.
4: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
5: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low ya commercial, for customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts, 905-819-1001, 905-819-1001. License number 12.

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
3: प्रोग्राम का ये हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861।
4: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 416-593-0003। आज ना पहली एक रिक्वेस्ट मैंने आपसे करनी है कि हमारे बहुत से जो कॉलर्स हैं वो यहाँ पे सुनते हैं कॉलर्स, हमारे पास जाहिर है 7-8 कॉल्स जो हैं वो एक वक्त में हम यहाँ पे होल्ड करते हैं, तो अगर आप सिर्फ सुनना चाहते हैं, आपने पार्टिसिपेट नहीं करना, तो जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ आप इस नंबर पे कॉल करके आराम से सुन सकते हैं जितने मर्जी लोग, 647-506-0003। ये लिसन के लिए सिर्फ 647-506-0003। अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं तो प्लीज़ अभी यहाँ से डिस्कनेक्ट करके इस नंबर को कॉल करके आप सुन लीजिए। 1, 2, 3, 4 लोग इस वक्त ऐसे हैं जो सिर्फ सुन रहे हैं और आपकी 5 कॉल्स दूसरी हैं, 9 कॉल्स में से 4 कॉल्स ऐसी हैं जो सिर्फ सुन रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जो लोग सिर्फ सुनना चाह रहे हैं प्लीज़ वो 647-506-0003 647-506-0003 पे कॉल करके जो है वो हमारा प्रोग्राम जो है वो सुन लीजिए और बाकी कॉलर्स को जो है वो हम इस तरह से शामिल कर लेंगे। अच्छा जनाब, अब और मैं 1-2 दिन ज़ाहिर है इंतज़ार करूंगा, फिर उसके बाद फिर मेरी मजबूरी होगी, तो हो सकता है कि मैं उनको फिर अब देखें अब कॉल दूसरी आ रही है मैं उनको ले ही नहीं पा रहा हूं। तो आप जो लोग कॉल कर सिर्फ सुनना चाह रहे हैं प्लीज़ वो उस पर जो है वो शिफ्ट हो जाएँ ताकि मेरे लिए भी जो है वो आसानी हो जाए। अच्छा जनाब, क्वेश्चन जो मैंने आज आपके लिए रखे हैं, एक चीज़ आपने अभी गौर भी की होगी और देखी भी होगी कि इमरान खान साहब के कल हम इस पे बात कर रहे थे, एक डॉक्टर साहब हैं उनको लंदन से बुलवाया गया, वैसे वो पाकिस्तान लंदन दोनों में काम करते हैं, तो वो आए और उन्होंने इमरान खान साहब के ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए, तो बहुत से लोगों का अब जहन में ऐसे ख्याल है क्योंकि ऐसा तो नहीं कि इमरान खान साहब की तबीयत ज़्यादा जो है वो ख़राब है ताकि उनको कहीं बुलाना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने एक बार फिर दावत दी है, सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं चाहे गवर्नर आज लगाएं चाहे कल लगाएं मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। सऊदी इत्तेहादी फ़ौज की यमन में बड़ी कार्रवाई है और यमनी फ़ौजों ने बहुल मंदक का कंट्रोल भी संभाला है, और इस हवाले से भी कुछ मैं चाहूँगा बात करें क्योंकि बड़ी स्विफ्ट कार्रवाई हुई है, एक ही दिन में बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इसमें ऑफकोर्स जो मक्का इत्तेहाद के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी इंटेलिजेंस फॉर श्योर जो है इसमें शामिल रहेगी, और ईरान की तरफ से कोई फौरी रद्दमल इस हवाले से जो है वो नहीं आया है, और मेरे ख्याल में ईरान इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग कि भाई जो चीज़ें ठीक हैं वो इसी तरह से ठीक हो जाएं। तो लाइव कॉल्स आपके ले लेते हैं और फर्स्ट मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट होगी कि जो लोग सिर्फ सुन रहे हैं प्लीज़ वो 647-506-0003 पे कॉल करके जो है वो सुन लें, अगर सिर्फ सुनना चाहते हैं, यहाँ पार्टिसिपेट आप कॉल जो है हमारी ब्लॉक हो जाती हैं। मेरी आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट होगी 7997 सर आप आने सर बात कीजिए 7997।
5: कैसे हैं आप? ठीक
4: जी सर, बिल्कुल ठीक, थैंक यू।
5: अच्छा जनाब, बात ये है ये तो इंसान की अपनी चॉइस है ना कि अगर कोई बंदा किसी से इलाज कराता है ना, उसका उसका उसमें उसका बिलीव होता है ना, उसको ट्रस्ट करता है ना। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में ऐसे ही करते हैं ना कि कोई डॉक्टर हमारा है, फैमिली डॉक्टर है, पुराने कनेक्शन है, हमें बिलीव होता है। दूसरी बात अभी मैं बोलूंगा तो पता नहीं कैसे लोग समझेंगे, पाकिस्तानी सोसाइटी में हर चीज की जा सकती है, तो यकीनन ये डॉक्टर जो है ना इनकी फैमिली ट्रस्ट करती होगी। पाकिस्तान में झूठी सच्ची रिपोर्टें बनाना कोई बड़ा काम नहीं है, सेकंड्स का काम है वहां। झूठी शहादतें डालना ये सब, ये इसीलिए लोगों का लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत सारी चीजों पर नहीं है, तो हमें ये बातें सुनने मिलने वाला पाकिस्तान में एक से एक अच्छा डॉक्टर पड़ा है। लेकिन बात यह है कि अगर वो आ गए हैं तो ये कोई इतना इश्यू नहीं, इश्यू अब ये है कि खान साहब और ये जो पूरी पार्टी जो है पीटीआई की, क्या ये सोशल जस्टिस दिला सकेगी इस नेशन को, या ये नेशन फिर उसी तरह से रहेगी जैसे पहले रहती रही है और इसी तरह से ये टाइम खत्म हो जाएगा और कोई इमरजेंसी लाएगा या कोई नई इमरजेंसी लाएगा। और दूसरी बात, आखिरी बात, देखिए हम सब इंसान हैं, ठीक है, पहले हम इंसान हैं बाद में मुसलमान हैं, ठीक है, तो इसलिए इंसानियत का रिश्ता सबसे पहले है और उसमें चाहे कितना भी आपका मुखालिफ हो, ये खान साहब को अगर इलाज की सहूलत दे दे, फुल फ्लैश दे दे, या छोड़ दे उनको कि जाओ यार तुम अपना जो करते हो करो, इमरान खान के साथ कितने लोग चल पड़ेंगे और क्या कर लेंगे, ये तो बुजदिली है किसी भी ऐसी ऐसी ऐसे डिपार्टमेंट की जो जिसके हाथ में बंदूक भी है, पैसे भी उन्हीं पब्लिक के लूटे हुए हैं, उन्हीं से तनख्वाहें लेते हैं और उन्हीं को डंडे मारते हैं, ये इससे ज्यादा ना है।
4: नहीं मतलब क्या, मतलब उन्हीं से तनख्वाह लेते हैं, काम नहीं करते तो कहाँ से लेंगे तनख्वाह भाई, आवाम से तो लेंगे ना, एक सिस्टम होता है, गवर्नमेंट होती है, इदारे होते हैं, मतलब ऐसे खाम खाम में आप ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देते हैं कि उनके पैसे लेते हैं,
5: जजमेंट नहीं है,
4: नहीं क्या मतलब काम नहीं करते हैं वो,
5: आप सुनोगे नहीं,
4: क्यों सुनूंगा, आप गलत बात करें तो कभी नहीं सुनूंगा मैं, नहीं आप कमाल अपने आप हर वक्त आपको सिर्फ फौज के खिलाफ बात करनी है और कोई बात नहीं करनी, आपको पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी है, आपको फौज के खिलाफ बात करनी, इसके अलावा आप कोई बात नहीं करते, सॉरी सर, आई एम सॉरी। जॉर्ज अकरम साहब आप ऑन है सर, बात कीजिए। 5794 अकरम साहब आप सिर्फ किसी को नाम वो करें जी सर।
6: सर देखिए मेरे नजदीक वो कम इलम और जाहिल लोग हैं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ
4: जी,
6: मेरे नजदीक एक बंदा इतना कम इलम और जाहिल है कि अदालत ने एक शख्स को सर्टिफाइड सजा दी है, वो सर्टिफाइड है।
4: देखें चौहान साहब बात यह है कि आप पहले तो बाकी सियासतदानों को भी तो सर्टिफाइड सजाएं दी थी ना, वो भी तो खत्म हो गई, तो ये भी खत्म हो जाएगी,
6: बात करें
4: ये भी खत्म हो जाएगी,
6: खुल के बात करें, किसकी बात कर रहे हैं,
4: नवाज शरीफ साहब को दी, आसिफ जरदारी साहब को दी,
6: भट्टी साहब की, फिर वही बात, ये मैं समझता हूँ आपकी भी कम इलमी है, बात ये है कि नवाज शरीफ जमानत में था उस वक्त,
4: यार ये भी जमानत इनकी भी हो जाएगी, मतलब उनको सजा किस किस्म की सजा,
6: फिर वो हो जाएगी तो
4: नहीं, जमानत में जब उनको जब सजा देके बाहर भेजा तो सजा थी।
6: भट्टी साहब देखे दो चीजों को मिक्स ना करें,
4: सजाएं पाकिस्तान में होती रहती हैं, माफ भी हो जाती है,
6: फिर ये शख्स भट्टी साहब, फिर ये शख्स जिसके लिए हम आज रोए जा रहे हैं, ये दुनिया रो रही है, उस वक्त तो ये तमाशागीर बना हुआ
4: नहीं, देखें गलती इनकी भी है, गलती इनकी भी है, लेकिन कुछ बेहतर करना चाहिए
6: बंदे को, भट्टी साहब बताएं इस बंदे को कोई शर्मसारी है कि उस वक्त मैं क्या करता रहा, अमरीका में बैठ के ये,
4: तो
6: क्या
4: ये भी क्या करते हैं, सारे करते हैं सर, अपनी जब गवर्नमेंट आती सारे फिरौन बन
6: जाते, लेकिन इतना कोई बेशरम नहीं था,
4: अच्छा ये लफ्ज अच्छा नहीं सर, ये अच्छी लफ्ज नहीं, बेशरम नहीं, मुनासिब नहीं है, प्लीज
6: भट्टी साहब वो तो कहता था ये,
4: चले छोड़ देना उसको, चले टॉपिक पे बात करें ना, मतलब क्या डॉक्टर साहब,
6: भट्टी साहब लिहाजा देखे, फिर एक रियासत मदीना का ये दावेदार था तो उसमें तो सब भीग जाती है, तुम्हारे लिए क्यों किया जाए, तुम आसमानों से गिर के आए हो, सब सुने आराम से, हम कोई गलत बात नहीं करते, हम किसी की भी सेहत पे सियासत नहीं होनी चाहिए, ना करनी चाहिए। अब आपको जब ये कह रहे हैं, बात और हो रही है पीटीआई से, भाई एक तरफ से अफगानिस्तान, इंडिया और दहशतगर्द वो हमारे मुल्क पे हमलावर हो रहे हैं और वो हमारे जनाब फौजियों को, इंसानों को और सिपाहियों को शहीद कर रहे हैं, भट्टी साहब आप उनके बयानिए के साथ मिले हुए हैं।
4: नहीं, नहीं बयानी की बात नहीं है ना, मतलब आप एक देखा आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते हैं लेकिन अल्फाज का चुनाव बस ना समझे, बस
6: वे भट्टी साहब तो फिर बयानिया अगर इनका है तो ये वो जब वो शहीद हो रहे हैं ये उनके जनाजे तक नहीं जाते, आपको याद नहीं है अलीमाबाजी ने क्या कहा,
4: गलत करते
6: हैं, फेक जंग है यार को अपने मुल्क के खिलाफ भी होता है,
4: वो चीज गलत है, नहीं करनी चाहिए ऐसी, इसमें कोई शक नहीं,
6: अल्लाह तुम्हारा भला करे, यही हम कहते हैं कि انسان بنو, انسان بنو, اپنے ملک کے وفادار بنو. باقی سیاست ہوتی رہتی ہے, سیاست کرنا ان کا حق ہے, ان کے ہم ساتھ ہیں. لاج بٹی صاحب دیکھیں, پھر وہی بات جو لوگ کمپیرزن کرتے ہیں, نواز شریف کو عدالت نے جو اجازت دی تھی,
4: سر عدالت نے سزا دی تھی,
6: ہمیں کیا ہے,
4: عدالت نہیں سزا دی تھی, عدالت نے اجازت دے دی. ممکن ہے عدالت ان کو بھی
6: دے, ہم بھی مان لیں گے نا,
4: بس ان کو بھی ہو سکتا ہے اجازت دے.
6: بٹی صاحب جب عدالت اس کو اجازت دے دے گی تو ہم مان لیں گے نا, اس کے علاوہ پھر ہم کیا کریں,
4: ٹھیک ہے,
6: یعنی پھر جتھا جو مرضی کل کو لے آئے,
4: ٹھیک ہے.
6: یار دیکھیں جماعت اسلامی بھی تو کتنے بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی ان کو کسی نے کہا ہے یار یہ نہ کرو, یہ دیکھیں یہ بندہ شروع ہی ہوئے تو ایسے شروع کرتا ہے گفتگو جسے بولنے کی تمیز نہیں ہے, اس کے لیے ہم کیا, ہم
4: سابق وزیر اعظم ہیں سر جو بھی ہے, لیکن یہ تو ہم بھی تو نہیں کرنا چاہیے, ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے, نہیں مطلب الفاظ مناسب ان کی عزت کے ساتھ ہی.
6: لیکن بٹی صاحب وہ بندہ اگر کوئی شرم ساری بھی تو محسوس کرے نا, قوم سے معافی مانگ لے, ہم معاف کر دیں گے, آگے بڑھے,
4: وقت آئے گا تو وہ کر لیں گے سر. ٹھیک ہے سر جی,
6: وقت آئے گا بٹی صاحب, نہیں وہ اس کے دماغ سے ابھی
4: تک ان کہیں.
6: اچھا بٹی صاحب مجھے سر لاسٹ بات کرتا ہوں, بشرا بی بی سے بھی کوئی بڑا مقصد ان کا لیڈر ہے جو اس کو چلاتا تھا, وہ بھی آئی تھی تو وہ باہر کیوں گئی, او یار پھر غیرت کا تو کوئی مظاہرہ کرو نا.
4: چلیں ٹھیک ہو گیا, چوائس
6: آج پتا کیا محسن نقوی نے کیا دی ہے, میں نہیں کہہ رہا کچھ بھی, محسن نقوی نے کہا آؤ تو صحیح,
4: چلیں
6: پل کراس کر کے سوابی کا مقصد وہ کیا, اس کا جو ہے اٹک کا پل کراس کر کے تو بتا دو ہمیں
4: سر, نہ ہی ہو تو اچھا, دونوں ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں.
6: ان لوگوں نے سیاست, بٹی صاحب ان لوگوں نے سیاست کو انتہائی گلیز کر دیا ہے, دشمنیاں نہ پالے ایک دوسرے کے ساتھ, ہمارے بھائی ہیں ہم, ان کی عزت کرتے ہیں ایز اے لیڈر, لیکن بٹی صاحب دوسری طرف سے بھی تو کچھ نہ کچھ تو عزت ہونی چاہیے نا. سمپل بات یہ ہے, آئی ایم ریلی ویری سوری اگر کوئی میرے الفاظ آپ کو یا کسی کو بھی اچھے نہ لگے ہو,
4: ٹھیک ہو گیا,
6: ایک دوسرے کے ساتھ پیار سلوک سے آگے بڑھے, سیاست کریں ٹیبل میں بیٹھ کے, اگر آپ کے پاس بات کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے تو کیا لینے آئے.
4: تھینک یو چوہ صاحب, تھینک یو. زرداری صاحب آپ آنے ہیں سر, حیدر علی زرداری صاحب آپ آنے ہیں سر, بات کیجیے جناب علی.
7: پٹی صاحب دیکھیں معاملات جو ہے نا, اصل میں پی ٹی آئی بند گلی میں آ گئی, پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی اگر کام کرے نا, دیکھیں پیپلز پارٹی اور جو محترمہ اکارڈ کر کے گئی تو وہ بانسا پیپلز پارٹی نے آرام سے نکالے, کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا, معاملات تھے, چیف جسٹس تنگ کر رہا تھا جالی بلوچ. اچھا لیکن اس کے بعد نواز شریف کی گورنمنٹ آئی, دو پرائم منسٹر چینج ہوئے دونوں ٹائم پہ, لیکن معاملات چلتے ہی رہے, لیکن تھرڈ پارٹی نے آ کے جو ہلا گلا کیا سب کو اندر کرو, تو سر دیکھیں یہ تو مقافات عمل ہے, ان کی دوائی ان کو پلانے کا ٹائم ہے. ایران کا معاملہ اور وہ جو ہے سر ریٹیلیٹ ہوگا ان کی طرف سے, پاکستان کی فوج جو ہے کرائے کی فوج نہیں, ہم اپنے خون پسینے کا ٹیکس سے جو ہے نا اس کو کرتے ہیں, تو لمٹ میں رہے. اگر پاکستان اور ایران کا معاملہ,
4: پاکستانی فوج نہیں لڑ رہی وہاں پہ
7: سر, جا رہی ہے سر, کیا بات
4: ہے وہاں پہ, لیکن انٹیلیجنس استعمال ہوئی ہے اور
7: سر ایوری تھنگ دے ڈوئنگ, دے فلائنگ, دے فائٹنگ, دے ڈوئنگ ایوری تھنگ,
4: ٹھیک ہے,
7: آپ ڈینائی نہیں کر رہے. اچھا دوسرا میرا معاملہ ہے کہ دیکھیں بہت ہو گئی, اب کول ڈاؤن ہو جائے. دیکھیں زرداری صاحب نے بیان دیا تھا نواز شریف کی گورنمنٹ تھی تو کیا ان کو جیل ہو گئی تھی, لیکن وہ تھوڑا جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولا تھا, ان لوگوں کا پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کس بند گلی میں پڑ گئے. اور پھر اچھا آج ایک اہم اجلاس ہوا, وفاقی گورنمنٹ نے پرائم منسٹر نے ایک بہت بڑا اجلاس کیا اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا اجلاس
4: جی,
7: اور پاکستان ہائی ویز اور موٹر ویز کی باتیں چل رہی تھی اور پروجیکٹ فلانا چنو سے فلانے سے ڈمکانے سے ٹمکانے سے توبا سنگھ سے سیالکوٹ سے فلانے سے, میں حیران پریشان ہو گیا کہ ہمارا ساؤتھ پنجاب بالکل ایسے کھنڈر بنا ہوئے, سندھ کو ہائی وے نہیں مل رہا, موٹر وے نہیں مل رہا, بلوچستان کو کوئی پروجیکٹ نہیں مل رہا, کے پی کے کوئی موٹر وے کوئی پروجیکٹ نہیں مل رہا, مطلب نون لیگ والے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ سمجھ میں نہیں آ رہا, یا تو یہ سوچے کہ ان کو یہ احساس ہے کہ یہ پاکستان شاید ٹوٹ جائے گا,
4: مطلب پنجاب کو
7: ہی بنا دو, اس طرح سے نہیں
4: سر. آپ کی بلوچستان میں گورنمنٹ ہے, آپ کی نہیں, میری بات سنیں, نہیں نہیں ایسے نہیں نا, ایسے نہیں ہوتا. سندھ میں آپ کی گورنمنٹ, بلوچستان میں آپ ہٹ جائیں, چھوڑ دیں گورنمنٹ, اتنی مطلب آپ کو ہے وہ تو چھوڑ دیں,
8: यार आप छोड़ो पीयूष पार्टी। नहीं
4: ऐसे नहीं होता ना, आपका हक सर, आपका हक नेशनल हाईवे अथॉरिटी हक है सिंध का,
8: सिंध को चला रही है,
4: सिंध का हक
8: कमाल की बात कर रहे हैं
4: सर, सिंध का हक है, सिंध का हक है। नहीं एक मिनट सुने ना, पूरी बात सुने ना, जोर से ना बोलें। सिंध का अगर हक है, सदर जरदारी साहब हैं, तो यार लें उनसे, क्यों नहीं लेते, कहे भाई इसको बनाए, क्यों नहीं बनाते।
8: अभी ब्रावल भुट्टो ने बात की थी ना, तो फिर
4: नहीं, आज उन्होंने देखें, कल बिलावल भुट्टो ने कल बात की, कल उन्होंने बात की, कल इस्लामाबाद वाली बात की भुट्टो साहब ने,
8: थर वाली की
4: नहीं ज्यादती है, लेकिन उसका कोई हल निकाले ना, सिंध वाले निकालेंगे और कौन निकालेगा, निकालेगा सिंध निकालेंगे ना, और कैसे निकालेंगे। चलिए ठीक है, मेखन में आप डिसनेट कर गए हैं, बहरहाल देखें को हर चीज एक ही तरह की बात रोज एक तरह की रिपीट, शायद वो मुनासिब नहीं है, लेकिन आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हम उसके एहतराम करते हैं यकीनन। अच्छा सर 5415 सर आप ऑनर हैं, 5415 आप ऑनर हैं सर।
9: अस्सलाम वालेकुम,
4: वालेकुम सलाम सर, वालेकुम सलाम सर।
9: पट्टी साहब की हाल है?
4: जी अलहमदुलिल्लाह जी जी।
9: अच्छा पट्टी साहब, बात ये है कि देखें ये जो जिस तरह की सियासत हो रही है ना,
4: जी जी,
9: ये सियासत नहीं हो रही बटी साहब। देखें जब सियासी लोग, बटी साहब आप हमसे बेहतर जानते हैं, आप हमसे कुछ मतलब है बताएं, देखें इख्तलाफ इख्तलाफ भी होता था, लेकिन लोग एक दूसरे के मरने पे भी जाते थे, एक दूसरे की गम और खुशी में शामिल होते थे
4: बटी जी।
9: अब तो हालत ये हो गई है कि बटी साहब एक घर के अफराद आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते पॉलिटिक्स पे, एंड पे क्या होता है, लड़ाई होती है बटी साहब। मतलब इस सतह तक ये कसूर किसका है, अवाम का कसूर है या उन लीडरान का कसूर है जिन्होंने ये जहर घोला है?
4: सर अवाम का भी तो कसूर है ना, अवाम भी तो ऐसे ही पीछे लग जाती है बगैर किसी, अवाम वोटर तो अवाम है, चेंज कर सकती है अवाम, इसमें कौन सी को बात
9: है। बटी साहब मेरी बात सुने, जिम्मेदारी का लेवल होता है ना, जिम्मेदारी का कुछ लेवल भी तो होता है ना। कुछ लोग आप देखें, हम लोग आपके, हम लोग प्रोग्राम में आते हैं, हमारी एक आपकी रिस्पांसिबिलिटी है और एक आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। अगर आप हमसे बढ़ के आगे लग जाएंगे तो फिर प्रोग्राम किसने चलाना है, मुझे ये बता दें।
4: नहीं मेरी तो कोशिश होती है कि सर कहीं भी रेड लाइन क्रॉस ना हो, मैं रेड लाइन क्रॉस कोशिश करता हूँ, आज मैंने बल्कि मुमकिन है आज मुझसे कुछ लोग नाराज हो गए हों, लेकिन बहरहाल
9: मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उन लीडरान की जो जहर घोल रहे हैं, जो आपने कहा है ना कि अवाम की अवाम का भी कसूर है, मैं मानता हूँ अवाम का कसूर है, बट मैं ये नहीं कह रहा अवाम का, बिल्कुल मैं बेल आउट नहीं कर रहा, लेकिन बड़े मुजरमीन तो वही है ना जिन्होंने ये बीज बोया है। इसलिए हमें होश के नाखन लेने चाहिए। देखें सियासी इख्तलाफ हो सकता है, एक आपका नुक्ता नजर है, एक मेरा नुक्ता नजर है, आप अपने नुक्ते नजर पे कायम रहे, मैं अपने नुक्ते नजर पे, इसका वक्त फैसला कर देते हैं, इसमें लड़ने की चीखने की चिल्लाने की बात जरूरत नहीं है।
4: ठीक है।
9: और दूसरी बट्टी साहब बात यह है कि ये जो नेशनल हाईवे की अक्सर बात होती है, क्या इस मुल्क में पीपल्स पार्टी ने रूल किया है कि नहीं किया? एक दिन इकतदार में
4: फेडरली में खल वो जो होता है नहीं हो पा, मैं थोड़ी बात उनकी फिर भी दुरुस्त है, हर जगह हो रहा है, वहां क्यों नहीं बन रही आखिर, वो क्यों नहीं बन रही अब तक?
9: भट्टी साहब मेरी बात सुने, मेरा सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी ने कितने साल सेंट्रल में गवर्नमेंट की है?
4: मुझे ढाई ढाई साल गवर्नमेंटें हुई हैं उनकी, कहां सबके पहले तो ऐसे,
9: उससे पहले 7 साल अनइंटरप्टेड जो पहला सिविलियन डिक्टेटर था वो कौन था? ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो था
4: सर। उस जमाने में तो ये हाईवे बनती नहीं थी ना, उस वक्त तो ये चीजें ही नहीं थी वहां, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था ना, उस वक्त कौन सा कोई मोटरवे था या कौन सी चीजें थी?
9: मेरे बात सुने, मोटरवे कौन लेकर आया
4: है? उस वक्त नहीं था ना सर, अभी है ना,
9: मोटर तो, लेकर आया मियां नवाज शरीफ।
4: सर आपकी बात ये, वो यही तो कह रहे हैं कि भाई वहाँ हर चीज बन रही है, सिंध में क्यों नहीं बनती?
9: ये वो बदकिस्मत पार्टी है पीपल्स पार्टी जो कहती थी कि मोटर वे नवाज शरीफ ने, ये लाहौर से जो इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट था इसकी भी पांच लेनी थी और पीपल्स पार्टी इसको क्यों करवाया?
4: साहब चलें ठीक हो गया, मैं दूसरी कॉल लेनी, थैंक यू बहुत शुक्रिया। इसहाक मलिक साहब आप होने सर बात कीजिए, इसहाक मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम सर।
10: जी भाई ये मैंने सबकी बातें सुनी, जो चिल्ला चिल्लाना इससे कुछ हासिल नहीं है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे।
4: यार वो बात का जज्बाती होते हैं, ठीक अपने इलाके का, यार अपने इलाके का दर्द होता है ना, जाहिर सी बात है। ठीक जी जी,
10: तो बस ये है कि मैं ये कहूंगा कि इमरान खान एक साबिक वजीर आजम है जिससे कोई इनकार ही नहीं है, किसी को भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। दूसरी बात ये जी, बड़ी पार्टी है, बिल्कुल सही है, हर चीज से चल रही थी, बस जो उनको जिस तरह मुकदमात हुए और अब उनकी बहनें जेल में है, और जो केपी गवर्नमेंट है, अगर उनका एक मसला ये है जो मेरी नजर, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो कंडेम क्यों नहीं करती, जितने भी इतने हमले होते हैं, इतने लोग शहीद होते हैं, किसी के जनाजे में नहीं जा रहे, यानी कोई उनकी पॉलिसी नहीं है, वो बस अपनी कोई कंडेमनेशन आई नहीं रही केपी हुकूमत की तरफ से, यानी कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसलिए जो है फेडरल भी और गवर्नमेंट भी ये उनसे ये कह रही है कि भाई आप कंडेम तो करो यार, वो उसके भी मस्जिद है कि नहीं हम नहीं करेंगे, ये वो खुद साफ अल्फाज में बोल रहे हो, तो ये पहली चीज ये है। बाकी ये है कि दूसरी बात यह कि जिस तरह के जो हमारी जो अपोजिशंस हैं, ये सारी जमात इस्लामी हो गई है, जितने भी दूसरे हैं, इन सबको मिल बांट के बैठना होगा, और केपी हुकूमत या पीटीआई से जो ये चीज होनी चाहिए कि भाई आप कौमी सलामती अपने लोगों के लिए तो कुछ बोले, आप
4: बिल्कुल
10: आप उन्हीं के पीछे लगे हुए हैं, तो ये कंडेमनेशन होनी चाहिए, फिर जाके चीजें आगे बढ़ेंगी। बहुत बहुत
4: शुक्रिया।
11: अस्सलामुअलैकुम भाई साहब।
4: जी वालेकुम सलाम।
11: बड़ी साहब, पाकिस्तान के किसी एरिया में भी हाईवे बने ना, वो मेरा मुल्क है और मेरा हाईवे, और मैं खुश हूँ उस बात से। वो सिंध में बने, बलूचिस्तान में बने, कहीं भी बने, कश्मीर में बने, मैं खुश हूँ जनाब। और जो बंदा टुकड़े करने की बात करे, मैं उस पर ना खुश हूँ, मेरी ओपिनियन उसके खिलाफ है। और बड़ी साहब एक बात है, देखें कहीं ऐसा तो नहीं है कि पंजाब वाले खाते भी हैं और लगाते भी हैं, और सिंध वाले परों समेत निकलते जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है
4: सर? वो अवाम एक हद है, अवाम के लिए तो ठीक हो गया सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया
11: जी, बहुत शुक्रिया।
4: सुहेल वड़ाई साहब, आप ऑन एयर हैं। सुहेल वड़ाई साहब, आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। सुहेल वड़ाई साहब, अगर आप बात करना चाहें तो। सुहेल वड़ाई साहब
12: जी जी जी, पटी साहब थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया।
4: जी जी,
12: मैं ये बात करना चाहूंगा कि खान साहब जो उनके साथ हो रहा है, मैं तो जाती तौर पे इसके भी खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी ये नहीं होना चाहिए था, खान साहब के साथ भी ये नहीं होना चाहिए, तो लेकिन ये है कि गिव एंड टेक होता है, तो इस रस्म को हमें खत्म करना चाहिए, और जहां तक भी हमारी आवाज पहुंचे आपके इस चैनल के थ्रू, ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसमें इनको पॉलिटिकल पार्टीज को, मैं तो समझता हूँ, ये मेरी ओपिनियन है कि इनको इकट्ठा बैठना चाहिए, इकट्ठे बैठकर इस मसले का हल निकालना चाहिए।
4: बिल्कुल ठीक सर। थैंक यू
12: सर। दूसरी सर, नहीं सर एक सेकंड, और दूसरी बात सर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, उनको भी चाहिए कि वो अपने अवाम को, अपनी कौम को, वहां के लोगों को डिलीवर करें और उनकी बेहतरी के लिए काम करें, और मिल बैठकर टेबल के ऊपर आकर इस मसाइल को हल करें और पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ें। देखें, हम सबसे पहले पाकिस्तानी है, चाहे कोई पीटीआई का दोस्त हो, चाहे कोई नून लीग का हो, कोई पीपल्स पार्टी का हो, लेकिन हम सबसे पहले पाकिस्तानी है। पाकिस्तान मजबूत सर होगा, पाकिस्तान अगर आगे बढ़ेगा तो फिर इंशाल्लाह हम सब
4: सुहेल भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत। चलिए जनाब, यहीं पे क्लोज करेंगे। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी खोने की चीज़, एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ बशर्त जिंदगी। हमारी मुलाकात अब कल शाम 7 बजे। कुछ मैं भी ऊंचा बोला, कुछ दोस्तों ने बोला, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मेरी तरफ से माजरत कबूल कीजिएगा। स्टूडियो इंजीनियर कायनात अपने मेजबान अरशद भट्टी को दीजिए इजाजत, बशर्त जिंदगी कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्दे माला। इजाजत कबूल कीजिएगा। स्टूडियो इंजीनियर कायनात अपने मेजबान अरशद भट्टी को दीजिए इजाजत, बशर्ते जिंदगी कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्दे माला।

0: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Ab fikr na kare, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan. क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड डिपार्चर रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका. हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
1: आप सुन रहे CMRF 9 Monday to Friday. Stay tuned.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9. Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs. Jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.

Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Ab fikr na kare, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan. क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेम्परेचर रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका. हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन, तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स द केयर It deserves.

0: एशियन कनेक्शन रेडियो सुन रहे सारे स्वतंत्र करदा सिंह का स्वागत। मैं रणवीर चौहान आपके सभा में हाजिर हूँ और आज है 7th of October, दिन है वेंसडे और टेम्परेचर हो गया जी आज 21 डिग्री और हल्की हल्की बारिश होने की उम्मीद थी पर टल गई। नाउ इट्स ए सनी डे राइट नाउ। तो प्लीज़ कॉल अस इन द स्टूडियो कोई भी बातचीत करना चाहें दौरान इस प्रोग्राम के 10 से लेकर 12 बजे तक। पेश करते हैं हम एशियन कनेक्शंस मंडे टू फ्राइडे ऑन CMR FM 101.3। और प्रोग्राम के बाद मेरा डायरेक्ट नंबर आप नोट कर लें, वैसे पता ही है आपको काफ़ी लोगों को, लेकिन बता दूं जो लोग नए जुड़े हैं 416-910-2000, 416-910-2000। आज के प्रोग्राम में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है और जो इलेक्शन चल रहे हैं इसके बारे में बातचीत होगी, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है ये बताएंगे आपको, और ख़बरें भी होगी, इंडिया की बात भी करेंगे, पाकिस्तान की खबरें भी होगी। लेकिन शुरुआत हर रोज की तरह क्रिकेट अपडेट के साथ फ्रॉम सहारा इंश्योरेंस। गिरीश जी वेलकम सर, हाउ आर यू?
1: जी रणवीर जी थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग लिसनर्स। और ऑफ कोर्स क्रिकेट की गल कर रहे हैं, कल जो मैच हुआ बहुत ही शानदार, पहला T20 इंडिया ने बड़े ही आसानी नाल एंड 14.4 ओवर मैच जीत लिया। एक टाइम से थोड़ी मुश्किल हो रही थी और पहले 3-4 ओवर च कपल ऑफ विकेट चढ़िया जल्दी गिर गई, लेकिन उस तो बाद सरपंच साहब आए इंडिया के कैप्टन श्रेयस अय्यर और उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और बहुत ही ईजीली ये मैच 172 का जरा टारगेट से 2 विकेट के नुकसान से 8 विकेट से यह मैच जीत लिया। ईशान किशन आलसो मेड 37 आउट, 5 चौके इन्होंने लगाए, लेकिन श्रेयस अय्यर 102 in 43 balls, पहली बार उन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से सेंचुरी बनाई, नॉट आउट रहे, 10 चौके और 6 छक्के लगा के ऑफकोर्स प्लेयर ऑफ द मैच। 1-0 से बहुत इंपॉर्टेंट जी लीड आ वह इंडिया में मिल गई। उस तो पहले वेस्ट इंडीज 171 और ए कपल ऑफ 50 फर्स्ट बाय रदरफोर्ड 56 एंड दैन आल्सो कैप्टन शे होप मेड 52 विद 6 boundaries एंड 2 sixes। सो ए सीरीज 5 मैचा दी है, ये काफ़ी मैचेस बाकी ने और जो नैक्सट गेम हैगी दैट इज स्कैजुअल ऑन फ्राइडे डे आफ्टर टुमारो 9:30 से यह मैच होगा अर्ली मॉर्निंग टोरंटो के हिसाब और रांची मैच खेले जाऊगा और लगातार असं एशियन कनेक्शन से 12 बजे तक लगातार अपडेट्स पेश करेंगे। श्री सहीर उन्होंने कहा कि जब क्रीज तक गए थोड़ी जी इंडिया की टीम डाउन सी, लेकिन उन्होंने फील हो रहा है कि इन्हों का दिन आ एंड ही सैड कि इफ इट्स योर डे मेक श्योर यू विन द गेम एंड उन्होंने इन प्रूव भी किया और बिल्कुल गेम जीत के आसानी नाल इस वेले एज ए कैप्टन बाहर आए। सो काफ़ी इन्हों की तारीफ हो रही हैगी। फ्राइडे न ही पाकिस्तान और श्रीलंका की T20 जी सीरीज वो भी स्टार्ट हो जाएगी एंड पहला जरा मैच है रावलपिंडी खेला जाऊगा 9:00 टोरंटो टाइम। सो फ्राइडे तुम 2 मैचेस देख सकते हो, पाकिस्तान श्रीलंका 9:00 और 9:30 इंडिया और वेस्ट इंडीज और जरा पाकिस्तान का सैकंड गेम आ दैट इज स्कैजुअल ऑन संडे ये भी 9 बजे होगा और रावलपिंडी ही मैचेज खेले जाऊंगे और ये भी असी लगातार अपडेट्स पेश करेंगे। इंडिया की वुमेन क्रिकेट ऑफकोर्स जो न्यूज़ आ रही है लगातार कि हरमनप्रीत कौर उन्होंने स्टेप डाउन किया एज ए कैप्टन। तीनों फॉर्मेट से उन्होंने कहते कि एज ए प्लेयर खेलूंगे लेकिन कैप्टन नहीं रहूंगे और उन्होंने बहुत बढ़िया अचीवमेंट्स चलिया अपनी कैप्टनसी से उन्होंने मिलिया और हुण जिहड़ा स्मृति मन हैगी अनदर टॉप प्लेयर फॉर इंडिया इन्हों तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी जी दारोमदार दे दिता गया। सो कमान इन्हों के हाथ में हैगी और क्वेश्चन पूछा गया कि कोई प्रॉब्लम इन्हों के दरम्यान चल रही है, उन्होंने कहा कि कोई भी इदा की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बहुत ही जी हरमनप्रीत आ इन्हों पूरी टीम ऐसे रिस्पैक्ट देंगे ने और उन्होंने कहा कि मेरे दिल च भी बहुत ज़्यादा रिस्पैक्ट आ और उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूँगी कि जोड़ा इन्होंने मैंने जोड़ा दारोमदार हूँ मेरे उपर है उन्होंने मैं इस तरह कंटिन्यू रखा जिस तरह हरमनप्रीत उन्होंने अपने कैरियर एज ए कैप्टन जो कैरियर से उन्होंने वो इंडिया को अचीव कराया। सो ये जो आने वाले दिनों ये बारे भी लगातार न्यूज आऊगी लेकिन फिलहाल सब की निगाह लगी है कि बिगनिंग ऑफ ईयर जो वुमेन्स IPL हों बारे भी जी ऑप्शन जी हो जा रही है और जल्दी ही इन दीम थोड़िया जी चेंजिस हो गई और बारे भी लगातार अपडेट्स देंगे उन्होंने। रणवीर जी बैक टू यू।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी का, नंबर नोट कर लो 416-451-4001। गिरीश जी कुछ टिप्स जरूर दिया करो रिगार्डिंग इंश्योरेंस।
1: जी बिल्कुल, किसी ने भी लाइफ इंश्योरेंस बारे कोई सलाह लेनी है तो पुरानी पॉलिसी पई है, कई बार होंगे कि बहुत पुरानी पॉलिसी का क्योंकि लोग 80s और 90s जो कैनेडा चाहे थे उदो डिफरेंट पॉलिसीज होंदिया सीगियां, खासकर जो 80s आया लाइफ इंश्योरेंस लई है, लेकिन कई बार मेरे को पॉलिसी खोल के देखते हैं तो 50,000 का ईवन समटाइम तो 25,000 की पॉलिसी होंगी है और उन्होंने यह लगता कि यह जी पॉलिसी है यह हुई हो साड़ी लाइफ इंश्योरेंस हुई हो ठीक है वेरी गुड है, लेकिन 25,000 उस वे बहुत बड़ी रकम होंगी सी जो कार 10-12,000 दी आ जाती थी। अजकल जी पॉलिसी मिनिमम कहने कि हर बंदे कैनेडा च 500,000 की पॉलिसी बहुत जरूरी है। ਸੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟੋਪ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਫੁੱਲ ਲਾਈਫ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ RESP ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲਾਨਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣਾ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416-451-4001
0: ਜੀ 416-451-4001। ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਸ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਰੋਂਟੋ ਮੇਅਰਲ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬ੍ਰੈਡ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਲੀਵੇ ਚਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਰਹੀ। ਬਟ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡ ਫੋਰਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ?
1: ਹਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਐਲੈਗਜੈਂਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਅਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 9% ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-6% ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਔਰ ਕੁਛ 100 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਰੋਂਟੋ ਦਾ ਮੇਅਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਫਕੋਰਸ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ
0: ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤੇ ਰਹੇਂਗੇ ਔਰ ਖਬਰੇਂ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੇ ਰਹੇਂਗੇ। ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗਿਰੀ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਅਦ।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ।

Station. Call 416-910-2000. That's 416-910-2000. Asian Connection with Ranbir Chauhan. CMR 101.3 FM, Toronto. क्राफ्टिक प्रिंट स्टूडियो, जहां से आप अफोर्डेबल प्राइस पे बेस्ट क्वालिटी प्रिंटिंग बहुत ही कम समय में करवा सकते हो. फॉर इलेक्शन कैंडिडेट्स स्पेशल लास्ट मिनट सर्विसेज अवेलेबल 24/7. कॉल ध्रुव नारंग 647-717-9372 647-717-9372 6477793. क्राफ्टिक प्रिंट स्टूडियो.

0: 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: डांडिया या गरभा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना न भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808।
2: थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए है, जे दुख होवे दसना जरूर चाहिए है। और आप शायद इसलिए नहीं हंस रहे कि आपके दांतों में रहता है दर्द। डोंट वरी, जस्ट गो टू डेंटल ऑफिस ऑफ डॉक्टर नील गजर फॉर ऑल योर डेंटल नीड्स लाइक फिलिंग, ब्रेसेस, इम्प्लांट और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। एड्रेस 735 ट्वेन एवेन्यू मिसिसागा, नॉर्थ ऑफ डेरी ऑन मेविस रोड। टेलीफोन 2894010076, दैट इज 2894010076। थोड़ा थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिदा, दुख होवे दसना जरूर चाहिदा। ऑलवेज रिमेंबर डेंटल ऑफिस ऑफ डॉक्टर नील गजर।

0: जी हाँ, किसी भी दोस्त या रिश्तेदार को चाहिए विजिटर वीजा, स्टूडेंट वीजा या स्पाउस और पेरेंट्स को इमिग्रेशन दिलानी है तो राजीव रामपाल को मिलें 7895 ट्रेनमेर ड्राइव यूनिट 22 इन मिसिसागा एट डिक्सी एंड डेरी। कॉल 416-500-8036, दैट्स 416-500-8036। ब्लू ओशन इमिग्रेशन। यदि आप एजुकेशन सेल्स में एक एक्साइटिंग करियर ढूंढ रहे हैं तो कैनेडियन कॉलेज फॉर हायर स्टडीज इज हायरिंग एजुकेशन रिक्रूटर्स, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड एजेंट्स टू प्रमोट हाई डिमांड एंड करियर फोकस्ड डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन पर्सनल सपोर्ट वर्कर, अर्ली चाइल्ड केयर असिस्टेंट, क्लाउड बेस्ड आईटी सपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड जनरेटिव AI। यदि आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हो या आपके पास सेल्स एक्सपीरियंस है तो कॉल करें 416-850-1456 और ईमेल योर रेज्यूमे study@thecanadiancollege.ca। कैनेडियन कॉलेज फॉर हायर स्टडीज, बिल्ड योर करियर, क्रिएट योर फ्यूचर।
1: You're listening to Asian Connection. Our number is 416-910-2000.

ब्यूटीफुल सॉन्ग, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें हैं। बर्दाश्त ये मूवी आई थी 2004 में और हिमेश रेशमिया का है म्यूजिक। सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा, नाराज गेम गेमी ताल्लुक ना तोड़िएगा। बहुत ही प्यारी कंपोजिशन, लेट्स एंजॉय।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਸ਼ਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 101.3 FM ਤੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
1: ऑल ट्रक ल्यूब एंड वॉश लिमिटेड हफ्ते के 24 घंटे और सातों दिन खुले रहते हैं, जो एक ही छत के नीचे तीन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, ट्रक वॉश करना, तेल बदलना और रिपेयर करना। इनके पास बहुत बड़ा यार्ड है जहाँ काफी कैमरास लगे हुए हैं, ताकि आप ट्रक को वॉश और सर्विस के लिए ड्रॉप करके नेक्स्ट डे पिक कर सको। ट्रक वॉश विद ऑयल चेंज ओनली फॉर $45। फॉर बेटर डील्स एंड बेस्ट सर्विसेज एक बार जाओ ऑल ट्रक ल्यूब एंड वॉश लिमिटेड, 71 स्टैफोर्ड ड्राइव, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 9054529955, दैट इज 9054529955।
2: यार, फ्रेश स्पाइसी और मजेदार खाना खाने का मन है तो फ्रेश तंदूरी आ जाओ। तंदूरी वेज या नॉन वेज दोनों का असली मजा लो 24 घंटे हफ्ते के सातों दिन। बर्थडे बैश हो या फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, रात को भी खाओ पियो और मजे करो। फ्रेश तंदूरी अब दो शानदार लोकेशंस पर, क्वीन स्ट्रीट एंड कैनेडी। कॉल नाउ 9058740111 पे। Bramley and Bouvade location, contact karo 9057921711 pe. Freshly baked cakes, zabardast variety of food and drinks, aur ha, hamare food trucks bhi hain live catering ke liye. Ghar par event hai, Fresh Tandoori ko call karo aur apne event ko yaadgar banao. Zaikedar lazeez dar khao, Fresh Tandoori par aao. Khana lazeez, har dil aziz.
3: यदि आप होंडा की कोई भी न्यू और यूज्ड कार या वैन लेना चाहते हो तो एक बार बोल्टन होंडा पे जरूर जाओ। इनका दावा है कि यहाँ आपको बेस्ट डील्स के साथ साथ सर्विस भी बेस्ट मिलेगी। आपका क्रेडिट खराब है? डोंट वरी, फाइनेंसिंग ऑन द स्पॉट। सोचो मत, एड्रेस नोट करो, 65 पिल्सवर्थ रोड, बोल्टन। यू कैन कॉल 9054570888, दैट्स 9054570888, और विजिट boltonhonda.ca।
4: Don't blame your luck for all the unhappiness in your life. You just need the support of a person who can give you the right guidance. Meet the renowned psychic fortune teller Pandit Nandaji today, who is the expert of palm reading, face reading and horoscopes. Solution is available for all the problems related to family, health, drinking, depression, financial problems and bad luck. 100% removal of black magic, evil spirits and spells. All religions welcome. Located at Queen and Kennedy in Brampton. Call Pandit Nandaji 647-822-9607, 647-822-9607.

0: जी, और एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग, और मॉर्निंग शो में आपका स्वागत है। और आप हमसे बातचीत करना चाहें तो स्टूडियोज का नंबर है 416-593-0055। और सुनते रहो CMR 101.3 FM एशियन कनेक्शंस, सुबह 10 से लेकर दोपहर 12 बजे तक मंडे टू फ्राइडे। और आपको अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आपके आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे हम आपके साथ। और हमारी कोशिश यही होती है कि अच्छी अच्छी बातें आपको बताएं जो आपके फ़ायदे की हों। और सबसे जो कीमती चीज़ है ज़िंदगी में, आई थिंक वो है हेल्थ, सेहत। सेहत है जान है तो जहान है। और इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं गुरु जी, और पुष्टों से यही काम करते आ रहे हैं। आपको कोई भी किसी भी तरह की बीमारी है तो कैसे ठीक करना है नेचुरल आयुर्वेद से, नेचुरल दवाइयों से, तो ये तो बताएंगे वन एंड ओनली हमारे गुरु जी। गुरु जी वेलकम, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: नमस्ते नमस्ते नमस्ते जी।
0: जी आज इस चैनल पे हम पहली बार बात कर रहे हैं 101.3 FM पे, और आपका हार्दिक स्वागत है। और बताएं जरा अपने बारे में, अपने जो बैकग्राउंड के बारे में, अपने परिवार के बारे में, कि स्पेशलिटी है जो आपकी उसके बारे में बताएं।
1: यस भैया, मैं आयुर्वेदिक एंड वैद्य है, हर्बल्स का वैद्य है। मैं 9 जनरेशन से आयुर्वेदिक का काम कर रहा है।
0: ओके,
1: इंडिया में।
0: वेरी नाइस।
1: मेरा पापा, मेरा दादा, मेरा परदादा वैसा आयुर्वेदिक एंड हर्बल्स में काम करता रह रहा है।
0: ठीक है।
1: बहुत बहुत लोगों को बहुत पुराना पुराना प्रॉब्लम को क्लियर किया था इंडिया में।
0: That's very nice.
1: 9 साल से कनाडा में रह रहा है। कार्बो में वीकली फर्स्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कार्बो में, और ब्राम्पटन में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन ब्राम्पटन में रह रहा है।
0: वेरी नाइस।
1: मैं इलाज कर रहा है लोगों को, हर्बल से कर रहा है, हर्बल सारा हर्बल इंडिया को हिमालय में जाके उधर से रेयर हर्बल्स लेकर आता है।
0: वेरी गुड।
1: केरला एंड अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वैसा वैसा फॉरेस्ट को अंदर जाके उधर से रेयर हर्बल्स लेकर आके उससे बना के लोगों को इलाज करता है। हमारा हमारा कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है, कंसल्टेशन को पैसा नहीं लेता है।
0: और गुरुजी वैसे किस तरह की बीमारियां जो है वो ठीक हो जाती हैं हर्बल, नेचुरल हर्बल से, और कितनी की सीरियस बीमारी है? जैसे कुछ लोगों को आजकल हमारी कम्युनिटी में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बहुत ज्यादा शिकायतें नजर आती हैं, तो ये जो पुरानी डायबिटीज है वो भी कर लेते हो ठीक आप?
1: यस यस भैया, वो क्या होता है शरीर में वाता पित्त कफ 3 गुण होता है शरीर को, किसी को भी वो 3 गुण से अलग अलग बीमार होता है। किस किस के शरीर किस किस तरफ प्रकृति होता है उस तरफ से वैसा, उसमें ज्यादा अभी हमारे कनाडा में ये सर्दी में जॉइंट में ज्यादा दर्द होता है लोगों को, आर्थराइटिस हो जाता है, घुटनों में पेन होता है, कॉटलेज ड्राइव हो जाता है, लोअर बैक पेन हो जाता है, एंड सायाटिका पेन आता है, और शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, शोल्डर पेन होता है, नेक पेन होता है, सर्वाइकल पेन होता है वैसा सीजन के लिए, एंड पेट को अंदर गैस, एसिडिटी, आमला पित्त वायु, डाइजेशन इश्यूज, एंड लिवर, फैटी लिवर, लिवर को अंदर अच्छे से वो हजम नहीं आता है, भूख नहीं लगता है लोगों को, फिल्टर पे वो लिवर को फिल्ट्रेशन कम हो जाता है इसके लिए, एंड पैंक्रियास शुगर, शुगर होते हैं आप बताइए भैया, शुगर बहुत पुराना शुगर होता है, क्रोनिक डिसीज होता है, उसको लोग मेटफॉर्मिन खाता है, दूसरा दवा खाता है, इंजेक्शन डालता है, तब भी कंट्रोल में नहीं होता है, उस लोगों को बहुत लोगों को मैं ठीक किया था इधर 1 वीक 10 दिन में शुगर से वो इंजेक्शन से बाहर आके नॉर्मल में आता है।
0: बिल्कुल
1: वैसा, एक दो बीमार नहीं भैया, बहुत बहुत बीमार के लिए हमारा पास इलाज होता है।
0: बिल्कुल सही है जी। और
1: नेचुरल तरफ से,
0: हाँ मैं लिसनर्स को बता दूं कि जो हर्बल से ट्रीटमेंट है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और एक बार आप गुरुजी को मिलें और देन सी ए चेंज इन योर लाइफ। और वैसे मिलना चाहें हम तो गुरुजी 2 लोकेशन से आप मिलते हो, 2 लोकेशन टू सर?
1: या 2 लोकेशन, एक स्कार्बरो में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे,
0: ओके,
1: ब्राम्पटन में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे।
0: तो कल थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन ब्राम्पटन में। और आप फोन बड़ा इनका आसान सा है, 437-438-3399, 437-438-3399। अच्छा थोड़ा सा बताएं कि आपने जो पुरानी से बीमारी कौन सी ऐसी ठीक की है, वर्स्ट जो केसेस आपके पास आए हैं, तो आपको जिसके फील मतलब आपको लगा होगा यार इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी कि बड़ा अच्छा लगा मैंने इतनी पुरानी बीमारी को ठीक किया है हर्बल ट्रीटमेंट से।
1: यस, आपको भी मालूम भैया, बहुत लोग आप भी मेरे को पेन किया था, बहुत लोगों को मैं किया था।
0: जी जी,
1: जॉइंट पेन के लिए किया था, जॉइंट पेन के लिए ऑपरेशन करने के लिए बताया था लोगों को, नी प्लेस के लिए, वैसा लोगों को नी प्लेस नहीं करना, वैसा उसको ठीक किया था। शुगर के लिए इंजेक्शन डालता है लोगों को, उसको भी ठीक किया था। एंड एसिडिटी के लिए हजम नहीं होता है, भूख नहीं होता है, वैसे लोगों को भी ठीक किया था। एंड स्किन डिसीज बहुत बहुत कम से कम 400-500 लोगों को वो क्लीन किया था। स्किन डिसीज एक्जिमा होता है और सोरियासिस एक्जिमा बच्चों लोगों को, बड़ा लोगों को होता है, उसको भी क्लीन किया था। शुगर लोगों को, बहुत लोगों को क्लीन किया था, जॉइंट पेन आर्थराइटिस पेन को एक दो नहीं भैया, बहुत लोगों को क्लीन किया था। हमारे पास भी पेशेंट्स बहुत लोग है, आपको वो हमारा स्टूडियो को आके लाइन में आके भी बात करेगा, उसको कैसा क्लीन हो गया वो भी बताएगा आपको।
0: वेरी नाइस। और नंबर नोट करें 4374383399। और गुरु जी और कुछ कहना चाहेंगे और टिप्स देना चाहेंगे कुछ?
1: थैंक यू भैया, अभी थोड़ा बिजी होता है।
0: नो प्रॉब्लम सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। और अच्छे अच्छे बातें आपको बताते रहेंगे। और इलेक्शन की बात तो बड़ी ज़रूरी है क्योंकि आजकल चारों तरफ गहमा गहमी है। एक मैसेज आप नोट कर लें सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का कि जो जब इलेक्शन जो हो रहे हैं 26 तारीख को होंगे, फाइनल डेट जो है इट्स मंडे, लेकिन एडवांस वोटिंग के बारे में फिर बता दूं आपको, वो हो रही है अक्टूबर 9th, आज 7 होगी, फ्राइडे अक्टूबर 9th है, तो 9, 10, 11 फ्राइडे सैटरडे संडे इस कमिंग वीकेंड, और फिर नेक्स्ट वीक 16 और 17 फ्राइडे और सैटरडे, ये 5 दिन है एडवांस पोलिंग। और जो वीकडेज के टाइमिंग है यानी कि फ्राइडे के टाइमिंग रहेंगे आपके दोपहर 12 से शाम के 8 बजे तक, और जो वीकेंड्स हैं जैसे 10, 11 और 17 जो वीकेंड पड़ेगा तो उसमें टाइमिंग्स होंगे 10 बजे सुबह 10 से लेके शाम के 5 बजे तक। यू कैन वोट एट एनी एडवांस वोटिंग लोकेशंस इन ब्रैम्पटन, ब्रिंग योर वोटर नोटिस, एंड इफ यू रिसीव्ड वन एंड विद जो आपके आईडी कार्ड है वो अपना ज़रूर लेके जाएं। तो यदि आपको नहीं मिला तो आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि आपकी कौन सी लोकेशन आपके घर के नज़दीक पड़ती है, तो देन विजिट brampton.ca/brampton votes brampton.ca/brampton votes। कुछ मैसेजेस भी बड़े ज़रूरी हैं, उसके बाद फिर सिलसिला बातचीत का यूं ही चलता रहेगा और आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या हो रहा है चारों तरफ। और जो स्कारबो के जो लोग हैं, ईस्टर्न के लोग काफ़ी सुनते हैं प्रोग्राम, काफ़ी फ़ोन मुझे आते हैं, तो वहाँ पे जो इलेक्शन चल रहे हैं म्यूनसिपल इलेक्शन, तो स्कारब्रो कम्युनिटी रिन्यूअल ऑर्गेनाइजेशन ये आज शाम को 5 बजे जो है वो मेरल डिबेट होस्ट करने जा रहे हैं। स्कारब्रो कम्युनिटी रिन्यूअल ऑर्गेनाइजेशन शाम को 5 बजे आप जो ईस्टर्न के लोग हैं वहाँ आप जाएं और इस डिबेट में आप हिस्सा डाल सकते हैं। और आज आपको पता है कि 7th अक्टूबर है और ये है आज एनिवर्सरी ऑफ 7th अक्टूबर अटैक्स जो हुए थे इज़राइल में, तो उसके कारण जो क्या किया कि जो जीटीए में पुलिस ने जो पेट्रोल्स है वो बढ़ा दिए हैं इन ज्यूश एरियाज ताकि कोई गड़बड़ ना हो, तो बड़ा सेंसिटिव मामला है, तो इसलिए उन्होंने अपनी पेट्रोलिंग जो है वो आज के डेट में बढ़ा दी है। ऐसी और बहुत सारी खबरें हम आपकी नज़र पेश करते रहेंगे और कुछ कैंडिडेट से भी बातचीत होगी कि इलेक्शन का दो इस बार बहुत लोग इंटरेस्ट कर ले रहे हैं हमारी कम्युनिटी के, तो ये एक किस्म यदि एक तरफ देखा जाए तो अच्छी बात भी है कि लोग आ रहे हैं, अवेयरनेस आ रही है, लेकिन काम कितने लोग करेंगे। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि जो जितने भी ये कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन जितने काउंसलर हैं या रीजनल काउंसलर हैं ये ज़्यादा इलेक्शन के टाइम पे ही नज़र आते हैं, बाद में शायद नज़र नहीं आते, ऐसी एक रिपोर्ट आई है। लेकिन हकीकत तो आप जानते हो, आपके इलाके में जो आपके काउंसलर हैं सिटी काउंसलर या रीजनल काउंसलर और ये ट्रस्टी हैं जो स्कूल ट्रस्टी हैं, मेयर है, खैर मेयर का तो खैर सबको पता ही है, लेकिन ये ज़्यादा नज़र क्यों नहीं आते। अब यदि आएँ आपके पास वोट लेने के लिए तो आप उनसे ये सवाल ज़रूर करें। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और सुनते रहिए एशियन कनेक्शंस ऑन CMR 101.3 FM।
2: यदि आपको घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स, तो एक ही नाम, कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, 24 रीगन रोड, ब्रैम्पटन, हमारी कम्युनिटी का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस एंड ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ। एशियन कनेक्शंस रेडियो का रेफरेंस देने पर मिलेगा आपको स्पेशल डिस्काउंट। फॉर फ्री कोट अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट इज 416-831-4790, और विजिट californiaawning.ca।
3: जब हम कोई भी कार, वैन या एसयूवी लेने के बारे में सोचते हैं तो सोचते ये हैं कि पैसे कम हो पर गाड़ी बढ़िया हो, फाइनेंस रेट भी अच्छा मिले और वारंटी भी ज्यादा से ज्यादा माइलेज पे हो। ये सारा कुछ आपको एक ही जगह से मिल सकता है और वो है माजदा ऑफ ब्रैम्पटन एट बवेड एंड वैन क्लिक। यहाँ के जनरल मैनेजर मनजिंदर संधु आपको ऐसी डील्स देंगे जो और कहीं से नहीं मिलेगी। कॉल 9054590290, 9054590290, माजदा ऑफ ब्रैम्पटन।
4: Hello, let's talk about your mortgage. One of your most important financial decision. Right advice at the right time can save you thousands of your hard-earned dollars.
5: Hi, I'm Amit Khurana with Centum Indigo Mortgage Corporation. I provide timely, transparent and expert service for residential and commercial mortgages. Whether you're a new immigrant, self-employed or you're struggling with your credit, I can help you get the right mortgages at the best rates.
4: That's Amit Khurana. Expect expertise, reliability and prompt service at the best rates. Call now. 647-341-2785. License number M12000871.
6: Or we'll sue you.
7: Are you in debt, personal or business? We can help. Business Solutions and Credit Counseling has helped thousands of clients like you for over a decade.
8: With proper help and counseling, you can become debt-free.
9: We can reduce your debt to the maximum and convert balance into easy monthly installments.
7: Nationwide, Toronto, Calgary and Vancouver. Toll-free 1-866-790-8984. Business Solutions, helping you become debt-free.
10: रेट्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान ना

0: एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत और मैं रणबीर चौहान आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और इस म्यूजिकल जो सेगमेंट है ये मुझे बड़ा मजा आता है और आपको भी अच्छा लगता है। एक मैसेज आया, मैंने कहते पाजी सुन के मजा आ जाता है। डेफिनेटली एक सॉन्ग की कमी नहीं महसूस होती, क्योंकि जो म्यूजिक है संगीत बहुत हेल्प करता है इंसान को। इट गिव्स यू वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। हाँ जी, और अच्छा म्यूजिक सुना आप सुना करें, इससे स्ट्रेस जो है बहुत रिलीज होती है। इट्स वेरी गुड थिंग टू इम्प्रूव योर हेल्थ। और स्टूडियो में पहुंच चुके हैं जी हमारे अपने राजीव साहब, राजीव कुमार, रिनाउंड रियल्टर, वन एंड ओनली राजीव साहब। क्या हाल चाल सर?
1: थैंक यू रणवीर जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स ऑफ एशियन कनेक्शन। एंड
0: बन गया ना मूड
1: रणवीर जी? मूड क्या, म्यूजिक सुनते ही मूड ऐसा बन जाता है और हाई कर देते हो।
0: यस,
1: हाई नोट्स ये म्यूजिक और इमोशंस, एवरीथिंग गोज हाई, मॉरल आल्सो गोज हाई।
0: म्यूजिक बहुत सॉलिड इम्पैक्ट डालता है आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे। आप जितने मर्जी बिजी हो, थोड़ा सा म्यूजिक सुनो अपना पसंदीदा, इट यू विल सी अ चेंज इन योर बॉडी।
1: बिल्कुल रणबीर जी, और आजकल इवन मेडिकल लाइन में भी म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल हो रहा है। अब जो बड़े पेशेंट्स होते हैं, जो क्रॉनिक डिसीज वाले होते हैं, उनको म्यूजिक थेरेपी दी जाती है।
0: yeah, that's right.
1: है ना, अब हफ्ते में एक दिन सबने चूज किया हुआ है, जो कि म्यूजिशियंस आते हैं, दे प्ले द सॉन्ग्स एंड ये इवन रिटायरमेंट होम्स में एक दिन म्यूजिक नाइट्स जरूर होती हैं और म्यूजिक प्लेज अ वेरी गुड थेरेपी।
0: एक दिन मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा, अभी वो टाइम नहीं है। जो नौशाद साहब थे, बड़े रिनाउंड म्यूजिक डायरेक्टर,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: उन्होंने एग्जैक्टली बताया था तो कि उस जमाने के जो पंडित होते थे, राइट, और कहते कि जैसे नाभी है, ये सारे गामा पा धा नी जो सात सुर है,
1: हाँ जी,
0: सातों सुर के हिसाब से नाभी से लेके और मस्तक तक ये डिफरेंट जो सात पोजीशंस हैं, ये हर सुर के साथ रिलेटेड है।
1: हाँ।
0: उसके साथ, और जो चीज आपकी खराब हुई, गला खराब हुआ, तो उसके जो कंसर्न राग है वो आपको सुनाएंगे, उससे तभी ठीक हो जाती है।
1: हाँ, जो आपके वोकल कॉर्ड्स पे इफेक्ट करते
0: हैं, या और वो उससे तभी ठीक होती है। इसी तरीके से हॉस्पिटल्स में वो जो जिस तरह की बीमारियां हैं वार्ड में, जिस तरह की वो ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके मतलब जो उसका कंसर्न राग्स हैं वो प्ले किए जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और बताऊं एक

0: बात के जो गौशाला है राइट, बहुत बड़ी बड़ी, वहां पे कुछ स्पेशल राग्स प्ले किए जाते हैं म्यूजिक में, और गाय दूध ज्यादा देती
1: मुझे तो आपका
0: है।
1: वो बहुत अच्छी एक लाइन लगती है कि अगर गाना पसंद है थोड़ा सा वॉल्यूम ऊपर कर लें, इट रियली
0: इसीलिए
1: सूदन्स योर मूड।
0: गीत,
1: आप पर गाड़ियां ध्यान से चलाएं जो भी
0: हाँ
1: रोड
0: गाड़ी
1: में
0: ध्यान
1: है,
0: से चलाएं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि गीत अच्छा लगे तो वॉल्यूम थोड़ा
1: थोड़ा
0: सा
1: सा
0: बढ़ा
1: बढ़ा।
0: लीजिए।
1: वाह
0: उससे क्या होता है ना, आपको एक तो आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो दूसरी चीज़ों से, और
1: बिल्कुल,
0: चंद मिनटों के लिए, 4-5 मिनटों के लिए आप रिलैक्स हो जाते हो।
1: बहुत रिलैक्सिंग होता
0: इट्स
1: है
0: अ
1: म्यूजिक,
0: थेरेपी,
1: वेरी रिलैक्सिंग।
0: इट्स अ बिग थेरेपी। और आप जितने भी हमारे लिसनर सुन रहे हैं, कभी आप अकेले में बैठे हो, गाड़ी चला रहे हो, और अपना पसंदीदा गाना सुनो, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लो,
1: हाँ
0: सी अ
1: हाँ
0: चेंज इन योर लाइफ, देर विल बी ए स्माइल ऑन योर फेस।
1: वेरी नाइस जी।
0: वाह क्या बात है। और अभी बातचीत करेंगे राजीव जी रियल स्टेट की।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: हर बुधवार को राजीव जी आके कुछ जानकारी दिया करेंगे, क्योंकि रियल स्टेट देखो बिजनेस सारे चल रहे हैं,
1: हाँ जी,
0: हालात के हिसाब से प्लस माइनस हो जाता
1: हाँ जी,
0: है, लेकिन उसका जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये क्यों है और इस हालात में हमने क्या करना है। घर बिक भी रहे हैं, घर बाय भी हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त मार्केट क्या कहती है, पहले यहीं से शुरू करते हैं।
1: बिल्कुल रणबीर जी। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और जितने भी लिसनर्स हैं सबकी तरफ से आपको बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। आई से यू
0: जी
1: थैंक यू, बिकॉज आपने ये जो सेगमेंट रखा है कि हम रियल एस्टेट की बात करेंगे और लोगों को एजुकेट करेंगे,
0: बिल्कुल
1: और इतना महंगा एयर टाइम पे इतने कीमती दे के लोगों के, इससे अगर लोगों को थोड़ा बेनिफिट मिल जाए, सीख मिल जाए,
0: या
1: तो सबके लिए बहुत अच्छी बात है,
0: बिल्कुल
1: राइट।
0: देखो
1: एंड
0: हर इंसान बिजनेस करता है, सब ने अपनी रियल स्टेट भी बेचनी भी है, करनी भी है, दैट्स
1: हाँ
0: फाइन, एवरीबॉडी इज डूइंग इट, और उनको अब करना ही पड़ता है। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि काम के साथ साथ यदि एजुकेशन मिले
1: हाँ वो जरूरी है।
0: कि ये आप काम क्यों कर रहे हो, आज यदि आपने इस प्राइस पे बेचना तो क्यों बेचना है,
1: बिल्कुल
0: यदि
1: बिल्कुल
0: होल्ड करना तो क्यों करना है,
1: बिल्कुल,
0: ये बातें जाननी बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है वो, मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ लोग सिर्फ अपनी डील लेने के लिए प्लस
1: हाँ जी,
0: माइनस करके निकाल देते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वो हो सकता है आपके हालात देखने के बाद वो आपको उस लेवल तक गाइड ना करें,
1: बिल्कुल
0: हो सकता है कोई वो उस लेवल की नॉलेज ना हो, ये नहीं कहता कि वो करना चाहते नहीं है और नॉलेज ना हो, तो
1: बिल्कुल
0: इसलिए
1: रणबीर जी। देखो बात ये कि हम यहाँ पे जैसे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, डिज़ाइन करने करा था जब हमने इस प्रोग्राम को और इस सेगमेंट को, तो हम यहाँ कुछ बेचने नहीं आए। सबसे
0: या
1: पहले हमारे पास
0: सिंपल
1: एक पिटारा नहीं है जो हम कहेंगे जी ये ले लो ये ले
0: खोलो,
1: लो
0: हाँ
1: ये ले लो।
0: ये ले लो, हाँ
1: ठीक है, प्रोफेशन मेरा रियल एस्टेट का है, ये
0: हाँ
1: मेरी रोजी रोटी है,
0: या
1: पूरा टीम है जो हम काम करते हैं, बट वी विल नेवर से कि हम यहाँ ऐसा नहीं सुनोगे कि यार ये ले लो ये बेच लो ये ले लो ये खरीद लो, मेरे
0: हाँ
1: पास ये है ये अच्छे दामों में ले दूंगा।
0: ला।
1: मार्केट है, मार्केट में बायर्स भी होते हैं सेलर्स भी होते हैं।
0: और राजीव जी के बारे में बता दूं कि हमारा रिश्ता आई थिंक मोर देन 25 ईयर्स वी नो ईच अदर,
1: बिल्कुल सर,
0: और पहली बार मैं इनको लेके आया हूँ, उसका कुछ रीज़न है कि जितना मैंने देखा उन्होंने काम किया है, बड़ी ऑनेस्टी से काम किया है, काफ़ी लोग ऑनेस्ट, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया ऑनेस्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोग उस लेवल तक ऑनेस्टी ही दिखाते नहीं है, क्योंकि
1: हाँ
0: वो कहते हैं यार बहुत ऑनेस्ट हो गए तो शायद बिजनेस कम मिलेगा,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: लेकिन लॉन्ग टर्म में उनकी जीत होती है।
1: देखो रणबीर जी आपने बिल्कुल पॉइंट सही पकड़ा है, देखो बिल्कुल पते की बात कर दी है, क्योंकि
0: हाँ
1: देखो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं फटाफट क्विकली विदाउट
0: हाँ
1: टेकिंग मच टाइम।
0: नहीं मैं बिल्कुल बिल्कुल आराम से।
1: मैं 1993 का ग्रेजुएट हूँ, REC जयपुर, जो अभी MNIT है, सिविल इंजीनियरिंग में
0: क्या
1: आप
0: बात,
1: वाली
0: हाँ
1: लाइन
0: हाँ
1: है ना
0: बिल्कुल
1: सर,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: तब से मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में ही हूँ।
0: वेरी नाइस,
1: इंडिया में भी आई वॉज वर्किंग विद पुंजलॉयड एज देयर, मैं जब
0: हाँ
1: मैं यहाँ कनाडा आने से पहले आई वॉज
0: हाँ
1: जनरल मैनेजर कंस्ट्रक्शन में, हम हाईवे बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे
0: सारी
1: थे।
0: लाइन आपकी ही
1: हाँ जी,
0: है,
1: जब यहाँ आया तो मैंने कहा आई वॉन्टेड टू एंटर इन टू दिस लाइन,
0: हाँ
1: डिग्री अपग्रेड कराई, इवेल्यूएट कराई, इट गॉट
0: हाँ
1: इवेल्यूएटेड, एंड देन मैंने आई वॉन्टेड टू कम इन टू डेवलपिंग साइट, जिसके लिए रियल
0: हाँ
1: एस्टेट वॉज वन ऑफ द जो मुझे पता था इसके जानकारी।
0: या दैट्स राइट,
1: सिर्फ ये था जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, देखो इंडस्ट्री लोग कहते हैं ना जी आप जब 2007 में ज्वाइन किया था तब तो बहुत अच्छा पीरियड था,
0: हाँ
1: पीरियड हमेशा अच्छा रहता है हमेशा बुरा रहता है, उस टाइम भी कंपटीशन था। रणबीर जी मैंने अपनी पहली डील रियल एस्टेट ज्वाइन की 2007 में, मेरी
0: अच्छा
1: पहली डील क्रैक हुई 2010 में।
0: वाह अच्छा
1: 3 साल सर मैं लगे रहा लगे रहा लगे रहा, मुझे यहाँ कोई जानता नहीं था, मैं मीडिया में आया, लोगों से जान पहचान बढ़ाई, लोगों को एजुकेट किया, फिर एक मेरे साथ जुड़े और फिर धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से, देन आई नेवर लुक बैक। आज
0: या
1: 2026 है रणबीर जी, हम चले ही जा रहे हैं
0: दैट्स राइट
1: एंड लोगों ने बहुत दिया है, थैंक यू सो मच
0: हाँ
1: सबका, एंड अब बस भगवान से यही प्रार्थना है कि इसको बनाए रखना और हमारी सद्बुद्धि देना।
0: दैट्स राइट। और मैं बता, देखो आपने बड़ा अच्छा किया है, इतने सालों से आपने रजिस्टर्ड की है एंड यू आर वेल ऑफ, तो इस वक्त इस समय पे आके लालच ये नहीं होता कि मैं बिजनेस ज्यादा करूं, लालच ये होता कि चल यार किसी का भला हो जाए,
1: बिल्कुल
0: किसी को अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो खुशी मिलती है आपको। मैंने आपको जितना मैं आपको जानता हूं तो यू हैड बीन वेरी काइंड टू ऑल ऑफ योर क्लाइंट्स।
1: नहीं सर, थैंक यू, एंड पीपल हैव बीन वेरी काइंड टू मी, सो थैंक यू फॉर दैट, एंड गॉड इज ऑलवेज देयर।
0: साथ साथ मैं नंबर भी इनका बता दूं, 416-671-2190-671-2190। और मैं हमेशा कहता हूं कि काम करो अच्छे लोगों के साथ करो,
1: बिल्कुल
0: जो पॉजिटिव लोग हैं, जो आपको सही गाइड करे। और पता चल जाता दो मीटिंग में, है ना,
1: बिल्कुल जी बिल्कुल,
0: कि कौन आपको जबरदस्ती घर सेल कर रहा है, प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, और कौन आपको दिल से गाइड करता है।
1: बिल्कुल
0: राइट। इंसान वो है जो आपको ये ना कहे कि ये ले लो, वो ये कहे कि थोड़ा वेट करो,
1: थोड़ा वेट करो,
0: हाँ, जब आपका टाइम नहीं भी नहीं है।
1: देखो रणवीर जी, जब मार्केट कोविड टाइम्स में 2021 में इतनी हाई जा रही थी, सब लोग ले रहे थे लेफ्ट राइट एंड सेंटर, तो बहुत मेरे भी क्लाइंट्स थे जो लेना चाह रहे थे, आई हेल्प देम बैक। ठीक है, उस टाइम बहुत ज्यादा चल रही थी और कुछ लोगों ने मेरी बात मानी, कुछ ने बिल्कुल नहीं मानी, उन्होंने ले ली। बट आज वो यही कहते यार अच्छा होता हम तेरी बात सुन लेते। मैं एज ए रियल्टर इस प्रोफेशन में सिंस 2007, रणवीर जी मैंने एक भी प्रॉपर्टी उन दिनों बाय नहीं करी अपनी, बिकॉज देयर वाज अ रीजन, देयर इज अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग। मार्केट है, खरीद ब्रीज चलती रहेगी, ट्रेडिंग चलती रहेगी, बट आपने कब एंटर होना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
0: दैट्स राइट।
1: एंड देन सबसे पहले तो मैं सबको यही कहता हूँ कि अफोर्डेबिलिटी, आज भी ठीक है रणवीर जी मार्केट है बायर्स के लिए अप्रोप्रिएट है, और रियल एस्टेट लेने का तो हर टाइम ही अच्छा होता है, बिल्कुल बायर के लिए भी अच्छी है, बट मैं क्या बायर के लिए तो इससे अच्छी मार्केट शायद बट आने वाले दिनों
0: में वेट करना पड़ेगा,
1: टच वुड, हाँ जी। बट फिर भी मैं आज यही कहता हूँ कि अफोर्डेबिलिटी पहले है, अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो मत एंटर हो जाइए रियल एस्टेट में। बहुत लोग कहेंगे यार तू इतना आज के दिन में इतना लीज दे रहा है, इतना रेंट दे रहा है, इतने में तो आप नया अपना घर ले लो, बट आर यू रेडी फॉर इट, इज योर फैमिली रेडी फॉर इट।
0: घर लेने के लिए कई चीजें देखनी पड़ती हैं,
1: बिल्कुल
0: लॉन्ग टर्म में,
1: और
0: आज तो ले लोगे,
1: हाँ
0: क्या, लेकिन आगे चल के क्या होगा
1: रणवीर जी। घर आप बताओ, आप घर क्यों लेते हो?
0: हाँ।
1: आप सुकून से रह सको
0: या
1: फैमिली के साथ,
0: हाँ।
1: एक अच्छी जगह हो। बहुत लोग, अगर मैंने घर ले लिया आज व्हेन आई वाज नॉट रेडी फाइनेंशियली एंड मेंटली, एंड मैं रात को सो ही नहीं पा रहा हूँ
0: जी,
1: मुझे यही टेंशन है यार परसों मेरी मॉर्गेज आनी है, अभी तो $500 लेस हैं तो उस घर का क्या फायदा
0: क्या यार। तो यू हैव टू प्लान योर बजट,
1: यू हैव टू प्लान द साइज। बहुत लोग तो देखा देखी ले लेते हैं कि यार वो उसके पास बड़ा है मैं भी लेता हूँ, व्हाई दिस कंपटीशन?
0: दैट्स राइट,
1: व्हाई दिस कंपटीशन? तो आप हमेशा अपने जितनी कहते हैं ना, मैं बड़े बुजुर्ग कह के गए जितनी चादर है उतने पांव फैलाओ, हर कोई बोलता है, बट बार बार इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रिवीजन भी जरूरी होती है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। अफोर्डेबिलिटी इज द मेन थिंग। इफ यू आर, अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है, इफ यू आर नॉट रेडी, डू नॉट एंटर। मार्केट अच्छी आएंगी,
0: क्या बात है,
1: बुरी जाएंगी, पर डोंट जंप इनटू इट।
0: या दैट्स राइट। और बिल्कुल मैं अपने लिसनर को बता दूं कि राजीव जी के बारे में तो शायद इन्होंने, इनको दो तीन बार बात हुई, कहते यार मुझे ऐड की जरूरत नहीं है, तो ये मैं बता दूं ओपनली, इनका यहाँ आना बातचीत करना ऐड के लिए नहीं था। तो मैंने कहा यार तुमने इतने सालों काम किया है, तू अपने जो तजर्बा है वो शेयर किया कर लोगों के साथ कि कैसे प्रॉपर्टी बाय करनी है, क्यों बाय करनी है, क्यों इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कब करनी है, और आप रेडी हो बाय करने के लिए कि या नहीं। तो ये बड़ा ज़रूरी है, और मैं ओपनली कहता हूँ कि ही इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन आई हैव सीन इन माई लाइफ एज ए रियल्टर। रियल्टर काफ़ी, मैं ये नहीं कहता किसी की बदनामी नहीं मैं करना चाहता, काफ़ी लोगों को मैंने, हंड्रेड्स ऑफ लोगों को प्रमोट किया है, सबका अपना अपना स्टाइल है, लेकिन इनका जो स्टाइल है ना बड़ा ही क्लीन, बड़ा प्यारा, बड़ा सोबर, और आई एम इम्प्रेस्ड। कई आज से नहीं, कई सालों से,
1: आई एम ऑनर्ड,
0: यू आर ए ऑनेस्ट पर्सन, वेरी डिसेंट पर्सन, और ये तो मुस्कुरा के काम करते हैं अपना सारा।
1: सर जी, जो ऑनेस्टी से काम होता है ना रणवीर जी, उसमें टाइम लगता है, जैसे मैं कहा मुझे 3 साल लगे अपनी पहली डील क्रैक करते हुए, बट फिर वो लंबा चलता है।
0: दैट्स राइट। और बातचीत चलती रहेगी। मेरे हजरत कॉलर भी हैं, उनसे पूछे थे कि सवाल उनका इस मतलब है या वैसे ही कॉल किया। नवीद भाई वेलकम सर, कैसे हैं आप? अच्छा होल्ड करें, सुनना आपने यार लास्ट नाइट, होल्ड करते हैं देखो बड़े प्यार से सुन के होल्ड करते हैं, होल्ड करके प्रोग्राम सुने अपना। तो ये बड़ी चीज़ें ज़रूरी हैं, और बाकी गिरीश जी भी हैं, इनसे भी बातें हमने काफ़ी करनी है, और कुछ लोकल न्यूज़ डिस्कस करेंगे। इलेक्शन का जोर चल रहा है, साथ साथ रियल स्टेट भी। आज मैंने सुनी थी मार्केट के जो है, मार्केट अभी जितने बॉटम पॉइंट पे पहुंचनी थी पहुंच चुकी है, इससे ज़्यादा आई थिंक जाने के चांसेस कम है। क्या कहना चाहते हैं
1: रणवीर जी? देखो एक साइकिल होती है,
0: हाँ,
1: रिसेशन पीक, रिसेशन पीक। क्योंकि मैं जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो शेयर में भी इंटरेस्ट रखते हैं वो भी देखते हैं, एक स्विंग आती है, रिट्रेस आता है, ये सब होता है। तो एक ये साइकिल है, अब साइकिल में जो है हम एकदम बॉटम पीक में इस टाइम खड़े हुए हैं, हो सकता है आने वाले टाइमों में कुछ चंद महीनों में शायद 1-2% और गिरावट आ जाए।
0: इससे ज्यादा
1: उम्मीद कम है। हालत जब यू नेवर नो सर, अब लोग डिसीजन मेकर्स बैठे हैं, जैसे कहते हैं ना हमारी पूरी इकोनॉमी चंद कॉरपोरेट्स के उसमें चल रही है, बट प्रिडिक्ट यही किया जा रहा है और हम भी सब इसी उसमें है कि अब मार्केट मैक्सिमम 1-2% और गिरेगी इन टर्म्स ऑफ प्राइस, बट उसके बाद फिर धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। सो गुड टाइम्स आर कमिंग। लोगों ने मुझे पता है बहुत देर तक अपनी चीजों को होल्ड किया हुआ है, बहुत मुश्किल से किया है, अब तो हाथी की पूंछ रह गई है।
0: बिल्कुल,
1: थोड़ा सा और इंतजार करें और सब ठीक होने लग जाएगा।
0: बिल्कुल, और साथ साथ बात भी करते रहेंगे और साथ साथ कुछ कॉल्स भी हम लेते हैं ऑन एयर। यदि आपका कोई सवाल है राजीव जी से पूछना चाहते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन कोई भी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज गिव अस ए कॉल 416-593-0055। नेक्स्ट कॉल प्लीज। हेलो,
2: आई हैव टू क्वेश्चन।
0: जी सर, कैसे हैं अनवर भाई?
2: वन इज बाइंग टाइम इज गुड नॉट, सेकंड थिंग मॉर्गेज रेट, मॉर्गेज का जो पूछ रहा हूँ ओपन या फिर क्लोज।
0: मॉर्गेज का कहते हैं अभी बाइंग टाइम जो है कैसा है, और मॉर्गेज यदि हम लेना चाहें तो ओपन करें या क्लोज करें? वैसे तो ये मॉर्गेज एजेंट नहीं है लेकिन तजुर्बा इनका है, कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में?
1: देखो सर, बाइंग टाइम तो अभी है, बिल्कुल है। इफ यू कैन अफोर्ड अ प्रॉपर्टी देन यस, इफ यू आर एलिजिबल फॉर अ मॉर्गेज देन श्योर। देखो मैं दो चीज कहता हूँ, आज की फाइनेंसिंग सिक्योर करने में सिर्फ दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक है आपके पास अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए और एक अच्छी जॉब होनी चाहिए, यू शुड हैव अ रीजनेबल इनकम। बाइंग टाइम अभी बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि शायद मार्केट गिर जाएगी, बट अगर एक चीज रणवीर जी बहुत इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट में जो मैंने सीखी अपने तजुर्बे से, सिखाई भी जाती है,
0: क्या बात है?
1: आप होल्ड करके रखो। आज अगर आपने चीज लेनी है तो अगर आप 5-6 साल होल्ड करोगे
0: नहीं है
1: तो लीजिए, अगर आप सोचते हो नहीं मैं देखूंगा 2 साल बाद बेच दूंगा, प्लीज डू नॉट एंटर।
0: पर फिर भी मैं ये बता दूं कि जो लोग फंस गए हैं तो उन्होंने निकलना कैसे है, ये राजीव जी आपकी हेल्प कर सकते हैं, इसीलिए हमने सेगमेंट शुरू की है आपके लिए ही। आप कोई भी सवाल ऑन एयर पूछ सकते हो और राजीव जी आपको सही ऑनेस्ट गाइडेंस देंगे। 416-671-2190। नेक्स्ट कॉल प्लीज। हेलो
2: हेलो
0: जी सर, आप एयर पे? हाँ जी, क्या सवाल आपका?
2: हाँ, कैसे हो रणवीर जी?
0: बढ़िया सर, बढ़िया, मजे में। आपका कॉल आया, बड़ा अच्छा लगा।
2: थैंक यू सर जी। और मेरा एक क्वेश्चन है राजीव जी से।
0: हाँ
2: जी, मैं अपनी एक प्रॉपर्टी मेरी 15 साल से रेंटल पर है।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: रेंटल पे 15 साल से। अच्छा, ओके
2: ओके। और अब मेरा प्लान है उसके अंदर मूव होने का, और मैं उसमें अगर 5 साल में रहता हूँ तो फिर मुझे टैक्स कितना पे करना पड़ेगा अगर मैं 5 साल के बाद वो सेल करता हूँ तो?
1: तो आपका क्वेश्चन है, आपकी एक रेंटल प्रॉपर्टी अभी वो रेंटेड है, रेंट आउट किया हुआ है आपने, लीज आउट किया हुआ है?
2: बिल्कुल।
1: और अभी आप उसमें रेंट टेनेंट को हटा के अब आप उसमें मूव करना चाह रहे हैं?
2: जी जी।
1: और वो आपका प्रिंसिपल, और वो आपका प्रिंसिपल होम बन जाएगा?
2: बिल्कुल, यस।
1: हाँ, तो अगर आप उसको कुछ सालों बाद सेल करें तो उसमें आपको टैक्स की क्या इम्प्लीकेशन आएगी, यही आपका क्वेश्चन है सर?
2: जी,
1: देखो सर, बात ऐसी है कि इसके लिए आप अपने CPA या अकाउंटेंट से मिलें, बट एज पर माई एक्सपीरियंस होता ये है कि अभी जो आपकी प्रॉपर्टी है वो एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है
0: जी,
1: एंड इट इज एलिजिबल फॉर कैपिटल गेन टैक्स।
0: दैट्स राइट।
1: नाउ जब आप खुद उसको मूव कर जाते हैं तो वो आपका प्रिंसिपल होम बन जाता है, और हमारे यहाँ प्रिंसिपल होम के ऊपर जब आप उसको सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट्स के ऊपर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं होता।
0: दैट्स राइट।
1: वंस इट बिकम्स योर प्रिंसिपल होम, फिर फिर आपके ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं आएगा। हाँ, बट अगर आप अभी जबकि वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, टेनेंट है, आप उसमें से इनकम गेन कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, हालांकि वो अब वो डिफरेंट बात हो जाती है, अब पॉजिटिव कैश फ्लो और नेगेटिव कैश फ्लो।
0: अच्छा, इसमें एक चीज और बताएं कि अभी आप कौन से घर में रह रहे हैं, अभी कोई आया आपके पास प्रिंसिपल प्रॉपर्टी?
2: बिल्कुल, मेरे पास प्रिंसिपल प्रॉपर्टी है। हाँ,
0: तो इसमें भी एक पॉइंट है, आप ना आराम से बाद में फोन करना,
1: बिल्कुल,
0: कि अभी आपकी प्रिंसिपल प्रॉपर्टी कितनी वैल्यू की है और जहाँ पे आपने मूव करना है उसकी कितनी वैल्यू है,
1: उसका डिफरेंस जो
0: डिफरेंस क्या है, ये भी एक टेक्निक है।
1: हाँ जी,
0: तो आपको समझा देंगे राजीव जी,
1: आपको डिटेल में समझाएंगे। सर उसके लिए ना मुझे देखना पड़ेगा आपका फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, कितने लोग हैं, क्या एज ग्रुप्स हैं, एंड देन मैं आपको एक अच्छी सलाह दे जाऊंगा। बट बिल्कुल ब्रॉडली आपके प्रिंसिपल होम के ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं होता। कई तरीके हैं उसको रिजॉल्व करने के।
0: हाँ,
1: वो फिर वन टू वन बैठ के बात करते हैं।
0: कई बातें मैं बड़ा इनका इंटरेस्टिंग केस है,
1: इनका ऑलरेडी रह रहे हैं। क्वेश्चन है।
0: हाँ, और दोनों सॉरी आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम राज।
0: राजी, दोनों प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करके उनका एक एवेल्यूएशन निकालें,
1: बिल्कुल
0: राइट, और अप्रेजल कराएं, देन आपको ये गाइड करेंगे कि आपको एज इट इज रहने में फायदा है कि मूव करने में फायदा।
1: हाँ जी, आप एक बार मुझे राजी, कभी भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपने हमारे साथ ही काम करना है। हाँ, या हम आपको फंसाएंगे कोई कॉन्ट्रैक्ट में,
0: ऐसा कुछ
1: आप कभी भी आ जाइए, मोस्ट वेलकम, ऑफिस में आइए, चाय पानी पियेंगे और देन वी विल इवैल्यूएट, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम और प्रोफेशनल्स की भी हेल्प लेके आपको बिल्कुल ठीक गाइडेंस देंगे,
0: ठीक कर देंगे।
1: बट मोटा मोटा जैसे रणबीर जी और मैंने बोला, दिस इज द प्रोसेस।
0: 416-671 राजीव नंबर नोट कर लें, 416-671-2190।
2: थैंक यू सर जी,
0: थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। और मैं फिर बता दूं कि हाँ जी, कि कोशिश जो है हमारी ये है कि आपकी हेल्प की जाए। देखो क्या होता ना राजीव जी, जिंदगी में काम हमने बहुत किया, आपने बहुत किया है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि नहीं यार कुछ अच्छा कर लें जिंदगी में।
1: सर काम की तो ये बात है कि इतने साल किया ही और लोगों ने इतना जब मदद करी है, काम दिया भी है, भरोसा भी किया, और आज हम अगर इस स्टेज में है, हम एक्सपीरियंस शेयर करके किसी का भला कर सके तो क्या दिक्कत
0: है? कर भला हो भला,
1: अंत भले का भला,
0: अंत भले का भला। और ये है, हम आपसे वादा करते हैं इस प्लेटफॉर्म में कि जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स आते हैं तो हमारी यही कोशिश होती है कि उनको ये रिक्वेस्ट करें कि आप हेल्प जरूर करो,
1: बिल्कुल
0: बिजनेस करो, नो डाउट बिजनेस करना चाहिए हमें, आफ्टरऑल घर चलाना है, लेकिन अच्छी नीयत से करो, क्लैरिटी से करो, ऑनेस्टी से करो।
1: बिल्कुल रणबीर जी, और आज तो एक इंट्रोडक्शन पहला दिन था एयर में।
0: हाँ,
1: आने वाले हफ्तों में हम क्या करेंगे, एक टॉपिक पकड़ेंगे कमर्शियल रेसिडेंशियल का, और अगर लिसनर्स भी मैसेज करें, टेक्स्ट करें कि वो किस बारे में एजुकेशन या जानकारी लेना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे हम उसके भी बारे में बात करेंगे।
0: एवरी वेडनेसडे आप राजीव जी यहाँ स्टूडियो में आएंगे और इनसे बातचीत होती रहेगी और आपको ऐसी जानकारी देंगे और शायद किसी किताबों में नहीं मिलेगी आपको। 416-671-2190। हाँ जी, जैसे गाना था ना, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने,
1: हाँ,
0: मगर चेहरा कभी पढ़ा है। गिरीश जी आ जाओ सर, तो आप मुझे पता बिजी हो, गिरीश जी बिजी हो, फोन कॉल्स काफी इनको आ रहे हैं और वो आज लगाएंगे गीत, चल वही लगाते हैं ना,
1: किताबें बहुत सी,
0: दिल दिल कहते ना, दिल पढ़ना बड़ा जरूरी है, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा।
1: देखो रणबीर जी, आपका प्रोग्राम जो है ना, मैं 2006 से सुन रहा हूँ।
0: हाँ।
1: और गिरीश जी से मैं पहली बार आप ही के प्रोग्राम सुन के मिला।
0: क्या बात है, देखो
1: हैं,
0: है देख रहे, इसीलिए
1: तब से आज तक मैं इनके साथ ही हूँ।
0: अच्छा, 2007 में हमने शुरू किया था, मैंने गिरीश जी के साथ
1: 2006 में मैं आया, 2007 में मुझे अपना पहला टैक्स भरना था।
0: हाँ।
1: और मैं इनकी मदद ली, कुछ मैंने प्रोडक्ट्स भी इनके प्रोफेशन से लिए, इंश्योरेंसेस वगैरह, और आज तक इनके साथ हैं सर।
0: और देखो ये हम तीनों की अब 19th एनिवर्सरी होगी,
1: बिल्कुल
0: सितंबर में, और सितंबर में 19 साल हो गए हम तीनों को, और इसलिए तो हम चाहते हैं कि हम मिलके सारा जो टीम है हमारी वो आपकी हेल्प करें, आपको अच्छी अच्छी गाइडेंस दें, अच्छी अच्छी बातें बताएं, ये हमारा वादा है आपके साथ इस चैनल पे और माइक के जरिए। मैं कहता हूँ, मैं कहता ना कि एक बार जो मैं कमिटमेंट कर लूँ फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता।
1: हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
0: लाइन वहीं से शुरू होती है, हम जो कह दिया सब कह दिया। कह जी गिरीश जी, कि मैं चल रहा है इलेक्शन, चारों तरफ गैमा गैमी चल रही है,
3: गैमा गैमी चल रही थी, और कल का जो हुआ है तो बहुत ज्यादा हो गई शुरू।
0: हाँ,
3: उसके बारे भी गल कर देंगे डिटेल से।
0: हाँ, कल बड़ी जबरदस्त डिबेट हुई है,
3: बहुत अच्छी हुई,
0: और कांटे की टक्कर, ये ऐसा लग रहा था कि एक बार अभी लीवेचा ऊपर चलेगी, अभी लग रहा है ब्रैडफोर्ड ऊपर चला गया, बट एंड में जो एक्सपर्ट्स ने यही कहा कि थोड़ा सा उनका एज ऊपर है ब्रेडफोर्ड का, ब्रेडफोर्ड का हल्का
3: सा। डे बाय डे चेंज होगा सर।
0: हाँ चेंज होगा,
3: लेकिन बहुत क्लोज।
0: कल की शाम की जो रिपोर्ट है, और वो मैं नाम नहीं लेना चाहता जिस न्यूज़पेपर ने लिखा है, बट उन्होंने कहा, तीन लोगों ने कहा कि थोड़ा सा एज उसका एंड में ऊपर लगा उनको, बट ये जो थोड़ा सा है ना, ये कांटे की कभी भी चेंज हो जाता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
0: दोनों को शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और बाकी के जो मिसागा में भी बड़ी जबरदस्त टक्कर चल रही है, सारे क्लोज हैं।
3: बिल्कुल।
0: हाँ जी,
3: क्योंकि अभी भी रणवीर जी काफी वोटर्स हैं जो अनडिसाइडेड हैं।
0: हाँ,
3: गेम सारी उनके हाथ में है।
0: हाँ,
3: मैंने तो डिसाइड कर लिया, मैं इसको डालूंगा, मैं उसी को डालूंगा, ठीक है, बट देर आर सो मेनी वोट्स। वोटर्स की वो लास्ट मिनट तक वेट करते हैं,
0: वेट करते हैं,
3: हवा देखते हैं किस तरफ है, वो माहौल देखते हैं।
0: हाँ,
3: तो सारी गेम उनके हाथ में है, और खासकर जब हेड ऑन हेड कोलिजन हो जैसे दो बंदों का, तो उसमें तो फिर बहुत बड़ी वो गेम खेले।
0: एंड में ना, एंड में लास्ट दिन में रजीव जी चेंज होगा, पता क्या होता
1: है जी,
0: ग्रुप्स में ना फोन आते हैं, हाँ वो किन्नू पानी वोट की करना
1: है, पानी है।
0: वो कहता यार उन्होंने पा दी है, चल चल तू दस जिदा करना। लोग ऐसे भी करते हैं,
3: ऐसे भी करते
0: कि
3: हैं।
0: हमारी टीम कहाँ जा रही है।
1: बिल्कुल
0: राइट। तो कोशिश करें, अच्छा काम करें, अच्छा मैसेज दें कम्युनिटी को, ताकि लोगों में आपका विश्वास बन सके। और आज मैंने रिपोर्ट अभी थोड़ी देर पहले दी है, एक रिपोर्ट आई बड़ी जबरदस्त, कि अक्सर लोग कहते हैं कि जो काउंसलर हैं म्यूनसिपल इलेक्शन जो होते हैं, ये चार साल के बाद नजर आते हैं, उससे पहले नजर क्यों नहीं आते।
3: बिल्कुल जी।
1: हाँ, एक बार वोट हो जाए, इलेक्शन हो जाए, ये गायब हो जाते हैं सब लोग।
0: हाँ, इस बार गायब होने नहीं देना। मैंने दो तीन बंदों को कहा, मैं कह मैं आपको महीने में एक दो बार रेडियो पे लाता रहूंगा, बताओ क्या क्या किया आपने।
3: बहुत इंपॉर्टेंट।
0: हाँ। देखो हमने हमारी हमने चुना है उनको, पब्लिक ने चुना है, हमें रिपोर्ट दो। हम जैसे बंदा ऑफिस में हायर करते हैं, बोलते ना हाँ भाई क्या काम किया, अब बता रिपोर्ट दे, तो वी हैव अ राइट टू आस्क देम।
3: पब्लिक का टैक्सी है ना जो उनके जेब में जा रहा है,
0: जेब में जा रहा है
3: पब्लिक का।
0: ये सारी बातें हम करते रहेंगे, सुनते रहिए एशियन कनेक्शन 10 से लेके 12 बजे तक मॉर्निंग शो ऑन CMR 101.3 FM। नंबर टू कॉल द स्टूडियो 416-593-0055। प्रोग्राम के बाद सीधा मेरा नंबर है डायरेक्ट, सीधी मेरी कैंटी मेरे को बजनी है 416-910-2000। टर्न आई विल पिक द कॉल एंड टॉक टू यू।

0: ਖਾਲਸਾ ਟਰੈਵਲ ਐਂਡ ਟੂਰਸ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ ਹਾਜ਼ਰ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਤੇ ਰੈਕਸਡੇਲ। ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 416-7468800।
1: 416-748-8800।
2: आइए सुनते हैं शफकत अली की जुबानी खबरें पाकिस्तान से।
3: अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं एशियन कनेक्शन ऑन CMR 101.3 FM पर। पाकिस्तान से आज की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं शफकत अली। खबरनामे में सबसे पहले आपको ले चलते हैं इस्लामाबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सेक्रेटरी जनरल अक़वामे मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। मुलाकात में सिक्योरिटी, कश्मीर और सिंतास मुआहदे पर तबादला ख्याल। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग और दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए मुख्तलिफ अमूर पर ख्यालात का तबादला किया। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कार्रवाइयां, 18 दहशतगर्द हलाक। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की अजम इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां। शुमाली वजीरस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 13 दहशतगर्द हलाक हो गए। दूसरी जानिब बलोचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। पाकिस्तान नेवी की बहरा अरब में बड़ी कार्रवाइयां, $96 मिलियन मालियत की मंशियात बरामद। पाकिस्तान नेवी के जहाज यरमूक ने बहरा अरब में तैनाती के दौरान पाकिस्तानी साहिल से दूर 2 कामयाब इंसदादे मंशियात कार्रवाइयां अंजाम दी, जिसके नतीजे में बड़ी मकदार में मंशियात बरामद की गयी। ISPR के मुताबिक जब्त शुदा मंशियात की मालियत तकरीबन $96 मिलियन बताई गई। जब्त शुदा मंशियात को तहवील में ले लिया गया। महकमा बल्दियात पंजाब में स्मोग और फोग के खदशे के पेश नजर बल्दियाती इंतखाबात नवंबर की बजाय अप्रैल 2027 में करवाने की तजवीज दे दी। महकमा बल्दियात पंजाब की जानिब से मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात अप्रैल 2027 में करवाने की तजवीज जेरे गौर। खलीजी ममालिक में कशीदगी के बाइस पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर फिजाई ऑपरेशन एक बार फिर मुतासिर हो गया। लाहौर अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर और मुल्क के दीगर एयरपोर्ट से सऊदी अरब, बहरीन, दुबई और दीगर ममालिक जाने वाली दर्जनों परवाजें मनसूख और कई कई घंटे ताखीर का शिकार। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक ने जुडिशियल कमीशन से इस्तीफा दे दिया। सेनेटर फारूक एच नाइक ने जुडिशियल कमीशन से इस्तीफा देने की तस्दीक करते हुए कहा कि जाती मसरूफियात की बिना पर जुडिशियल कमीशन की रुकनियत से मुस्तफी हुआ। वजीर आजम के मशीर राना सनाउल्ला का कहना है कि हुकूमत की तरफ से मुजाकरात के दरवाजे खुले हैं, रियासत को यरगमाल बनाकर कोई मुतालबा नहीं मनवाया जा सकता। वजीर आजम ने कल भी PTI को बात बावर करवाने की कोशिश की। वजीर आजम ने कहा कि जाती सियासी एजेंडे को कौमी मुफादात पर तरजीह ना दी जाए। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का हुकूमत से गैर मशरूत मुजाकरात का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगु करते हुए बैरिस्टर गोहर का कहना था कि मुल्क और कौम और जमहूरियत के लिए मुजाकरात का कामयाब होना नागुजीर, गवर्नर राज या इमरजेंसी नहीं लगनी चाहिए। बानी PTI के साथ मुलाकातों समेत गिरफ्तार रहनुमाओं को रिहा किया जाए। बानी PTI के इलाज के लिए डॉक्टर्स लंदन से नहीं बुलाया गया, वो लाहौर में भी होता है। तहरीके इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आज चौथा रोज। PTI लॉन्ग मार्च आज खैबर जाएगा। जमहूरियत पर शबे खून मारने नहीं देंगे, वजीर आला KP सुहेल अफरीदी। साबिक वजीर आजम और बानी PTI इमरान खान की रिहाई समेत मुतअद्दिद मुतालबात के हक में निकाले जाने वाला लॉन्ग मार्च 4 अक्टूबर को लक्की मरवत से शुरू हुआ था। मार्च मुलतवी करने के लिए वफाकी हुकूमत ने PTI के साथ 2 और 3 अक्टूबर को मुजाकरात किए, ताहम फरीकेन के माबेन इत्तफाक राय न हो सका। पाकिस्तान में गुर्बत में होशरबा इजाफा, खित्ते के इंतहाई गरीब अफराद में से 48% पाकिस्तानी शहरी, आलमी बैंक की रिपोर्ट। कोरोना वबा 2022 के तबाकुन से लाभ, बुलंद महंगाई, करेंसी की कदर में कमी बड़ी वजूहात करार। عالمی بینک کے مطابق روزانہ $3 سے کم آمدنی پر گزارا کرنے والے انتہائی غریب افراد میں سے تقریباً 48% صرف پاکستان میں. پاکستان میں غربت مزید بڑھ گئی جبکہ رواں مالی سال کے دوران مجموعی اقتصادی شرح نمو 3.8% رہنے اور مہنگائی کی شرح 9% رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا. آپ سن رہے ہیں پاکستان کی خبریں. پاکستان سے شفقت علی کی زبانی ایشین کنیکشن CMR 101.3 FM پر.

0: भी दोस्त या रिश्तेदार को एज ए स्टूडेंट, विजिटर, पीआर या फिर अपने स्पाउस या पेरेंट्स को कनाडा बुलाना चाहते हो तो याद रखें स्टार इमिग्रेशन,
1: स्टार इमिग्रेशन,
0: और 9054573131
1: स्टार इमिग्रेशन।
0: प्रेम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट जितों तुसी हर तरह की मिठाई ला सकते हो, बहुत ही वधिया क्वालिटी ते बहुत ही रीजनेबल प्राइस, प्योर वेजिटेरियन फूड तुसी बैठ के भी खा सकते हो ते केटरिंग भी करवा सकते हो। इन्हां दे स्पेशल्स नोट करो, वेडिंग भाजी $6 पर पाउंड, चना भठूरा $7.99 ते थाली $11.99। फोर लोकेशन टू सर्व यू, कॉल 9056071123, 9056071123 या पहुंचो 3176 रिजवे ड्राइव यूनिट 66 मिसिसागा एट दंदास एंड रिजवे, प्रेम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट।
1: बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं तो चार दिला दे।
2: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6477022023 V23।
3: लाइसेंस नंबर 10394।
4: जी बिल्कुल ठीक सुना, और बातचीत खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, हम और शबक से बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे आपने मैसेज सुना, मयंक भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रिगार्डिंग मॉर्गेज इनसे बातचीत करेंगे। और हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे रियल्टर राजीव जी के साथ, राजीव जी किसी कॉलर ने सवाल भी पूछा था,
5: बिल्कुल,
4: और हमारे साथ देखो एक्सपर्ट आ गए। मयंक भाई पहले तो हार्दिक स्वागत, वेलकम, कैसे हैं आप?
6: सर जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।
4: बिल्कुल सर, ठीक है, आप सुनाए कैसी तबीयत, कैसा है माहौल?
6: सब बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच।
4: आज आपको याद कर रहे थे हम अभी,
6: आपने मुझे याद किया, मैं चला आया,
4: मैं तभी हैरान हो गया। देखो राजीव जी मेरे साथ हैं, बड़े रिनाउंड रियल्टर हैं, तो हम कुछ टिप्स ले रहे थे इनसे। तो एक ना कॉलर ने सवाल पूछा,
5: हाँ जी राजी ने पूछा था मुझे,
4: राजी ने,
5: हाँ,
4: तो क्या सवाल था
5: उनका? ये सवाल था कि आज की डेट में ओपन या क्लोज वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल या क्लोज ले इंटरेस्ट मॉडल,
4: पहले इसी से शुरू करते हैं राजी के सवाल से।
6: सर देखिए, पहले मैं तो सारे लिसनर्स को भाई मट्टा जीने टीम की तरफ से सबको सत श्रीकाल सलाम है, नमस्कार करना चाहता हूँ।
4: जी जी बिल्कुल जी।
6: देखिए अब आप मॉर्गेज इस समय क्लोज लो कि ओपन लो एंड वेरिएबल लो या फिक्स लो, सर देखिए वो डिपेंड करेगा आपकी, आप कितने फ्लेक्सिबल हो, कितना आप रिस्क ले सकते हो। अगर तो हमारा कोई भी क्लाइंट होता है जिसको जो रिस्क अवर्स होता है, जिसको मुश्किल होती है अगर मंथली पेमेंट बढ़ रही है या पेमेंट घटेगी, तो उनको अगर वो चीज करने में मुश्किल हो रही है, वी रेकमेंड देम कि यू शुड टेक अ फिक्स्ड मॉर्गेज, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उनकी मंथली पेमेंट जो है वो उनकी किस्त चलती रहेगी। अब जैसे इन्वेस्टर होते हैं सर, उन सारों को हम रिकमेंड करते हैं कि आप वेरिएबल रखिए, और वेरिएबल आप क्लोज रखोगे तो आपको रेट बेटर मिलेगा, पर अगर आप वेरिएबल ओपन रखते हो तो आपको 0.25% to 0.5% रेट हाई मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी पेनल्टी जो होती है वो वेव हो जाती है। अगर कल आप चाहो मॉर्गेज तोड़ना, तो आप मॉर्गेज तोड़ के, क्योंकि आपने ओपन मॉर्गेज रखी हुई है, आप मॉर्गेज तोड़ के आप किसी और लेंडर के पास जा सकती है। या कल अगर आपने घर बेचना है किसी भी टाइम पे, तो आप वो बेच सकते हो विदाउट एनी पेनल्टी, एंड आपको बस जो क्लोजिंग कॉस्ट होती है वो आपको लॉयर की जो लॉयर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देगा उसके हिसाब से वो आप देखोगे, एंड दैट विल बी द ओनली कॉस्ट दैट विल बी देयर। तो इसमें इसमें जो है इन्वेस्टर की सेविंग होती है।
4: अच्छा,
6: तो वो जब एक बार आप इंटरव्यू करते हो क्लाइंट का टू अंडरस्टैंड कि उनके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, वी विल बी एबल टू एडवाइस कि भाई आप वेरिएबल रखिए या क्लोज रखिए, और या क्लोज में भी आप 90 डे का प्रोबेशन रखिए कि नहीं रखिए।
4: और मयंक भाई आप तो देखो लकीली आप आ गए हो हमारे साथ, राइट वे का मैसेज मुझे आया है, कहते मयंक भाई से पूछना कि मुझे एक बैंक से रेट मिल रहा है आई थिंक 4.64, और कहते मयंक भाई कुछ बेटर कर सकते हैं, कुछ दिला सकते हैं। और दूसरे में इसी में मैं सवाल ये पूछने वाला था कि लोग आप ही को क्यों कॉन्टेक्ट करें, बैंक से क्यों ना लें, व्हाट्स द बेटर बेनिफिट?
6: चल देखिए, मेरे सबसे बड़ा आपको एडवांटेज है, देखिए तीन एडवांटेज है। पहली बात तो आपको सारी जो प्लस एंड माइनस उस मॉर्गेज के होंगे वो आपको पहले अपफ्रंट बता दिए जाएंगे,
4: ठीक है।
6: ट्रांसपेरेंसी नंबर वन। नंबर टू, एक बैंक आपको अपने रेट ही देते हैं,
4: ठीक है।
6: वी आर अ ब्रोकर, वी कैन शॉप अराउंड फॉर यू एंड गिव यू द लोएस्ट रेट दैट इज अवेलेबल। तीसरी चीज, अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आप ओनर ऑक्यूपाइड हो, तो इन केसेस में हम आपको 12 महीने की 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट लेके हम आपकी मॉर्गेज करवा सकते हैं।
4: Very
6: अगर nice. आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो तो वी कैन गेट यू फाइनेंसिंग एज लो एज 5% डाउन विथ 3.99% रेट।
4: ओके,
6: आपको सर कहीं भी रेट चले जाओ या आपको कहीं रेट नहीं मिलेगा।
4: वेरी नाइस।
6: मैं रेडियो पे ओपनली रेडियो बता रहा हूँ
4: जी।
6: अब इसमें अगर हम अपना कमीशन को कटबैक कर देते हैं तो जितना हमने कमीशन कटबैक किया वो डॉलर टू डॉलर की सेविंग हम क्लाइंट को देते हैं।
4: क्या बात है, वेरी नाइस। और मैं साथ साथ नंबर बता दूं मैंग जी का, साथ साथ नोट भी करते रहे, 6477022023 7020223 और नंबर है एरिया कोड है 647। जी मैंग भाई।
6: जी सर, मैं थोड़ी सी बात जरूर करनी चाहूंगा जो हमारा अक्टूबर स्पेशल है उसके बारे में।
4: ओके
6: okay. सर जी के अक्टूबर स्पेशल हम जो लेके आए हैं वो लेके आए हैं होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट के पे, एंड इसलिए ये चीज अब लेके आए हैं क्योंकि काफी लोगों को जो आजकल की इंक्रीज प्राइस सब चीज महंगी होती जा रही है सर। डीजल आप देख लो, गैस देख लो, एवरीथिंग इज गोइंग अप, बट व्हाट इज नॉट गोइंग अप इज योर डे टू डे इनकम। तो इनकम क्योंकि इंक्रीज नहीं हो रही है एंड एक्सपेंसिज आर इंक्रीजिंग, लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग देयर इक्विटीज आउट सो दैट दे कैन क्लियर अप देयर डेट्स। और जो अभी अगले 2 महीने में छुट्टी आने वाली है तो उसके लिए उन लोग को पैसे की जरूरत पड़ रही है। वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड दिस मंथ ऑलरेडी 37 कॉल्स जहां पे लोगों को लाइन ऑफ क्रेडिट लेनी पड़ रही है या लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग फॉर सेकेंड मॉर्गेज। आई डोंट रिकमेंड डूइंग सेकेंड मॉर्गेज क्योंकि सेकेंड मॉर्गेज आपको हमेशा महंगी पड़ती है, ठीक है। एज कम्पेयर टू अगर आप होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट लोगे वो आपको सस्ती भी पड़ेगी एंड इट विल बी बेस्ड ऑन वॉट यू नीड वेन यू नीड इट। सेकेंड मॉर्गेज में आप अगर यूज करते हो नहीं करते हो तो भी आपको पेमेंट देनी है। तो डेफिनेटली अपने सारे लिस्टनर्स को कहूंगा कि अगर आप होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट देख रहे हो, नाउ इज द टाइम फॉर यू टू एक्ट क्योंकि आपको होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट फर्स्ट पोजिशन पे प्राइम प्लस हाफ पे दिला रहे हैं। प्राइम आजकल चल रहा है सर 4.45, हाफ उसका हो गया 4.99।
4: ओके
6: 4.95 पे आपको फर्स्ट पोजीशन की होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट दिला रहे हैं एज लॉन्ग एज आपकी प्रॉपर्टी स्टैंड एंड क्लियर है।
4: दैट्स वंडरफुल।
6: अब आ जाओ अगर किसी की मॉर्गेज चल रही है और सेकंड पोजीशन पे आपको होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए तो वो भी आपको हम करवा सकते हैं स्टार्टिंग एट 6.99।
4: वेरी गुड।
6: यहाँ पे आपकी करंट मॉर्गेज चल रही है उसको मैं टच नहीं कर रहा हूँ, सेकंड पोजीशन पे मैं आपको लाइन ऑफ क्रेडिट दूंगा। जितना आप यूज करोगे उतना आपको ब्याज पड़ेगा, उतनी आपकी पेमेंट पड़ेगी।
4: तो मैंग भाई एक सवाल है आपके लिए, राजीव भाई कुछ पूछना चाहते हैं।
5: मैंग जी एक चीज बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे एक किसी की, आई एम जस्ट आस्किंग अ जनरलाइज क्वेश्चन क्योंकि हो सकता है कुछ लिसनर को ये क्वेश्चन बड़ा हेल्प करे। अगर किसी पास एक प्रॉपर्टी है, से फॉर एग्जाम्पल एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और उसपे सेकेंड प्लेस पे एक प्राइवेट लेंडर की सेकेंड मॉर्गेज है, कैन दैट आल्सो बी रिप्लेस्ड बाय योर प्रोडक्ट? क्या वो रिप्लेसेबल है?
6: यस सर, वी हाईली रिकमेंड दैट।
4: ओह ग्रेट।
6: क्योंकि आप अपनी सेकेंड मॉर्गेज को, किसी प्रकार की भी मॉर्गेज हो,
4: अच्छा,
6: आप सेकेंड मॉर्गेज को रिप्लेस करो एंड यूज अ लाइन ऑफ क्रेडिट। क्योंकि यूज अ लाइन ऑफ क्रेडिट आपको क्या करेगी, जब आप लेट्स से एक एग्जांपल दूंगा सर, 2 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लूंगा पर एक एग्जांपल दूंगा, अगर आपकी सेकेंड मॉर्गेज ली हुई आपने $1,00,000,
4: अच्छा,
6: और डाउन द रोड आज नहीं पर 6 महीने बाद आपके पास पैसे आए और आपने $10,000 उस सेकेंड मॉर्गेज को दिया या उस लाइन ऑफ क्रेडिट को दिए, वो सेकेंड मॉर्गेज जो थी वो आपकी पे ऑफ हो गई है। जो आपके 10,000 जो आपने दिया वो आप रोटेट करके आप दोबारा यूज कर सकते हो। अब अगर आप सेकेंड मॉर्गेज देते, वो आपने सेकेंड मॉर्गेज दी 10,000 दिए, वो आपका केवल इंटरेस्ट में गया, प्रिंसिपल में 1 रुपया नहीं गया।
4: बिल्कुल ठीक है।
6: तो वो चीज का हाईली रिकमेंड करते हैं
4: जी,
6: कि अगर आपने सेकेंड मॉर्गेज ले रखी है उस सेकेंड मॉर्गेज को आप क्लियर अप करके आप अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट बना लोगे, यू विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन। क्योंकि देखिए ये देखा गया हिस्टोरिकली कि हर इंडिविजुअल की जो अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होती है वो यूजली 6 महीना 1 साल में भी 2 साल रहती है, बट 2 साल के बाद जब व्हेन दे कम बैक दे वांट टू यूज द मनी अगेन एंड लाइन ऑफ क्रेडिट इज एन ऑप्शन फॉर दैट।
4: वंडरफुल जी। और 6477020023 है मयंक जी का नंबर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, गॉड ब्लेस यू, और बातचीत आपकी होती रहेगी।
5: थैंक यू मयंक जी, इट वाज नाइस लिसनिंग टू यू।
6: थैंक यू सर। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा सर कि अब हम ऑन्टेरियो में ही सर्विस नहीं दे रहे हैं, वी आर सर्विसिंग इन अल्बर्टा, वी आर सर्विसिंग इन नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक एंड ऑल्सो इन सस्कैचवान एंड विनीपेग। तो कोई भी लिस्टनर हमारे सुन रहे हैं आउटसाइड ऑफ ऑन्टेरियो, उनको कोई मॉर्गेज की सर्विस जरूरत है, स्पेसिफिकली अगर लैंग्वेज बैरियर है, आप मुझे जरूर कॉन्टेक्ट करें। रणवीर जी ने नंबर दिया, मैं भी एक बार नंबर देता हूँ, 6477020023 6477702 VTI।
4: थैंक यू सर जी, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी, बहुत बहुत मेहरबानी। और शकवत भाई किससे होगी बातचीत, और राजीव जी आपका भी आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जी का नंबर है 416-671-2190-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091-9091 म्यूजिकल ट्यून्स होती ना, मुझे बड़ा मजा आता सुन के। कम सितंबर बड़ी पॉपुलर ट्यून थी और इसी पे बाद में बॉलीवुड में एक गीत भी बना था। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और उसके बाद फिर शबकत भाई से होगी बातचीत।

0: जी एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत और मैरन बिछन आपकी सेवा में हाजिर हूं। इस 11:22 11 बजे 22 मिनट हो गए, पता नहीं चले टाइम तो अंग्रेजी कितनी तेज जांदा।
1: बिल्कुल जी, टाइम तो नठा जा रहे हैं,
0: टाइम तो पता चलता नहीं, मन लगया जे होने शुरू किया प्रोग्राम
2: जी।
0: बट एनीवे थैंक्स टू ऑल द लिसनर। और शकत भाई अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल ने, कैसे हो?
3: वालेकुम अस्सलाम रमेश जी, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और हमने लोकल बातें सारी कर ली, इंडिया की बातें कर ली, अभी बताएं कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, वहाँ मौसम कैसा है?
3: मौसम तो रमेश जी बड़ा जबरदस्त है, दोबारा से बारिश शुरू हो गई है और 17-18 डिग्री टेम्परेचर है, काफी खुशगवार मौसम है इस्लामाबाद का। और वैसे ओवरऑल पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में गर्मी का जोर अभी बरकरार है। और पॉलिटिकल वेदर की बात की जाए तो पॉलिटिकल वेदर एज यूजुअल पीटीआई सड़कों पर है, और कभी हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान की तरफ जा रही है, कभी अपोजिशन मौलाना की तरफ जा रही है, और कभी पीटीआई हुकूमत से राबता कर रही है, कभी हुकूमत पीटीआई से राबता कर रही है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में इस वक्त चल रही हैं और काफ़ी मज़े मज़े की खबरें जो आज के सेगमेंट में शेयर करेंगे जी।
0: और स्टूडियोज का नंबर 416-593-0055, लेकिन पहले सबसे पहले एक कॉल लेते हैं और नेक्स्ट कॉल लाइन वन प्लीज। अब्दुल भाई गो अहेड सर।
4: थैंक यू कीपिंग इन व्यू द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, के जब भी हमारे यहाँ राशिद आए आते रहे हैं, 48, 58, 69, 71, 77, 99 और अभी कल चल रहा है। कभी भी वी हैव नेवर बीन एबल टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम थ्रू नेगोशिएशन थ्रू डिस्कशन, ये हमारा रिकॉर्ड है। और उसमें जो सबसे बड़ा जो स्पॉइलर रहा है तो वो ये पिंडी वाले हैं, क्योंकि उनको फायदा होता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ें, तो ये उसको फायदा उठा रहे हैं। आज की सूरत हाल में हिस्ट्री को देखते हुए आप क्या समझते हैं, ये बातें कर रहे हैं, मुजाहरात करते हैं और बातचीत करते हैं, बैठ जाते हैं, ये सिंसियरली कर रहे हैं या सिर्फ ये उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं? एक्चुअली क्लियर ठीक नहीं है, क्या कहेंगे इसके बारे में?
3: जी बहुत शुक्रिया। आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात मैं बहुत यकीन और दावे से कह सकता हूं कि इमरान खान की तबीयत इस वक्त काफी ज्यादा क्रिटिकल है, काफी ज्यादा सीरियस है, और इमरान खान को हॉस्पिटल तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा। इमरान खान की मुलाकातों पर जो पाबंदी हुकूमत ने लगाई हुई है वो तो खत्म करनी ही पड़ेगी। और रही बात मुज़ाकरात की, तो देखें मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर है कि हुकूमत पीटीआई से क्या डिमांड कर रही है, बदले में पीटीआई हुकूमत से क्या मांग रही है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत का वन पॉइंट एजेंडा पीटीआई से कि आप खैबर पख्तूनख्वा में हमें मिलिट्री ऑपरेशन करने की इजाज़त दें, और मिलिट्री ऑपरेशन का मतलब है कि वहाँ कम अज़ कम 5 से 6 अज़ला में बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन होगा। तो माजी की अगर मिसालें देखें तो कम अज़ कम 2.5 से 3 मिलियन लोग बेघर होंगे, IDPs बनेंगे। सवाल यह है कि वो IDPs कहाँ जाएंगे? क्या पंजाब उन IDPs को वेलकम करने के लिए तैयार है? क्या सिंध उन IDPs को ऑन करेगा? क्या वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इस हवाले से कोई मदद करेगी, माजी में कोई मदद की है? तो इन तमाम सवालों का जवाब बड़ा तलख है, और यही सवाल केपी की आवाम कर रही है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कि उनका ताल्लुक किस पार्टी से है, और यही वो पॉइंट है जिस पर डेडलॉक है, और यही वो पॉइंट है जिस पर लगता है कि मुजाकरात कामयाब नहीं होंगे। और आपने माजी की मिसाल दी, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि पीपल्स पार्टी 2008 के इलेक्शन के बाद जब हुकूमत में और इक्तदार में आई थी तो जजेस की बहाली की तहरीक चली थी, वो मुजाकरात से कामयाब हुई थी, उसमें मेरा नहीं ख्याल किसी तीसरी ताकत ने मुदाखलत की हो, अगर मुदाखलत की भी थी तो अच्छे मकसद के लिए की थी जी।
0: नेक्स्ट कॉल प्लीज, नेक्स्ट कॉल। हाँ जी गो अहेड सर जी।
5: रंजीत भाई, ये गवर्नमेंट की बात कर, गवर्नमेंट से क्या बात कर, गवर्नमेंट तो चलाता ही नहीं, और चलाने वाला तो और कोई धर्म पर आपको पता है सबको, वो बोलेगा वही होगा वो, तो क्योंकि वो जो बोलेगा कि भाई इसको निकालना नहीं निकालना, कभी निकालना इमरान को, तो उसके उसके हाथ में ठरम पार के आदमी, और क्या बात कर, ठरम पार ही बात कर रहे हैं कोई, जो मोहसिन नकवी जो है उसका, वो जो उसका जो जो है ना ठरम पार का जो राइट हैंड, वो ही बात कर रहा है। गवर्नमेंट खाली ऐसे ही बैठा हुआ है, वो कुछ समझ नहीं सकता। तो थर्ड अंपायर जो बोले वही डिसीजन फाइनल होगा।
0: जी जी समझ गया जी आपका क्वेश्चन। शकर भाई प्लीज बताएं।
3: जी बहुत शुक्रिया सर। आप गालबन सदर ट्रंप के नुमाइंदा खसूसी रिचर्ड ग्रेनल की बात कर रहे हैं। उनका हवाला कल भी मैंने कल के भी खबरनामे में दिया था और उसके साथ साथ कुछ बड़े इम्पोर्टेंट जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं उन्होंने भी इमरान खान के हक में कल पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा किया। दें इमरान खान की सेहत और उनकी सलामती के हवाले से खबरें काफ़ी तशवीशनाक हैं और अगर उनकी सेहत का मसला बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ जो मुझे लगता है मेरी मालूमात के मुताबिक भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका है तो अल्टीमेटली उनको जेल से तो निकालना पड़ेगा। जेल में तो मेडिकल ट्रीटमेंट इतनी कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों का पॉसिबल नहीं है। अब आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि ये तो पपीट हुकूमत है, इन बेचारों के पास क्या अख्तियार है। ये तो मुजाकरात में भी यही कहते रहे पीटीआई के लोगों को, हम पूछकर बताते हैं, हम पूछ लें, हम पता कर लें, हम इजाजत ले लें। जब हर चीज की इजाजत लेनी है, हर चीज पूछकर करनी है तो बेहतर होता कि वो बराह रास्त मुजाकरात कर लेते। हाँ, मोहसिन नकवी साहब जो है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के राइट हैंड है, अगर बराह रास्त उनसे पीटीआई मुजाकरात करे तो कोई नतीजा लाजमी बात निकल सकता है। जी
0: और नेक्स्ट कॉल प्लीज 6141 गो अहेड सर। जी
2: थैंक यू वेरी मच रणवीर जी। शफकत भाई बड़े मजे से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं सुन के एंजॉय कर रहा हूँ। अफसोस इस बात का है कि देखें जब हुकूमत कहती है कि हमारे साथ बात कर लो, इन्हें भी चाहिए कि पब्लिकली मीडिया के सामने आके कहें कि आओ जी हम बात कर लेते हैं, और भले ये भी तो ऑफर दे सकते हैं ना, सारी बातें कर सकते हैं, तो ये नहीं कह सकते कि ये भी ओपन होना चाहिए, लाइव होना चाहिए। फिर आप कह रहे हैं कि मेरी मालूमात के मुताबिक खान साहब बहुत तबीयत उनकी ज़्यादा ख़राब है। भाई जान हम 40 में सत्यानाश है, खान साहब तो 80 के लगभग में फिर रहे हैं, तो क्या जेल में रह के कोई इतनी अच्छी सेहतें होती हैं बंदों की। लेकिन अगर सेहत ख़राब है वो आप कह रहे हैं तो हुकूमत कह रही है कि ही इज़ जस्ट फाइन, उसे उन्हें कोई हेल्थ इश्यू इस वक्त नहीं है। हम मानते हैं सारी बातें, दोनों बातें थोड़ी थोड़ी गलत हो सकती हैं, ओपन डायलॉग में बात सामने आएगी। और फौज का बुरा भला जो कहते हैं ना वो लोग, वो ये पाकिस्तान के गद्दार हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने माहौल गंदा किया हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।
3: बहुत शुक्रिया सर। माजरत के साथ आपकी मालूमात दुरुस्त नहीं है। हुकूमत ने खुद ये तस्लीम किया है कि इमरान खान की सेहत काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक और सीरियस है और 10 सितंबर को इमरान खान की तबीयत बिगड़ गई थी, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा था और पाकिस्तान के तमाम बड़े जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनके साथ साथ ब्लड प्रेशर से रिलेवेंट जितने भी मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं पीम्स हॉस्पिटल के शिफा के मेडिकल बोर्ड बकायदा अडियाला जेल भेजा गया, उन्होंने खान साहब का ट्रीटमेंट किया। लेकिन ट्रीटमेंट के बावजूद खान साहब का बीपी कंट्रोल नहीं हुआ, उसके बाद लंदन से डॉक्टर बुलाया गया। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात हुकूमत के वुजरा ने की है और कल इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है और उस मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है, डॉक्टर का नाम भी बताया है और जो मेडिकल बोर्ड बना वो भी बताया और ये भी बताया कि खान साहब का बीपी किस हद तक शूट कर गया था और मुमकिना उनकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी बताई गई है।
0: जी बिल्कुल। और स्टूडियो नंबर 416-593-0055 और 5601 गो अहेड सर। जी
6: जी शफकत भाई, तबीयत खराब हो सकती है, इसमें कोई दोहराय नहीं है, लेकिन हाँ साहब को, हाँ साहब से ब्लंडर बहुत हो गया है। उसी वक्त सर ये पार्टी भी बचा सकता था और उनसे चंद लोग थे उनसे लातलकी करता कि भाई हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है और हम मुहब्बे वतन है, हम अपनी फौज का अपने दारों का एहतराम करते हैं, तो मामला काफ़ी हद तक उसी वक्त ठीक हो जाने से। एनीवे अब तो जो कुछ हो रहा है, क्वेश्चन मेरा यह है कि इस तरह के मामला जो होते हैं वो बातचीत से हल होते हैं, बदमाशी से या गुंडागर्दी से या जलसे जुलूस ये बड़े बड़े जत्थे लेकर आना, इससे हुकूमतों को कोई फर्क नहीं पड़ता।
0: जी छोटा रखें सर सवाल। हाँ जी
6: हाँ, इस तरह सर कभी मसला हल नहीं हो सकता। थैंक यू।
7: احتجاج ہر شہری کا حق ہوتا ہے. ابھی دیکھیں انڈیا میں احتجاج چل رہا ہے, کیا انڈیا میں پولیس نے لاٹھیاں مارنی شروع کر دی؟ ہاں مس ہینڈلنگ وہاں پر بھی ہو رہی ہے, مین ہینڈلنگ ہو رہی ہے, گرفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود کیا انڈین گورنمنٹ نے یہ کہا کہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ دہشت گرد ہیں؟ کیا انہوں نے پورا دہلی شہر کنٹینر لگا کر بند کر دیا ہے؟ کیا وہاں پر کنٹینرز پر چار چار انچ کی انہوں نے لوہے کی خاردار کیلیں لگا دی ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. اور رہی بات مذاکرات اور بات چیت کی, تو اگین میں یہ کہوں گا کہ حکومت پی ٹی آئی سے وہ مطالبہ کر رہی ہے جو پی ٹی آئی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے پورا کرنا, کیونکہ کے پی کی عوام نہیں چاہتی کہ وہاں پر ایک اور ملٹری آپریشن ہو, اور ان کی بڑی تلخ یادیں ہیں, ان کی بڑی دردناک یادیں وابستہ ہیں ملٹری آپریشن کے نام سے, ان کو ایک ٹراما فیل ہوتا ہے. اور یہ صرف کسی ایک سیاسی جماعت کا معاملہ نہیں ہے, تمام سیاسی جماعتیں وہ وہاں پر ملٹری آپریشن کی مخالف ہیں. جی
0: جی. اور اسٹوڈیو نمبر 416-593-0055, اور میسج کرنا چاہیں تو میرے سیل پہ آپ کر سکتے ہو 416-910-2000. اور ابھی یہ بتائیں شوکت بھائی کہ جو ویسے تو آپ نے کافی چیزیں کور کر دی ہیں, لیکن ایک میسج ابھی پھر آیا کہ عمران خان کی جو کنڈیشن ہے اب کیسی ہے, اور کیا ان کی جو چیک اپ ہے ان کے لیے لندن سے کوئی ڈاکٹر کو بلایا گیا؟ از اٹ رائٹ؟
7: جی بالکل, میں ابھی یہی ڈیٹیل بتا رہا تھا, لیکن اس میں کچھ چیزیں ابھی رہ گئی. اچھا کیا آپ نے سوال پوچھ لیا ہمارے لسنر نے.
0: ایک اور ایڈ کر لینا کہ جو کیا جو پولیس نے بھی انہوں نے پوچھا کہ عمران خان کے کزن کو بھی ریسٹ کیا, یہ بھی ساتھ میں بتا دیں, کور کر دیں.
7: جی بالکل, کل عمران خان کے کزن ان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل گئے تھے, اور ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ پولیٹیکل ورکر نہیں ہے, وہ کسی طرح کی پولیٹکس نہیں کرتے, کسی طرح کی وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہے, وہ صرف اپنے کزن سے ملاقات کے لیے گئے تھے. کیونکہ عمران خان کی تینوں بہنیں اریسٹ ہیں, عمران خان کے خاندان کے تمام لوگوں کو اریسٹ کر لیا گیا, اور ابھی بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کے بیٹے پاکستان کیوں نہیں آتے. عمران خان کی بہنوں کو جو سیاست سے بالکل لا تعلق ہیں, ضعیف ہیں, ایجڈ ہیں, اور ان کو اٹھا کر بغیر کسی الزام کے, بغیر کسی چارج شیٹ کے آپ نے جیل میں بند کر دیا, اور 3 MPO کے تحت, اور کل عمران خان کے کزن کو بھی 3 MPO کے تحت جیل میں بند کر دیا, کہ ان کی وجہ سے بدامنی کا ڈر ہے اور خوف ہے کہ کسی طرح کا کوئی احتجاج ہو جائے گا اور کوئی اس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو جائے گی. بہرحال بادشاہ لوگ ہیں, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور ملک میں اس وقت جنگل کا قانون چل رہا ہے. خیر بات ہو رہی تھی خان صاحب کی صحت, 10 ستمبر کو کافی زیادہ بگڑ گئی تھی, ان کا بلڈ پریشر آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا, اور حکومت نے جو سینئر ڈاکٹرز کا میڈیکل بورڈ بنایا, انہوں نے معائنہ کیا, ٹریٹمنٹ کیا, میڈیکیشن کی, لیکن خان صاحب کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوا.

0: हुकूमत उसके खिलाफ दरख्वास्त लेकर चली गई कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कैदी को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें। तो अभी तक हुकूमत ने उस फैसले पर भी अमल दरामद नहीं किया। एक तरफ वो कह रहे हैं कि प्राइवेट ट्रीटमेंट किसी कैदी का नहीं करवाया जा सकता, दूसरी तरफ उसी कैदी के ट्रीटमेंट के लिए आप लंदन से डॉक्टर बुला रहे हैं। तो ये तजाद और इनकी मुनाफ़कत खुलकर सामने आ गई है, और इससे ये भी वाजे होता है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से जो झूठ बोले जा रहे हैं, जो आंखों में धूल झोंकी जा रही है, जो चीज़ें छुपाई जा रही हैं, उनकी सेहत इस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है और उनको बड़ा सीरियस किस्म का हार्ट से रिलेटेड या कोई उनको ब्लड क्लॉट से रिलेटेड कोई इशू है, ऑलरेडी उनकी आंख में स्ट्रोक भी हो चुका है। तो इस चीज को कतन इतना लाइटर नहीं लेना चाहिए, और खान साहब की सेहत और सलामती करोड़ों पाकिस्तानियों का इस वक्त कहने के जज्बात भी वाबस्ते हैं और उनको परेशानी भी है, तो हुकूमत को इस मामले को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर डील करना चाहिए। जी,
1: और विल टेक लास्ट कॉल प्लीज। हेलो हेलो
2: सर जी, लाल में कुछ बड़ा काला है, क्योंकि ना उसका वॉइस सुन सकता है ना उसका पिक्चर आ सकता है।
1: ओके,
2: इसका बोरा कोई बड़ी बीमारी में है, ना मिलने का मतलब क्या है कि समथिंग रॉन्ग, बिग ट्रबल इमरान खान, प्रॉब्लम इन योर हेल्थ।
1: जी शकुत भाई।
0: जी सर, देखिए मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट जो बुनियादी चीज़ें मुझे मालूम है, खान साहब की एज इस वक्त 73 के हो गए और वो स्पोर्ट्समैन हैं और 70 एज तक जो सुपर फिट रहे हैं, एथलेटिक बॉडी है उनकी और उनका स्टेमिना बड़ा स्ट्रांग है, और खान साहब की जो पल्स हैं वो कभी भी 40 से ऊपर नहीं गई, 40 और 45 के राउंड अबाउट रहती, कभी जिंदगी में उनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं हुआ। अचानक उनकी आंख में स्ट्रोक हुआ, अचानक उनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला बन गया। अब देखिए, एक स्पोर्ट्समैन को जो अपनी फिटनेस पे इतना ज्यादा काम करता है, रोजाना इतना सख्त किस्म का वर्कआउट करता है और सारी जिंदगी जिसने ग्राउंड में स्पोर्ट्स में गुजारी हो, उसको अचानक हार्ट का इशू बनना, ये काफी ज्यादा अलार्मिंग है। और आपकी बात यहाँ पर मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि दाल में कुछ काला जरूर है, यही वजह है उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही, यही वजह उनका मैसेज बाहर नहीं आने दिया जा रहा, और यही वजह है कि उनकी सेहत के मामले को हुकूमत छुपा रही है, और ये लगता है कि उनको ऐसे माहौल में रखा गया, जानबूझकर उनको बीमार किया गया। जी
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया शकुत भाई, और कल के प्रोग्राम में फिर होगी मुलाकात, और सभी कॉलर्स का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी सर, ऑल द बेस्ट,
0: बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू जी। और सुनते रहो एशियन कनेक्शंस, सीएमआर एफएम 101.3 सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक मॉर्निंग शो मंडे टू फ्राइडे, और आपके सुझाव कोई आप बातचीत करना चाहें प्रोग्राम के बाद, नंबर टू कॉल 416-910-2000-416-910-2000।
3: जब हम कोई भी कार, वैन या एसयूवी लेने के बारे में सोचते हैं तो सोचते ये हैं कि पैसे कम हो पर गाड़ी बढ़िया हो, फाइनेंस रेट भी अच्छा मिले और वारंटी भी ज्यादा से ज्यादा माइलेज पे हो। ये सारा कुछ आपको एक ही जगह से मिल सकता है और वो है माजदा ऑफ ब्रैम्पटन एट बवेड एंड वैन क्लिक। यहाँ के जनरल मैनेजर मनजिंदर संधू आपको ऐसी डील्स देंगे जो और कहीं से नहीं मिलेगी। कॉल 9054590290, 9054590290, माजदा ऑफ ब्रैम्पटन।

0: टाइम। जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: किया ब्रैम्पटन द नंबर वन किया स्टोर इन GTA,
2: नंबर वन इन कस्टमर केयर,
1: नंबर वन इन वॉल्यूम
2: और नंबर वन इन प्राइस लिस्ट,
1: लार्जेस्ट सिलेक्शन ऑफ न्यू एंड यूज्ड कार्स,
2: 100,000 किलोमीटर्स बम्पर टू बम्पर वारंटी।
1: आपके अपनी जुबान बोलते हैं किया ब्रैम्पटन इन ब्रैम्पटन ऑटो मॉल एट 85 कैनम क्रेसेंट।
2: फॉर बेस्ट डील्स कॉल जनरल मैनेजर आशु सूरी एट 9054578410,
1: दैट्स 9054578410, और विजिट किया।

0: accountant.ca।
1: यार फ्रेश स्पाइसी और मजेदार खाना खाने का मन है
2: तो फ्रेश तंदूरी आ जाओ।
1: तंदूरी वेज या नॉन वेज दोनों का असली मजा लो 24 घंटे हफ्ते के सातों दिन। बर्थडे बैश हो या फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, रात को भी खाओ पियो और मजे करो। फ्रेश तंदूरी अब दो शानदार लोकेशंस पर, क्वीन स्ट्रीट एंड कैनेडी। कॉल नाउ 9058740111 पे। ब्रामली एंड बुवेड लोकेशन कॉन्टैक्ट करो 9057921711 पे। फ्रेशली बेक्ड केक्स, जबरदस्त वैरायटी ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स, और हाँ हमारे फूड ट्रक्स भी हैं लाइव केटरिंग के लिए। घर पर इवेंट है, फ्रेश तंदूरी को कॉल करो और अपने इवेंट को यादगार बनाओ। जायकेदार लजीज दार खाओ, फ्रेश तंदूरी पर आओ। खाना लजीज, हर दिल अजीज।
3: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि, भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना न भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.

0: जी एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत। बड़ी प्यारी ये धुनी, इतनी प्यारी ना, एक हसीना थी, हाँ, कर्ज की ट्यून जो है ना, ये म्यूजिक इट गिव्स मी पावर। थैंक यू सो मच। अभी हमारे जो पटेल साहब का फोन आया था, सुनील पटेल जी के, उन्होंने बड़ा पसंद किया
1: जी,
0: तो कहते हमें बड़ा मजा आता। सुनील जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कल उन्होंने प्राइज भी विन किया था, तो वो आपको कॉल भी करेंगे, आपका नंबर पूछ रहे थे।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो ही विल कॉल यू। और गिरीश काले जी का नंबर है, सुनील जी आप नोट कर लें, इंश्योरेंस करवानी हो तो इनका नंबर है 416-451-4001। वो आपने जो कल डील बनाई थी, क्या जबरदस्त, कि $90,000 तक आप ग्रांट ले सकते हो।
1: बिल्कुल जी,
0: क्या बात है।
1: ये लोग एडवांटेज ले सकते हैं, और
0: एज लिमिट है सिर्फ
1: 49 तो नीचे, और बहुत ज्यादा ये जरा नंबर कैनेडियंस है कि जिन्होंने पता ही नहीं है, क्योंकि बैंक को सिखा ये प्रोडक्ट और प्रमोट नहीं किया उन्होंने सही तरीके ना। बैंक का कम मेन हैगा मोर्गेज देना, और हुण ये इंश्योरेंस वाले कुछ एजेंट्स है जो करते हैं, और तुसी आके हेल्प ले सकते हो। अगेन ये कोई फीस नहीं है, कोई पैसे मंगे तो बिल्कुल नहीं देने, चाहे कोई होवे, और उदे लई तुसी मेरे ना किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो 416-451-4001, और ये तुहानू हेल्प मिल सकती है। जिहड़े भी ये एलीजिबल है सकते हैं, वो डॉक्टर का अपरूवल, CRA का अपरूवल, और तुहाडे पैसे आने शुरू हो जाते अप टू 90,000 की ग्रांट जी। ऑनलाइन तुसी चेक कर सकते हो, CRA की साइट पर सब कुछ अवेलेबल है, सारा काम एक नंबर लीगल तरीके।
0: वाह क्या बात है। और साथ साथ नंबर अपना दे दें एक बार फिर,
1: 416-451-4001, 416-451-4001।
0: ले लो जी ग्रांट जो मिलनी है, 49 सीधी आप, एज आपकी कम है, और हल्की सी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्या कहते हैं वो,
1: काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है जी,
0: लिस्ट बहुत बड़ी है।
1: कॉमन इशूज से ये होंगे कि कुछ बच्चे अजकल ऑटिस्टिक होंगे, उन्होंने प्रॉब्लम होंगी, चलन की प्रॉब्लम हो सकती है,
0: हेयरिंग प्रॉब्लम हो सकती है,
1: और शुगर की रणबीर जी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और एक ज्यादा टाइप 1 जो डायबिटिक है ना, उन्होंने पता ही नहीं है कि उन्होंने लिए भी 90,000 की ग्रांट अवेलेबल।
0: अच्छा,
1: हर सैकंड बंदा तुम्हें पता शुगर की गोली खाता पे, लेकिन उन्होंने भी नहीं पता कि, और मैं पिछले जो काफी इंश्योरेंस कितिया, तो गल्ला गल्ला जो मेडिकल के क्वेश्चन पूछते ना, कहते शुगर की गोली खाने, मैं तुम्हें पता कि टाइप 1 है या टाइप 2, कहते टाइप 1 ना, मैं 90,000 का मिलता पे, तो
0: 90,000 की ग्रांट मिल सकती है यदि आप शुगर के पेशेंट हो। मुझे भी नहीं पता था भाई, बड़ा अच्छा लगा ये सुन के, लेकिन चलो शुगर की बीमारी किसी को ना हो।
1: हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल।
0: अच्छा इसलिए नहीं लगा, लग रहा अच्छा ये लगा कि यदि आप प्रॉब्लम में गुजर रहे हो और 49 से कम है आपकी एज, तो आपको गवर्नमेंट अप टू 90,000 की ग्रांट दे सकती है।
1: पूरे कनाडा चा, ए नहीं कि सिर्फ ओंटारियो या टोरंटो चा, पूरे कनाडा चा फेडरल गवर्नमेंट का प्रोग्राम हार्पर साहब ने शुरू किया सी, और कंटिन्यू हो रहा, और बड़ी ही बढ़िया तरीके ने चल रहा।
0: 416-451-4001 पे हुणे फोन कर लो, अभी वैसे 10 मिनट ये हमारे साथ हैं पे, और प्रोग्राम के बाद आप इन्हें कॉल करें, मैसेज छोड़ दें
1: जी,
0: देन ही विल डेफिनेटली कॉल यू। और जी गिरीश जी, बाकी देखो लगातार डिबेट के प्रोग्राम में आ रहे हैं।
1: हाँ जी, और ये देखो कि अपने ब्रामटन का जो इस वेले चल रहा है, हालांकि उत्थे काफ़ी क्लीयर आ, और अपने जो मेयर है उत्थे उन्होंने लीड जी बहुत ज़्यादा बड़ी आ, बट स्टिल ये है कि रणबीर जी जो बाकी कैंडीडेट आ उन्होंने असी कोई कट मनी है, ऑफकोर्स वो भी इस वेले मैदान च है, विद्यासागर गौतम जी आ, होर काफ़ी है, तो उन्होंने भी ऑफकोर्स थोड़ा जहा बहुत जो वोटिंग शेयर हैगा वो तो लैना ही लैना, लेकिन पैट्रिक ब्राउन साहब का जो रुतबा बन चुका ना इस वेले, काफ़ी उन्होंने हाइट बड़ी हो चुकी आ। अगेन यदा मतलब ये भी नहीं है कि ब्रामटन कोई इशूज नहीं है, बहुत ज्यादा इशूज है, और सब तो ज्यादा जो कि इस वेले क्राइम का नंबर बनते हैं, जिसे कि कार थैफ्ट है, और होर काफ़ी लोगों को थ्रैटनिंग कॉल्स आदि है, एक्सटोरशन कॉल जी आदि है, उन्होंने लैके काफ़ी ज्यादा इशूज आ, गड्डिया की स्पीडिंग जी, और जी रफ ड्राइविंग आ रणबीर जी, कई बार ब्रामटन जाने तो खैर रहने, मैं टोरंटो रहना, ब्रामटन जाने ना कई बार डिफरेंट जहा माहौल लगता कि कोई तुम्हें रस्ता जगह देने को तैयार ही नहीं है, अगला कहता मैं तो सड़क का मालक हूँ, तू कितों आ गया।
0: बिल्कुल सही बात है, और जैसा हमने कहा कि हम बातचीत करते रहेंगे सभी एरियाज के जो कैंडिडेट्स हैं, और हम उनको ऑन एयर करके आपकी आपके साथ बात कराते रहते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले नयन साहब हमारे स्टूडियो में आए थे, नयन ब्रह्मभट्ट,
1: हाँ जी,
0: और वार्ड नंबर 7 और 8 से वो जो है चोन लड़ रहे हैं फॉर सिटी काउंसलर, और कुछ मैसेज लेकर आए हमारे साथ ही हैं। नयन भाई वेलकम, कैसे हैं आप? जी, और इनसे बातचीत करेंगे। हाँ हाँ जी, नयन भाई कैन यू हियर मी? हेलो, आई थिंक किसी आदमी की आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, और स्टूडियो का नंबर 416-593-0005। नयन भाई आप मेरे साथ रहें, और मैं बता दूं कि इनका जो नंबर है 6479237480 है नयन साहब का नंबर, और वार्ड नंबर 7 और 8 से ये चोन लड़ रहे हैं ब्रैम्पटन सिटी काउंसलर। 26 अक्टूबर को जो है वो इलेक्शन की डेट है, 26 अक्टूबर, और जो एडवांस पोलिंग वो है इस वीकेंड पे शुरू हो जाएगी। एडवांस पोलिंग के लिए आप इनको इनको भी कॉल कर सकते हैं और हमें भी कॉल कर सकते हैं, हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। नैन भाई हमारे साथ हैं। नैन भाई, कैन यू हियर मी नाउ?
2: यस यस, आई कैन हियर यू।
0: या प्लीज, और क्या मैसेज है आपके, बताएं क्या कहना चाहते हैं हमारे लिसनर्स को?
2: सीएमआर रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद और सारे श्रोताओं को नमस्कार। और मेरा नाम नयन ब्रह्मभट है और मैं सिटी काउंसिल का इलेक्शन ब्रैम्पटन वार्ड 7 ईस्ट से रन कर रहा हूँ। मेरी जो प्रायोरिटीज है वो लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करने की है। आज की तारीख में सिटी में इन्वेस्टमेंट अगर नहीं आएंगे तो लोकल बिजनेसेस मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो मैं फर्स्ट प्रायोरिटीज मेरी रहेगी कि वंस आई गेट इलेक्टेड सो सबसे ज्यादा हमारी सिटी में इन्वेस्टमेंट कैसे आए। आज हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है यूथ का वो कंपेयर टू ओंटारियो काफी बढ़ चुका है। तो ये चैलेंजेस को देखते हुए मैं पहला फोकस करूंगा कि लोकल बिजनेसेस को कैसे सपोर्ट करे, नए इन्वेस्टमेंट कैसे आए, और जो लीकेज हो रहा है जो स्टेलांटिस के थ्रू जो ट्रंप टैरिफ की इफेक्ट हो रही है उसके उसको लेके हम फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ क्या काम कर सकते, उसके ऊपर मेरे सबसे ज्यादा एफर्ट्स रहेंगे।
0: ओके, और मैं बता दूं कि वार्ड नंबर 7 और 8 से ये चुनाव लड़ रहे हैं सिटी काउंसिल के लिए। और नन भाई, आपको कोई मिलना चाहे, कब मिल सकता है, और अपना नंबर देना चाहे कुछ?
2: आज मिलना चाहे आप मेरी ऑफिस पे 8917 गौर रोड के ऊपर है। आज हम यहाँ पे ग्रीटेन मीट करने जा रहे हैं।
0: ओके,
2: और आप सारों को इन्विटेशन है, प्लीज आइए मिलिए और हमसे बात करिए। कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है तो हमें बताइए। आज 7 बजे हमारा ग्रीटेन मीट होने वाला है।
0: अच्छा।
2: और सारे सीएमआर की टीम को हमारा इनविटेशन है और आने वाले चुनाव में प्रोग्रेसिव ब्रैम्पटन के लिए जुड़े, नहीं के डिवाइडेड ब्रैम्पटन के लिए। मेरा नंबर है,
0: पूरी टीम आएगी सर, हमारी टीम और हम भी आएंगे, ग्रीजी भी आएंगे।
1: बिल्कुल,
0: और आपके साथ हमारी सपोर्ट है, आपके साथ हमेशा। आप अच्छे इंसान हो, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे आपके विचार अच्छे हैं, तो डेफिनेटली सीएमआर की टीम और एशियन कनेक्शन की टीम सारी शाम को आपके पास हम पहुंचेंगे। और कोई मैसेज देना चाहेंगे? एनीथिंग एल्स यू वांट टू
2: ऐड? देखो, मेरा तजुर्बा, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं स्कूल ट्रैफिक सेफ्टी काउंसिल में काम कर चुका हूं। आई वाज अ मेंबर ऑफ स्कूल ट्रैफिक सेफ्टी काउंसिल।
0: ओके,
2: आई वाज आल्सो द मेंबर ऑफ मेयर्स बिजनेस एम्बेसडर पैनल।
0: वंडरफुल।
2: बिजनेस इसको लेके मैं हमेशा से रहा हूं क्योंकि ब्रैम्पटन हमारी एयरपोर्ट से नजदीक सिटी है, जैसे कि मिसिसागा और टोरंटो।
0: जी, वंडरफुल।
2: मिसिसागा टोरंटो में इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, हमारी यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं उसका एक रीजन है वो क्राइम। जिस सिटी में क्राइम ज्यादा होता है वहाँ लोग अपना इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं समझते।
0: वंडरफुल।
2: हमारा सबसे पहला एफर्ट होगा कि पील पुलिस के साथ मिलके हम क्राइम को जीरो टॉलरेंस पे कैसे लेकर आए ताकि जो इन्वेस्टर्स है वो ज्यादा सेफ फील करें और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा आए। दोबारा मैं मेरा नंबर रिपीट करना चाहूंगा मेरी ऑफिस का। आपको लोन साइन चाहिए, आपको कांटेक्ट करना है 416-438-8828। नयन ब्रह्मभट, सिटी काउंसिलर, ब्रैम्पटन वार्ड 7 एंड 8।
0: ठीक है सर, शाम को 7 बजे मुलाकात होती है 8917 द गोर रोड, ब्रैम्पटन, यूनिट नंबर 2A, और 416-438-8828 है नंबर। ऑल द बेस्ट सर जी, थैंक यू।
2: थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू जी, बहुत बहुत मेहरबानी। और कोशिश कर रहे हैं गिरीश जी के ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करें हमारे लिसनर्स के साथ, क्योंकि 26 तारीख को इलेक्शन है
1: जी।
0: और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा एरियाज जो हैं वो हम कवर करें। हाँ जी जी, और नाल कुछ जो हादसे हुए भी दस दिए।
1: बिल्कुल जी, और टोरंटो च काफ़ी कुछ हुंदा रहिंदा, बड़ा शहर है कनेडा दा सब तो बड़ा, और हुण तां किन्ने छोटे छोटे शहर नाल जुड़ गया तां होर भी ज़्यादा बड़ा हो गया जीटीए दा इलाका। और इहदे विच हमेशा ही कुछ ना कुछ हुंदा रहिंदा। कुछ न्यूज़ तुहाडे कोल लेटेस्ट आईयां हैगियां?
0: या देखो, जैसे अभी जो बैक टू स्कूल जब शुरू हुआ जब से, राइट?
1: हाँ जी।
0: तो ट्रैफिक इन्फोर्समेंट जो एक अभी रिपोर्ट जो मैं पढ़ रहा था, पील पुलिस ने बैक टू स्कूल जो अभियान चलाया है ब्रैम्पटन और मिसिसागा के स्कूल जोन है,
1: राइट,
0: इनमें 1034 चार्जेस लगा चुके हैं।
1: माय गॉड,
0: 1034 चार्जेस लगे हैं ओनली इन द स्कूल जोन,
1: बेसिकली एक
0: महीने के अंदर। तो प्लीज गाड़ी जरा ध्यान से चलाएं, एरियाज को देखो, बच्चे जहां निकलते हैं, बच्चों को ना पता नहीं होता कब दौड़ रहे हैं कब भाग रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो थोड़ा सा ध्यान रखें, इसलिए उन्होंने कहा कि स्कूल जोन में थोड़ा स्पीडिंग का ख्याल रखा करें, स्पेशली उस टाइम में जब छुट्टी होती है या लोग ज्वाइन करते हैं। जी,
1: पता चल जाता कि स्कूल कदों खुल्या हैगा, स्कूल दे विच की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। कई बार लेट एक्टिविटीज़ होंदियां, जरूरी नहीं कि 3:30 स्कूल बंद हो जाता, समटाइम जिनों 5-6 बजे तक भी चलता रहिंदा, समर का मौसम आ। सो उहदे लई भी बहुत केयरफुल रखो, निकलो, और साइन हमेशा लगे होंदे आ। सो आई थिंक वी शुड बी वेरी केयरफुल एज ए ड्राइवर.
0: या और एक मिसागा में देखो, चोन लड़ो लेकिन किसी से जलसी ना करो.
1: हाँ.
0: कभी भी.
1: yes.
0: और देखो मिसागा में क्या हुआ कि चुनाव प्रचार के दौरान जो मामला हुआ, एक मेयर कैंडिडेट थे एल्विन टेडजो.
1: हाँ जी.
0: उन्होंने कहा कि उनका एक जो कंपेन वॉलंटियर है वो साइन लगा रहा था और किसी ने उसके ऊपर चाकू से हमला किया.
1: माय गॉड.
0: और थैंक गॉड के बचाव हो गया
1: जी.
0: और ज्यादा गंभीर जो चोट नहीं आई, और जो एक शख्स जो था उसको वैसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर दिया.
1: देखो
0: ऐसे काम मत करें.
1: साइन लगाना की कोई बड़ी गल थोड़ी है. साइन लगाना कोई जित हारता होनी नहीं, वो भी एक साइन नाल. और तुसी चाकू लैके इन्ना बड़ा तुसी काम करना, क्राइम करना हैगा, और ये बड़ा सीरियस क्राइम हैगा.
0: हाँ.
1: इदां दा कोई भी काम नहीं करना चाहिए किसी नूं भी. और लकीली चलो किसी नूं चोट नहीं आई और बचा हो गया. लेकिन बाकी जिहड़ा, क्योंकि हजे टाइम हैगा रणवीर जी, और एवरी डे इदां दा कुछ होना. सो उम्मीद करदे लोगों तो कि यू नो पेशेंट दिखा लो और एक दूजे दी रिस्पैक्ट करो.
0: वंडरफुल, थैंक यू जी. और टाइम वैसे पता नहीं चला, टाइम हो भी गया. और सुनील पटेल साहब की फरमाइश भी लगानी है
1: जी.
0: बड़ा ही प्यारा गीत है रफ़ी साहब की आवाज़ में. और मैंने अपना घर गीत लगाना था लेकिन वो कल लगाऊंगा, लेकिन इनकी फरमाइश जो है पहले.
1: बिल्कुल.
0: आपकी फरमाइश सर माथे पर. मोहम्मद रफ़ी साहब की बड़ी प्यारी सी आवाज़, बड़ी प्यारी कंपोजिशन है. तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, इसी गीत के साथ हमें दे इजाज़त.
1: बिल्कुल.
0: कल ठीक 10 बजे होगी मुलाकात. 10 से 12 CMR FM 101.3 पे सुनते रहें एशियन कनेक्शंस मंडे टू फ्राइडे.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, jahan news, views, sports, entertainment ki khabre hongi bilkul unlimited. Entertainment to bahut hai, lekin yahan par milega aapko bilkul unlimited. News aur views to har jagah milenge, lekin yahan par milega bilkul unlimited.
3: Yahan bhi hoga, wahan bhi hoga, ab to saare jahan mein hoga kya? Mera hi jalwa.
2: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक. पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
4: है आदत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
2: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम.
5: और म्यूजिक स्टार्ट करो भाई.
2: रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम. स्टे ट्यून्ड.

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज, व्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती हैं बिल्कुल अनलिमिटेड। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। बाहर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम टेम्परेचर्स विल हिट 22 डिग्रीज टुडे, मिनिमम एट 10। टेम्परेचर्स अ लिटिल हायर देन यस्टरडे ऑफ कोर्स, और सनसेट होगा 6:48 PM, 6:48 पर सनसेट आज होगा। टुमारोज एंड इट्स गोइंग टू बी नाइस, क्लाउडी, सनी, ब्यूटीफुल डे। टुमारो 18 and 8 एंड फ्राइडे 18 and 9 डिग्री सेल्सियस है। वीकेंड को बारिश की संभावना लॉन्ग वीकेंड को बताई जा रही है। दिस इज दैट थैंक्स गिविंग लॉन्ग वीकेंड। एंड Stellantis workers set strike vote for October 17th and 18th. Auto sector की तरफ से ये खबर सबसे सामने पहले आई है। And Nepal में search called off for nearly 5,400 people, including 30 Canadians जो कि missing हैं। And अब rehab जो operation है नेपाल में वो शुरू हो गए हैं। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। किशोर कुमार साहब की आवाज में इस गीत से शुरुआत की है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, फिल्माया ऑन नन अदर देन विनोद खन्ना। विनोद खन्ना की कल बर्थ एनिवर्सरी थी, एंड कल कुछ रिक्वेस्ट भी आपकी आई थी, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। बाद में मुझे समझ में आया कि आई हैड अबाउट 3 रिक्वेस्ट फॉर सम विनोद खन्ना सॉन्ग्स। एक लहू के दो रंग का गीत है जो रिक्वेस्ट आया हुआ था। कार्तिक साहब जो है आगे चलकर उसे ज़रूर लाइन अप कर देंगे। वील मेक श्योर हम वो कुर्बानी फिल्म का भी एक दो रिक्वेस्ट तो मुझे याद है, लहू के दो रंग एंड कुर्बानी, 2 रिक्वेस्ट दैट वी रिसीव्ड। आई डेफिनेटली प्ले देम टुडे। माफ़ी चाहूँगा कल नहीं कर पाए। 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है। 12:15 की हेडलाइंस अपनी बिल्कुल रेडी है। द सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय विन लाइफटाइम ट्रेडिंग। हर सैटरडे आफ्टरनून 12:30 से 3:30 के बीच फ्री सेमिनार होता है। आप अपनी सीट प्लीज रिजर्व करवा लीजिए, प्लीज डोंट वॉक इन, क्योंकि कई बार सैटरडे जब आप वहां पे पहुंचते हैं आपको सीट मिले ना मिले। सो इवन इफ यूर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स गोइंग, प्लीज कॉल 905-206-1008 विन लाइफटाइम ट्रेडिंग एंड रिजर्व योर सीट फॉर Saturday free seminar. Brampton TV and Appliances, 801 Bouvet Drive West at the corner of Bouvet and Chinkusi in Brampton. TV Appliance Laundry ke Sultan Sultanic deals aapko offer kar rahe hain 11 AM to 7 PM. They're open 7 days a week, and amazing deals ke liye pahunch jaiye this long weekend se pehle, pahunchiye and take advantage of the Thanksgiving deals. And we'll take a very short break aur 12:15 ki apni headlines lekar wapas aate hain. Aur saath hi saath aapko ye zarur bata de ki bhai, इलेक्शन कैंपेन हर तरफ, म्यूनिसिपल इलेक्शन के कैंपेन जो है जोरों शोरों से चल रहे हैं, और हर कैंडिडेट अपनी अपनी जो है अपने एजेंडाज को पुट फॉरवर्ड कर रहा है। करना हमने ये है एज पब्लिक, व्हाट वी हैव टू डू इज हमने उस शख्स को हमने वोट देनी है या देनी चाहिए जो काबिल है। अब वो फर्क नहीं पड़ता कि वो इंडिया से है, पाकिस्तान से है, वो ऑस्ट्रेलिया से है, न्यूजीलैंड से है या कनाडा। पॉइंट इज कि क्या वो काबिल है इंसान, क्या वो शख्स काबिल है। अगर कोई नया है जिसको आप चुन रहे हैं, उसकी काबिलियत जरूर देखें। जस्ट डोंट वोट फॉर पीपल बिकॉज दे बिलोंग टू द कम्युनिटी दैट यू कम फ्रॉम, बिकॉज वो गलती हमसे अक्सर हो जाती है। एंड हम कई बार ये सोचते हैं कि नहीं यार, हमने तो अपने कम्युनिटी वाले को ही वोट देनी है। उसे भी दीजिए अगर वो काबिल है तो, और अगर नहीं है तो फिर आप अपना रिसर्च थोड़ा सा जरूर करें। जस्ट डोंट गो आउट एंड वोट एंड वेस्ट योर वोट ऑन समवन दैट्स नॉट केपेबल ऑफ बीइंग इन दैट ऑफिस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बाकी ये कि वादे इरादे ये तो अब बाकी के 4 साल ही बताएंगे, अक्टूबर 26 के बाद कि कितने वादे किए और क्या इरादा था वादों के पीछे। तो ये तो कहानी कुछ और ही है, वो फिर आगे चलकर बात होगी। ब्रैड ब्रैडफोर्ड और ओलिविया चाओ डिबेट सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस एट TMU इवेंट एंड म्युनिसिपल इलेक्शन में। क्रिस अलेक्जेंडर तो भैया रेस के बाहर हैं। एंड स्कारब्रो कम्युनिटी रिन्यूअल ऑर्गेनाइजेशन टू होस्ट मेयरल डिबेट एट 5 PM. I'll take a very short break. 12:15 ki headlines lekar foreign aate wapas. Advance vote voting continues until Sunday, October 11th from 10 AM to 7 PM daily. So you can do that as well.
1: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, trusted care, consistent service, or complete automotive support. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. Wayne's Auto Group, Canada. Visit WaynesAutoGroup.com.

0: जोशी।
1: 2026 ब्रैंटन म्युनिसिपल इलेक्शन मंडे अक्टूबर 26 को होगा। अगर आप वोट नहीं कर सकते ऑन वोटिंग डे तो आप वोट अर्ली भी कर सकते हैं ड्यूरिंग एडवांस वोटिंग। एडवांस वोटिंग की तारीख होगी अक्टूबर 9th, 10th, 11th, 16th एंड 17th। वोटिंग आवर्स आर वीकडेज फ्रॉम 12 नून टू 8 पीएम और वीकेंड्स पर 10 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक। यू कैन वोट एट एनी एडवांस वोटिंग लोकेशन इन ब्रैंटन। अपना वोटर नोटिस जरूर लाएं इफ यू रिसीव वन एंड आइडेंटिफिकेशन शोइंग योर नेम एंड एड्रेस टू वोट। अगर आपको वोटर नोटिस नहीं मिला, ब्रिंग योर आईडी विद यू टू वोट and you can update or add your voter information in person. Voting locations ke liye, voter information ke liye and a list of candidates ke liye, aaj hi visit kare brampton.ca/bramptonvotes. Kya aapki home or auto insurance ki renewal due hai? क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिसागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296। इट्स 289-891-0296। आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम। रिमेंबर, यू आर इन गुड हैंड्स विद ऑल स्टेट।

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि, भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना न भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808।
3: सहजा आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर। हम हमारे खानदान से नब्ज देकर सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा करते हैं। हमारे क्लाइंट्स को हमारे इलाज से बहुत फायदा हुआ है। एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, सोराइसिस और सारी बीमारियों का जड़ से इलाज करते हैं। कॉल वैद्य रत्न पीवी राज, Brampton and Scarborough, 647-327-8111, 647-327-8111।
4: ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल वार्ड 9 अभी 10 लई परोसे योग उम्मीदवार डॉक्टर आजाद गोयत नू अपना कीमती वोट पाओ।
5: डॉक्टर आजाद गोयत जिन्ना मुद्दे लई जनता दा साथ देन की, उना च अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी अते पब्लिक कंसल्टेशन, प्रॉपर्टी टैक्सेस विच कटौती, क्राइम ते एक्सटॉर्शन ते कारवाई, वड्डे बिजनेसमैन अते पॉलिटिशियंस दा नेक्सस तोड़ना, लोकल डेवलपमेंट नाली, वार्ड नंबर 9 ते 10 लई गो स्टेशंस नाल कनेक्टिविटी, फुल पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ग्रीन स्पेसेस दी मेंटेनेंस शामिल है।
4: इलेक्शन डेट 26 अक्टूबर 2026, एडवांस वोटिंग ऑन 9, 10, 11, 16 and 17 अक्टूबर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट azadgoyat.ca। पेड फॉर एंड ऑथराइज्ड बाय कैंपेन ऑफ डॉक्टर आजाद गोयत।
6: गुड आफ्टरनून, शुरू करते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस।
7: Welcome back, friends, and the headlines are brought to you by Brampton TV and Appliances, Kavya Homeo Care, Clear Optical by Varun Kanda, Rajdhani Sweets and Restaurant, McBean Dental Care, Will Lifetime Trading and Safety and Security Solutions se Paul Sehgal. Shuru karte taza tareen headlines. Indian filmmaker Arfaat Sheikh ko US airport par ICE agents ne detain kiya without any warrant. Sheikh lives in Virginia. पोलैंड के एक हाई स्कूल में 7 लोगों को स्टैब किया गया। 19 ईयर ओल्ड हैज बीन अरेस्टेड। $40 million इन गोल्ड बार्स को स्टील करने वाले अक्यूज्ड एक्स CIA ऑफिशियल ने गिल्टी प्लीड किया। एक्स जर्मन स्पाई चीफ को स्पाइंग के चार्जेस पर हिरासत में लिया गया। एंड US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कैप्टन स्मिथ मचार को ऑनर करने वाले रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में मास स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर कहा इस्लाम वांटिंग टू टेक ओवर। ट्रंप ने यूरोप से कहा टू शट इट्स बॉर्डर्स। फ्रांस ने न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल को टेस्ट फायर किया और कहा टुडे वी आर स्ट्रॉन्गर। रिपोर्ट के अनुसार अगर जेरूसलम काउंसिलेट बंद हुई तो ब्रिटेन में एक्सपेल इजरायली डिप्लोमैट्स। एक्स ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा पीएम मोदी और इंडिया को लेकर ट्रंप बहुत ज्यादा पॉजिटिव व्यू रखते हैं। एंड स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फ्रांस की पुलिस ने टियर गैस और वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया। लोकल समाचारों में अक्टूबर 7th एनिवर्सरी मार्क्स 3 ईयर्स ऑफ थ्रेट्स ऑन जूज लिविंग इन कैनेडा। एंड एयर कैनेडा प्लेन फ्रॉम टोरंटो क्लिप्ड बाय डेल्टा जेट एट लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मेंटेनेंस क्रूज और एयरपोर्ट टीम्स एयरक्राफ्ट्स को असेस करेंगे। फॉरेस्ट हिल में 4 लोगों को असॉल्ट किया गया, सस्पेक्ट हैज बीन अरेस्टेड। एंड पोर्ट पेरी में बॉडी के मिलने से होमसाइड यूनिट की जांच शुरू हुई। नॉर्थ यॉर्क चर्च के पास इजरायली फ्लैग सेट ऑन फायर, पुलिस इन्वेस्टिगेट्स हेट मोटिवेटेड ऑफेंस। एंड नंबर 1 ओवरऑल पिक गैविन मैकेना ने मेपल लीव्स के लिए फर्स्ट NHL गोल स्कोर किया। भारतीय समाचारों में महाराष्ट्र में एक इंडियन ऑयल ऑफिशियल पेट्रोल पंप को सील करने पहुंचा था stabbed 7 times. Police ke anusar LGBTQ activist Mad Sandhu ki shooting mein contract killing suspected, 2 detained. And elections se pehle Punjab mein nazar aaya arms trail, guns, political killings, attacks on the cops. Law and order risk ke chalte BitChat ko India ke app store se hataya jayega, and 42% Indians kaam jaane ke liye 2-wheelers ka istemal karte hain. Kai states ne average commute time ko 25 minute bataya. Gujarat ke workers apne काम पर 22 मिनट की एवरेज से पहुंचते हैं. देश में पश्चिम बंगाल के वर्कर्स को सबसे ज्यादा वक्त लगता है टू रीच वर्क, 36 मिनट्स ऑन अ सिंगल ट्रिप. दिल्ली फॉलोज क्लोजली एट 35 मिनट्स एवरेज. सूत्रों के अनुसार इंडिया में बनाए गए स्मार्टफोन्स टू बी इन मार्केट्स बाय 2028. अमित शाह इस महीने मणिपुर का दौरा करेंगे. पोल बॉडी ने कांग्रेस मीटिंग प्रपोजल को रिजेक्ट किया और कहा इट सीम्ड अनयूजुअल. राजनाथ सिंह ने वाइजैग में फर्स्ट इंडिया मेड फ्लीट सपोर्ट शिप को किया लॉन्च, एंड 4.9 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक ने उत्तराखंड को हिट किया. ट्रेमर्स फेल्ट इन दिल्ली एज वेल. 9.3 करोड़ पैसेंजर्स इन 1 ईयर. मुंबई थाने इज इंडियाज बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन. और दिल्ली में 5-story बिल्डिंग कलैप्स हुई, कई लोग ट्रैप्ड हुए. होस्टल ट्रेजेडी के 1 महीने बाद अब यह हादसा भी हुआ. पोल बॉडी चीफ के खिलाफ प्रोटेस्ट करने ऑपोजिशन बैक ऑन स्ट्रीट्स. पाकिस्तान की खबरों से यूके बेस्ड डॉक्टर ने अगस्त 10 को अडियाला जेल में इमरान खान को एग्जामिन किया था. मेडिकल बोर्ड ने रेकमेंड किया डेली वॉक फॉर इमरान खान, मोर फैमिली मीट्स एज वेल फॉर हिम. ब्लड प्रेशर रिकॉर्डेड फॉर इमरान खान एट 140/80. ISPR के अनुसार पाकिस्तान ने सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च किया ऑफ एक्सटेंडेड रेंज फतेह 4 क्रूज मिसाइल. यह वेपन सिस्टम की कैपेबिलिटी होगी ऑफ इंगेजिंग टारगेट्स एट एक्सटेंडेड रेंजेस विद हाई प्रसिशन. PTI का कहना है कि इमरान खान के कजन कासिम जमान को कस्टडी में लिया गया आफ्टर रावलपिंडी DC ऑर्डर्स डिटेंशन अंडर MPO. लॉयर के अनुसार कासिम जमान अडियाला जेल के पास पहुंचे थे एंड अथॉरिटीज को उन्होंने कहा कि इमरान खान से मिलना है, मगर वॉज टेकन राइट अवे इन टू कस्टडी. PM शरीफ ने विंटर के लिए गैस लोड मैनेजमेंट प्लान ऑर्डर किया, स्टेप्स फॉर अनइंटरप्टेड इंपोर्ट्स. PM बोले डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी फॉर द सप्लाई ऑफ लोकली प्रोड्यूस्ड गैस. PM शरीफ ने PTI से गुहार लगाई टू कॉल ऑफ लॉन्ग मार्च और कहा डायलॉग के जरिए मुद्दों को रिजॉल्व करें. अल कादर ट्रस्ट केस में PTI लॉयर्स ने FCC को अप्रोच किया फॉर अर्ली हियरिंग ऑफ बुशरा बीबीज अपील. एंड फॉरन ऑफिस का कहना है कि बहरीन के फॉरेन मिनिस्टर अल जयानी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे टू डिस्कस सिक्योरिटी एंड ट्रेड. अरेबियन सी ऑपरेशंस में पाकिस्तान नेवी ने $96 million वर्थ ऑफ नार्कोटिक्स सीज कर ली हैं. एंड स्पोर्ट्स जगत से पेसर भुवनेश्वर कुमार को न्यूजीलैंड टूर के लिए टीम इंडिया में जगह मिली. ही प्लेड लास्ट T20 फॉर इंडिया इन November 2022. मोहम्मद शामी ओवरलुक्ड बाय BCCI अगेन. इंडिया ने वेस्ट इंडीज को फर्स्ट T20 में 8 विकेट से हराया. एशियन गेम्स गोल्ड के कुछ ही दिन बाद श्रेयस अय्यर ने 42 balls में सेंचुरी बनाई. श्रेयस अय्यर का कहना है कि ड्रीम्स डू कम ट्रू. नमन धीर ने डेब्यू पर 3 विकेट्स लिए. इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज सेकेंड T20 टू बी प्लेड ऑन फ्राइडे October 9th, थर्ड वन ऑन October 11th. बॉलीवुड की खबरों से सुपरस्टार रणबीर कपूर की रमायना पार्ट 1 इंडिया में November 5 को रिलीज होगी, पेड प्रीव्यूज अ डे अर्लियर. मुंबई के गोडरेज स्काई शोर में अनुष्का शर्मा और उनके पेरेंट्स ने 26 करोड़ रुपए के 2 अपार्टमेंट्स खरीदे. फ्यूजी फिल्म इंडिया ने रश्मिका मंदाना को वेलकम किया एज देयर ब्रांड एम्बेसडर. एंड पैडमैन के बाद स्वानन किरकरे टू रीयूनाइट विद सुपरस्टार अक्षय कुमार फॉर विपुल शाह सम्मुख. एक स्पेशल डांस नंबर के लिए करीना कपूर ने शाहरुख खान की फिल्म किंग को ज्वाइन किया. एंड सोनू निगम ने अपनी मुंबई प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो को एक्सपैंड किया बाय कमर्शियल यूनिट्स इन अंधेरी वेस्ट फॉर 16 करोड़ रुपीज. रजा मुराद ने रिकॉल किया वर्किंग विद द ग्रेट राज कपूर एंड संजय लीला बंसाली. और रजा मुराद बोले बोथ ऑफ देम आर परफेक्शनिस्ट्स. ये थी साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइन. स्टूडियो का नंबर 416-593-0055. एंड लहू के दो रंग, विनोद खन्ना साहब की बर्थ एनिवर्सरी थी कल थी और उसकी रिक्वेस्ट आई थी जो कि मैं नहीं प्ले कर पाया. किशोर कुमार साहब की आवाज़ में मुस्कुराता हुआ, ब्यूटीफुल सॉन्ग जिससे करते हैं शुरुआत और फिर आस्ते आस्ते करके एक एक करके आपकी कॉल्स भी लेंगे और स्पॉन्सर्स के मैसेजेस भी आप तक पहुंचाएंगे. हेडलाइंस वर ब्रॉट टू यू बाय राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग फ्रॉम 30+ लोकेशंस, 100% प्योर वेजिटेरियन फूड. ज़बरदस्त मिठाइयों का दूसरा नाम राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: हाय अंजू, कैसी हो? हाउ इज योर सन डूइंग?
2: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
1: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
3: शी इज राइट, चाहे बच्चे हों या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 9054573232। क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कैंडा।
4: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से।
5: अच्छी, याद है। अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से।
4: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा cholebhature.ca पे चलो।
6: cholebhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे। cholebhature.ca, कॉल 9054582448।
7: सर्विंग फ्रॉम 4 डाइनिंग लोकेशंस, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन मिसागा एंड 1 बाय वॉन मिल्स।
8: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 ब्रैम्पटन कोर्ट इन ब्रैम्पटन, 9054582222 और लॉग ऑन टू bcbc.info और 384 Finley Ave इन Ajax, 2893723330 और acvc.info।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: नमस्कार, मैं हरसिमरन सिंह। हमारा ब्रैम्पटन शहर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमारी बुनियादी सुविधाएं भी उसी रफ्तार से बढ़ रही हैं? पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल सड़कें, साफ पानी और सुरक्षा सेवाओं के लिए आपकी आवाज को रीजन तक पहुंचाना ही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। मैं वार्ड 9 और 10 से रीजनल काउंसलर पद का उम्मीदवार हूँ। एक बड़े बदलाव के लिए आने वाली 26 अक्टूबर को अपना कीमती वोट हरसिमरन सिंह को दें। ऑथोराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।
4: This segment is brought to you by Clear Optical by Varun Karna, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, Brampton and Georgetown. Exams के लिए doctors available 7 days a week, 905-457-3232. For name brand sunglasses, always remember Clear Optical by Varun Karna. The segment is also brought to you by Home Life Miracle के superstar realtors Sarabjit Gill, CP Chatwal for real estate buying, selling, investments. एक बार इनसे जरूर संपर्क करें. Some amazing properties that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA, Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 या 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, जो कि 30+ location से सर्व करते हैं 100% pure vegetarian food, जबरदस्त मिठाइयों का दूसरा नाम Rajdhani Sweets and Restaurant.
5: ताजियां सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तोहाडा मनपसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते, क्योंकि तोहाडे अपने शहर विच आ गया है अनाज मार्ट। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दाला, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स या फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले अज ही विजिट करो अनाज मार्ट, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते, एट 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42, ए ब्रैम्पटन। कॉल 905-928-8557 अनाज मार्ट।
4: काव्या होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 Cotral Boulevard, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779. वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम पहुंच चुके हैं काव्या होम्यो केयर, गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ मीता ओझा पिनाक ओझा जी, 10 Cotral Boulevard, यूनिट 104, ब्रैम्पटन से आपको सर्व करते हैं। ये मेजर इंटरसेक्शन है नॉर्थ पार्क और एयरपोर्ट रोड वाला। मंडे टू सैटरडे द क्लिनिक इज ओपन 10 AM इन द मॉर्निंग टू 6 PM इन द इवनिंग, 6 days a week फॉर योर कन्वीनियंस। आप वॉक इन कर सकते हैं या अपॉइंटमेंट बना सकते हैं या फिर फोन पर कंसल्टेशन करें। दवाई ऑल अक्रॉस

0: होता है कि जितने भी लोग इससे एडिक्टेड हो जाते हैं वो चीज़ को काफ़ी बार छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन उसके साथ क्या होता है बॉडी में कि एकदम से आपको तोड़ लगती है जब वो चीज़ आप नहीं ले रहे हो, आपकी लतें दर्द कर रही हैं, आपकी बॉडी में पेन्स आ रहे हैं, माइंड फोगी सा हो रहा है, कुछ भी आपको याददाश्त पे इसका असर आ जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, एनर्जी लो चली जाती है, रात को नींद तक नहीं आती है, एंड काफ़ी बार लूज मोशंस के डायरिया लग जाता है। अब छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन काम पे जाना है, तो इन सारे सिम्टम्स के साथ किस तरह छोड़ पाएं? ये जो सारे सिम्टम्स आप देखते हैं इसको हम विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं, कि जब किसी भी नशा आप कर रहे हो कोई भी तरह का और उससे आप एडिक्टेड हो जाते हैं और वो चीज़ बॉडी को नहीं मिलती है तो आपकी बॉडी ये सारे सिम्टम्स देने लगती है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप इससे एडिक्टेड हो गए हैं। एक तो ये विड्रॉल सिम्टम्स, तो दूसरा क्या होगा कि वही टाइम हुआ कि डेली घर आके शाम को आप जैसे अल्कोहल लेते हैं और फिर कितना पीना उस पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है, तो ये भी एक तरह का एडिक्शन है। एंड फिर वही टाइम हुआ उसी वक्त आपको अर्ज होती रहती है कि मैं और पी लूं और पी लूं, तो ये जो अर्ज है उसको खत्म करना। तो यहाँ पे दो चीजों पे अगर आप फोकस करते हो तो उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, और यही हमारा ट्रीटमेंट करता है कि आपके जो विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसके लिए, उसको मैनेज करने के लिए हम मेडिकेशन देते हैं जिस करके आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो इसके जो रिसेप्टर्स आपके लीवर में सेट हुए हैं और वो टाइम होता है आपको तंग करते हैं कि मैं नशा कर लूँ, इतनी बारी वो लेना पड़ेगा चीज़, तो उसको हम क्लिंजिंग उसका करते हैं जिस करके क्या होगा कि इसकी तलब है, इसकी अर्ज है, वो ख़त्म होती जाएगी। सो ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे उसके साथ ही आप देखोगे कि बहुत अच्छे से इस पे कंट्रोल आ गया है और आपको जो अर्ज हो रही है वो अर्ज खत्म होती जाती है, आपके विड्रॉल सिम्टम्स पे कंट्रोल आता जाएगा, फिर आपको ना तो तोड़ रहेगी ना नींद की प्रॉब्लम और आसानी से इस नशे को आप छोड़ पाएंगे। सो किसी भी तरह के एडिक्शन वास्ते काव्या होम्यो केयर से आप हमारा कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। ऑल ओवर कनाडा, यूएस, सारी जगह पे मेडिकेशन हम मेल करते हैं। तो लोकेशन है हमारी 10 कॉटरेल बुलेवार्ड, यूनिट 104 इन ब्रैम्पटन, एंड मंडे टू सैटरडे क्लिनिक के आवर्स हैं सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक। फ़ोन नंबर है मेरा 6476027796 647 760 2779. थैंक यू।
1: बिल्कुल जी, काव्या होम्यो केयर, गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ मीता ओझा पिनाकोझा जी, 10 कॉटरेल बुलेवार्ड, यूनिट 104, ब्रैम्पटन से आपको सर्व करते हैं। नॉर्थ पार्क एयरपोर्ट रोड का मेजर इंटरसेक्शन है। एडिक्शन से जूझ रहे हैं, किसी तरह की बीमारी से आप जूझ रहे हैं, मंडे टू सैटरडे क्लिनिक आपके लिए ओपन है, 10 AM इन द मॉर्निंग टू 6 PM। कॉल अपॉइंटमेंट बनाएं, वॉक इन करें या फिर फ़ोन पर कंसल्टेशन कर सकते हैं, दवाई आपके घर पहुंच जाएगी। 6477602779, 6477602779, काव्या होम्यो केयर। एंड अगला गीत जो है आपकी रिक्वेस्ट है, प्ले करेंगे आगे चलकर इमिग्रेशन अनलिमिटेड वाले सेगमेंट में। मनन गुप्ता जी हमारे साथ होंगे, आपके सवाल मनन जी के जवाब। और सेगमेंट इज ऑल्सो ब्रॉट टू यू बाई गुरविंदर बामरा, जो कि ऑल स्टेट इंश्योरेंस से काम करती हैं। ऑटो एंड होम इंश्योरेंस में आपकी भारी बचत हो सकती है अगर आप इस नंबर पर कॉल करें तो। अगर आपकी रिन्यूअल आ रही है, कॉल गुरविंदर जी, ऑल स्टेट इंश्योरेंस। अगर आपकी दो गाड़ियां हैं, एक घर है, एंड यू वांट टू रिन्यू ऑल ऑफ दैट और इंश्योर ऑब्वियसली ऑल ऑफ दैट, एक बार कॉल कर लें। यू कैन सेव एट एन एवरेज ऑफ $2,100 to $2,200 एनुअली। गुरविंदर जी का नंबर 6473033207, 6473033207 इज द नंबर। एंड ये दिल लगी वॉज द फिल्म, यश चोपड़ा प्रोडक्शंस की तरफ से, अक्षय कुमार, सैफ अली खान एंड काजोल की फिल्म थी, एंड इट वॉज लव ट्रायंगल। एंड इनफैक्ट कुछ साल बाद इस फिल्म के आने के बाद एक फिल्म सनी डियोल ने डायरेक्ट की थी, जो उनके करियर की पहली डायरेक्टेड फिल्म थी, जिसका नाम था दिल लगी। उस फिल्म की स्टोरी वॉज वेरी सिमिलर टू दिस स्टोरी, वेर देर आर टू ब्रदर्स एंड एक ही लड़की से दोनों भाइयों को प्यार होता है, एंड में किसको मिलती है, इसके लिए तो फिल्म देखनी पड़ेगी। एनीवेज, ओले ओले फिल्म आया ऑन सैफ अली खान फ्रॉम द मूवी ये दिल लगी, अभिजीत की आवाज़ में। इन्जॉय।

0: You're listening to the Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM. McQueen Dental Care, Dr. Raj Gill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hai. Talk to Sirat, 905-794-8883. Chahe braces lagwane hai, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups. Call McQueen Dental Care, 905-794-8883.
1: क्रेडिट कार्ड जीएसटी या कर्जों की समस्या हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस जीटीए ऑल डेट सॉल्यूशंस मोहम्मद सिद्दीक 416-671-0577 416-671-0577 alldebtsolutions.ca
2: Real estate is not easy business. Aur jo easy nahi, use easy banate hain Realtor Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley. Ghar khareedna ya phir ghar bechna, first time home buyers ya phir investors, sabki pasand ka rakhte hain khayal. Ye hai Raj Joshi, Realtor Bemisal. Call Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley Realty 647-866-1086. 647-866-1086. Raj Joshi, sirf naam hi kaafi hai.
3: अक्सर घर खरीदे में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है ऐसा क्यों
4: नया इलाका और नया घर
3: अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं। घर नया ले या पुराना बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस पॉल सहगल 416-940-0624 416-940-0624 और विजिट paulsecurity.com प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन
5: एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता एक घर सिर्फ सपनों से नहीं बनता एक घर बनता है इरादों से जी जान मेहनत से अपने इरादों को एक नया मुकाम दें अपनी मेहनत को अंजाम दें कॉल करें रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली रियल्टी के राज जोशी को जो काम करते हैं आपके लिए विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन 647-866-1086 647-866-1086 राज जोशी नाम ही काफी है
6: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
7: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: नमस्कार ब्रैम्पटन, मैं बलजिंदर सिंह नहल। मैंने अपने इस शहर को बहुत करीब से देखा है, सड़कों के गड्ढों से लेकर हमारे पार्कों की हालत तक, ट्रैफिक की बढ़ती परेशानी से लेकर सिटी सेवाओं में आने वाली ढील तक। बढ़ता क्राइम और करप्शन आज हमारे शहर की बड़ी हकीकत बन चुके हैं। लेकिन याद रखिए, एक अच्छा और सुरक्षित शहर सिर्फ कागजी वादों से नहीं बल्कि जमीनी काम से बनता है। आपके ये मुद्दे सिर्फ चुनाव तक खत्म नहीं होंगे, इन्हें सिटी हॉल तक ले जाना और इनका समाधान निकालना मेरी जिम्मेदारी है। बदलाव के लिए आगे आइए, वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसिलर उम्मीदवार, वार्ड 9 और 10, ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
4: जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। वाकई जिंदगी बहुत ही सुहाना सफर है और कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। एक सुझाव मैं आपको देता हूँ कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के लिए, जैसे ऑटो, होम, लाइफ एंड कमर्शियल इंश्योरेंस, एक भरोसेमंद नाम पूजा गुप्ता जी को कॉल करें। 6476280040, दैट इज 6476280040।

0: स्टेशन।
1: कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040, दैट इज 416-451-0040, और विजिट skylakeimmigration.com।
0: skylakeimmigration।
2: South Asian Unlimited Radio presents Immigration Unlimited by Manan Gupta, powered by Skylake Immigration.
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस इमिग्रेशन अनलिमिटेड वाले सेगमेंट में आपके सवाल होते हैं जो कि हम मनन जी को ऑन एयर पूछते हैं। स्काईलेक इमिग्रेशन द नंबर वन कंपनी, टीम मनन गुप्ता 416-451-0040, 416-451-0040। देखिए, मैं सीरियसली ये बार बार कहता रहता हूँ और कहता रहूँगा कि इमिग्रेशन के जो भी आपके केसेस होते हैं या केस होता है ना, उसको लाइटली मत लीजिए। उसको, उसके लिए जो एक्सपर्ट हैं उनको कॉल करें, विच इज़ स्काईलेक इमिग्रेशन मनन जी एंड द टीम, बिकॉज दे नो वॉट दे आर डूइंग। यही काम करते हैं वो 7 days a week लिटरली, यू नो, जब ओवरसीज से भी क्लाइंट्स कॉन्टैक्ट करते हैं, सो दे नो एग्जैक्टली वो छोटी छोटी बारीकियां जो होती है, जो इंट्रिकेसीज जो होती हैं कि भाई क्या करना है, नहीं करना है। बाकी अपने से छोटी सी मिस्टेक हो जाए, यू नो वेयर द थिंग गोज देन। मनन जी, स्वागत है आपका।
4: थैंक यू वेरी मच सनी जी फॉर हैविंग मी। प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए सभी लिसनर्स, परिवारों, शुभचिंतकों, स्पॉन्सर्स को बहुत प्यार भरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। थैंक
3: जी, आपको भी गुड आफ्टरनून, नमस्कार। एंड सबसे पहले सवाल के लिए हॉट सीट पर, हमारे जवाबों के लिए हॉट सीट पर मनन जी हैं। और पहला सवाल राजन शर्मा जी पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि गुप्ता जी, माई पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट वॉज अप्रूव्ड ऑन September 5th. However, the actual print copy has not yet arrived. Is this a matter of concern for me? Or मुझे क्या करना चाहिए? What needs to be done?
4: पहले तो इनको बहुत बहुत मुबारक कि इनका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्रूव हो गया है और इनको अप्रूवल की ईमेल नोटिफिकेशन आ गई है, विच इज अ गुड फर्स्ट स्टेप। जहां तक सनी जी, आजकल जो पोस्टल वाया पोस्ट, कैनेडा पोस्ट, रियल डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर जब आता है वर्क परमिट या किसी तरह की इस तरह की IRCC की डॉक्यूमेंटेशन, पिछले दिनों में ये जरूर देखने में आया कि कुछ एक डिले चल रहा है, यू नो, विद द IRCC। कई लोगों को तो हफ्ते 10 दिन में ही इस तरह की लेटर्स या डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन कईयों की वेट थोड़ी एक्सटेंडेड चल रही है। इनको अभी मेरे ख्याल, अगर इन्होंने जैसा कि अभी आपने बताया कि सितंबर के फर्स्ट वीक में ही आया है, अप्रूव हुआ है, तो आई थिंक ही स्टिल हैज अ फ्यू कपल ऑफ वीक्स टू वेट, क्योंकि नॉर्मली 6 हफ्ते की विंडो IRCC यू नो अलाउ करता है, मेंशन करता है अपने अप्रूवल लेटर में। सो ही शुड वेट फॉर कपल ऑफ वीक्स। मिड अक्टूबर तक भी अगर इनको नहीं आता वर्क परमिट, तो देन ही शुड कॉल या रेज अ वेब फॉर्म। और इस चीज का भी जरूर ख्याल रखें कि जो इन्होंने पोस्टल एड्रेस अपनी सबमिशन में, एप्लीकेशन फॉर्म में यू नो इंक्लूड किया था, वो वाकई वैलिड हो। अगर ये कहीं किराए पर रहते हैं, रेंट पर रहते हैं, कहीं डाक और जा रही है, तो उस घर में ओनर को भी एक बार वेरीफाई कर लें कि कहीं मेरी कोई चिट्ठी आई तो नहीं पड़ी इंपॉर्टेंट फ्रॉम IRCC।
3: जी बिल्कुल। एंड अगला सवाल जो है मनन जी का, मैं नंबर दे दूं दोस्तों, बाकी इस सेगमेंट के बाद कोई भी इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर है, जस्ट कॉल मनन गुप्ता जी एंड द टीम 416-451-0040। मनन जी, अगला सवाल संदीप पुरी जी का है। पुरी साहब पूछ रहे हैं कि मनन, माई सिस्टर लिविंग इन इंडिया अप्लाइड फॉर अ कैनेडियन विजिटर वीजा 2 हफ्ते पहले। शी हैज नॉट येट रिसीव द बायोमेट्रिक्स रिक्वेस्ट लेटर। हाउ कैन शी फॉलो अप विद IRCC?
4: ओके, देखिए, बायोमेट्रिक्स रिक्वेस्ट लेटर, जिसे इन द इमिग्रेशन पार्लेंस BIL कहते हैं, बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन लेटर, आइडियली तो वो जब भी आप एप्लीकेशन फाइल सबमिट करते हैं, प्रोवाइडेड आपने बायोमेट्रिक्स की फीस सबमिट की है $85, तो वो विद इन 24 to 36 hours या मैक्सिमम 3-4 दिनों में इशू हो जाती है। लेकिन अगर पिछले 2 हफ्तों से आपके सिस्टर के BIL लेटर इशू नहीं हुई, तो मैं 2 चीजें रिकमेंड करूंगा। एक तो अपने पोर्टल में जाकर जरूर देखें अगर उन्होंने खुद ही अपनी फाइल लगाई है। कई बार आपको ईमेल नहीं आती, लेकिन ये BIL लेटर आपके पोर्टल में ऐड हुई होती है, सो वन पॉसिबिलिटी कुड बी दैट। सेकेंडली, इट इज नॉट श्योर कि ये इन्होंने पहली बार विजिटर वीजा अप्लाई किया है, इससे पहले बायोमेट्रिक्स दिए हैं या नहीं दिए, क्योंकि बायोमेट्रिक्स की वैलिडिटी 10 साल होती है। अगर इन्होंने पहले कभी पिछले 2-4-5 सालों में बायोमेट्रिक्स दिए हुए हैं, तो शी वोंट गेट अ न्यू बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन लेटर, क्योंकि दे आर वैलिड फॉर 10 long years।
3: जी, एंड स्काईलेक इमिग्रेशन का नंबर 416-451-0040। 4040। आखिरी सवाल किरण सचदेवा जी का है, एंड किरण जी का पूछना है कि हेलो मनन जी, गुड आफ्टरनून, आई नीड टू अप्लाई फॉर माय कैनेडियन सिटीजनशिप, विल माय आईएलटीएस स्कोर शीट फ्रॉम 2021 बी एक्सेप्टेड एज प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, 2021 की जो स्कोर शीट है।
4: ओके
3: जी,
4: देखिए सिटीजनशिप के लिए वैसे तो जॉनसी एज ग्रुप है 18 to 54 के बीच में ही जो लोग अप्लाई करते हैं उन्हीं को इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी का प्रूफ देना होता है, तो आई बिलीव यू फॉल अंडर दैट एज ग्रुप। सेकेंडली, अगर आपके पास 2021 का आईलेट्स का स्कोर शीट है एंड प्रोवाइडेड यू हैव स्कोर्ड लेवल CLB लेवल 4 इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो इट शुड बी गुड इनफ। आई एम नॉट श्योर कि आप यहाँ पर कैनेडा में एज अ स्टूडेंट आए थे या एज अ यू नो एज अ स्पॉन्सर आए थे या किसी और कैटेगरी में आए थे, लेकिन अगर आपके पास कैनेडियन एजुकेशन है, कोई पोस्ट सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्ट है, तो वो भी आपका इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी का काम पूरा कर सकती है। सो इन ईदर वेज योर आईलेट्स टेस्ट रिजल्ट फ्रॉम 2021 शुड बी अ पॉजिटिव वे टू मूव है
3: जी। एंड बाकी इसके अलावा दोस्तों ऑलवेज याद रखें स्काईलेक इमिग्रेशन का नंबर 4164510040, और लॉन्ग वीकेंड है मंडे को, तो मंडे को अपनी मुलाकात मनन जी से नहीं होगी, लेकिन कोशिश करेंगे अगर मनन जी ट्यूसडे को अवेलेबल होते तो मनन जी को ऑन एयर लेकर आए। एंड मनन जी हैव अ स्प्लेंडेड थैंक्स गिविंग लॉन्ग वीकेंड, नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं संडे से, सो परिवार के साथ अपनी टीम के साथ एंजॉय करें।
4: बिल्कुल डेफिनेटली, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी इन नवरात्रों की बहुत बहुत एडवांस में बधाई, थैंक्स गिविंग लॉन्ग वीकेंड है, और डेमोक्रेसी का जो त्यौहार है वो भी ब्रैम्पटन म्यूनसिपैलिटी में इस 9 तारीख को एडवांस वोटिंग शुरू हो गई है, कई म्यूनसिपैलिटीज में तो ऑलरेडी चल रही है। सो हम अपने सभी लिसनर्स को एक बार फिर हाथ जोड़कर गुजारिश, प्रार्थना और रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज पार्टिसिपेट एंड इम्प्रूव द वोटिंग टर्नआउट एंड लेट सेलिब्रेट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी विद फुल फर्वर एंड ग्रेटिट्यूड।
3: बिल्कुल, और हम ये भी चाहेंगे कि आने वाले जो अगले जब इलेक्शंस होते हैं उसमें मनन जी जैसे लोग जो हैं, खासकर मैं मनन जी की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, जो भाई ऑनेस्टी इंटेग्रिटी से कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं थ्रू रोड टुडे और स्काईलेक इमिग्रेशन के जरिए, इतने इतने लंबे अरसे से रिपोर्ट्स जो सारी की सारी कमेंटरीज इनकी होती हैं या जो रिपोर्टिंग होती है वो सब काम जो है मनन जी करते हैं। सो मनन जी जैसा बंदा ऑफिस में हो तो फिर आप जस्ट इमेजिन व्हाट कैन ऑफ रिजल्ट्स वी कैन लुक फॉरवर्ड टू। मनन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
4: थैंक यू सो मच जी, हैव अ गुड वन।
3: थैंक यू जी। 4164510040 एंड choleBhature.ca, चार लोकेशन से अमेजिंग अमेजिंग फूड सर्व करते हैं, दिल्ली वाले ऑथेंटिक छोले भटूरे ओनली एट choleBhature.ca, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन वॉन, 1 इन मिसागा, पांचवी लोकेशन खुलेगी बहुत जल्द, उसकी जानकारी हम आपको जरूर देंगे। सहजा आयुर्वेदा हर्बल कंसल्टेशन सेंटर, वैद्य रत्न पीवी राज जी का किसी ने नंबर मुझसे मांगा है, प्लीज नोट कर लीजिए आराम से, ब्रैम्पटन स्कारब्रो दो जगहों से आपको सर्व करते हैं, 6473278111, 6473278111। छोटी सी ब्रेक, आते हैं बहुत ही जल्द वापस। सुकून ए जिंदगी, रुई का गद्दा बेचकर मैंने एक दरी खरीद ली, ख्वाहिशों को कुछ कम किया मैंने और खुशी खरीद ली, सबने खरीदा सोना मैंने एक सुई खरीद ली, सपनों को बुनने जितनी डोरी खरीद ली, मेरी एक ख्वाहिश मुझसे मेरे दोस्त ने खरीद ली, फिर उसकी हंसी से मैंने अपनी कुछ और खुशी खरीद ली, इस जमाने से सौदा कर एक जिंदगी खरीद ली, दिनों को बेचा और शामें खरीद ली, शौके जिंदगी कमतर से और कुछ कम किए, फिर सस्ते में ही सुकूने जिंदगी खरीद ली, फिर सस्ते में ही सुकूने जिंदगी खरीद ली।
0: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है, एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर। वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। विजिट वेन्स ऑटो ग्रुप.com।
2: 2026 ब्रैंटन म्युनिसिपल इलेक्शन मंडे अक्टूबर 26 को होगा। अगर आप वोट नहीं कर सकते ऑन वोटिंग डे तो आप वोट अर्ली भी कर सकते हैं ड्यूरिंग एडवांस वोटिंग। एडवांस वोटिंग की तारीख होगी अक्टूबर 9th, 10th, 11th, 16th एंड 17th। वोटिंग आवर्स आर वीकडेज फ्रॉम 12 नून टू 8 पीएम और वीकेंड्स पर 10 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक। यू कैन वोट एट एनी एडवांस वोटिंग लोकेशन इन ब्रैम्पटन। अपना वोटर नोटिस जरूर लाएं इफ यू रिसीव वन एंड आइडेंटिफिकेशन शोइंग योर नेम एंड एड्रेस टू वोट। अगर आपको वोटर नोटिस नहीं मिला, ब्रिंग योर आईडी विद यू टू वोट and you can update or add your voter information in person. Voting locations ke liye, voter information ke liye and a list of candidates ke liye, aaj hi visit kare brampton.ca/brampton votes.
5: Hi, I'm Realtor Sikhi. Je tusi ghar bechan ja khareedan bare soch rahe ho, ta ik var mainu phone zarur karo. Main tuhanu professional advice deke tuhada ghar list karangi sirf $1,000 vich. Ji haan, bilkul theek sunya. Only $4,000. No hidden fees, no surprises. Call me at 647-408-7066. That is 647-408-7066. Just remember, you say sell and I say sold.
2: क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है? क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिसागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296. इट्स 289-891-0296. आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम. Remember, you're in good hands with Allstate.

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: सहजा आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर। हम हमारे खानदान से नब्ज देकर सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा करते हैं। हमारे क्लाइंट्स को हमारे इलाज से बहुत फायदा हुआ है। एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, सोराइसिस और सारी बीमारियों का जड़ से इलाज करते हैं। कॉल वैद्य रत्न पीवी राज, Brampton and Scarborough, 647-327-8111, 647-327-8111।
3: नमस्कार ब्रैम्पटन, मैं बलजिंदर सिंह नहल। मैंने अपने इस शहर को बहुत करीब से देखा है। सड़कों के गड्ढों से लेकर हमारे पार्कों की हालत तक, ट्रैफिक की बढ़ती परेशानी से लेकर सिटी सेवाओं में आने वाली ढील तक, बढ़ता क्राइम और करप्शन आज हमारे शहर की बड़ी हकीकत बन चुके हैं। लेकिन याद रखिए, एक अच्छा और सुरक्षित शहर सिर्फ कागजी वादों से नहीं बल्कि जमीनी काम से बनता है। आपके ये मुद्दे सिर्फ चुनाव तक खत्म नहीं होंगे, इन्हें सिटी हॉल तक ले जाना और इनका समाधान निकालना मेरी जिम्मेदारी है। बदलाव के लिए आगे आइए। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसिलर उम्मीदवार, वार्ड 9 और 10। ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
2: This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading। पिछले 15 सालों से सक्सेसफुली ऑनलाइन ट्रेडिंग से बहुत से परिवारों को साइड इनकम प्रोवाइड करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 से $6,000 US कमा सकते हैं। फ्लेक्सिबल स्केड्यूल है, श्योरिटी विद फुल कॉन्फिडेंस के साथ मिनिमम $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं। फ्री सेमिनार्स अटेंड करें हर सैटरडे आफ्टरनून। मेक श्योर प्लीज मेक योर अपॉइंटमेंट, वॉक इन ना करें। 12:30 PM to 3:30 PM होता है सेमिनार, एंड कॉल करके अपनी सीट रिजर्व करवा लें। 905-206-1008 905-206-1008। Mittal CPA Professional Corporation for all your tax related matters, 289-748-4040 289-748-4040।
4: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि, भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना न भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव, खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
5: You're listening to The Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.
2: वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं सनी जोशी फिर से आपका स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। 21 डिग्री सेल्सियस बाहर का तापमान है, फील्स लाइक 23। आयशा मुनव्वर जी, डेट सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट एंड सॉल्वेंसी काउंसलर, हमारे साथ होंगी बहुत जल्द, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले किशोर कुमार साहब की आवाज़ में अमीर गरीब वॉज द फिल्म। 1974 में ये फिल्म आई थी, देव आनंद साहब की फिल्म थी और देव आनंद पर फिल्माया ये गीत। देव आनंद वो थे जिन्होंने 1973 में प्रकाश मेहरा की जंजीर फिल्म इसलिए नहीं की थी, ही रिफ्यूज्ड इट। शमी कपूर रिफ्यूज्ड इट, और इनफैक्ट धर्मेंद्र साहब ने भी रिफ्यूज की, और तब बच्चन साहब को फिल्म मिली एंड एंग्री यंग मैन स्क्रीन पर नजर आया। बट द रीजन देव आनंद साहब ने जंजीर 73 में इसलिए नहीं की, उन्होंने कहा कि भैया देव आनंद किसी फिल्म में हो और फिल्म में कोई गाना उनके ऊपर फिल्माया ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है, बिकॉज ही ऑलवेज वॉन्टेड songs to be pictured on him। तो इस जंजीर में तो था नहीं। अब लीड हीरो जो है पुलिस वाला दिखाया था, तो वो उसके ऊपर गाना प्रकाश मेहरा कहते हैं, ऐसे कैसे होगा। तो देवानंद ने कहा कि भैया हम फिल्म ही नहीं करेंगे। चलिए इस फिल्म में ये गाना उन पर फिल्माया मैं आया हूँ, इन्जॉय करें, बड़ा डिफरेंट सा गीत है। आई बी बैक।
6: मैं बहुत अमीर आदमी नहीं हूँ, तो मेरे पास बिलियन पैसे हैं, करोड़ों या अरबों मेरे जेब में पड़े हैं, वो कहाँ ले जाना है। वी शुड स्पेंड इट हियर, good things, and I've earned it. My experience is my wealth.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: हाय अंजू, कैसी हो? How's your son doing?
2: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
1: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
3: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 9054573232, Clear Optical by Varun Kanda।
4: ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल वार्ड 9 अते 10 लई परोसे योग उम्मीदवार डॉक्टर आजाद गोयत नू अपना कीमती वोट पाओ।
5: डॉक्टर आजाद गोयत जिन्ना मुद्दा लई जनता दा साथ देन के उना च अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी अते पब्लिक कंसल्टेशन, प्रॉपर्टी टैक्सेस विच कटौती, क्राइम ते एक्सटॉर्शन ते कारवाई, वड्डे बिजनेसमैन अते पॉलिटिशियंस दा नेक्सस तोड़ना, लोकल डेवलपमेंट नाली वार्ड नंबर 9 ते 10 लई गो स्टेशंस नाल कनेक्टिविटी, फुल पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ग्रीन स्पेसेस दी मेंटेनेंस शामिल है।
4: इलेक्शन डेट 26 अक्टूबर 2026, एडवांस वोटिंग ऑन 9, 10, 11, 16 and 17 अक्टूबर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट azadgoyat.ca। पेड फॉर एंड ऑथराइज बाय कैंपेन ऑफ डॉक्टर आजाद गोयत।
6: की थानू किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन ले मॉर्गेज दी लोड़ है, जिवें फर्स्ट और सेकंड मॉर्गेज, परचेज और रीफाइनेंस या प्राइवेट फंड्स, हर जगह हाथ पैर मार के देख चुके हो,
7: तब फिक्र क्यों कर दे हो? नीलम सिद्धू कुल है सॉल्यूशन फॉर एवरी सिचुएशन।
6: ये ऑफर कर देने बेस्ट रेट्स, इम्पेयर्ड क्रेडिट या बैंकरप्सी है, नो प्रॉब्लम।
7: इना कोल नहीं, ए बी एंड ट्रस्टेड प्राइवेट लेंडर्स।
6: यू शॉप अराउंड एंड कम बैक टू नीलम।
7: आज ही कॉल करो नीलम सिद्धू नू
6: 6477398710, license number M200034504.
8: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
9: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: वेलकम बैक फ्रेंड्स, और हम बात करते हैं आयशा मुनव्वर जी से, डेट सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट, इनसॉल्वेंसी काउंसलर. और आयशा जी का ओवर 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑप्शंस आपको देती हैं अलग अलग फॉर डेट सेटलमेंट और मैक्सिमम डेट रिलीफ के लिए. आपने कॉल करना है 416-428-2165, 416-428-2165. आयशा जी, वेलकम टू साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो.
3: बिल्कुल, आई हैव टू लेट यू नो व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल डेट सेटल करने के लिए. तो हमारी जो सर्विसेज हैं उनमें आ जाती हैं कंज्यूमर प्रपोजल्स, लमसम प्रपोजल्स, क्रेडिट काउंसलिंग सर्विसेज हैं. इसके अलावा हम बैंक्रप्सी में भी हेल्प आउट करते हैं, कलेक्शन कॉल्स रोक देते हैं, लीगल एक्शन रुक जाता है, इंटरेस्ट भी रुक जाता है, आपके एसेट्स जो है वो सेव रहते हैं. तो बेसिकली ये हमारी सर्विसेज हैं, और मोर देन 20 ईयर्स से मैं कम्युनिटी को हेल्प आउट प्रोवाइड कर रही हूँ. और उसमें यह कि बेताशा क्लाइंट्स अब सक्सेसफुली डेट फ्री हो चुके हुए हैं, और अपॉइंटमेंट्स ऑलवेज फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल होती हैं. और वन ऑन वन अपॉइंटमेंट इसलिए जरूरी होती है कि हर पर्सन की सिचुएशन फर्क होती है, हर पर्सन की फाइल एक यूनिक फाइल होती है, तो उसको प्रॉपर तरीके से रिव्यू करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि बैंक किस तरह से जो है इसको मैक्सिमम सेटल करेंगे, और लीगैलिटी क्या है, प्रोसेस क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो सब कुछ आपको बताया जाता है. एंड देन एंड के ऊपर वी हैव टू लेट यू नो कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, क्रेडिट को आप किस तरह से दोबारा एस्टेब्लिश करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. तो basically this is you know what we do in first appointment to review your situation to know your options. Aur khali hum options discuss karke consultancy nahi provide karte, hum services provide karte hain. Basically we can file consumer proposals for you, bankruptcies for you, and also we provide credit counseling services. To kai tarah ke debts hote hain, unsecured, secured. To basically all kind of unsecured debts can be settled, aur business debts ho, personal ho, iske alawa CRA ke taxes hain, HST mein agar aap behind hain, aur kai लोग ऐसा करते हैं कि इधर उधर से गलत मशवरे लेके आ जाते हैं. तो आई विल सजेस्ट यू के यू नो ऑलवेज गेट योर एडवाइस फ्रॉम राइट प्रोफेशनल, ओनली पीपल हु आर फेडरली लाइसेंस्ड, दे कैन प्रोवाइड यू नो दी सर्विसेज, जो कि ट्रस्टी ऑफिसर्स होते हैं, और वी आर वन ऑफ देम. और उसमें ये कि हम डायरेक्टली वन ऑन वन बैंक के साथ डील कर रहे हैं, कोई तीसरी पार्टी बीच में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए आपके केसेस के खराब होने के चांसेस जो है वो क्लोज टू जीरो हो जाते हैं. एंड हमारा जो सक्सेस रेट है वो close to 99.9% aap samajh le, it's really high, or you know we know the right options for you. So all you have to give me a call to review your debt problems and know your right options to settle your debts. So phone number is 416-428-2165, that is 416-428-2165. Thank you.
2: बहुत बहुत शुक्रिया आयशा जी. और दोस्तों, मैं एक बार फिर से बता दूं, डेट सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट इंसॉल्वेंसी काउंसलर आयशा मुनव्वर जी, एंड आपको देते हैं अलग अलग ऑप्शंस फॉर डेट सेटलमेंट. द नंबर टू कॉल आयशा मुनव्वर 416-428-2165, 416-428-2165, आयशा मुनव्वर

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तो हड़ा मन पसंद समान मिलेगा हुन वधिया रेट्स ते, क्योंकि तो हड़े अपने शहर विच आ गया अनाज मार। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दाला, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स या फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले अज ही विजिट करो अनाज मार, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते, एट 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42, ब्रैम्पटन। कॉल 9059288857 अनाज मार्ट।
2: नमस्कार, मैं हरसिमरन सिंह। हमारा ब्रैम्पटन शहर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमारी बुनियादी सुविधाएं भी उसी रफ्तार से बढ़ रही हैं? पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल सड़कें, साफ पानी और सुरक्षा सेवाओं के लिए आपकी आवाज को रीजन तक पहुंचाना ही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। मैं वार्ड 9 और 10 से रीजनल काउंसलर पद का उम्मीदवार हूँ। एक बड़े बदलाव के लिए आने वाली 26 अक्टूबर को अपना कीमती वोट हरसिमरन सिंह को दें। ऑथोराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।
3: Hi everybody, this is Neeraj Sridhar, also known as Bombay Vikings. Right now you're listening to South Asian Unlimited Radio.

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।

0: जोशी।
1: 2026 ब्रैंटन म्यूनिसिपल इलेक्शन मंडे अक्टूबर 26 को होगा। अगर आप वोट नहीं कर सकते ऑन वोटिंग डे तो आप वोट अर्ली भी कर सकते हैं ड्यूरिंग एडवांस वोटिंग। एडवांस वोटिंग की तारीख होगी अक्टूबर 9th, 10th, 11th, 16th एंड 17th। वोटिंग आवर्स आर वीकडेज फ्रॉम 12 नून टू 8 पीएम और वीकेंड्स पर 10 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक। यू कैन वोट एट एनी एडवांस वोटिंग लोकेशन इन ब्रैंटन। अपना वोटर नोटिस जरूर लाएं इफ यू रिसीव वन एंड आइडेंटिफिकेशन शोइंग योर नेम एंड एड्रेस टू वोट। अगर आपको वोटर नोटिस नहीं मिला, ब्रिंग योर आईडी विद यू टू वोट and you can update or add your voter information in person. Voting locations ke liye, voter information ke liye and a list of candidates ke liye, aaj hi visit kare brampton.ca/brampton votes. सहजा आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर। हम हमारे खानदान से नब्ज देकर सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा करते हैं। हमारे क्लाइंट्स को हमारे इलाज से बहुत फायदा हुआ है। एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, सोराइसिस और सारी बीमारियों का जड़ से इलाज करते हैं। कॉल वैद्य रत्न पीवी राज, Brampton and Scarborough, 647-327-8111, 647-327-8111. जब मन हार कर लौट आने को चाहे, जीत भी तुम्हें हराने को चाहे, तुम अपने आप से ये गुजारिश करके तो देखो, एक आखिरी कोशिश करके तो देखो। ऐसे हालात में किस्मत भी आपको आजमाती है, नेगेटिव सोच मंजिल की राह से भटकाती है, तो मंजिल की ओर शीश करके तो देखो, एक आखिरी कोशिश करके तो देखो। पाने की चाह रखो बड़े ही शिद्दत से, पर सफलता खाएगी मात कठिन मेहनत से। एक बार ये साजिश करके तो देखो, एक आखिरी कोशिश करके तो देखो, एक आखिरी कोशिश करके तो देखो। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं सनी जोशी फिर से आपका स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। और पहुंच चुके हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट ऑफ द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिकूसी इन ब्रैम्पटन, 905-450-2828। टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री के सुल्तान हमारे साथ है। सुल्तान जी सुल्तानिक डील्स लेकर पहुंच चुके हैं। देर ओपन 7 डेज अ वीक, 11 AM to 7 PM। फेस्टिव सीजन है भाई, फेस्टिव सीजन में बेस्ट डील्स आप तक पहुंचाना मेरा काम है। सो सबसे पहले टीवी सेक्शन की ओर रुख करें और फेस्टिव सीजन की अमेजिंग, मोस्ट अमेजिंग साल की डील्स आप तक पहुंचाते हैं। सुल्तान जी स्वागत है आपका।
2: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: सुल्तान जी सबसे पहले फेस्टिव सीजन के मद्देनजर और उसका फायदा लेते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे लिसनर्स का भी फायदा हो जाए, टीवी सेक्शन में मोस्ट अमेजिंग डील्स प्लीज बताएं।
2: मोस्ट अमेजिंग डील सनी भाई, हमारे पास इस वक्त 55 इंच

0: सोनी का ब्रेविया मॉडल है ये और 100 इंच है ये. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग प्राइस के साथ ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस अपने कस्टमर को 2999 में 100 इंच सोनी गूगल फीचर्स के साथ 120 हर्ट्ज विद गेमिंग मोड, क्योंकि सोनी प्लेस्टेशन 5 बनाया है उन्होंने जो प्रो, अब उसके साथ रेजोल्यूशन इसकी मैच की गई है. बेस्ट डील है, बिगेस्ट स्क्रीन है, 100 इंच सोनी ब्रेविया 3 आपको मिलेगा ओनली 2999 का. $4,500 इसकी प्राइस है, $1,500 आप ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे सेव करेंगे. इसके साथ साथ 85 इंच सोनी ब्रेविया मॉडल लेना चाहें तो हमारे पास 85 इंच सोनी ब्रेविया मॉडल 1599 में है. लेकिन साथ के साथ सैमसंग ने जो लॉन्च किया है 85 इंच मिनी एलईडी के साथ, तो मिनी एलईडी 2026 का लेटेस्ट मॉडल सैमसंग का सिर्फ 1199 में 85 इंच मिलेगा. वेरी स्पेशल प्राइस है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, इंसेंटिव वॉक इन कस्टमर को मिल रहे हैं, पेमेंट 6 महीने में करनी है, कोई इंटरेस्ट नहीं है. इवन यहां तक के 75 इंच 799 में सैमसंग मिलेगा ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे. तो 32 इंच से लेके 100 इंच तक एनी साइज ऑफ टीवी आपको चाहिए सोनी या सैमसंग, गारंटेड आप 600 से $800 तक की सेविंग कर सकते हैं. पहुंचना है आपको 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी, ऑन बोवेड है. BramptonAppliances.com हमारी वेबसाइट है जी. 905-450-2828 हमारा नंबर है. 905-450-2828
1: दोस्तों, फेस्टिव सीजन की डील टीवी सेक्शन में तो मैंने आप तक पहुंचा दी. अब जो दो नेक्स्ट टू इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, अप्लायंस लॉन्ड्री, देखते हैं कि जब भी सुल्तान जी आते हैं ऑलवेज प्रॉमिस करते हैं और डिलीवर भी करते हैं द बेस्ट डील्स. सुल्तान जी, अप्लायंस लॉन्ड्री में फेस्टिव सीजन की क्या जबरदस्त डील्स चल रही हैं?
0: सनी भाई, जैसे मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में आजकल बता रहा हूं कि 30% प्राइस इंक्रीज हुई है, क्योंकि 25% टैरिफ लगा है जी स्टेनलेस स्टील अप्लायंस स्टील पे और होम अप्लायंसेस पे. 5% का उन्होंने फ्रेट इंक्रीज हुआ है, तो 30% का डिफरेंस इस वक्त एज ऑफ टुडे अगर कोई कस्टमर बाय करते हैं तो उन्हें मिलता है. लेकिन ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस स्टिल सेविंग करवा रहा है जी अपने कस्टमर की. फॉर एग्जाम्पल, फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर है जो कि स्टीम फीचर के साथ है. वॉशर भी स्टीम, ड्रायर भी स्टीम है. प्लैटिनम सीरीज, प्लैटिनम कलर में आपको ये मिलेगा. अल्ट्रा लार्ज कैपेसिटी का वॉशर एंड ड्रायर, $2,000 वाला. टैरिफ लगी प्राइस इसकी $2,600 है, लेकिन 1799 में हमारे कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है. फ्री डिलीवर होगा और 1799 भी 6 मंथ में पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है. इसी तरह स्टैकेबल वॉशर एंड ड्रायर है जो कि $2,200 वाला, सिर्फ 1499 में लेके $700 स्टैकेबल वॉशर एंड ड्रायर पे सेव किए जा सकते हैं. टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर है $1,700 वाला, 1099 का पेयर लेके $600 टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर पे सेव किए जा सकते हैं. फ्री होम डिलीवरी होगी और 6 मंथ में आप पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है. फ्रिज स्टोव डिशवॉशर बंडल पैकेज लेते हैं, $5,000 वाला $2,999 में मिलेगा, जबकि इसकी भी टैरिफ लगी प्राइस जो है $3,899 है. अगर आप बिल्ट इन किचन लेते हैं, बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वाल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवॉशर और बिल्ट इन काउंटर डेप्थ फ्रिज, पूरे का पूरा बिल्ट इन किचन 40% डिस्काउंट पे $12,000 वाला सिर्फ $6,900 में मिलेगा. 40% ह्यूज डिस्काउंट है बिल्ट इन किचन में जो कि आपको ऑफर किया जा रहा है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे. BramptonAppliances.com हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें. और सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक 7 days a week हमारा स्टोर खुलता है जी. 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी, ऑन बोवेड है. BramptonAppliances.com सिंगल सिंगल पीस पे भी आप $600 से $800 सेव करेंगे. 36 इंच वाइड फ्रेंच डोर फ्रिज है फुल साइज का, बॉटम फ्रीजर डबल डोर ऑन टॉप $2,200 वाला.

0: $14.99 में है, $700 आप सेव करेंगे। टॉल टब की डिशवाशर है स्टेनलेस स्टील की $900 वाली, $499 में लेके $400 सेव करेंगे। टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर है जी जो $1000 वाली, सिर्फ $599 में लेके $400 आप सेव करेंगे। विजिट करें, सेलेक्ट करें, फ्री होम डिलीवरी होगी, 6 मंथ में आप पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। 905-450-2828, 905-450-2828। हमारा मैसेज जरूर पास ऑन करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव को। ह्यूज डिस्काउंट्स मिलेंगे आपको बिग स्क्रीन टीवीज पे, या फिर लॉन्ड्री सेक्शन में वॉशर एंड ड्रायर, या अगर आप किचन अप्लाइंसेस में फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर देख रहे हैं तो 905-450-2828, 905-450-2828 जी।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान जी,
0: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया
1: जी। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 905-450-2828।
2: सिटी हॉल विच ब्रेड ब्रेडफोर्ड ने तुहाडा टीटीसी किराया वधाया अते वार वार सर्विस विच कटौती कीती, उदों भी जदों उन्होंने कहा सी कि वो अजिहा नहीं करनगे, वो अपने वादियां तो मुकर गए, बिल्कुल उसे तरह जिवें उन्होंने सस्ते करां, किराया कंट्रोल, पुलिसिंग अते बाइक लेना दे मामले विच कीता। ब्रेडफोर्ड कहंदे कुछ होर हन अते करदे कुछ होर, क्योंकि चोणां जित्तण लई वो कुछ भी कह सकते हन, वो इदां दे ही हन कि तुसीं सचमुच उन्हां ते भरोसा कर सकदे हो। अपने घर दे किराए लई, अपनी टीटीसी किराए लई, अपनी सुरक्षा लई 26 अक्टूबर नूं फैसला तुहाडा है। Authorized by the Olivia Chow Campaign. हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर। वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। Visit veinsautogroup.com.
3: Real estate is not easy business. Aur jo easy nahi, use easy banate hain Realtor Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley. Ghar khareedna ya phir ghar bechna, first time home buyers ya phir investors, sabki pasand ka rakhte hain khayal. Ye hai Raj Joshi, Realtor bemisal. Call Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley Realty, 647-866-1086, 647-866-1086. Raj Joshi, sirf naam hi kaafi hai.
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं सनी जोशी फिर से आपका स्वागत करता हूँ। रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली के नॉलेजेबल रियल्टर राज जोशी जी हमारे साथ है विद द लेटेस्ट रियल एस्टेट अपडेट। राज जी स्वागत है आपका।
4: सनी जी नमस्कार, सबसे ख्याल आदाब आपको और प्यारे लिस्टनर्स को
1: जी।
4: वेरी गुड आफ्टरनून। आज क्विकली सनी जी अनाउंसमेंट है स्कार्बरो के लिए, रूज रिवर का एरिया किंगस्टन रोड के पास, अगर कोई भी भाई बहन इंटरेस्टेड है, 1 free parking स्पॉट इंक्लूडेड, फ्लेक्सिबल क्लोजिंग है एज अर्ली एज 30 डेज, कोई डेवलपर कॉस्ट नहीं है, 5% डिपॉजिट के साथ आप रूज रिवर में 1 bedroom कॉन्डो अंडर 340,000 ओन कर सकते हैं। एक्सेप्शनल वैल्यू, एवरी स्वीट इंक्लूड्स 1 parking spot, और इसमें 2 bedroom अंडर 500,000 और 2 bedroom एंड 3 bedroom वाले स्वीट अंडर 600,000। ब्रांड न्यू है, मूव इन रेडी कॉन्डोमिनियम्स और प्राइसिंग स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम टुडेज मार्केट। इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, प्राइसेस बहुत लो है, इन्वेंटोरी लिमिटेड है और एक स्पेशल पैकेज फॉर साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो लिसनर्स। हमें कॉन्टैक्ट करने जल्द से जल्द अगर आप इंटरेस्टेड हैं। स्कार्बरो रूज रिवर का एरिया बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, और साथ ही साथ ब्रैंटफोर्ड में अगर कोई भाई बहन देख रहे हैं तो मैं बता दूं आपके पास एक सीरियस अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही एक्सेप्शनल प्राइस में होम ओनरशिप की टाउन होम्स में। और अगर डिटेल्स आप चाहते हैं हमें कॉन्टैक्ट कर ले, नंबर एक ही है मेरा। और सनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, जबरदस्त प्लेटफॉर्म और एक बहुत ही एक्सलेंट कम्युनिटी को रीच आउट है इसके थ्रू हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रैंटफोर्ड का एक बार फिर बता दूं, लो 400 से ये अपॉर्चुनिटी है और क्लोजिंग है स्प्रिंग समर 2027 की। बहुत बहुत शुक्रिया, विशिंग एवरीवन अ वंडरफुल आफ्टरनून।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया राज जी, कल फिर होती है मुलाकात 6478661086, बहुत बहुत शुक्रिया।
4: थैंक यू
1: जी। 6478661086 एंड मिल्टन में कोर्ट हियर्स फ्रॉम विक्टिम्स ऑफ बर्लिंगटन कपल हु ऑर्केस्ट्रेटेड टेलर स्विफ्ट कॉन्सर्ट टिकट स्कैम। ये बहुत बड़ा एक स्कैम है जो सामने आया है, एंड जब आप भी ऑनलाइन टिकट्स खरीदें तो बी वेरी वेरी केयरफुल कौन सी साइट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज यू जस्ट डोंट नो। एंड बाहर का तापमान इज अबाउट 22 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 24। And debate social economic challenges per ho between at the TMU event between Olivia Chow and Brad Bradford. And chaliye Udit Narayan ki awaaz mein main nikla gaddi leke the old gadar, and phir is geet ko new gadar mein bhi istemal kiya gaya tha, but jaise kehte hain bhaiya old is gold, to enjoy kar lijiye ek oldie goldie. I'll be back.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940.
1: क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है? क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिस्सागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296. इट्स 289-891-0296. आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम. Remember, you're in good hands with Allstate.
2: सुनदे हो, मेरे प्रादी अज फ्लाइट है इंडिया तो.
3: ओ याद है पर उनू कहीं कि आउंदा होया एक प्लेट छोले भटूरिया दी फड़ लियावे.
2: इंडियन स्वाद वाले छोले भटूरे खान ले इंडिया दे सपने ना देखो. choleBhature.ca ते चलो.
4: choleBhature.ca बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट ब्रैम्पटन. छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे ते होर भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड ले पहुंचो. choleBhature.ca कॉल 9054582448.
1: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga, and 1 by Vaughan Mills. जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लेते हैं आपसे इजाजत. अब मुलाकात आपसे होगी कल 12 बजे on CMR 101.3 FM. शो के बाद बातचीत करनी है, नंबर एक ही है 6478631940. Till then, goodbye and God bless, ladies and gentlemen.

मुस्कुराइए दिल से, छूइए साथ साथ, गुनगुनाइए जरा प्यार से, डालिए हाथों में हाथ, बस वॉल्यूम बढ़ाइए और लवी डवी अंदाज में हमसे जुड़ जाइए। हर मूड का म्यूजिक, नए पुराने सुरीले गाने, लवी डवी फिल्मी बातें, हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स के अफसाने, रेडियो टोरंटो कनाडा आरटीसी, हर दिल की धड़कन, हमारी आपकी बातों का रंग, ये है आपका अपना शो आमिर और शिवानी की आवाजों के संग। आमिर और शिवानी की आवाजों के संग।

मंडे से फ्राइडे दोपहर 2 से 3 बजे तक। तो माहौल बनाइए, मुस्कुराइए, गुनगुनाइए और लवी डवी हो जाइए। RTC रेडियो टोरंटो कनाडा 416-303-3639।

0: रेडियो टोरंटो कनाडा, वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। मैं हूं शिवानी आपके साथ, और मेरे साथ हैं आमिर, और आफ्टरनून ड्राइव टाइम शो में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खूबसूरत सी आफ्टरनून, और हवा में थोड़ी थोड़ी सी ठंडक जो है वो शुरू हो गई है, और ये ठंडक बढ़ती रहेगी, लेकिन दिलों में आपके जो वार्मथ है, अपनों के लिए रिश्तों में गर्माहट है, वो हमेशा बनी रहे, इसकी ज़रूर कोशिश जारी रहनी चाहिए। 416-303-3639 इज द नंबर to call during the show and after the show as well. और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत।
1: आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो टोरंटो कनाडा, हवा के दोष पर आप तक पहुंचती हुई ये आवाज आमिर तुफैल की है। कबूल कीजिए मेरा अकीदत भरा अस्सलाम वालेकुम, स्वीकार कीजिए मेरी मोहब्बत भरी नमस्कार, और दिल की अथाह गहराइयों से निकलती हुई सत श्री अकाल। मैं रेडियो टोरंटो कनाडा के ब्रैम्पटन स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं, आपका खैर मकदम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइस एंड डॉल्स, दिस इज लवी डवी शो, एंड टुगेदर वेल किस द एयरवेव्स ऑफ टोरंटो दिस फाइन आफ्टरनून।

0: रेडियो टोरंटो कनाडा, इस वक्त 2:06 का वक्त है और आमिर बहुत प्यारा सा थॉट है, कहता है कि व्हेन यू आर सैड और अपसेट ऑलवेज रिमेम्बर दीज पॉइंट्स। अगर जब आप सैड हैं और जब अब आप अपसेट हैं तो हमेशा कुछ पॉइंट्स जहन में रखिए। वो पॉइंट में ये है कि पेन इज द पार्ट ऑफ ग्रोइंग।
1: अच्छा,
0: अगर
1: जब आप
0: आपको
1: ग्रो करते हैं तो फिर दर्द होता है, तो मर्द को तो दर्द नहीं होता।
0: पेन इज द पार्ट ऑफ ग्रोइंग, दैट मीन्स दैट जब आप आगे बढ़ते हैं, कोई
1: हाँ
0: भी आप नया वेंचर लेते हैं, कोई
1: जी।
0: भी आप जब देखिए बच्चा जो है जब केजी में होता है, किंडरगार्टन में होता है, तो उसके उसका जो स्कूल बैग होता है उसमें
1: जी
0: टॉयज हो सकते हैं, उसमें लंच बॉक्स हो सकता है, उसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शक्लों सूरत वाले खिलौने हो सकते
1: खिलौने
0: हैं।
1: हो सकते
0: जब
1: हैं।
0: वो हाई स्कूल में आता है, यूनिवर्सिटी में जाता है,
1: हाँ
0: तो पेन इन द सेंस कि एक डिसकम्फर्ट,
1: अच्छा,
0: एक अजियत वो बढ़ती
1: यू
0: जाती
1: यू
0: है।
1: गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन व्हेन यू
0: यस,
1: ग्रो।
0: सो पेन यू व्हेन यू आर सैड और अपसेट, हमेशा याद रखिए कि पेन इज द पार्ट ऑफ ग्रोइंग। एवरीथिंग इन इज इन लाइफ इज टेम्पररी। हर
1: ओह
0: जिंदगी में
1: यस।
0: हर चीज टेम्पररी है, राइट? वरिंग है, कंप्लेनिंग है, इट कैन चेंज नथिंग, कुछ नहीं
1: हाँ
0: बदलता।
1: अच्छा
0: हम जो वरी है ना, वो एक रॉकिंग चेयर की तरह होती है।
1: अच्छा
0: आप जब रॉकिंग चेयर पे बैठते हैं तो आपको लगता है ना हम कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। आप आंखें बंद करके रॉकिंग चेयर पे बैठिए तो आपको लगेगा कि आप जहां पहुंचना चाह रहे हैं, ऑफिस से घर पहुंच गए, रॉकिंग चेयर में बैठे ही बैठे।
1: इसका मतलब है कि बेबी स्टेप्स लेने जरूरी हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, बड़ा मत सोचिए। एक से दो तो आप कर सकते हैं, एक से नौ नहीं कर सकते, ये
0: जी,
1: बात गलत है।
0: एंड योर स्कार्स आर द सिंबल ऑफ योर स्ट्रेंथ, है ना? एवरी लिटिल स्ट्रगल इज अ स्टेप फॉरवर्ड।
1: इज इट?
0: कभी कभी होता है कि वो स्ट्रगल आपको एकदम से रिजल्ट्स नहीं देती, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि वो जो स्टेप है, थोड़ा सा भी जो स्टेप है, वो कहीं ना कहीं आगे लेके जाएगी आपको, और वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिजल्ट देगी, राइट? व्हाट इज मेंट टू बी विल बी इवेंचुअली बी विद यू।
1: ओ
0: जो आपके
1: यस।
0: लिए है वो आपके पास ही आएगा, चाहे इधर से घूम कर आए, चाहे उधर से घूम कर आए,
1: जो
0: चाहे आप।
1: आपका है वो आप ही को मिलेगा, आप ही को हासिल होगा।
0: जी
1: लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आपको लगता है वो आपके हैं लेकिन वो मिलते नहीं है।
0: है ना, ये प्रॉब्लम आपकी बहुत सुन आपके घर वालों से पता चला है कि ये प्रॉब्लम आपकी बचपन से ही है। आपकी जिसकी तलाश में जाते हैं वो
1: वो नहीं मिलता।
0: या तो तलाश आपने ठीक ठाक नहीं की।
1: कोई कुछ लोग होते हैं ना, बिना तलाश किए ही मिल जाते हैं,
0: पता नहीं कौन लोग होते
1: और
0: हैं
1: कुछ
0: वो।
1: को आप सारी जिंदगी तलाश करते रहते हैं, उनके हुसूल के लिए दुआएं, इल्तिजाएं, तमन्नाएं करते रहते हैं, वो आपके कभी होते नहीं।
0: एक और बात बताऊं मैं आपको, जब बचपन से, लाइक ऑन अ सीरियस नोट, बचपन से ही मुझे कोई भी चीज जो मिली ना, मिला सब कुछ,
1: ये सीरियस कितने का नोट होता
0: हाँ?
1: है? 100 का कि 50
0: पांच
1: का?
0: रुपए 50 पैसे का।
1: ये तो कुछ ज्यादा ही सीरियस कर दिया, बीच में 50 भी डाल दिए आपने। लेकिन
0: एवरी पेनी काउंट, देखिए मनी की इज्जत करनी चाहिए,
1: ये
0: हमारे मेहमान
1: बिल्कुल
0: आपको बताएंगे।
1: यस। आपने अभी पैसे की बात की है तो मैं आपको बता दूं, एक शख्सियत है यहां पूरे ओंटारियो में, उनके बारे में लोग बात करते हैं, मैं जहां भी जाता हूं उनका जिक्र होता है, उनकी बात होती है। बहुत से लोग उनके स्टूडेंट्स हैं और बहुत से लोग पैसा बना रहे हैं, घर बैठ के बना रहे हैं। और पैसा कितना? 500 से 700 US डॉलर बन रहा है, यूएस डॉलर।
0: जी
1: शिवानी, आपने इकट्ठे इतने पैसे कभी देखे एक दिन
0: ना
1: में?
0: ना,
1: तो देखिए, आपको भी देखने का मौका मिल जाएगा, ये 500 से 700 अमेरिकी डॉलर एक दिन का।
0: मतलब एक साथ ऐसे दिखेंगे,
1: ओह यस, ऑफ
0: मतलब हम देख
1: कोर्स,
0: पाएंगे
1: आप कन्वर्ट भी करा सकते हैं कैनेडियन डॉलर में इफ यू
0: ये।
1: वांट। हमारे साथ दे रहे हैं जेम्स लुक जी, वेलकम करते हैं सर आपको।
2: जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अमर साहब।
1: ये शिवानी कह रही है कि इन्होंने एक दिन में 700 अमरीकी डॉलर इकट्ठा नहीं देखा है, तो इसका क्या हाल हो सकता है जेम्स भाई?
0: नहीं, किसी ने दिखाया नहीं कि मैंने अभी अभी कमाया
1: कमाए?
0: है, तो मतलब आप जब से आप मिले हैं तब से ऐसा लगता है कि
1: पॉसिबल
0: वो
1: है।
0: हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं और कहते हैं कि हमने ये किया और ये पॉसिबल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब
1: हाँ, हो सकता है
0: हाँ,
1: कारण।
0: इमेजिनरी नहीं है ये, रियल है।
2: शिवानी, आपको मैं जूम की आईडी भेजूंगा, आप
0: जी
2: किसी वक्त निकाल के थोड़ी देर के लिए आए, हम खुद देखें कि
1: वाह
2: बनते हैं
1: वाह
2: बैठे या
1: वाह
2: नहीं
1: वाह,
2: बनते,
1: आई
2: राइट?
1: लाइक दैट, आई
0: माय
1: लाइक दैट।
0: प्लेजर, डेफिनेटली
1: मैं
0: डेफिनेटली।
1: भी बैठ सकता हूं इनके साथ थोड़ी देर के लिए?
2: ये
1: नहीं, आप
0: फोकस का
1: अकेले
0: काम
1: हैं,
0: है,
1: क्योंकि आप बातें फिर उनको बातों में लगा देंगे।
0: ये फोकस का काम है। देखिए जेम्स जी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आपने आज खुलेआम और ये रेडियो
1: हाँ
0: पे कहा कि एक एक करके यहाँ वो बातों में लगा देंगे और फोकस
1: यही
0: दिला
1: हुआ
2: तो
1: जी जी
2: आप जरूर जरूर किसी वक्त आए
0: जी
2: जूम
0: बिल्कुल
2: पे,
0: जी
2: तो
0: बिल्कुल
2: आप देखेंगे कि खुद देखेंगे कि पैसे बनते हैं। और
1: वेरी
2: ये मैं आप
0: नाइस
2: बता
0: वेरी
2: दूं
0: नाइस
2: लोगों के लिए, ये बता दूं कि ये एक फाइनेंशियल प्रोग्राम है जो के स्टॉक एक्सचेंज वालों ने डिवाइस किया हुआ है।
1: जी
2: और जैसे आप कहते हैं फॉरेक्स को ज्यादा ज्यादातर लोग जानते हैं क्योंकि वो
1: जी
2: करेंसीज में होता, वो भी पैसों की बात है वैसे, तो
1: जी
2: पैसा किसको पसंद नहीं है, राइट?
1: बिल्कुल सही,
2: एवरीबडी एवरीबडी वांट्स मनी, और वो
1: यस
2: कहते हैं मनी मेज यू नो मेक्स द मेयर गो।
1: यस यस
2: सो ठीक है, लेकिन आजकल के जमाने में स्पेशली कनाडा में जब इतनी महंगाई हो रही है, जब ट्रम्प साहब जो है वो क्या नाम है टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं,
1: जी
2: तो हमें चाहिए कि वी हैव टू यू नो ब्रेस आर सेल्व फॉर फ्यूचर। और उसके उसके लिए एक तरीका यही है कि आपके पास कुछ पैसा हो, कोई
1: बिल्कुल
2: एक्स्ट्रा
1: सही,
2: पैसा हो तो आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, क्योंकि एक तनख्वाह में गुजारा नहीं होगा।
1: ये
2: सो
1: कोर्स
2: इसलिए
1: किसके लिए है जेम्स जी? मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वो लोग जो काम करते हैं, कहीं नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं, आमदन काफी नहीं है, आमदन में इजाफा करना चाहते हैं, उनके लिए हु इज दिस कोर्स फॉर?
2: ये जितने भी आपने नाम लिए हैं ना, ये सब उसमें शामिल है,
1: वेरी
2: सबके लिए
1: नाइस,
2: कोर्स है। दिस कोर्स इज एवरीबॉडी, और ये इसीलिए उन्होंने फैसिलिटेट किया हुआ है कि आप अपने घर से बैठ के इन द कंफर्ट ऑफ योर होम आप पैसे बना सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसे बंदों से मिलने की जरूरत नहीं है जो कि आपको तंग करते हैं बातें करके, कोई ऐसा बंदा जो है
1: जी
2: आपको, कोई ऐसा आदमी नहीं आपको मिलेगा, कोई ऐसी औरत नहीं मिलेगी। आप अपने घर में बैठे हैं, अपने खानदान के साथ टाइम गुजारे हैं, क्योंकि 1-2 घंटे की बात है, 1-2 घंटे में
1: बिल्कुल
2: आप
1: सही,
2: इतने पैसे बना सकते हैं। और आप मुझे फोन करें और मुझे पूछें, मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो
1: बिल्कुल सही,
2: लेकिन जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, कुछ होगा नहीं,
1: बिल्कुल
2: ठीक है?
1: सही।
2: हाँ
1: कहते हैं कि आप हीला कीजिए, वसीला ऊपर वाला करेगा, और हीले से मुराद यह है कि आप कोई एक्टिविटी कीजिए, कोई सरगर्मी कीजिए, कोई काम कीजिए, कोई तरद्दुद कीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, जैसे शिवानी कह रही थी। तो अभी आपने जेम्स लूक जी को फोन करना है, आप चाहे मालूमात लें, इंफॉर्मेशन लें, और इंफॉर्मेशन के बाद फिर काम भी करें। एक मुहावरा है, सम पीपल टॉक द टॉक बट दे डोंट वॉक द वॉक, यानी वो
0: बिल्कुल
1: बातें बातें तो बड़ी करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन जेम्स लूक जी को फोन नहीं करते और कोर्स भी नहीं करते, और फिर वो बातों ही बातों में 700 भी बन जाता है, 800 भी बन जाता है, और 2000 भी बन जाता है, वो बैठे बैठे ख्वाबों में बना रहे होते हैं। तो हकीकत पसंद बनिए, जेम्स लूक जी को फोन कीजिए, 416-454 2581 नंबर दोबारा दे रहे हैं, अभी बात कीजिएगा जेम्स लूक जी के साथ, 1 दिन में $500 से $700 बन सकते हैं, और वो भी यूएस डॉलर। 416-454-2581 जेम्स जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी
2: जी, बहुत
1: मच,
2: बहुत शुक्रिया आपका भी,
0: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। कहते हैं अमर कि रिलैक्स, ब्रीथ एंड फाइंड योर काम। लाइफ इज नॉट अ रेस दैट यू नीड टू विन, इट्स अ
1: आहा,
0: जर्नी दैट यू नीड टू
1: वाह,
0: एक्सपीरियंस एट योर ओन पेस।
1: आज आपने जो बात कर दी है ना, उसमें जिंदगी का निचोड़ है, जिंदगी का निचोड़ है इसमें। आपने किसी से जीतना नहीं है, किसी ने किसी से सबकत नहीं ले जानी है, खास तौर पर ये मटीरियलिज्म में, किसी के पास 2 घर हैं तो हमारे पास 3 होने चाहिए, किसी के पास 5 हैं तो हमारे पास 7 होने चाहिए, दिस इज अ रॉन्ग थॉट। इसीलिए हमारी कम्युनिटी में ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स रखते हैं।
0: वेरी ट्रू।
1: मुझे लगता है कि ये जो ख्वाब हैं, ये आरजुएं, ख्वाहिशें और तमन्नाएं हैं, ये रियलिस्टिक होनी चाहिए। जैसे मतलब मैं अगर ये ख्वाहिश करूं कि आपके हाथ का बना हुआ खाना मुझे मिलेगा खाने के लिए, तो इट्स वेरी अनरियलिस्टिक। मुझे मुझे मालूम है मुश्किल हो जाएगा मामला बहुत। इट्स वेरी अनरियलिस्टिक। और खास तौर पर आपके हाथ के बनाए आलू खाना चाहें तो उसमें तो कम से कम कोई 3 महीने की वेटिंग लिस्ट होगी।
0: देखिए, फिर आपने एक फिजिकल जो मटेरियलिस्टिक उसकी बात कर दी,
1: नहीं, इसमें
0: मतलब
1: खाने में मटेरियलिस्टिक क्या है? खाने तो सब खाते हैं, मैं तो घर की बात कर रहा हूँ, वो तो मतलब पैसा, बैंक बैलेंस, स्टेटस में उसकी बात है। आलुओं में कौन सा
0: अच्छा आलू
1: मटेरियलिज्म
0: आलू मटेरियलिस्टिक। देखिए, कहते हैं व्हेन वी थ्रो आउट फिजिकल क्लटर वी क्लियर आउट आवर माइंड्स,
1: अच्छा।
0: व्हेन वी थ्रो आउट मेंटल क्लटर वी क्लीन आवर सोल्स।
1: ओ वाह वाह वाह, आज तो पता नहीं कहां से आप मोती तराश के लाई हैं, बड़े खूबसूरत से, बड़े हसीन
0: आपने
1: से।
0: आलू को मेंटल क्लटर में रखा है या फिजिकल क्लटर में
1: ऑफ
0: रखा
1: कोर्स, ये आलू कनेक्ट्स टू सोल्स।
0: है? इट एड्स ऑन टू योर वेटेज इन
1: देखिए,
0: लाइफ।
1: आलू खाएंगे आपके हाथ के बने हुए बड़े
0: अच्छा
1: कमाल के, उसमें मैंने सुना है आप 11 मसाले डालती हैं, वो पता नहीं कहां से लाती हैं आप, तो वो आप बनाएंगी बड़े तरद्दुद से, बड़ी मेहनत से, और उसमें मैंने सुना है कि आप गुनगुनाती भी हैं कुछ आलू बनाते हुए,
0: जी
1: उससे जायके में बड़ा इजाफा हो जाता है।
0: जी
1: तो अगर आप वो खाएंगे तो आपकी सोल को एक फ्रूट मिलेगा मुझे लगता है, क्योंकि गुनगुनाहट भी उसमें शामिल हो जाती है।
0: ट्यूसडे को बनाती हूँ तो
1: ये को आपका मेन्यू सेट है कि आप
0: जी
1: एवरी ट्यूसडे आलू बनाती
0: नहीं नहीं जब मैं जब मैं
1: हैं?
0: जब मैं ट्यूसडे को बनाती हूँ तो उसमें वो था ना जिमी जिमी जिमी आजा आजा आजा वाला, और जब मैं वेंसडे को बनाती हूँ तो थोड़ा सा एक ठहराव के साथ मैडम नूर जहां का कोई
1: अच्छा,
0: गाना
1: ये वो
0: होता
1: वाला आलू है जो सालन में इस्तेमाल होता है, या ये जो वो आलू है जो लोगों को बना देते हैं आलू?
0: नहीं सालन वाला
1: अच्छा, लोगों को भी तो आलू
0: इसमें
1: बनाते हैं
0: नहीं,
1: कुछ
0: मैं अकेली काफी हूँ आलू के लिए, लोगों की मुझे कोई जरूरत नहीं है इसमें। अकेला आया इंसान अकेला जाएगा, चाहे आलू की बात हो चाहे
1: इसकी रेसिपी आज तक आपने किसी के साथ शेयर की है, ये जो आलू आप इतने लजीज और
0: नहीं।
1: कमाल के बनाती हैं, मतलब
0: ये इतनी
1: लोग रोटी भूल जाते हैं, सालन ही खा के
0: ये तो
1: बस फारिग हो
0: इतनी
1: जाते
0: तारीफ आप चार छह की कर रहे होते ना
1: हैं।
0: तो इसलिए
1: अच्छा, ये भी
0: अभी
1: आपकी बड़ी खुशफहमी है कि आप समझ रही हैं कि मैं तारीफ कर रहा
0: जी खुशफहमी में जीना चाहिए, थोड़ी देर के लिए इंसान खुश रहता है ना,
1: खुश रहता थोड़ी देर के लिए।
0: अपने लिए भी तो जिए ना इंसान,
1: लो जी,
0: मतलब
1: सीरियस नोट,
0: क्या।
1: सीरियस नोट पे मैं बात करता हूं, मैं अपने सुनने वालों से ये बात कर रहा हूं कि अगर आपने दुनिया के बेहतरीन आलू खाने हैं, दुनिया के, मैं कंपैरिजन ओंटेरियो से या कनाडा से या नॉर्थ अमेरिका से नहीं कर रहा, वर्ल्ड्स बेस्ट आलू मेड बाय शिवानी,
0: थैंक यू सो मच।
1: हाँ बहुत अच्छा बनाती हैं आप।
0: आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स ऑलमाइटी फॉर दिस अवार्ड।
1: बेस्ट आलू को अवार्ड, राइट, गोज टू शिवानी,
0: बेस्ट
1: राइट।
0: बेस्ट आलू आलू सालन अवार्ड, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नहीं, यू यू यू मेक देम विद ऑल योर हार्ट एंड सोल,
0: थैंक यू।
1: उसके पीछे आपका दिल छुपा हुआ होता है और आपकी फीलिंग्स छुपी हुई होती हैं। मैंने 2 बार खाए हैं पिछले कोई तकरीबन 3.5 साल में, मेरी बारी 2 बार आई, मतलब इतने रेयर हैं वो आलू।
0: थैंक यू सो मच,
1: यू आर ऑलवेज वेलकम।

0: Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday.
1: क्या आप ओंटारियो में अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं? वो भी पूरी तरह से कानूनी और बेफिक्र होके? विवेक गुप्ता, जो 2012 से अपनी इंजीनियरिंग टीम के साथ लीगल बेसमेंट, मल्टी यूनिट कन्वर्जन, कमर्शियल परमिट और बिल्डिंग अप्रूवल के काम में लोगों की मदद कर रहे हैं। होम एक्सटेंशन जैसे पूल, डेक या गराज बनवाना हो या कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट, डॉक्यूमेंटेशन और परमिट के लिए अभी कीजिए बात। विवेक गुप्ता हर पल आपके साथ। कॉल 6479731733। फ्री कंसल्टेशन के लिए कॉल 6479731733।
2: घर लेना हो या करना हो रीफाइनेंस, अब मॉर्गेज की टेंशन को बोलो गुडबाय इन एडवांस। पहला मॉर्गेज हो या सेकंड मॉर्गेज का काम, सुखी कौर के साथ मिलेगा आसान समाधान। सेम डे क्लोजिंग हो या लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए, हर मॉर्गेज सॉल्यूशन के लिए बस एक कॉल कीजिए। 5% हो, 10% हो या 15% डाउन पेमेंट, सही गाइडेंस के साथ आसान बने अरेंजमेंट। तो फिक्र कैसी, क्यों होना परेशान, बस सुखी को कीजिए कॉल। सुखी हैज सॉल्यूशन फॉर ऑल। बिल्कुल सही सुना आपने, सुखी कौर। कॉल 6474087066। फ्री कंसल्टेशन के लिए कॉल 6474087066।
3: सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर, खानदान की पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार नब्ज देकर सेहत से जुड़ी समस्याओं को समझकर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा यहां पर इलाज किया जाता है। यहां इलाज कराने वाले लोगों को बहुत बहुत फायदा हुआ है। एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कमर या घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, राइसिस और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम का जड़ से, जी हाँ जड़ से इलाज किया जाता है। आज ही कॉल करें वैद्य रत्न पीवी राज जी को, सर्विंग फ्रॉम ब्रैम्पटन एंड स्कारब्रो। 6473278111, 6473278111।
4: साहब, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हमारे बच्चे कौन सा प्रोफेशन अपनाएंगे, क्या जिंदगी में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। हमें अपनी इतनी फिक्र नहीं होती, अपनी इतनी परेशानी नहीं होती जितनी कि हमारी बच्चों के साथ जुड़ी परेशानी होती है कि उनका करियर ऐसा हो जाए, उनका पेशा ऐसा हो जाए कि फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, यानी बाकी मानदा जिंदगी के लिए वो बेफिक्र हो जाए। तो एक शोभा ऐसा है, पिछले दिनों मैं एक लिस्ट पढ़ रहा था कि दुनिया के बेहतरीन प्रोफेशंस जो आपको सबसे ज्यादा कमाई देते हैं, उनमें सबसे टॉप का प्रोफेशन, नंबर वन प्रोफेशन न्यूरोसर्जन था, यानी तिब था, डॉक्टरी थी। इस बात में कोई शक नहीं कि अगर आपका बच्चा आज यह फैसला करे कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, 12 साल की उसके पास यहां क्वालिफिकेशन हो, साइंस सब्जेक्ट्स हो, तो ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है कि बगैर किसी बहुत बड़े टेस्ट के, बगैर किसी बहुत बड़े फॉर्मल इंटरव्यू के, वो एक कामयाब डॉक्टर बन सकता है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, एशिया, कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है। और उसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑल सेंट्स यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सलमान। वेलकम करते हैं सर आपको।
5: गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच।
4: बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए डॉक्टर सलमान। मैंने वो पेशों की लिस्ट पढ़ी तो उसमें न्यूरोसर्जन टॉप पे था। तो आज अगर कोई हमें सुन रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चे को न्यूरोसर्जन बनाना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका है?
5: अरे सब कुछ, कुछ भी क्या है, मुझे स्पेशलिटी कोई भी बच्चा ही है, कुछ भी बन सकते हैं आप। बेसिक एजुकेशन तो रहना चाहिए ना, पहले डॉक्टर MD बनना चाहिए, उसके बाद अपन कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग जो दे रहे हैं ये बेसिक MD डॉक्टर, लाइक MBBS इन अदर कंट्रीज, यहाँ पे MD कहलाता है। तो MD होने के बाद वो चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट बने या न्यूरोसर्जन बने या न्यूरोलॉजिस्ट बनना, जो भी चाहे वो बन सकते हैं।
4: बिल्कुल ठीक, ऑल सेंट्स यूनिवर्सिटी आपने कॉल करना है। मैं अभी आपको नंबर दे रहा हूं ऑल सेंट्स यूनिवर्सिटी का, यही ऑफिस है, यही दफ्तर है, यही एक छोटा सा कैंपस मौजूद है जहां थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी और आपको मेडिकल स्कूल में भेज दिया जाएगा। ये नंबर दे रहा हूं, यही मिलाइएगा आप, 416-743-9222। नंबर दोबारा बता रहे हैं, 416-743-9222। 2022। जरा सा प्रोसीजर बता दीजिए कि क्या दुनिया भर में कहीं से भी 12 साल की क्वालिफिकेशन की हो, किसी ने पाकिस्तान से, किसी ने इंडिया से, किसी ने बांग्लादेश से, किसी ने किसी और कंट्री से किया है, तो क्या वो भी एलिजिबल है इस कोर्स के लिए, यानी एमबीबीएस या एमडी के लिए?
5: यस, कहीं भी हो दुनिया में, अगर वे 12 साल का स्कूलिंग किया, कंप्लीट किया हो, दैट मींस 12 स्टैंडर्ड, और कुछ अच्छे मार्क्स किया है, कम से कम मैक्सिमम 70% ऑफ द परसेंटेज हो, और मैथमेटिक्स और इंग्लिश एंड देन साइंस सब्जेक्ट्स में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स किया हो, तो दे आर एलिजिबल फॉर ज्वाइनिंग इन आवर कोर्सेज। दिस इज एमडी व्हिच इज इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस इन अदर कंट्रीज, तो कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में।
4: कुछ लोग डॉक्टर साहब मेरे जैसे जरा सुस्त होते हैं, जो काम 10 साल पहले करना होता है वो 10 साल बाद में करते हैं, तो मैं सवाल ये कर रहा हूं कि क्या कोई गैप है अगर स्टडी में, मान लीजिए 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट की थी आज से 5 साल पहले और आज उनका जहन बना कि उन्हें डॉक्टर बनना है, वुड दैट बी पॉसिबल?
5: नो प्रॉब्लम।
4: अच्छा, बिल्कुल सही।
5: वी हैव द स्कूल से या किसी से वो ट्रांसक्रिप्ट भेजना है और किसी से टेस्टिमोनियल भेजना है और एजुकेशन कैसा था करके और उनके इंटेंशन क्या है, वे लेटर हम देते, स्टेटमेंट लेते हैं स्टूडेंट से, वे सब देख के हमारा एडमिशन डिपार्टमेंट देख के फिर उनको फाइनलाइज करते हैं।
4: बिल्कुल ठीक है। मैं एक बार फिर से नंबर दे रहा हूं, ये नंबर मिलाएं, बात करें, बच्चे का इंटरव्यू करवाएं, फॉर्मेलिटीज पूरी करें, उसे मेडिकल स्कूल भेजें, दुनिया का बेहतरीन प्रोफेशन डॉक्टरी का, मेडिकल का प्रोफेशन अपनाएं। 416-743-9222, नंबर अगेन 416-743-9222। यहां पे जो कैंपस है आपका, यहां वॉन के एरिया में है आई बिलीव, तो वहां पे क्या फॉर्मेलिटीज पूरी होती हैं? कोई बहुत बड़ा टेस्ट होता है, कोई जी नेट होता है, कोई सेट होता है, किस तरह के टेस्ट होते हैं, या सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर एक इंटरव्यू रहता है?
5: कुछ एग्जाम की जरूरत नहीं है और सिर्फ जैसे हम बताए उनके ट्रांसक्रिप्ट, उनके यूनिवर्सिटी या स्कूल से उसके मार्कशीट से सब लेना पड़ता है और पेशेंट का स्टूडेंट का स्टेटमेंट लेना है, पर्सनल स्टेटमेंट, और अगर टेस्टिमोनियल किसी का डॉक्टर या किसी से अगर मिले तो वो जोड़ के फिर अपना ऑनलाइन पे अप्लाई कर देना, तो हम लोग हमारा एडमिशन डिपार्टमेंट वो सब स्क्रूटनाइज करते हैं, स्क्रूटनाइज करके बाद फिर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। इंटरव्यू फोन पे हो सकते हैं या इन पर्सन हो सकते हैं हमारे ऑफिस में।
4: जैसा बहुत से स्टूडेंट्स भी मुझे सुन रहे होंगे जो बैक होम से आए हैं और यहाँ पढ़ रहे हैं, तो क्या अगर वो अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं?
5: Yes, why not? Anybody can...
4: बिल्कुल ठीक।
5: Yeah.
4: यहाँ नंबर है डॉक्टर सुलेमान का, ये नंबर मिलाएंगे आप 416-743-9222, नंबर दोबारा बता रहे हैं 416-743-9222। ऑल सेंट्स यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सुलेमान से भी बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुलेमान हमारे साथ निभाने के लिए आज। थैंक यू वेरी मच।
6: श्री दुर्गा माता ज्योतिष पंडित रामकृष्ण। जी हाँ, क्या आप अपने घर गृहस्थी, शादी, प्यार, जीवन, बच्चे, हेल्थ या फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर परेशान या निराश हैं? तो रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर पंडित रामकृष्ण अपने एक्यूरेट पाम रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन की सहायता से आपकी पूरी समस्याओं का समाधान बताएंगे। चाइल्डलेस कपल्स के लिए भी स्पेशल गाइडेंस है। सालों के एक्सपीरियंस से पंडित रामकृष्ण का केवल एक ही उद्देश्य है, आपकी समस्याओं को सुलझाकर आपको सही दिशा देना। अभी कॉल कीजिए पर्सनल पाम रीडिंग और कंसल्टेशन के लिए पंडित रामकृष्ण 437-882-0639, 437-882-0639।
7: मम्मा व्हाई डोंट यू गो टू वर्क नाउ?
8: बेटा तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है, एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
9: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
8: क्या वो मदद करेंगे?
9: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई, तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
10: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ, सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
9: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
10: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
4: और साहब बात करते हैं अब आपकी जिंदगी के हवाले से, तो जिंदगी कभी कभी किसी हादसे की वजह से भी हसीन हो जाती है। ऐसे लोग जिनके एक्सीडेंट्स हुए, जिनके साथ कुछ हादसात हुए, उनको कंपनसेशन मिली, यकीन मानिए उनकी जिंदगी का पैंतरा ही बदल गया, उनके हालात ही बदल गए, तब्दील हो गए मुकम्मल तौर पर, लॉस ऑफ इनकम भी मिला, जहनी तौर पर परेशानी रही हादसे की वजह से उसका मुआवजा भी मिला, गाड़ी में कुछ डैमेज हुआ, या तो गाड़ी की सारी ही राइड ऑफ होने के बाद नहीं मिली या उसके एवज मुआवजा उनको दिया गया। इसके अलावा तर्ज जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए थेरेपीज, मसाज थेरेपीज, इन पर्सन साइकोलॉजिस्ट के साथ थेरेपीज अलग से हुई। यानी आपको चाहिए एक कामयाब, बेहतरीन और बाकमाल वकील जो आपको रिप्रेजेंट करे अच्छे तरीके से और आपको बेहतरीन कंपनसेशन दिलाए, और वो वकील इस वक्त हमारा साथ निभा रहे हैं, कमाल की शख्सियत हैं, आपके लिए लड़ते हैं, बेहतरीन कंपनसेशन दिलाते हैं, वन एंड ओनली सैयद एम रजा बैरिस्टर। वेलकम करते हैं सर आपको।
11: के रेडियो प्रोग्राम का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का कि मैं आपके लिस्नर से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं और हम उन्हें ये बताएं, जैसा आपने भी बताया कि इंजरी क्लेम करना क्यों जरूरी होता है। आपने बड़ा अच्छी तरीके से डिफाइन किया, लगता है आपको काफी एक्सपीरियंस है ये तमाम बेनिफिट लेने का।
4: मैं आपको वैसे बता दूं, आपसे जिन लोगों ने इस्तिफादा हासिल किया, फायदा लिया, बेनिफिट्स लिए, वो मुझे अक्सर फीडबैक देते रहते हैं और अपनी सारी कहानी सुनाते हैं, इसलिए मुझे मालूम है कि आप लोगों का काम करवा देते
11: हैं। हाँ जी हाँ, ये आपकी मेहरबानी है कि आप लोगों को हमारे पास भेजते रहते हैं, जो भी आपको जो है वो मिलता है तो वो आपको फीडबैक देते हैं, तो मुझे खुशी है कि वो अच्छा फीडबैक हमारे बारे में देते हैं, तो ये आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो तुफैल भाई, थोड़ा सा ये बता दें कि इंजरी क्लेम करना क्यों जरूरी होता हैगा और किस तरह से किया जाए। पहली बात, ये इंजरी क्लेम करना इसलिए जरूरी होता है जो ये सारे आपने बेनिफिट्स बताए इसके लिए, और टाइमली करना जरूरी जो होता है वो इसलिए होता है कि अगर आप टाइमली क्लेम नहीं करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम डिनाई कर सकती है। कि जिसको हम एक्सीडेंट बेनिफिट्स का क्लेम करते हैं, आपने 7 डेज के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को रिपोर्ट करना है और 30 डेज के अंदर अंदर आपके पेपर्स इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाने चाहिए ताकि वो आपके क्लेम को एडजस्ट कर सकें, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकें और आपको जो भी नीड्स हैं आपकी फुलफिल कर सकें। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि अक्सर लोग जो है वो लॉयर से डिस्कस किए बगैर इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के हेल्थ एडजस्टर को कॉल करते हैं और वो उनकी थोड़ी बहुत स्टोरी सुन के उनको कहते हैं कि जी ये फिजियोथेरेपी सेंटर है, आप यहाँ पे चले जाओ, वो आपको ट्रीटमेंट देंगे। वो बेचारे लोग जो है वो वहां पे चले जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के डेजिग्नेटेड फिजियोथेरेपी सेंटर पे और उसका नतीजा जो है वो आखिर में बहुत बुरा निकलता है। रीजन ये है कि नंबर वन, इंश्योरेंस कंपनी जो है इस बात की अथोराइज नहीं है कि वो आपको अपने डेजिग्नेटेड फिजियो सेंटर पे भेजे, वो इसलिए कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि वही उस फिजियो को पे कर रही है और वही उसको जो है उससे काम ले रही है।
4: बिल्कुल ठीक है,
11: कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसमें जाहिर ही बात है जो फिजियोथेरेपी वाले हैं क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन बिजनेस प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, तो वो जो है वो क्लाइंट ज्यादा इंजर्ड पर्सन के साथ फेवर करने के, दे विल ट्राई टू अपीज द इंश्योरेंस कंपनी टू ट्राई टू मिनिमाइज द इंजरीज, और जो है ताकि बिलिंग कम से कम हो उस क्लेम पे, और इंश्योरेंस कंपनी के आगे वो सुरखुरी हो के देखे जी हमने आपका क्लेम को जितने कितने कम अमाउंट में हमने आपको खत्म करा दिया। तो आमतौर पर जो एक्सपीरियंस देखा गया है, लोग मेरे पास आते हैं कहते हैं जी उन्होंने हमें 2200 का ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद उन्होंने कहा फर्दर ट्रीटमेंट तुम्हारा खत्म है, बिल्कुल अब तुम बिल्कुल सही हो गए हो, यू आर फिट 100%, और जो

0: फॉल्ट नहीं थे, जो आप सू करेंगे अदर ड्राइवर को, तो अगर आपका क्लेम विद इन माइनर इंजरी में एक्सीडेंट बेनिफिट क्लेम खत्म हो गया आएगा, तो यकीन माने आपके पास सू करने को आगे कुछ नहीं बचा आएगा। वो इसलिए कि जो अदर एविडेंस है वो ये कहेंगे भाई ये तो तुम्हारा क्लेम ही माइनर इंजरी का था 3500 और ये इंश्योरेंस कंपनी का रिकॉर्ड है, ये कह रही है तुम सही हो गए, तो अब किस बात का क्लेम यहाँ पर लेकर आए हो तुम हमारे पास। तो ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो है वो डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी आपके हेल्थ जो क्लेम हैगा, इंजरी का क्लेम हैगा जिसे हम कहते हैं, आप डायरेक्टली डील करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, और कभी भी इंश्योरेंस कंपनी के बताए हुए फिजियोथेरेपी सेंटर पर जाने की कोशिश ना करें। तो इसलिए कि वो इससे खुश नहीं होंगे, वो कहेंगे कि यार ये अच्छा बंदा हैगा, ये हमारे तरफ से काम कर रहा है, चलो इसका केस जल्दी से बंद करो। वो आपसे खुश नहीं होंगे, आप कोई गुड बॉय नहीं बन जाएंगे, वो कोई आपको उसमें इंश्योरेंस में कोई आपको नेक्स्ट ईयर जो रिन्यू होगा कोई आपको उसमें वो रिडक्शन नहीं दे देंगे। रादर जो आपका क्लेम अगर जो है वो लाखों डॉलर में जाके जब आपका सेटल होगा, तो आपकी तमाम जिंदगी में जो अब आपने आने वाली जिंदगी में जो आपने प्रीमियम पे करना है उससे कई गुना ज्यादा रिकवर हो जाएगा। और जैसा आपने कहा आपकी जिंदगी के हालात हंसी खुशी, अभी 3 हफ्ते पहले की बात बताऊं, एक कपल था
1: जी
0: जो है वो आम ऑर्डिनरी पाकिस्तानी किस्म का कपल जो है, आपको पता है बहुत सारे लोग जो है वो लेबर क्लास के कपल होते हैंगे, उनको जो है वो माइनर एक्सीडेंट हुआ था, मतलब कोई इतना खास नहीं था, कोई ब्रोकन बोन नथिंग, हस्बैंड बैक टू वर्क फुल टाइम, खातून जो है उन्होंने कुछ अरसे के लिए काम रोका था, तो बहरहाल क्लेम जो है वो टोटल सेटल हुआ $300,000 में दोनों मियां बीवी का। उनके पास जो है वो आजकल के हिसाब से $1 million के घर की डाउन पेमेंट जो है वो 20% से भी ज्यादा की उनके पास आ गई।
1: सही कह रहे हैं।
0: इस मार्केट में अगर आप ये सोचें कि किसी को इतना क्लेम मिल जाए और जो वो जो 1.5 के थे जो अभी वो जो है 900,000 के हुए होंगे, तो आप समझ सकते हैंगे कि ये कितना बड़ा जो है उनके लिए जैकपॉट लग गया है।
1: जैकपॉट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: ये सारे काम आपके लिए करेगा एक ही एक कम्युनिटी की लॉ फंड सैयद लॉ, आपको सामने बिठा के, ये जो बता रहा हूँ सामने बिठा के सेटलमेंट होगा आपके साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। यही सैयद लॉ का कमाल है। लास्ट मोर देन 13 ईयर्स से सिर्फ एक ही एरिया में सर्व कर रहे हैं। यू विल फाइंड वेरी फ्यू हु विल आर सर्विंग इन ओनली वन सेगमेंट, बिकॉज यू वाई, बिकॉज वी आर ट्रांसपेरेंट, वी हैव द कम्युनिटी बैक, वी गेट बिजनेस फ्रॉम कम्युनिटी, वी गेट पीपल लाइक यू टू फेल बाई एंड अदर्स लाइक यू। कोई भी छोटा बड़ा कार एक्सीडेंट, स्लिप एंड फॉल, ट्रिप एंड फॉल, कॉल करे सैयद लॉ पर्सनल इंजरी लॉ फर्म। तो फैल भाई नंबर आप बताएंगे हमारा, ताकि आपके लिस्टनर्स हमारा नंबर नोट कर ले। थैंक यू फॉर योर टाइम।
1: ये रहेगा नंबर, ये नोट कर लीजिए, दर्ज कर लीजिए, यू मस्ट हैव दिस नंबर एट ऑल टाइम्स, क्योंकि हाथ से पूछ के बता के नहीं हुआ करते, कहीं भी हो सकता है, उस सूरत में ये नंबर आपके पास हो 416-937-5046। नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको 416-937-5046। सैयद अहमरजा बैरिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू तोफेल भाई, आपका थैंक यू।
2: It's 2:42. This is Radio Toronto Canada. Amir Ahmed Faraz साहब की शायरी, कल भी उन्हीं की शायरी थी, आज भी उन्हीं की शायरी।
1: ये शायरी वाकई बड़ी खूबसूरत लगती है, बड़ी अच्छी, बड़ी मानी खेज होती है। ये जब आप पढ़ती हैं शेर तो वो खूबसूरत हो जाता है। अभी तक मुझे ये अंदाजा नहीं हो पा रहा।
2: ये कुछ शायर ऐसे हैं जो इंडिविजुअल की प्रेस से कहीं ऊपर शायर, और अहमद फराज साहब उन्हीं से शायर।
1: इनायत
2: ना? कहते हैं बरसों के बाद देखा एक शख्स दिलरुबा सा, अब जहन में नहीं है पर नाम था भला सा।
1: वाह,
2: अब रू खिंचे खिंचे से, आंखें झुकी झुकी सी, बातें रुकी रुकी सी, लहजा थका थका सा।
1: वाह,
2: अल्फाज थे कि जुगनू आवाज के सफर में, बन जाए जंगलों में जिस तरह रास्ता सा,
1: रास्ता सा,
2: ख्वाबों में ख्वाब उसके, यादों में याद उसकी, नींदों में घुल गया हो जैसे कि रच जगा सा।
1: वाह वाह
2: पहले
1: वाह
2: भी लोग आए कितने ही जिंदगी में,
1: वाह
2: वो हर तरह से लेकिन औरों से था जुदा सा।
1: वाह वाह वाह
2: अब सच कहें तो यारों

0: वो हमको खबर नहीं थी, बन जाएगा कयामत एक वाकया जरा सा।
1: वाह।
0: हमने भी उसको देखा कल शाम इत्तेफाकन, अपना भी हाल है अब लोगों फराज का सा।
1: हमारे जो शो के प्रोड्यूसर हैं वो आपकी शायरी के फौरन बाद म्यूजिक बजा देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो मेरी बारी नहीं आने देना चाहते।
0: नहीं, उनका मतलब था कि अब काफी हो गया। अब गाना सुनाओ।
1: मेरे पास भी कुछ शेर हैं
0: जी बताइए।
1: सुनाने के लिए और बड़े खूबसूरत अशआर हैं। माजी में कुछ लोगों के साथ वक्त गुजरा तो उनके
0: अच्छा
1: नाम करते हैं,
0: अच्छा
1: आपकी इजाजत से।
0: बिल्कुल।
1: बातों बातों में बिछड़ने का इशारा करके खुद भी बहुत रोया वो हमसे किनारा करके।
0: क्या बात है।
1: सोचता रहता हूं तन्हाई में अंजाम खुलूस, फिर उसी जुर्म मोहब्बत को दोबारा करके।
0: क्या बात है।
1: जगमगा दी हैं तेरे शहर की गलियां मैंने अपने हर अश्क को पलकों पे सितारा करके।
0: क्या बात है।
1: देख लेते हैं चलो हौसला अपने दिल का, ये बीते हुए कुछ लोगों और लम्हों के नाम। देख लेते हैं चलो हौसला अपने दिल का और कुछ रोज तेरे साथ गुजारा करके।
0: क्या बात है।
1: और एक ही शहर में रहना है मगर मिलना नहीं। एक ही शहर में रहना है मगर मिलना नहीं। देखते हैं ये अजियत भी गवारा करके।
0: क्या बात है।
1: बातों बातों में बिछड़ने का इशारा करके खुद भी रोया वो बहुत हमसे किनारा करके।
0: अमेजिंग, बहुत खूब।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। It's 416-303-3639.
4: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
5: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
6: ਫॉर अमेजिंग डिजाइनर फ्रेम्स एंड डिजाइनर सनग्लासेस विजिट kandaoptical.com or call 416-922-5263। Kanda Optical, the name you can trust.
7: ख्वाब पूरा हो सकता है, आपका बच्चा भी अब डॉक्टर बन सकता है।
8: अपने बेटे या बेटी को मोस्ट अफोर्डेबल रिकॉग्नाइज्ड ऑल सेंट्स यूनिवर्सिटी डोमिनिका में इनरोल करवाएं,
7: उसे डॉक्टर बनाएं। 20 इयर्स ऑफ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, नो एमकैट रिक्वायर्ड,
8: 90% पास रेट।
7: कॉल नाउ 416-743-9222।
8: 416-743-9222
7: और विजिट allsaintsuniversity.org। All Saints University से डॉक्टर बनने के बाद आपका बच्चा अमेरिका, कनाडा, यूरोप और किसी भी मुल्क में एज अ डॉक्टर काम कर सकेगा।
9: मिनट रेडियो टोरंटो कनाडा इज द शो जो आप एंजॉय कर रही हैं, अपना पसंदीदा शो आमिर और शिवानी के साथ। बहुत प्यारा सा एक थॉट है आमिर जो मुझे किसी लिस्टर ने भेजा। कहते हैं हथेली तब भी छोटी थी, हथेली अब भी छोटी है।
10: वाह।
9: हथेली तब भी छोटी थी, हथेली अब भी छोटी है। पहले खुशियां बटोरने में चीजें छूट जाती थी, अब चीजें बटोरने में खुशियां छूट जाती,
10: खुशियां छूट जाती हैं। वाह, बहुत खूबसूरत। आप किन लोगों में उठती बैठती हैं, इतनी खूबसूरत बातें करती हैं, इतनी गहरी बातें करती हैं, इतनी सियानी बातें करती हैं आप? मतलब कुछ पुरानी रूहों के साथ आपको उठना बैठना है?
9: कुछ यूं ही समझ लीजिए। और एक और बहुत प्यारा सा थॉट है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, ये कामयाब जिंदगी क्या होती,
10: क्या होती
9: है, ये सफल जीवन क्या होता है? तो वो कहते हैं कि आओ अर्जुन, हम पतंग उड़ाने चलते हैं।
10: अच्छा।
9: उन्होंने एक पतंग जहां उड़ रही थी वहां वो खड़े हुए, तो ध्यान से अर्जुन पतंग उड़ते, भगवान कृष्ण को पतंग उड़ाते हुए देख रहे थे। उसके बाद अर्जुन ने कहा कि वो भगवान कृष्ण को माधव कहते थे, तो उन्होंने कहा माधव ये धागे की वजह से ना जो पतंग है वो आजादी से उड़ नहीं पा रही है।
10: अच्छा।
9: क्योंकि आपने धागे से उसको पकड़ा हुआ,
10: पकड़ा हुआ है।
9: उसको आजाद छोड़ दीजिए।
10: ओ।
9: है ना, उसको आजाद छोड़ दीजिए, उसको किसी बंधन में मत बांधिए, उसको आजाद छोड़ दीजिए, तब वो उड़ेगी। और तो भगवान कृष्ण का ठीक है ये बात तो मैं मानता हूँ, तो मैं छोड़ दी धागा। पतंग बहुत ऊपर उड़ी, ऊपर उड़ने के बाद किसी अनजान सी जगह पर गई और किसी से टकरा के वो नीचे आके गिर गई।
10: सही।
9: तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुमने इससे कुछ सीखा, आजादी से छोड़ देने से तुमने कुछ सीखा? तो कहते हैं नहीं, बताइए। कहते हैं कि जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर हैं, हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीजें जिनसे हम बंधे हैं वो हमें ऊपर जाने से रोक रही हैं। वो चीजें घर हो सकता है, हमारी फैमिली हो सकती है, डिसिप्लिन हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे गुरु हो सकते हैं, या सोसाइटी हो सकती है।
10: ऊपर जाने से रोकने वाला मेरा ख्याल ज्यादा वजन भी हो सकता है।
9: जी बिल्कुल, ये उन्होंने मेंशन नहीं किया, या आप जैसे जो समझदार आगे पीढ़ियों में लोग आएंगे।
10: मुझे लगता है ऐसा कि मतलब यू नो वजन कम हो तो बंदा ज्यादा जल्दी उड़ता है ऊपर।
9: तो कई बार लोगों को लगता है कि ये सारी जो चीजें है ना ये हमें ऊपर जाने से रोक रही है। अगर हम इन्हें त्याग देंगे, इन्हें छोड़ देंगे, इनसे आजाद हो जाएंगे तो हम ऊपर उठ सकते हैं।
10: बिल्कुल।
9: और लेकिन वास्तव में ये वही धागे होते हैं जो हमें ऊंचाई पर रहते हुए बांधना सिखाते हैं।
10: वाह, बहुत खूबसूरत थॉट है ये। मुझे ये लगता है शिवानी कि जिंदगी जितनी छोटी है इसको उतना ही ज्यादा इंजॉय किया जाए, इससे लुत्फंदोज हुआ जाए। वो तोहफा जो कभी नहीं मिलेगा, जो लम्हा बीत जाएगा वो खत्म हो गया, कभी ना आने के लिए जाता है ये एक लम्हा। तो ये एक लम्हा जिंदगी है, ये एक लम्हा हुस्न है, ये एक लम्हा महबूब की आंखों की रोशनी है, ये एक लम्हा ढलता साया है, ये एक लम्हा रोशनी की उम्मीद है, ये एक लम्हा कामयाबी है, ये एक लम्हा ही जिंदगी है।
9: अगर ये थॉट आपके लिए थोड़ा वजनी हो गया तो मैं एक लाइट सा हार्टेड सा थॉट आपके
10: जरा श्रेड करके, थोड़ा सा श्रेड करके ना, जैसे आलू छीलती है आप, बिल्कुल इसी तरह है ये।
9: देखिए एक जो लिस्नर है वो लगता है कि अपनी वाइफ से थोड़े से तंग आ चुके हैं।
10: थोड़ा सा तंग कोई नहीं आता, या तो पूरा ही आता है या बिल्कुल नहीं आता। हम ये दरमियानी काम, दरमियाने वाला काम ना करें।
9: हम आपको दूर से बैठ के यही ज्ञान बांट सकते हैं कि एक बोरिंग सा जो लाइन कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा,
10: सब ठीक, हौसला रखो, शादी की है तो हौसला भी रखो।
9: हाँ, उन्होंने जी आमिर की नेक सलाह कि आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ये ऐसा ही होता है, सब ठीक।
10: मुझे लगता है कि जो खवातीन हैं इनको ये मादी चीजें लाती हैं जहेज में, चारपाई और दो बेड और साथ में वो पुरानी पेटी और ये सब ले गया। हमारे जमाने में ऐसा, इसलिए मैं मिसालें दे रहा हूँ क्योंकि मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, तो मैं इसी हवाले से बता दूं कि हमारे जमाने में ऐसा होता था कि तीन चार रजाइयां दी जाती थी, फिर खेस दिए जाते थे, फिर रंगले पायों वाली चारपाई दी जाती थी।
9: जी बिल्कुल,
10: ठीक है। अच्छा, आपको भी पता है उस जमाने का?
9: हाँ, उससे बहुत प्राउडली बैठा करते थे
10: और वो जो खेस होता था या जो सराहना होता था उस पर कढ़ाई की होती थी, किसी पे कबूतर बनाया हुआ है, किसी पे कुछ चील बनाई हुई है,
9: बूटे टाइप,
10: हाँ बूटे वगैरह बनाए होते थे। हमारे जमाने में इस तरह से चीजें दी जाती थी जहेज में। आजकल तो बहुत डिफरेंट हो गया है। सॉरी, मेरा ये हाथ कांप रहा है थोड़ी थोड़ा, आहिस्ता आहिस्ता ये माइक वो कहीं टच ना कर जाए, तो कांपते हुए हाथों के साथ ये मैं सारी बातें कर रहा हूँ। मैं, मेरी उम्र चूंकि 62-63 साल है, तो उस दौर में यही हुआ करता था। आज जरा मैं चीजों को देखता हूं तो मेरी आंखें चुंधिया जाती हैं कि ये भी मुमकिन है। तो मुझे लगता है कि आजकल खातून को ये सारी चीजें लाने की बजाय मर्द के लिए कुछ हौसला लाना चाहिए।
9: इसी से मिलता जुलता ये थॉट है कि ये इन्होंने बहुत बेचारियों ने प्यार से भेजा है, तो मैं पढ़ देती हूँ। वाइफ्स का डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस है वो क्या हुआ 50s से लेकर आज तक, वन लाइन में बताया उन्होंने कहा है कि 1960 में जब हस्बैंड कहता था अपनी वाइफ को देख के कि एक कप चाय,
10: अच्छा,
9: तो वाइफ पहले से ही चाय लिए खड़ी मिलती थी, कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कहने से पहले ही पता था कि
10: इतना मिजाज को समझती थी वो खवाती
9: जी आपके टाइम में।
10: हमारी
9: और 70s में हस्बैंड कहते थे एक कप चाय तो वाइफ कहती थी जी अभी लाई,
10: अभी
9: और दो मिनट में चाय आ जाती थी। 80s में वाइफ हस्बैंड कहते थे एक कप चाय तो वाइफ कहती थी चाय पीनी है, अच्छा लेकर आती हूँ।
10: हाँ,
9: थोड़ा चेंज आया,
10: थोड़ा तब्दीली आई।
9: 90s में हस्बैंड का एक कप चाय तो वाइफ कहती है ला रही हूँ, थोड़ा सब्र रखो।
10: ये तो आपका जमाना होगा ना 90s।
9: हाँ, थोड़ा सब्र रखो।
10: अच्छा।
9: और 2000 के दहाई में हस्बैंड ने कहा एक कप चाय, वाइफ कहती है लाऊंगी अभी सीरियल ड्रामा में ब्रेक,
10: ब्रेक आने दो, सही बात है।
9: 2010 की दहाई में कहा था हस्बैंड ने कहा एक कप चाय तो वाइफ कहती है शोर मत करो ला रही हूँ, इतनी जल्दी है तो खुद बना के पी लो।
10: वाह वाह,
9: आजकल के वक्त में हस्बैंड ने कहा एक कप चाय तो वाइफ ने कहा क्या कुछ कहा तुमने, तो हस्बैंड कहता है मैं चाय बनाने जा रहा था, सोचा एक कप तुम पियोगी क्या।
10: आई लाइक दैट, आई लव इट।
9: आपके जमाने,
10: आई लव इट। ये आपने जो चाय के हवाले से मुख्तलिफ मराहिल का जिक्र किया है, मुझे लगता है कि अब अगला जमाना आएगा जब चाय मुंह पे पटक दी जाएगी।
9: उसकी हो रहे क्या? बिना इंटेंसिटी हीट की देखे हुए।
10: ये मेरा ख्याल है कि जल्द आने वाला जमाना, 4-5 साल ही रह गए
9: जेन ज़ी
10: तो, हाँ, जिन जिन लोगों ने शादी करनी है, ड्यू है, वो आपकी उम्र हो गई, तो जल्दी जल्दी कर लें इससे पहले कि वो चाय पटकने का जमाना आ जाए।
9: आज करके जो बच्चे बड़े हो ये करेंगे।
10: यहां हमारे आज के शो का वक्त इख्तिताम पजीर होता है
9: जी, और इसी के साथ आपसे लेते हैं इजाजत, कल मिलने के वादे के साथ। नंबर टू रीच 4163033639। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।
10: और साहब, इस पैगाम के साथ आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। खुशी, गम, परेशानी, अजियत, तकलीफ, ये सब आपके जहन की कैफियतें हैं। अगर आपको अपनी सोचों पर मुकम्मल काबू है, दस्तरस है, रसाई है, अपनी सोचों पर काबू है,

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The opinions stated by the various contributors to Sean Express are not to be considered as endorsed by Sean Express or CMR. They represent the opinions of the individual or business in question. All information given on this radio show is for education and entertainment purpose only. Moreover, the health tips given on this radio show should be cleared with a physician or nutritionist. We make no guarantee about the accuracy of information presented on this show.
3: Attention please, Sean Express, Mahasiki Rail Gari, CMRP Station, 101.3 FM par aa chuki hai.
4: Jal mein sunane aayi, subah manane aayi, chatpate gossip ke saath masti lutane aayi. Aayi Sean Express, masti ki rail gari, aayi Sean Express, masti ki rail gari.
5: Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी,
6: एक ड्राइव इन मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स, ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आपकी ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव. Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी, ड्राइव टाइम शो विद शालिनी,
5: ब्रॉट टू यू बाय Sean Media.
7: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ शालिनी और आप लोगों का मैं वेलकम करती हूँ मस्ती की रेलगाड़ी पर. वेंसडे की दोपहर है, घड़ी में 3 बज चुके हैं और हफ्ते के बीचों बीच आपकी अपनी मस्ती की रेलगाड़ी फिर से हाजिर है आपके दिन में थोड़ा सा ज़्यादा फन और ढेर सारा म्यूजिक जोड़ने के लिए. दोस्तों, जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो चलती रहेंगी, कभी काम की टेंशन, कभी घर की, कभी वो टेंशन भी, कभी ये टेंशन भी, जिसकी असल में कोई वजह नहीं होती. इसीलिए आज का छोटा सा रिमाइंडर है, हर बात को दिल पर मत लीजिए, कुछ बातों को हंसकर टाल देना भी एक हुनर है. कहते हैं कुछ फिक्र को हवा में उड़ जाने दीजिए, कुछ पलों को बस हंस कर गुजर जाने दीजिए. हर दिन हिसाब किताब के लिए नहीं होता, कभी जिंदगी को बस जिंदगी की तरह जीने दीजिए. तो आज टेंशन को थोड़ा हल्का और स्माइल को थोड़ा बड़ा रखिए और बाकी आपकी दोपहर को म्यूजिकल बनाने की जिम्मेदारी है हमारी. मैं हूं शालिनी और आप सुन रहे हैं अपनी फेवरेट मस्ती की रेलगाड़ी CMR FM 101.3 पर. शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की ताजा खबरों के साथ, स्टे ट्यून्ड.
5: Sean Express News Bulletin brought to you by Sean Media.

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ शालिनी और आप लोगों का मैं वेलकम करती हूँ मस्ती की रेलगाड़ी पर। वेंसडे की दोपहर है, घड़ी में 3 बज चुके हैं और हफ्ते के बीचों बीच आपकी अपनी मस्ती की रेलगाड़ी फिर से हाजिर है आपके दिन में थोड़ा सा ज़्यादा फन और ढेर सारा म्यूजिक जोड़ने के लिए। दोस्तों, जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो चलती रहेंगी, कभी काम की टेंशन, कभी घर की, कभी वो टेंशन भी, कभी ये टेंशन भी, जिसकी असल में कोई वजह नहीं होती। इसीलिए आज का छोटा सा रिमाइंडर है, हर बात को दिल पर मत लीजिए, कुछ बातों को हंसकर टाल देना भी एक हुनर। GTA में रेस्पिटोरी इलनेस सीजन जल्दी शुरू। अगर इन दिनों आसपास काफ़ी लोग कॉफ, कोल्ड और स्निफल से परेशान नज़र आ रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इस साल GTA में रेस्पिटोरी इलनेस सीजन थोड़ा जल्दी शुरू होता नज़र आ रहा है। ऑन्टारियो ने हाई रिस्क ग्रुप्स के लिए फ्लू एंड कोविड वैक्सीनेशंस 28 सितंबर से शुरू कर दी थी। जनरल पब्लिक के लिए शॉट्स अक्टूबर 26 से अवेलेबल होंगे। उस दिन से 6 महीने या उससे ज़्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति फार्मेसीज, डॉक्टर्स ऑफिसर्स और पब्लिक हेल्थ यूनिट्स के थ्रू वैक्सीनेशंस ले सकेगा। अब स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट खबर। ऑन्टारियो गवर्नमेंट ने करियर कॉलेज स्टूडेंट्स की OSAP पेमेंट्स फिलहाल पॉज कर दी हैं और कुछ स्कूल्स में पॉसिबल क्रिमिनल एक्टिविटी को लेकर ऑडिट चल रहा है। करियर कॉलेजेस ऑन्टारियो का कहना है कि जो स्टूडेंट्स पहले ही फाइनेंशियल एड के लिए अप्रूव्ड हैं और इन पर्सन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उनकी फंडिंग रीस्टोर की जानी चाहिए। प्रोविंस ऑनलाइन ओनली प्राइवेट कॉलेज प्रोग्राम्स को भी आगे OSAP के लिए इन एलिजिबल बनाने की तैयारी कर रहा है। एलिजिबल कनेडियंस को नए कनाडा ग्रोसरीज एंड एसेंशियल बेनिफिट की सेकेंड पेमेंट मिलनी शुरू हो गई है। ये बेनिफिट पहले GST HST क्रेडिट के नाम से जाना जाता था और लोअर इनकम कनेडियंस को क्वार्टरली पेमेंट्स देता है। एक सिंगल पर्सन विदाउट चिल्ड्रन को सालाना मैक्सिमम $679, जबकि 4 या उससे ज़्यादा बच्चों वाले एलिजिबल हाउसहोल्ड्स को मैक्सिमम $1,826 तक मिल सकते हैं। हालांकि कुछ रेसिपिएंट्स का कहना है कि बढ़ती ग्रोसरी और हाउसहोल्ड कॉस्ट के मुकाबले ये एडिशनल सपोर्ट अभी भी काफ़ी कम पड़ रही है। एक 60 साल के कैलिफोर्निया के आदमी को क्रॉस बॉर्डर ड्रग ट्रैफिकिंग ऑपरेशन चलाने के मामले में 10 साल की प्रिजन सेंटेंस दी गई है। US अथॉरिटीज के मुताबिक अक्यूज्ड और उसके को डिफेंडेंट्स अक्रिप्टेड एप्स के जरिए ड्रग डील्स अरेंज करते थे। इन्वेस्टिगेशन में US और कैनेडियन अथॉरिटीज दोनों इन्वॉल्व रहे हैं। अब हाउसिंग से जुड़ी एक खबर। एक नए रीमैक्स सर्वे के मुताबिक 65% कैनेडियंस लार्जर या अपनी जरूरत के मुताबिक बेहतर होम अफोर्ड करने के लिए कम से कम एक कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। इसमें सिटी सेंटर से दूर रहना या ऐसा ओल्डर होम खरीदना शामिल हो सकता है जिसमें रेनोवेशंस की जरूरत हो। सर्वे का कहना है कि कई कैनेडियंस होम ओनरशिप का आइडिया छोड़ने के बजाय लोकेशन और टाइप ऑफ होम को लेकर अपनी प्रायोरिटीज बदल रहे हैं। नजर डालते हैं अब वेदर अपडेट की तरफ। आज रहेगा मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड, हाई ऑफ 23, फील होगा करीबन 24 और रात का ओवरनाइट लो जा सकता है 13 डिग्री सेंटीग्रेड। जुड़े रहिएगा 4 बजे तक मस्ती की रेलगाड़ी के साथ ऑन CMR FM 101.3। गुड आफ्टरनून।
1: शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी स्टेशन CMR 101.3 FM पर आ चुकी है। Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@seanmedia.com, shonmedia.com.

0: at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: जी दोस्तों, 905-206-1008 ये नंबर है विन लाइफ टाइम का, और ये नंबर सही मायने में आपकी जिंदगी बदल सकता है. कैसे जाने के लिए यहाँ से एक्सपीरियंस ट्रेडर एंड ट्रेनर राफे जी हमारे साथ जुड़ेंगे. राफे जी, आपका स्वागत है मस्ती की रेलगाड़ी पर. कैसे हैं आप?
2: Thank God. Thank you very much. Good afternoon to you and your listeners.
1: Good afternoon to you as well. Thank you for joining us today, Rafi ji. और बहुत सारे लोग जो आपके seminars में जाते हैं उस हवाले से भी बात करेंगे. बड़े happy होकर आते हैं और बड़े अच्छे उनके बड़ी positive बातें करते हैं Win Lifetime के लिए. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने already trading करी हुई है और उन्हें अच्छा experience नहीं रहा trading करने से. तो मैं चाहूंगी कि आज हम उन लोगों को बताएं कि क्या गलती करी, क्या उन्होंने नहीं किया जिस वजह से ट्रेडिंग उनके लिए अच्छी नहीं साबित हुई और डेफिनेटली उन्होंने विन लाइफटाइम का रुख नहीं किया है अभी. तो मैं चाहूंगी कि बताएं कि क्या गलती हम कर देते हैं कभी कभी ट्रेडिंग में.
2: प्राइमरली दो मेन चीजें हमने देखी हैं जो कुछ स्टूडेंट्स आते हैं किसी और तरफ से जिनका थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था. एक तो होता है कि सीख उनसे रहे होते हैं जो प्रोफेशनली ये काम नहीं करते. तो हमारे एक कहावत होती है कि नीम हकीम खतरा जान, के आपको कुछ आधा पता होता है आधा नहीं पता. आपको ट्रेडिंग में किसी ने डाल दिया, आपको पता ही नहीं था कि हुआ क्या और आपका नुकसान हो गया. नंबर टू, आपने ट्रेडिंग अकेले की, किसी सुपरविजन के बैठ के नहीं की. हमारा एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, दो ऑफिस हैं, 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट हैं. आज भी सुबह 9:35 पे सेशन शुरू हुआ और 9:45 पे हमारे सीईओ ने कहा कि आप लोग सारे घर जा सकते हैं और टारगेट पूरा हो गया है.
1: अच्छा.
2: तो हम लोग इसलिए बकायदा प्रोफेशनल तरीके से करते हैं. ऐसे नहीं है कि कहीं आपको किसी रेस्टोरेंट में बैठ के ट्रेडिंग सिखाएंगे. बकायदा क्लासेस होती हैं, बकायदा सॉफ्टवेयर है. तो इट्स नॉट ए वन मैन शो. तो ये दो गलतियां मोस्टली करते हैं कि सुने सुनाए किसी ने कहा ट्रेडिंग में पैसे डाल दें. ऐसे नहीं होता. नंबर टू, ट्रेडिंग में हम लोग कहते हैं अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट करते.
1: वाओ, क्या बात है. तो अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट करने, आर देयर सम कंपनीज हु आर हेल्पिंग अस ग्रो आवर बिजनेस एट विन?
2: जी एब्सोल्युटली. बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके पास बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो हाफ अ मिलियन डॉलर नॉर्मली अवेलेबल पड़ा होता है. वो कोई रिस्क नहीं है सारे का, सिर्फ उनको ट्रेडर्स चाहिए जो सॉफ्टवेयर जानते हो. तो वो सारे का सारा रिस्क वो लेंगे और आप रिवॉर्ड आपको देंगे.
1: दैट्स अमेजिंग. तो राफी जी, जो आपका सेमिनार हो रहा है बिल्कुल फ्री सेमिनार दिस सैटरडे, उस हवाले से बताए हमारे लिसनर्स को कौन कौन इसमें आ सकता है और अभी कितनी सीट्स अवेलेबल है हमारे लिसनर्स के लिए.
2: लेकिन लास्ट टाइम सेमिनार किया था दूसरी लोकेशन में, तो हमने कहा था अपने पिकनिक चेयर्स रखें साथ गाड़ी में, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी उस वक्त भी. तो सेम हो जाता है, ओवरफ्लो ओवर क्राउड हो जाता है. लेकिन हम हर सैटरडे को सेमिनार करते हैं, तो कोई भी आ सकता है किसी भी बैकग्राउंड से. यू आर नेवर टू यंग टू स्टार्ट, नेवर टू अर्ली टू स्टार्ट. कभी भी आए, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी हर हफ्ते सेमिनार के साथ मिलती रहेगी.
1: वंडरफुल. तो दोस्तों, 10 नंबर के फासले पर है ये अपॉर्चुनिटी. 905-206-1008, that's 905-206-1008, winlifetime.com. राइट अवे कॉल करें और सैटरडे के सेमिनार के लिए अपनी सीट बुक करें. थैंक यू राफी जी, फिर आपसे जुड़ेंगे. ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर.
2: Thank you. Take care.
3: Jamming as much variety into your workday as possible. Radio Resync complete. Hit music. Hit after hot hit.

0: अपनी पावर ड्राइव विशॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी. अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड. फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812. 416-569-7812.
1: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par pehni nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200. 905-362-2200.
0: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
1: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
2: क्या आप अपनी लव लाइफ, मैरिज, करियर, हेल्थ या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान हैं? तो एक्यूरेट पाम रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के जरिए पाइए अपने जीवन और आने वाले वक्त को बेहतर बनाने की गाइडेंस. चाइल्डलेस कपल्स के लिए भी स्पेशल कंसल्टेशन अवेलेबल है. कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ पंडित रामकृष्ण आपकी सिचुएशन को समझकर सही गाइडेंस और सॉल्यूशंस देने का प्रयास करते हैं. अपनी पर्सनल पाम रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस के लिए आज ही कॉल करें पंडित रामकृष्ण 437-882-0639. That's 437-882-0639.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
1: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
2: ਫॉर अमेजिंग डिजाइनर फ्रेम्स एंड डिजाइनर सनग्लासेस विजिट kandaoptical.com or call 416-922-5263। Kanda Optical, the name you can trust।
3: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
4: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स।
3: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ।
4: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड, ब्रैम्पटन।
3: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल।
0: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि, भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना न भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर खानदान की पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार नब्ज देखकर सेहत से जुड़ी समस्याओं को समझकर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा यहां पर इलाज किया जाता है। यहां इलाज कराने वाले लोगों को बहुत बहुत फायदा हुआ है। एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कमर या घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, राइसिस और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम का जड़ से, जी हाँ जड़ से इलाज किया जाता है। आज जी कॉल करें वैद्य रत्न पीवी राज जी को, सर्विंग फ्रॉम ब्रैम्पटन एंड स्कार्ब्रो। 6473278111, 6473278111।
2: सालों का अनुभव है और आयुर्वेदा की जब हम बात करते हैं तो जड़ से इलाज किया जाता है। कोई भी आपको लाइलाज बीमारी हो, क्रॉनिक प्रॉब्लम हो, तो डोंट वरी, पीवी राज जी का साथ आपके साथ जुड़ सकता है। तो हम वैद्य जी का स्वागत करते हैं सबसे पहले शो पर। वैद्य जी, वेलकम टू मस्ती की रेलगाड़ी, और आपको हम हेल्थ के सोल्यूशन मास्टर भी कहते हैं। और मैं चाहूंगी हमारे लिसनर्स को बताएं कि आयुर्वेदा कैसे हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकता है, हाउ वी कैन गेट एडवांटेज फ्रॉम आयुर्वेदा।
3: आयुर्वेदा प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीने की एक कला है। मैं साजा केरला आयुर्वेदिक से वैद्य रत्नम पीवी राज हूँ। पहले हमारा सारे लिजनर्स के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हमेशा हमारा पेशेंट्स का तबीयत अच्छा रहने के लिए कुछ ना कुछ सलाह देते रहता हूँ हमेशा। प्रकृति के जो पास है रखिए उसका मान, काया कंचन कर देता है, यही है आयुर्वेदिक का ज्ञान।
2: क्या बात है।
3: अपना पुराना टाइम पे भी अपना दादाजी लोग, एल्डर पीपल भी बोलता है, तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने के लिए, क्योंकि ऐसा पानी सुबह को उठने के बाद पिएगा तो पेट साफ हो जाता है। पेट में कुछ मलिन रहता है, कुछ कचरा रहता है, कोई भी चीज़ रहता है, वो सब कुछ टॉयलेट के साथ बराबर निकल जाता है, पेट शुद्ध हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, क्योंकि हम सुबह से रात तक क्या क्या खाता है वो सब कुछ नेक्स्ट डे मॉर्निंग को पेट से ज़रूर निकाल जाना है। ऐसा रहेगा तो पेट भी शुद्ध होता है, बॉडी भी शुद्ध होता है, शरीर में इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाता है। वो पुराना टाइम पे एल्डर पीपल बोलते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, ये तो सही बात है, ठीक है ना जी। आयुर्वेदिक दवाई खाने के बाद शरीर मजबूत होगा, बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस टू बैलेंस में आ जाएगा, हार्मोन्स बैलेंस मजबूत होगा, इम्यूनिटी पावर मजबूत होगा, इतना आयुर्वेदिक में पावर है। इसीलिए पुराना टाइम पे भी सभी लोग बोलता है आयुर्वेदा लंबी आयु का वरदान है। हम इधर GTA में ब्रैम्पटन एंड स्कार्बोरो दोनों लोकेशन में रहता है। हमारा कांटेक्ट नंबर 6473278111, इट्स 6473278111। थैंक यू
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैद्यराज जी। और अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है उसमें आर्थराइटिस की बड़ी प्रॉब्लम होती है, जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ती जा रही है, लोगों के लिए आयुर्वेदा के हवाले से आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, साथ ही अपनी दूसरी आयुर्वेदिक सर्विसेज के बारे में भी हमारे लिसनर्स को बताएं।
3: आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है जी लिजनर्स के लिए। आजकल द मेन प्रॉब्लम इज आर्थराइटिस। बहुत लोगों को कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, जॉइंट पेन्स, मजल पेन्स, सायाटिका, वेरिकोस वीन्स, वो ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं होता है ना, उसका कारण से वेरिकोस वीन्स होता है टांगों में, वो कुछ लोगों को नीचे गिर जाता है, उसका कारण से उसका वजह से बॉडी पेन्स हो जाता है, रात को नींद भी नहीं आता है, बहुत दुख होता है वो लोगों को। ये पेन्स का कारण से कुछ लोगों को उठने में बैठने में बहुत तकलीफ होता है, घर में छोटा मोटा काम करने के लिए भी मन नहीं लगता है, ताकत नहीं होता है, काम भी नहीं कर सकते क्योंकि उतना वीकनेस हो जाता है बॉडी। वो लोगों को सर्जरीज होता है, नी रिप्लेसमेंट्स भी होता है, लेकिन ऐसा पेशेंट्स के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छा केरला दवाई है। हमारे पास आस्थमा के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, आर्थराइटिस के लिए, जॉइंट पेन के लिए, डायबिटीज़ के लिए, वेट लॉस के लिए, हेयर प्रॉब्लम्स के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होता है ना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, अल्सर एसिडिटी के लिए, वीकनेस के लिए, और कुछ लोगों को नींद भी बराबर नहीं मिलता है टेंशन का स्ट्रेस का कारण से भी, उसके लिए सोरियासिस होता है ना, एक्जिमा स्किन प्रॉब्लम, उसके लिए भी, फैटी लिवर के लिए भी, लेडीज़ पर्सनल इश्यूज़ के लिए, जेंट्स का पर्सनल इश्यूज़ के लिए, माइग्रेन हेडेक के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, कुछ लोगों को बच्चा नहीं मिलता है, इनफर्टिलिटी के लिए, सभी बीमारी के लिए बहुत अच्छा दवाई है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 6473278111, इट्स 6473278111।
1: 6473278111 पर दोस्तों राइट अवे वैद्यराज जी को कॉल करें और अपनी जिंदगी में खुशियां पाएं। सर्विंग यू फ्रॉम ब्रैम्पटन एंड स्कार्ब्रो। 6473278111 वैद्यराज, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।
4: पुराना गाना बनाए दीवाना, शोर एक्सप्रेस पर खोले यादों का पिटारा।
1: यादों का पिटारा खोलते हैं दोस्तों, और पुराने दौर में आपको लिए चलते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक, आनंद बख्शी के बोल, आवाज़ है लता मंगेशकर की। दिल में हो मस्ती तो मौसम सुहाना लगता है, हर छोटा सा पल भी एक फसाना लगता है। जिंदगी को थोड़ा हंसकर जी लीजिए जनाब, फिर हर दिन अपना और हर रंग प्यारा लगता है।

0: Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented drive, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@seanmedia.com, seanmedia.com.
1: हैशटैग होम्स एंड राहुल कश्यप आपके लिए लेकर आए हैं ब्रैम्पटन एंड कैलेडन बॉर्डर पर एट मेफील्ड एंड गोर फ्री होल्ड टाउन्स फ्रॉम मिड 700s, सेमीज फ्रॉम मिड 800s एंड डिटैच्ड होम्स फ्रॉम मिड 900s. मास्टर प्लान कम्युनिटी ऑफ 2500 होम्स विद क्रिकेट पिच, टेनिस, बास्केटबॉल एंड पिकलबॉल कोर्ट्स, डॉग पार्क एंड किड्स स्प्लैश पैड्स एज नेबरहुड अमेनिटीज. ओनली 10% डिपॉजिट ओवर 365 डेज एंड क्लोजिंग लेटर 2027 टू अर्ली 2028. To book your lots, call Rahul Kashyap 647-993-4844, 647-993-4844.
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we're going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Farq aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
2: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
1: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
3: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ
4: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ ਉੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ
5: ਫॉर ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263 ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦਾ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ
6: California Awning and Canopy, largest awning supplier Canada-wide. Ghar ho ya business, agar aapko chahiye patio cover, pergola, basement canopy ya retractable awnings, to aaj hi contact karein California Awning and Canopy, Brampton ka trusted naam, residential and commercial projects ke liye. Top quality materials, stylish modern designs aur competitive pricing. Chahe banwana ho sunroom ya custom canopy, har solution milta hai professional installation ke saath. Apni outdoor space ko banaiye aur zyada functional and beautiful. Call karein 416-831-4790. 416-831-4790 or visit 24 Regan Road, Brampton. California Awning and Canopy. Style bhi, protection bhi.
7: Aap sun rahe hain Sean Express on CMR FM 101.3. Sean Express. Music jo kare aapko impress.
8: वेलकम बैक टू मस्ती की रेलगाड़ी ऑन सीएमआर एफएम 101.3 और आप लोगों का शालिनी फिर से स्वागत करती है. अब दो बॉलीवुड के सितारे हैं जो अपना बर्थडे मना रहे हैं और बहुत जल्दी बताते हैं कि पहली सितारी कौन है. शी इज गॉट अ ब्यूटिफुल स्माइल एंड ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट और इनके बारे में बताएंगे और एक बहुत प्यारा सा गाना आपकी नजर करेंगे. और ये पूरा सेगमेंट स्पॉन्सर किया जा रहा है राहुल कश्यप जी के तरफ से जो हैशटैग होम्स के ब्रोकर ऑफ रेकर्ड हैं. हमारे साथ जुड़ेंगे ये स्पेशल सेगमेंट में और आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा. कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए, नहीं तो नंबर जरूर नोट कर लीजिए राहुल जी का, जहां से आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन रिगार्ड्स टू द लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स और बिल्कुल सही गलत की आप पहचान कर सकेंगे. कोई भी जगह आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो लॉयर का बिल्कुल फ्री रिव्यू के साथ आपको वो प्रोजेक्ट पहुंचाया जाएगा, यानी शुरू से लेकर एंड तक आपके साथ साथ चलेगी हैशटैग होम्स की टीम और इसीलिए वो ट्रेंड कर रही है हर तरफ. 6479934844 है नंबर, 6479934844. और एक सीक्रेट ये है कि अब राहुल जी के साथ ना कुछ हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स लेते हैं क्योंकि आज स्टूडियो में नहीं पहुंच सके राहुल जी, कल शायद हमारे साथ जुड़ेंगे लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं हॉटलाइन पर. राहुल जी वेलकम, हाउ आर यू?
9: जी शाह जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड ऑल आवर लिसनर्स.
8: थैंक यू सो मच राहुल जी एंड वी आर मिसिंग यू इन स्टूडियो टुडे.
9: जी बिल्कुल, आई वाज ऑन द वे बट आई एम स्टक इन ट्रैफिक सो आई हैड टू पुल ओवर बिकॉज आई डिडंट वांट टू मिस आवर सेगमेंट, सो आई एम एक्चुअली डूइंग इट फ्रॉम अ पार्किंग लॉट व्हिच इज फाइन बट या आई विल डेफिनेटली बी ट्राइंग टू देयर फॉर टुमारो.
8: ऑसम. इनफैक्ट ये वक्त ही ऐसा है कि जब रोड पर ट्रैफिक बहुत होता है और सब लोग ना जब आपका सेगमेंट आता है खासतौर पर तो रुक जाते हैं और देखते हैं, तो उन्हें पता था कि राहुल जी आने वाले हैं इसलिए गाड़ी लगाकर रोड ब्लॉक करती है आपकी.
9: आई सीम्स लाइक इट बट आई थिंक आई स्टिल ब्लेम फॉर वन for this because we know how the traffic is. So,
8: yes.
9: But we got to deal with this, right?
8: Okay, so that's okay. Right.
9: But so, the good part is we're not missing the segment.
8: Oh, absolutely. That's important. Logon tak aapki awaaz ja rahi hai. Bilkul crystal clear. Aapka number phir se bata dun. 6479934844. Aur jabhi bhi koi project aata hai, Rahul ji, kya reason hai ki sabse aage, sabse pehle hashtag homes ki team nazar aati hai. Guaranteed allocations ke saath. Aur project release honne se pehle hi aap allocate kar dete hai lots bhi aur units bhi. How do you do that?
9: So, Shani, basically, you know, it's our relationship that we have built over the last, you know, 10 plus years now. I've personally done it with majority of the developers out there, the sales teams out there. And, you know, that allows us to get the first foot in the door for our clients. And jahan pe allocations get through units, milte hain, but hame aur units chahiye hote hain. Uske liye agar lineup bhi lagani pade, we also do that.
8: Okay.
9: We make sure that we're in the front of the line to get the units for our clients that they desire.
8: Hmm.
9: Because at the end of the day, you know, it's to make sure the client is getting

0: क्या आप अपनी लव लाइफ, मैरिज, करियर, हेल्थ या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान हैं? तो एक्यूरेट पाम रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के जरिए पाइए अपने जीवन और आने वाले वक्त को बेहतर बनाने की गाइडेंस। चाइल्डलेस कपल्स के लिए भी स्पेशल कंसल्टेशन अवेलेबल है। कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ पंडित रामकृष्ण आपकी सिचुएशन को समझकर सही गाइडेंस और सॉल्यूशंस देने का प्रयास करते हैं। अपनी पर्सनल पाम रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस के लिए आज ही कॉल करें पंडित रामकृष्ण 4378820639। That's 4378820639। जी दोस्तों, जैसा आपने सुना पंडित रामकृष्ण जी के बारे में, हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित जी और बहुत ही रिनाउंड नेम है हमारी कम्युनिटी का। और यहाँ पर आपको पाम रीडिंग और साथ ही एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लव लाइफ, मैरिज, करियर, हेल्थ और साथ ही फाइनेंशियल मैटर से जुड़ी बहुत सारी गाइडेंस आपको मिलती है। और यहाँ पर पंडित जी आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं मस्ती की रेलगाड़ी पर।
1: थैंक यू बहन जी। मैं श्री दुर्गा माता ज्योतिष मंदिर पंडित रामकृष्ण बात करता है। सभी लोगों को भी मेरा प्रणाम है।
0: प्रणाम
1: बहन जी। और मैं आज कुछ विषय के बारे में बात करने के लिए आया।
0: बिल्कुल पंडित जी, और बहुत सारी मायनों आप इतने नॉलेजेबल हैं, इतने सालों का आपको एक्सपीरियंस है। और हम यहाँ पर अपने लिसनर्स से कहेंगे दोस्तों, कोई भी तकलीफ आपको जिंदगी में है ये नंबर डायल करें, आपको जरूर उसका सोल्यूशन मिलेगा। 4378820639। तो पंडित जी, आज हम बात करना चाहते हैं पाम रीडिंग के बारे में। तो अक्सर हम सुनते हैं कि हमारी जो हाथ की लकीरें हैं हमारे जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। तो हमारे लिसनर्स को बताएं, जो बाकी कम्युनिटी से भी ताल्लुक रखते हैं, कि पाम रीडिंग क्या होती है, किस तरह से आप किसी व्यक्ति की हथेली देखकर आप उनके पास्ट, प्रेजेंट और आने वाले वक्त के बारे में बता सकते हैं, क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है और किस तरह का सोल्यूशन आप दे सकते हैं।
1: श्योर अम्मा, ये क्या है, वो लोग का जिंदगी में दो हाथ वेरी इम्पोर्टेंट है।
0: अच्छा,
1: ये एस्ट्रोलॉजी में पाम रीडिंग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होता है बहन जी। ये चीज में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सभी रकम में चेक कर बताने के लिए सकता है, क्या चलता है, क्या चलने वाला है, क्या होने वाला है, सब कुछ बताने के लिए सकता है। वो लोग का हाथ का रेखा वेरी इम्पोर्टेंट होता है माँ। वो लोग का लाइफ में एजुकेशन, लव लाइफ एंड हस्बैंड एंड वाइफ का लाइन, और स्टार का लाइन, प्रॉपर्टी का लाइन, और बच्चों का लाइन, और वो लोग का योग क्या है, ये सभी चीज हाथ में चेक कर बताने के लिए सकता है। वो लोग का जिंदगी क्या होने वाला है, क्या प्रॉब्लम आने वाला है, और वो लोग का लक कब खोलने वाला है।
0: अच्छा।
1: सभी चीज के लिए हाथ में रेखा का कुछ विषय होता है। और फिर भी इम्पोर्टेंट थोड़ा बुक रीडिंग भी होता है, ये पुस्तक से भी थोड़ा बुक रीडिंग करने के लिए भी सकता है बेंजे। और
0: अच्छा।
1: फिर भी चेहरा में भी वो लोग का लक दिखता है, वो चेहरा में भी वो लोग का जिंदगी क्या है, वो लोग का लक क्या है, वो लोग को कैसे वो लोग को आगे जाने के लिए सकता है, ये चेहरा का रीडिंग भी करने के लिए सकता है। और जन्म कुंडली से भी वो लोग का लक खोलने के लिए सकता है।
0: अच्छा।
1: वो लोग का जिंदगी वेरी इम्पोर्टेंट क्या है, ये वो लोग का जिंदगी में क्या होने वाला है। आजकल इधर का लाइफ देखा है तो अम्मा बहुत मुश्किल से जाता है।
0: जी जी।
1: आगे का लाइफ वो लोग का जिंदगी में क्या होने वाला है, ये चीज जरूर जानना पड़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: एस्ट्रोलॉजी का वजह से 100% जाने के लिए सकता है बेन जी।
0: क्या बात है पंडित जी, बहुत अच्छी बात है। तो साथ ही एक मैसेज आया हमारे पास एक लिसनर का, वो पूछ रहे हैं कि क्या हाथ की जो लकीरें हैं वो वक्त के साथ बदलती हैं, तो अगर बदलती हैं तो क्या इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी में, हमारे फ्यूचर में कुछ बदलाव आ सकता है।
1: श्योर 100%। वो लोग का टाइम होता है, टाइम सब लोग को भी एक एक टाइम होता है बहन जी। वो ग्रह होता है, 9 ग्रह होता है, ऐसे वो लोग का वक्त भी चेंजेस होने वाला है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: अभी 2026 एक लोग को ये साल में थोड़ा कुछ रुकावट भी होता है, गुड लक भी आने वाला है, कुछ लोग को थोड़ा घर भी खरीद करने के लिए सकता है, कुछ प्रॉपर्टी भी बनाने के लिए सकता है।
0: क्या बात,
1: सभी चीज के लिए एक वक्त होता है, ये वक्त वेरी इम्पोर्टेंट होता है बहन जी।
0: बिल्कुल,
1: ये सभी कुछ देखिए माँ, आजकल हम लोग क्या चीज के लिए हम लोग कोशिश करता है, अपना फैमिली के लिए, अपना खानदान के लिए, अपना जिंदगी के लिए हम लोग कोशिश करता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग को कौन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये एस्ट्रोलॉजी का वजह से सब कुछ देखने के लिए सकता है। वो लोग का लाइफ में बच्चों का जिंदगी, फैमिली का जिंदगी, हस्बैंड एंड वाइफ का जिंदगी, घर का बारे में, वास्तु का बारे में सब कुछ वो लोग को बताने के लिए सकता है बहन जी। ये चीज में वो लोग को कोई भी कुछ तकलीफ हो गई तो भी सलूशन भी मिलता है। वो लोग 100% वो लोग के लिए कुछ नेगेटिव एनर्जी ऐसे हो गई तो भी ये चीज को भी थोड़ा कुछ दूर करने के लिए सकता है।
0: अच्छा।
1: देखिए माँ, आजकल ये दूर से हमको प्रॉब्लम नहीं आता है बहन जी।
0: अच्छा।
1: हमको प्रॉब्लम आता है ना वेरी इंपॉर्टेंट नजदीक से आता है, हमारा फैमिली से आता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: ये दूर से नहीं आता है, इसलिए वो भी थोड़ा जानना पड़ेगा। ये दूर लोग कोई भी हमको दुश्मन नहीं होता है, हमारा फैमिली में दुश्मन होता है, हमारा खानदान में दुश्मन होता है, हमारा दोस्ती लोग में दुश्मन होता है। ये चीज का वजह से बहुत नेगेटिव एनर्जी भी दिखता है और आजकल फैमिली में भी कुछ बहुत समस्या भी दिखता है बहन जी।
0: ओके जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है पंडित जी। तो बिल्कुल आपका यहाँ मैं नंबर अनाउंस कर दूं, कोई भी अगर दोस्तों आपको तकलीफ है, कोई भी इशू आपकी जिंदगी में चल रहे हैं, आपकी फैमिली लाइफ, वर्क लाइफ, बच्चों से जुड़े, आपकी सक्सेस, हेल्थ से जुड़े, स्ट्रेस आजकल है, एंग्जाइटी है, जो भी प्रॉब्लम है आपकी, तो आप ये नंबर नोट करें पंडित रामकृष्ण जी का, 4378820639। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।
1: ओके ओके बहन जी, आपको भी धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: आप सुन रहे थे शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी विद शालिनी ऑन CMR FM 101.3। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल अस ऑन 416-569-7812, 416-569-7812 और ईमेल अस एट info@shawnmedia.com। शॉन एक्सप्रेस, अ शॉन मीडिया प्रेजेंटेशन। आप सुन रहे थे शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी विद शालिनी ऑन CMR FM 101.3।

0: 101.3 with Jatin and Amitabh. Zara suniye to.
1: हाँ जी मेरे भाइयों, ये है जी 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ। हम हैं आपके दोस्त जतिन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और किंचो। मेरे भाइयों, गैस प्राइजेस से शुरुआत करते हैं। कल गैस प्राइस 1 सेंट ऊपर की ओर जाएगी, यानी कि कल गैस प्राइस रहेगी 185.9 सेंट्स पर लीटर एट लोकल गैस स्टेशंस। लेकिन रात 9 या 10 बजे के बाद यही गैस आपको 5 से 6 सेंट कम में मिल सकता है। आइए नजर करते हैं डॉलर पर। 1 कैनेडियन डॉलर इक्वल्स 67.85 इंडियन रुपीस। 1 कैनेडियन डॉलर इक्वल्स 194.94 पाकिस्तानी रुपीस। और 1 US डॉलर इक्वल्स 96.74 इंडियन रुपीस। ये है GM 101.3। हम हैं आपके दोस्त जतीन।

सुना कुछ नहीं ना? एग्जैक्टली जब आप एडवर्टाइज नहीं करते, कस्टमर्स को भी आपके बिजनेस के बारे में कुछ सुनाई नहीं देता. ब्रेक द साइलेंस.

0: नमस्कार ब्रैम्पटन, मैं बलजिंदर सिंह नहल। मैंने अपने इस शहर को बहुत करीब से देखा है। सड़कों के गड्ढों से लेकर हमारे पार्कों की हालत तक, ट्रैफिक की बढ़ती परेशानी से लेकर सिटी सेवाओं में आने वाली ढील तक, बढ़ता क्राइम और करप्शन आज हमारे शहर की बड़ी हकीकत बन चुके हैं। लेकिन याद रखिए, एक अच्छा और सुरक्षित शहर सिर्फ कागजी वादों से नहीं बल्कि जमीनी काम से बनता है। आपके ये मुद्दे सिर्फ चुनाव तक खत्म नहीं होंगे, इन्हें सिटी हॉल तक ले जाना और इनका समाधान निकालना मेरी जिम्मेदारी है। बदलाव के लिए आगे आइए, वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसिलर उम्मीदवार, वार्ड 9 और 10, ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
1: हाँ जी मित्र भाइयों, सही सुना आपने, ये है जीएम 101.3 विद ज्योति ने नमिता। अब आइए सीधे चलते हैं बलजिंदर सिंह नेहल जी के पास। हमें बहुत खुशी है कि सिटी काउंसिलर कैंडिडेट है वार्ड 9 एंड 10 इन ब्रैम्पटन। एजुकेशन और एक्सपीरियंस का जबरदस्त मेल और ब्रैम्पटन को दिल से चाहते हैं, इसलिए ब्रैम्पटन को पॉजिटिव डिरेक्शन देना चाहते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएम 101.3 में। हेलो सर, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है?
2: हेलो,
1: हाँ जी, कैसे है सर?
2: बढ़िया बढ़िया सर, तुसी दसो किवें हो?
1: वंडरफुल, वेलकम टू जीएम 101.3। सर आपका एजुकेशन एक्सपीरियंस क्या कमाल है, पहले आपके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं प्लीज।
2: हाँ जी, सत श्री अकाल जी, मैं बलजिंदर सिंह नहल वार्ड 9 and 10 दे विचों सिटी काउंसलर दी चोण लड़ रहे हां।
1: वंडरफुल, हाँ जी बताइए सर।
2: जैसे सेकंड, सॉरी मैं बाहर सी, मैं एक मिनट गड्डी च बैठ के आंदा हूँ, सॉरी।
1: हाँ जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सेफ ड्राइव। हाँ जी कहिए सर।
2: हाँ जी, मैं वार्ड 9 and 10 दे विचों सिटी काउंसलर दी चोण लड़ रहे हैं, ते मेरी ग्रेजुएशन हैगी है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ते प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ते ह्यूमन रिसोर्स दी। मैं अपना बिजनेस ट्रैकिंग दा रन कर रहे हैं, रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, ते एक ट्रक स्कूल रन करदा, ते मैं वार्ड 9 and 10 दे विच लंबे समय तो रह रहे हैं। वार्ड 9 and 10 दे विच रहंदे हां, अइयां जियां प्रॉब्लम फेस करनियां पईयां ने, लाइक जिन्हां दा हल आपां अगे आके कर सकते हैं। वार्ड 9 and 10 दे विच साडी 250 दे अराउंड फैमिली रहिंदी आ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ।
1: वंडरफुल बलजिंदर जी, आप जमीन से जुड़े हुए और ब्रैम्पटन से आप मोहब्बत करते हैं और एक पॉजिटिव डिरेक्शन देना चाहते हैं, तो आपकी प्रायोरिटीज क्या है प्लीज हमारे श्रोताओं को बताएं। हेलो सर, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है?
2: हाँ जी पहुंच रही है जी।
1: हाँ जी, आपकी प्रायोरिटीज के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि आप चुनाव जीत जाए तो क्या ब्रैम्पटन के लिए करना चाहेंगे, आपके वार्ड्स के लिए करना चाहेंगे?
2: देखो ब्रैम्पटन दे विच मैनू रहंदे जिहड़े इशू आए आ, सारे तो पहला सेफ्टी नू लेके टैक्स नू लेके, ते जिन्ने अपने जंक्शन ने वो चाहते आ भी यूनिवर्सिटी आवे। असी वार्ड 9 and 10 दे आलमोस्ट सारे ही घर कवर कर रहे हैं, डोर टू डोर गया, तो उत्थे असी लिसन किया लोगों दी प्रॉब्लम। लोग चाहते आ साडा टैक्स घट होना चाहिए, साडी सेफ्टी मस्त होनी चाहिए आ, ते जो सानू असी टैक्स पे करते हैं उन्नियां सानू सहूलत मिलनिया चाहिए ने।
1: बहुत खूब बहनर भाई, हम बलजिंदर सिंह नेहल जी से बात कर रहे हैं जो सिटी काउंसिलर कैंडिडेट है वार्ड 9 and 10 ब्रैम्पटन से। सर आपका जो मोटो है, आपका मिशन है बहुत ही जबरदस्त है और कई लोग आपके साथ वॉलंटियर के तौर पर भी जुड़ना चाहेंगे, उन्हें क्या कहेंगे?
2: हाँ जी, साडे कोई भी वॉलंटियर लाइक जो वॉलंटियर वर्क करना चाहता वो जुड़ सकता। सानू बहुत सारिया कॉल्स भी आउंदियां ने, टेक्स्ट मैसेज आउंदे आ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ 2 weeks ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਕਿ 1000 ਅਰਾਊਂਡ ਲਾਈਕ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਕ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ, ਲੋਕੀ 1500 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕੀ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ 100% ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 9 and 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਨੈਚਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਅਤੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਥੈਫਟ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲਾਈਕ ਟੈਕਸ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ।
1: ਵੰਡਰਫੁਲ।
2: So, yeah, te, like second like some people like that bhi itthe apne Brampton de vich jobs nahi hegiyan, na hi itthe koi industries hegiyan negiyan, like na itthe universities hegiyan, loki kehnde ah vi tusi inna cheezan te work karoge, inna te awaaz uthaoge, assi 101% lokan nal promise karde ah, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸੀਅਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 9 and 10 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਚ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ।
1: ਵੰਡਰਫੁਲ ਸਰ, ਆਪਕਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਔਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਕਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕੇ।
2: ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗਾ 6478060840, 647-800-0840, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗਾ 6477-09-0004। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਨ ਸਾਈਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲਾਈਕ ਟੈਕਸ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਨ ਸਾਈਨ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
1: ਵੰਡਰਫੁਲ। ਤੋ ਬੈਨਰ ਭਾਈਓ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲ ਜੀ, ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਰਡ 9 and 10 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨਸੇ ਬਾਤ ਕੀਜੀਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। 6478060840, 8060840। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ।
2: ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ,
1: ਥੈਂਕ ਯੂ।
0: बॉलीवुड की हर धड़कन अब GTA में जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ, जरा सुनिए तो।

0: 7 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रांड्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: नमस्कार, मैं हरसिमरन सिंह। हमारा ब्रैम्पटन शहर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमारी बुनियादी सुविधाएं भी उसी रफ्तार से बढ़ रही हैं? पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल सड़कें, साफ पानी और सुरक्षा सेवाओं के लिए आपकी आवाज को रीजन तक पहुंचाना ही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। मैं वार्ड 9 और 10 से रीजनल काउंसलर पद का उम्मीदवार हूँ। एक बड़े बदलाव के लिए आने वाली 26 अक्टूबर को अपना कीमती वोट हरसिमरन सिंह को दें। ऑथोराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।
2: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना न भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808।
3: ताजी सब्जियां, फ्रेश फ्रूट्स, हर तरह की ग्रोसरी आइटम्स और इंडिया से आया आपका मनपसंद सामान मिलेगा अब बेस्ट प्राइसेस पे, क्योंकि आपके अपने शहर में आ गया है अनाज मार्ट। डेली ग्रोसरी हो, चावल, दालें, आटा, देसी घी, मसाले, टी, स्नैक्स या फिर इंडियन किचन का बाकी जरूरी सामान, सब कुछ अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी और बढ़िया प्राइसेस पर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आज ही विजिट करें अनाज मार्ट, एयरपोर्ट रोड और मेफील रोड का कॉर्नर, 6141 मेफील रोड, यूनिट 42A, ब्रैम्पटन, 905-928-8557। अनाज मार्ट।

0: Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Jo specialized in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
2: नमस्कार ब्रैम्पटन, मैं बलजिंदर सिंह नहल। मैंने अपने इस शहर को बहुत करीब से देखा है। सड़कों के गड्ढों से लेकर हमारे पार्कों की हालत तक, ट्रैफिक की बढ़ती परेशानी से लेकर सिटी सेवाओं में आने वाली ढील तक, बढ़ता क्राइम और करप्शन आज हमारे शहर की बड़ी हकीकत बन चुके हैं। लेकिन याद रखिए, एक अच्छा और सुरक्षित शहर सिर्फ कागजी वादों से नहीं बल्कि जमीनी काम से बनता है। आपके ये मुद्दे सिर्फ चुनाव तक खत्म नहीं होंगे, इन्हें सिटी हॉल तक ले जाना और इनका समाधान निकालना मेरी जिम्मेदारी है। बदलाव के लिए आगे आइए, वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसिलर उम्मीदवार, वार्ड 9 और 10, ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
3: Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
4: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
3: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
5: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
6: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना न भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
7: ताजियां सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तोहाडा मनपसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते, क्योंकि तोहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मार्ट। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दालां, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स जां फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले अज ही विजिट करो अनाज मार्ट, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते, एट 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42A, ब्रैम्पटन। कॉल 905-928-8557 Anaj Mart.

0: 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: नमस्कार ब्रैम्पटन, मैं बलजिंदर सिंह नहल। मैंने अपने इस शहर को बहुत करीब से देखा है। सड़कों के गड्ढों से लेकर हमारे पार्कों की हालत तक, ट्रैफिक की बढ़ती परेशानी से लेकर सिटी सेवाओं में आने वाली ढील तक, बढ़ता क्राइम और करप्शन आज हमारे शहर की बड़ी हकीकत बन चुके हैं। लेकिन याद रखिए, एक अच्छा और सुरक्षित शहर सिर्फ कागजी वादों से नहीं बल्कि जमीनी काम से बनता है। आपके ये मुद्दे सिर्फ चुनाव तक खत्म नहीं होंगे, इन्हें सिटी हॉल तक ले जाना और इनका समाधान निकालना मेरी जिम्मेदारी है। बदलाव के लिए आगे आइए, वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसिलर उम्मीदवार, वार्ड 9 और 10, ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
2: ट्रैफिक स्लो हो सकता है लेकिन मौज मस्ती नहीं। जैम 101.3 ऑन CMR विद जतिन एंड अमिताभ, डेली फुल फन।

0: चौके छक्के और क्रिकेट का जुनून जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ। जरा सुनिए तो।
1: वेलकम बैक। क्रिकेट में आज की खास खबर, भुवनेश्वर कुमार की टीम इंडिया में वापसी। करीबन 4 साल बाद स्विंग के इस एक्सपीरियंस बॉलर को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए इंडियन स्क्वाड में जगह मिली है। भाई वाह। नवंबर 2022 में आखिरी बार इंडिया के लिए खेले भुवी ने अपनी मेहनत जारी रखी और इस साल IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए 28 विकेट लेकर सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा। 36 साल की उम्र में ये कमबैक फैंस के लिए भी एक स्पेशल मोमेंट है। नई बॉल की स्विंग, बॉलिंग में कंट्रोल और सालों का एक्सपीरियंस, अब नजरें रहेंगी भुवी के इस मौके को मैदान पर कैसा भुनाते हैं। फिलहाल स्क्वाड में वापसी हुई है, प्लेइंग 11 में मौका मिलने का इंतजार रहेगा, लेकिन कहानी खूब है। मेहनत जारी रखिए, अगला मौका कभी भी आ सकता है। मैं हूं अमिताभ एंड यू आर ट्यून्ड इन टू जैम 101.3। जरा सुनिए तो।

0: अगर फ्यूचर ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी में है आपका इंटरेस्ट, लेकिन आपको पता नहीं शुरुआत कैसे करें या इसमें सक्सेसफुल कैसे हूँ, तो कॉल कीजिए कुमार 9059294881। कुमार आपको अपनी कई सालों की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से आपको गाइड करेंगे एक्सपर्टली यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यानी आप इजिली 100 से $300 बना पाएंगे हर दिन। बस चाहिए एक फास्ट कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, टाइम, डेडिकेशन और कुमार के एक्सपर्ट गाइडेंस। टू बिकम एन एक्सपर्ट ट्रेडर कॉल 9059294881 और विजिट kumartradessolutions.com।
1: घर कहीं भी लेना

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: Time now for our special segment, Real Estate Par Charcha with P.K. Sabharwal.
4: वेलकम बैक जैम 101.3 पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमिताभ। दोस्तों, अपना पहला घर खरीदने का प्लान हो, प्रॉपर्टी बेचने का फैसला हो, इन्वेस्टमेंट का सवाल हो या फिर रिटायरमेंट में डाउनसाइजिंग की तैयारी, रियल एस्टेट हर फैमिली के लिए सिर्फ मार्केट की बात ही नहीं, जिंदगी का एक बड़ा ही अहम फाइनेंशियल डिसीजन भी होता है। और इसीलिए हर वेंसडे जैम 101.3 पर हम लेकर आते हैं जीटीए भर का एक बड़ा रिस्पेक्टेड एंड पॉपुलर टॉक शो, जिसका नाम है रियल एस्टेट पर चर्चा विद पी के सबरवाल। और हमारे इस लाइव टॉक शो में अपने कई दशकों के तजुर्बे के साथ सबरवाल जी जीटीएचए हाउसिंग मार्केट की ग्राउंड रियलिटीज, नए ट्रेंड्स और आपके प्रैक्टिकल रियल एस्टेट सवालों पर बात करते हैं और एकदम सही और सटीक मशवरा भी देते हैं। तो अगर रियल एस्टेट को लेकर आपका कोई भी सवाल है तो बस फोन उठाइए और सबरवाल जी से डायरेक्टली बात कीजिए। स्टूडियो की लाइन खुल चुकी हैं और स्टूडियो का नंबर है 416-593-0055। दैट्स 593-0055। सबरवाल जी तकरीबन 4:50 तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो आप भी इस मौके का फायदा जरूर उठाएं और तुरंत कॉल करें। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी स्पेशल रियल एस्टेट पर चर्चा विद पी के सबरवाल। सबरवाल जी, वेलकम बैक ऑन जैम 101.3। कैसे हैं आप?
5: थैंक यू वेरी मच जी अमिताभ जी, एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल आवर लिसनर्स।
4: जी सबरवाल जी, रियल एस्टेट की चर्चा है तो रियल एस्टेट की मार्केट सिचुएशन और मार्केट न्यूज क्या है आपसे बेहतर कौन जानता है, तो क्यों ना आज के प्रोग्राम की शुरुआत जैसा हम हमेशा करते हैं रियल एस्टेट की अपडेट्स के साथ करें प्लीज।
5: जी, सितंबर का महीना ट्रब की रिपोर्ट के हिसाब से बड़ा खराब निकला
4: जी,
5: और 2-3 महीने तो हो रहा था। जनवरी के बाद हम देख रहे थे अपवर्ड ट्रेंड देख रहे थे, लेकिन उसके बाद पिछले 2-3 महीने से फिर ये खराब होना शुरू हो गया
4: जी।
5: सितंबर वाज वेरी बैड, सेल्स स्लम्प्ड 5.5% इन द सिटी सेंटर एरिया
4: जी,
5: एंड 12.4% अक्रॉस 905 जो रीजन है वहां पर।
4: ओके,
5: और एवरेज सिटी सेंटर एरिया में प्राइस जो है 6.1% गिरे।
4: ओके,
5: और 905 जो एरिया है उसमें एवरेज प्राइस 12% गिर गए।
4: अच्छा,
5: कॉन्डो जो है उसका प्राइस जीटीए में 6,05,000 घट के रह गया, जो कि 24.3% ड्रॉप हुआ कंपेयर टू फरवरी 2022, जिसके बाद ये स्लम्प आना शुरू हुआ था। आपको याद होगा कि वो बिल्कुल पीक पीरियड था, उसके बाद 24.3% ये नीचे गिर गया, और जबकि ये बूमिंग मार्केट थी उस वक्त, और उससे अगर कंपेयर कर रहे हैं, और ट्रब ने ये भी रिकॉर्ड किया है 5,040 ट्रांजेक्शन हुई है थ्रू MLS सिस्टम, और जो कि 9% ड्रॉप हुआ सितंबर 2025 से, एक साल के सितंबर टू सितंबर ड्रॉप हुआ
4: जी।
5: ये माना जा रहा है कि ट्रब ये मान रहा है कि बायर जो है वो स्टिल वेट कर रहे हैं ग्रीन सिग्नल के लिए
4: जी,
5: क्योंकि उनको भी खतरा है जॉब्स का, इन्फ्लेशन का भी खतरा मंडरा रहा है
4: जी,
5: ये टाइम का खतरा भी मंडरा रहा है, और बोरिंग कॉस्ट भी कही जा रही है कि अब बढ़ती नजर आ रही है। और दूसरी तरफ सेलर्स भी पीछे हट गए हैं, क्योंकि लिस्टिंग जो है वो 14.4% कम हुई है, विच इज ए गुड साइन, लेकिन सेलर भी रुक गए हैं, कहते भी जो हो गया हो गया, इससे ज्यादा अब हमने मार नहीं खानी। ये मान लो कि एकदम से सोचा जा रहा है
4: जी।
5: सबर्स में जाके कुछ ज्यादा ही मार पड़ी है, मैं तो कहूंगा कि वहां पर जो है 10.3% गिर गया एज कम्पेयर टू इनसाइड द सिटी 4% गिरा।
4: ओके,
5: तो सबर्स में जहां पर लोग बाहर भागे थे गए थे, सस्ता पड़ रहा था
4: जी,
5: वहां पर ज्यादा मार पड़ रही है इस वक्त। ये तो थी हमारी आज रियल एस्टेट के बारे में जो जितना मैं जानता था
4: जी
5: बताया, लेकिन अब आगे क्या होगा ये कहा जा रहा है। जो छोटे कॉन्डो है ना, बिल्कुल छोटे, जिसको मैच बॉक्स, जो कभी इसी जमाने में बूम था
4: जी जी,
5: और जो मैंने भी बहुत लिए, मेरी मेजोरिटी अब मेरी बाइंग में वो आते थे सारे
4: जी,
5: अब ये कहा माना जा रहा है कि वो स्मॉलर कॉन्डोज आर नॉट जस्ट डेड, दे आर बरीड।
4: वो
5: ये माना जा रहा है कि कोई उसका बायर ही नहीं आ रहा।
4: ओके,
5: परेशानी लोगों को ये हो रही है स्मॉल कॉन्डोज वालों को
4: जी,
5: कि मान लीजिए कॉन्डो 4 लाख का था
4: जी,
5: स्टूडियो
4: जी जी
5: 300 स्क्वायर फीट का, और उन्होंने 4 लाख के ऊपर 3 लाख की मॉर्गेज ले रखी थी मान लीजिए
4: जी,
5: आज कीमत ही 3 लाख रह गई। अब वो बेच भी नहीं सकते क्योंकि जेब से देना पड़ेगा, मॉर्गेज ज्यादा, कीमत कम।
4: एग्जैक्टली
5: रख रहे हैं, जो रख पा रहे हैं वो तो रख रहे हैं, जो नहीं रख पा रहे
4: वो फंसे,
5: वो जेब से हर महीने नेगेटिविटी में जा रहे हैं, नेगेटिव कैश फ्लो में जा रहे हैं।
4: नॉट अ गुड सिचुएशन।
5: बहुत बड़ी विडंबना सी बनी हुई है, मैं इसके बारे में क्या कहूँ।
4: जी जी सबरवाल जी, इसी से जुड़ा एक और मेरा सवाल है। रिपोर्ट एक आई है जिसमें कहा गया है कि मोर देन 50% ऑफ कैनेडियंस हैव गिवन अप होप ऑफ एवर ओनिंग देयर ओन होम। ये थोड़ी निराशाजनक खबर है और मैं पढ़ के भी थोड़ा सा मेरे को काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ था कि ये क्या। आप इसे कैसे देख रहे हैं, क्या कारण है और मतलब क्यों ऐसा हो रहा है?
5: ये रिपोर्ट आई थी द होम एट व्हाट कॉस्ट करके एक रिपोर्ट आई थी
4: जी।
5: और ये इसके अंदर स्विस बैंक UBS का भी बहुत बड़ा हाथ था इस रिपोर्ट के अंदर। वो ये कह रहे हैं कि 56%
4: जी
5: ऑफ नॉन होम ओनर्स जो कैनेडियन हैं
4: जी,
5: वो कह रहे हैं कि अब हमारी जिंदगी में जीते जी हम घर नहीं ले सकते।
4: वाओ,
5: मोर देन 50%। और जबकि और डराने वाली बात ये है
4: जी
5: कि ग्लोबल एवरेज सिर्फ 23% है।
4: अच्छा,
5: ग्लोबल एवरेज जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान
4: जी जी,
5: छोटी छोटी कंट्रीज भी आ जाती है, तो बड़ी कंट्री है
4: राइट,
5: उनकी एवरेज हमसे ज्यादा बेटर है। वहां पर लोग कहते हैं झोंपड़ी में लगेंगे रहेंगे, प्रभु के गुण गाएंगे। और यहाँ पर जो है
4: जी,
5: ग्लोबल एवरेज इज 23%, जो लोग कह रहे हैं कि हम घर नहीं ले पाएंगे अपनी जिंदगी में
4: जी।
5: कनाडा में 56%। अब देखिए तो ये तो होगी डराने वाली बात
4: जी,
5: पर तसल्ली वाली बात क्या
4: जी? बिल्कुल बताइए
5: कि हम जैसी स्ट्रांग 3 कंट्रीज हो रहे हैं
4: जी,
5: जिनका हाल हमारे जैसा है।
4: अच्छा,
5: जैसे ऑस्ट्रेलिया 52% कह रहे हैं वहां पर लोग कि हम नहीं घर ले पाएंगे जिंदगी जीते जी।
4: ओके,
5: यूनाइटेड किंगडम के अंदर 50% लोग कह रहे हैं।
4: अच्छा,
5: और हमारे भाई साहब जो पड़ोस में है
4: जी,
5: उनकी कंट्री कहती है 42%।
4: ओके,
5: लेकिन रिकॉर्ड

0: बड़े बड़े घर लेंगे, बड़ा बड़ा ये लेंगे, बड़ा बड़ा वो लेंगे।
1: हाँ जी।
0: जबकि जब हम अपने देश में जाते हैं तो बड़ी बड़ी भड़के मारते हैं,
1: हाँ।
0: बड़ी बड़ी कहानियां मारते हैं, जबकि वहां पर लोग दाल चावल खा के, प्रभु का गुण गा के सुखी रह रहे हैं।
1: जी।
0: मुझे याद है मेरे फार्म हाउस के अंदर 30-35 मेरे
1: जी
0: वर्कर्स थे यूपी बिहार के
1: जी।
0: क्या वो शाम को भजन कीर्तन करते थे और दाल चावल खा के, बैंगन की सब्जी और ये वो भिंडी, मैं भाई साहब कई बार उनके साथ बैठ जाता था खाने के लिए।
1: अच्छा।
0: इतनी खुशबू आती थी और उनका म्यूजिक चाहे मुझे पूरा समझ नहीं आता था
1: जी।
0: लेकिन जो मजा आता था।
1: हाँ।
0: एक पिक्चर थी, आप तो बड़े होंगे, एक पिक्चर थी तीसरी कसम।
1: हाँ जी, हाँ जी, राज कपूर साहब की,
0: राज कपूर साहब की, जिसको शैलेंद्र ने गाने लिखे थे इसके
1: जी,
0: अंदर
1: जी।
0: उड़ उड़ बैठी चुबरिया।
1: हाँ।
0: है ना
1: जी,
0: वो जो गाने थे यूपी के।
1: हाँ।
0: मैं कहता हूँ वो मुझे जब भी गाना मैं सुनता हूँ तो मुझे अपने फार्म हाउस की याद आ जाती।
1: हाँ।
0: क्या खुश है वो लोग, क्या खुश है वो लोग। एक मैं इसको खबर थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और कोई कॉल आई तो मुझे बेशक रोक
1: लीजिएगा।
0: 2/3 ऑफ द कैनेडियंस 66%
1: जी
0: वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक बड़ी भारी फाइनेंशियल सेक्रीफाइस की है घर को बचाने के लिए।
1: अच्छा।
0: या कार बेच दी, या दो कारों की एक कार कर ली, या खर्चे कम कर दिए, कुछ कर दिया, उन्होंने सेक्रीफाइस किए,
1: हॉलीडेज में नहीं गए इस तरह के।
0: और 54% कह रहे हैं कि घर उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं,
1: जी,
0: लेंगे
1: जी।
0: 50% ये कह रहे हैं कि इनकम उनकी इतनी कम है कि वो घर के बारे में सोच नहीं सकते।
1: ओके।
0: और 41% कह रहे हैं कि डाउन पेमेंट हमारे पास हो ही नहीं सकती इकट्ठी।
1: जी जी,
0: ठीक है।
1: सबरवाल साहब, मैं आप इजाजत दें तो मैं 30 सेकंड्स लेके अपने सुनने वाले श्रोताओं से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारी चर्चा जारी है रियल एस्टेट के बारे में। हम जुड़े हुए हैं एचटीपी के सबरवाल जी के साथ। तो अगर आपका भी रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी सवाल है तो फोन उठाइए। स्टूडियो की लाइन्स फिलहाल खुली हुई है। स्टूडियो का नंबर है 4165930055। ये सुनहरा मौका है आपके लिए अपने रियल एस्टेट के किसी भी सवाल का डायरेक्ट सबरवाल जी से आंसर पाने का। तो इसको खोइए मत और कॉल अभी करिए। जी सबरवाल साहब
0: जी, तो ये मैं पढ़ रहा था, ये मेरे दिए हुए डाटा नहीं है, ये मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट, सर्वे पढ़ रहा था। उस सर्वे के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी जो कि, जिसे कहते ना, मेरे दिमाग के अंदर जहन में घुस गई सारी बातें
1: जी।
0: पिछले एक साल के अंदर 36% कैनेडियंस ने कहा है
1: जी
0: कि उन्होंने खाने के ऊपर अपना खर्चा कम कर दिया, जो बेसिक नेसेसिटी है।
1: राइट।
0: वो कह रहे हैं उसको भी, उसके ऊपर उन्होंने खर्चा कम कर दिया कि किसी तरीके से वो घर को बचा लें।
1: ओके। सबरवाल साहब, विद योर परमिशन, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो क्यों ना डायरेक्टली उनके पास चले। हेलो, आप जैम 101.3 पर लाइव है और सबरवाल जी से अपना क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड।
2: हेलो सबरवाल जी, कैसे हो आप?
0: बिल्कुल ठीक ठाक जी, कौन सा बोल रहे हैं जी?
2: मेरा नाम पार्थ है, मैं अभी 8 ईयर से ब्रैम्पटन में हाउस ओन कर रहा हूँ। आई वॉज थिंकिंग टू मूव टू ब्रैडफोर्ड, इज दैट विल बी अ गुड मूव व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द सबर्बन में प्राइसेस बहुत डाउन जा रही है।
0: जी जी जी, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए आपकी कम्यूटिंग, आपका जॉब, आपका बिजनेस सारा सूट करता है। ब्रैडफोर्ड इस वक्त बढ़ रहा है, ब्रैडफोर्ड इस वक्त आगे जा रहा है, लोग वहां पर मूव कर रहे हैं। अगर ये एक्शन लेना है तो जल्दी लो, क्योंकि फिर वही वाला हाल होगा कि किसी वक्त हैमिल्टन में लोग नहीं जाते थे, आज हैमिल्टन में लोग जाना जा ही नहीं पा रहे। राइट। तो आपकी कम्यूटिंग, आपकी जॉब, आपका बिजनेस सूट करता है?
2: हाँ।
0: हेलो।
2: हाँ जी, हाँ जी,
0: आप क्या आवाज नहीं आ रही आपको?
2: हाँ हाँ, वो कट हो रही है।
0: नहीं नहीं, आप बीच में खुद मत सुनिए ना, आप सीधा रेडियो में सुनिए प्लीज। तो मैं कह रहा हूँ पार्थ, आपकी कम्यूटिंग, जॉब, बिजनेस, ये सब कुछ आपको सूट करता है ब्रैडफोर्ड में?
2: हाँ जी, यस।
0: बस फिर क्या है, स्कूल वहां पर एक दो स्कूल बड़े अच्छे हैं, तो आप उसको आश्रय ले लीजिए। मेरे से पूछना होगा मुझे बता दीजिए, और डबल ए आता है उनका मार्क्स, मुझसे बात कर लीजिएगा। आपको अगर हेल्प चाहिए हमारी तरफ से आपको बड़ी अच्छी हेल्प मिल जाएगी, कोई कमीशन की चिंता मत करिए, वी विल हैंडल दैट।
2: ओके, थैंक यू जी।
1: थैंक यू साहब, थैंक यू फॉर द कॉल। सबरवाल जी, अगर आप इजाजत दें तो कुछ क्वेश्चन हमारी रिसर्च टीम ने बनाए हैं, हम आपसे पूछ सकते हैं?
0: जी जी, प्लीज।
1: तो पहला प्रश्न ये है सबरवाल जी, मिसिसागा में हमारा एक ऑफर इंस्पेक्शन कंडीशन के साथ एक्सेप्ट हुआ है, लेकिन सेलर दूसरे बायर्स को भी घर दिखा रहा है, ये एस्केप क्लॉज क्या होता है और कंडीशन?
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, ये तो सेलर तो दिखा सकता है।
1: अच्छा,
0: देखो मैं बताऊं क्यों।
1: जी,
0: सेलर दिखा सकता है क्योंकि अभी तक फर्म डील नहीं हुई।
1: अच्छा,
0: अभी कंडीशन थी होम इंस्पेक्शन की।
1: जी,
0: उसमें एक क्लॉज के अंदर एक लाइन लिख दी होगी शायद बायर ने,
1: जी,
0: होम इंस्पेक्शन टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द बायर।
1: ओके।
0: अब क्या होता है कि जब ये क्लॉज, जब होम इंस्पेक्शन क्लॉज के अंदर जब ये लाइन लगी

0: जाती है
1: जी,
0: तो कोई भी बहाना मार के बायर पीछे हट सकता है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि सेटिस्फेक्शन नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना।
1: राइट, इट्स सब्जेक्टिव।
0: ठीक है, उसको कहता है ये घर ले, कहता है मुझे दो कर दे दे, तब सेटिस्फेक्शन होगी।
1: राइट,
0: तो अब या तो उसको उसको काट के सेलर आगे से एक काउंटर कंडीशन डाल दे,
1: ओके,
0: प्रोवाइडेड सेलर रिफ्यूजेस टू टू कंप्लीट द डैमेजेस और टू टेक ओनरशिप ऑफ द डैमेजेस,
1: ओके,
0: तब बायर पीछे नहीं भाग सकता।
1: राइट,
0: क्योंकि वो कहेगा जी इसमें ये दक्ष नुक्स है
1: जी,
0: होम इंस्पेक्शन की रिपोर्ट के हिसाब से
1: जी,
0: और सेलर कहता है जी मैं फिक्स कर देता हूं।
1: राइट,
0: तब तो बायर पीछे भाग ही नहीं सकता।
1: यस,
0: लेकिन अगर उसने काउंटर नहीं किया सेलर ने
1: जी,
0: तो किसी बहाने से भी बायर पीछे भाग जाएगा। अब सेलर को यह भरोसा नहीं है
1: जी
0: कि ये भागेगा नहीं भागेगा, तो वो घर को दिखा सकता है पर okay. बेच नहीं सकता।
1: ओके
0: okay. दिखा सकता है सब्जेक्ट टू द कंडीशन
1: जी,
0: कि पहली ऑफर के ऊपर अगर म्यूचुअल रिलीज आ जाएगी या डील डेड हो जाएगी तो मैं आपसे डील कर लूंगा।
1: ये बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन है कि दिखा जरूर सकता है लेकिन बिना फर्स्ट ऑफर पहले वाले बायर से बात करें,
0: रिलीज हो जाए
1: जी,
0: या म्यूचुअल रिलीज हो जाए या ऑफर डेड हो जाए,
1: okay.
0: उसके बगैर वो बेच नहीं सकता। और गलती से उसने ऑफर अगर कर दी
1: जी,
0: तो बहुत बड़े बड़े लॉस सूट मैंने देखे चलते हुए, क्योंकि दो घर कहां से लाएगा बेचने के लिए।
1: राइट राइट राइट, ठीक है। एक और प्रश्न है सबरवाल जी, उनका कहना है मेरे सीनियर पेरेंट्स कनाडा में प्रॉपर्टी ओन करते हैं लेकिन अभी इंडिया में है, अगर वो वहीं से सेल कंप्लीट करना चाहें तो सिग्नेचर्स, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रिपरेशन कब शुरू करनी चाहिए?
0: इमीडिएटली शुरू कर देनी चाहिए, और लॉयर ज्यादातर मना कर देंगे जब तक उनको देखेंगे नहीं, क्योंकि फिंटर की बड़ी भारी प्रॉब्लम है इस वक्त।
1: अच्छा,
0: फ्रॉड की बड़ी भारी प्रॉब्लम है
1: जी, जी।
0: अगर उनको कोई लॉयर जानते हो और पहले से जानते होंगे
1: okay.
0: तो ठीक है, या फिर वो अगर लॉयर उनका मान जाए तो वहां पर अपने इंडियन लॉयर के सामने जूम के ऊपर ये काम हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द लॉयर ऑन द बोथ साइड।
1: ओके,
0: अदरवाइज सेलिंग में कोई प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं आती
1: जी,
0: जितनी की बाइंग में आती है।
1: राइट,
0: तो इसलिए लॉयर अपने सामने मांगते हैं आपको। सेलर के बेसिस के ऊपर, सेलर के कंडीशन के ऊपर लॉयर मान सकता है
1: जी,
0: लेकिन लॉयर को सेटिस्फेक्शन कहां से आएगी वो डिपेंड करेगा आपको कोई जानने वाला है या वो अलाउ करता है किसी को वहां पर जाके इंडिया जाके कोई लॉयर के पास बैठ के लॉयर टू लॉयर जो कि एक दूसरे को
1: पहचानते हो, काइंड ऑफ
0: पहचानते हो तो वो कर सकते हैं। अभी मेरे को याद है कि पीछे एक प्रॉब्लम आई थी मेरे को दुबई में
1: जी, जी।
0: कि वो दुबई से निकल नहीं पा रहे थे
1: जी,
0: तो लॉयर ने अपनी असिस्टेंट को दुबई भेज दिया था।
1: अच्छा,
0: और उसके असिस्टेंट ने जाके सामने उसके आईडी शाईडी देख के उसको विटनेस करके वहां से साइन करवाए थे।
1: ओके ओके,
0: यानी कि मैंने आपको बताया कि ये तरीका हो सकता है।
1: जी जी जी, ओके ठीक है, ठीक है सबरवाल साहब। अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगले 5-7 मिनट तक चलता रहेगा, तो सुनने वालों से फिर एक बार मेरा अनुरोध है कि अगर आपका भी रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी सवाल है तो लाइंस खुली हुई हैं, सबरवाल जी के साथ हमारी चर्चा चल रही है। स्टूडियो का नंबर है 416-593-0055। कुछ ही मिनट बाकी हैं तो कॉल करना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। जी सबरवाल साहब
0: जी, तो मैं वो बात कर रहा था तो फूड के ऊपर उन्होंने कम खर्च करना शुरू कर दिया। 25% जो है उन्होंने इमरजेंसी फंड जो रखे होते हैं वो भी निकाल के खर्च करने शुरू कर दिए।
1: ओके,
0: ये भी एक बहुत बड़ा, ये उस रिपोर्ट के अंदर सारी बातें आ रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि भाई कुछ ऐसे हो रहा है, इस रिपोर्ट में सारा कुछ आ रहा है।
1: ओके,
0: प्लस 40% लोगों ने क्या कर दिया, सोशल स्पेंडिंग में खर्च करना बंद कर दिया।
1: ओके,
0: सोशल स्पेंडिंग होता है इधर पार्टी उधर पार्टी, वहां पर कम कर दिया। 44% ये कह रहे हैं
1: जी
0: अनएक्सपेक्टेड सेटबैक अगर उनको एक भी लग जाता है वो घर से बेघर हो जाएंगे
1: जी,
0: जैसे जॉब
1: जी,
0: जॉब लॉस।
1: ओके,
0: अनदेखे कोई खर्चे, अनएक्सपेक्टेड कोई खर्चा आ गया घर के अंदर।
1: सबरवाल साहब, एक कॉलर हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं तो क्यों ना हम डायरेक्टली पहले उनसे बात करें। हेलो, यू आर लाइव ऑन जैम 101.3, प्लीज एड्रेस योर क्वेश्चन डायरेक्टली टू सबरवाल साहब, गो अहेड।
2: हेलो सबरवाल साहब, आप कैसे हैं जी?
0: जी सर।
2: हेलो,
0: आप जी सर, जी बताइए, आप मैं सुन रहा हूँ आपको, बताइए।
2: अच्छा, अभी एक भाई साहब ने बेडफोर्ड में मूव होने की बात बताई, वहाँ एवरेज 2500 स्क्वायर फीट की डिटेच होम की क्या प्राइस चल रही है?
0: देखिए, हाँ ये मेरे को क्वेश्चन कई बार आता है, सिर्फ 2500 डिटेच घर का मतलब नहीं होता, देखना पड़ता है बेडफोर्ड के अंदर भी कहाँ पर मेन सीट के ऊपर जा रहे हैं। अगर आप रोज
2: अच्छी जगह नया घर हो अगर वहाँ पे,
0: नया घर 2500 स्क्वायर फुट का एक हो गया। और उसी प्रकार हम नए घर के बाद 5 साल पुराने घर में नहीं जाते, सीधा 10 साल पुराने घर में जाते हैं, उसके बाद 20 साल पुराने घर में जाते हैं। तो अब क्या हुआ, अगर 2500 का डिटेच लेने जाते हैं उसके अंदर फिर एक और बात आ जाती है, सिंगल गैराज है या डबल गैराज है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाती है एक और बात, मेरी बात 2 मिनट ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगी। और एक और बात आ जाती है कि इसमें लॉट का फ्रंट कितना और डीप कितना है। तो इसलिए सिंपल आंसर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, ब्रेंटफोर्ड में आपको अगर नया घर लेना चाहोगे तो यू कैन गेट इट बिलो 1 मिलियन। अगर आप 10 साल के घर तक जाएंगे यू माइट गेट इट अराउंड 900,000। अगर आप 20 साल के घर तक जाएंगे आपको 8,50,000 तक का भी घर मिल जाएगा। ये एवरेज घर है जिसमें सारी बातें पूरी नहीं हो सकती, जैसे मैंने बताया डबल गैराज, सिंगल गैराज, लॉट का साइज और स्ट्रीट कौन सी है।
2: थैंक यू,
0: थैंक यू।
1: ऑल राइट, थैंक यू सुनील कुमार साहब आपके कॉल के लिए। सबरवाल साहब, हमारा वक्त ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लालची हैं थोड़े, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी इस हफ्ते की रियल एस्टेट टिप ऑफ द वीक क्या रहेगी हमारे लिसनर्स के लिए।
0: रियल एस्टेट व्हाट
1: टिप ऑफ द वीक?
0: टिप ऑफ द वीक ये है कि टाइम बड़ा बुरा चल रहा है, सीधी सी बात है
1: जी,
0: और इस टाइम को जो है थोड़ा सा इसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलो,
1: संयम रखें,
0: टाइम से भागने के बजाय टाइम के साथ कंधा मिला लो
1: जी।
0: कहते हैं ना एक कहावत, बड़ी बहुत मशहूर कहावत है
1: जी,
0: बोझा कभी भी आपको हर्ट नहीं करता अगर उसको ढंग से उठाया जाए।
1: दैट इज ट्रू,
0: ये आपने सुना होगा।
1: हाँ जी।
0: तो यानी कि कई बार तो बिना कुछ उठाए कमर में बल पड़ जाता है
1: जी,
0: और कई बार आप 40 किलो का वजन उठा लेते हैं ढंग से, पोस्चर आपका ठीक हो तो कमरे में बल नहीं पड़ता,
1: कायदे से काम करना जरूरी है।
0: तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप बिना घबराए आप ढंग से बैठ के प्लानिंग करें और इसको एक चैलेंज ले लें तो ये बोझा नहीं रहेगा, आप आराम से उठ के इसको एक किस्म से कह लो कि आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी
1: जी।
0: तो जैसे कहते हैं ना, अच्छा टाइम नहीं रहा तो बुरा टाइम भी नहीं रहेगा।
1: बिल्कुल।
0: तो अपने आप को जिसे कहते हैं अपने टारगेट से अलग मत करिए, प्लान करते रहिए
1: जी,
0: अच्छा वक्त फिर आएगा। आई विश यू एवरीवन गुड लक। मैं जाते जाते बता दूं, मेरा जो इंस्टाग्राम PK सबरवाल ऑफिशियल, वहां जाओगे अगर मेरे कुछ एक एक डेढ़ मिनट के कुछ मेरे छोटे छोटे वीडियोस हैं वहां से आपको मेरे बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे अगर जाओगे तो
1: जी। बिल्कुल, मैं तो फॉलो करता हूँ सबरवाल साहब, और बहुत ही मतलब रियल एस्टेट, अगर आप घर ना भी खरीद रहे हो लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मिलती है दैट इज रियली लाइक अ गोल्ड डस्ट, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें पता चलती है जो हम शायद नहीं जानते।
0: हाँ जी,
1: आई वुड डेफिनेटली एडवाइस।
0: तो ये मैं कहूंगा कि इसमें जाके आप बिल्कुल देखिए सुनिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एंड फॉर एनी रियल एस्टेट नीड यू कैन कॉन्टेक्ट मी 6472994757, अपना नाम जरूर लिखिएगा एंड विल गेट बैक टू यू जी। थैंक यू वेरी मच।
1: ऑल राइट सबरवाल जी, कम्युनिटी के रियल एस्टेट सवालों पर इतना खुलकर और सीधी बात करने के लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वेंसडे ठीक 4:25 पर ऑन आर स्पेशल सेगमेंट रियल एस्टेट पर चर्चा विद PK सबरवाल, ओनली ऑन जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ। जरा सुनिए तो, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: बॉलीवुड की हर धड़कन अब GTA में जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ, जरा सुनिए तो।
1: स्वागत एक बार फिर आप सभी का। अब चलते चलते एक रुक करते हैं बॉलीवुड की तरफ, जहां माधुरी दीक्षित ने बिग बी को उनका ही पुराना स्टेप, डांस का स्टेप याद दिला दिया। KBC पर माधुरी ने अमिताभ बच्चन को 1-2-3 के स्टेप्स करते हुए एक थ्रोबैक क्लिप दिखाई और बिग बी अपनी हंसी रोक ना पाए। वहीं अजय देवगन ने दृश्यम 4 की पॉसिबिलिटी को कम्प्लीटली रूल आउट नहीं किया है। फिलहाल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन विजय सालगांवकर की कहानी में एक और ट्विस्ट का दरवाजा खुला हुआ है जनाब। स्क्रीन पर सस्पेंस और रेडियो पर म्यूजिक का तड़का। मैं हूं अमिताभ एंड यू आर ट्यून्ड टू जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ, जरा सुनिए तो।

और जैसा कि बच्चन साहब अपने शो पे कहते हैं, समय समाप्त की घोषणा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जतिन जी और मेरी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक मुस्कुराते रहिए, ड्राइव सेफ और याद रखिए जैम 101.3 जरा सुनिए तो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।

एंड हियर वी मीट अगेन ऑन द डे जो याद दिलाता है कि कह डालो वो सारी बातें जो रखते हो तुम अपने मन में. नॉट दैट गुस्से वाली, बट वो बातें जिनसे प्यार बढ़े, दोस्ती रहे और सामने वाला हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है ये उसे कभी शोर शॉर्ट पता भी तो चले, ना कि वो अटकलों में जीता रहे. होता है ना वो गेसिंग गेम हम जो खेलते रहते हैं, ही लव्स मी नॉट, वो पत्तियां निकाल निकाल के. उसे तो अच्छा है ना कि साफ साफ कह दो, साफ साफ पूछ के निपट लो कि तू चाय की पहली चुस्की जैसा है, थोड़ा गर्म थोड़ा सूदिंग जैसा है. बिना कहे काश सब समझ लेता तू, पर चलो कह ही देते हैं कि बहुत मैटर करता है तू. Well, it's a you matter to me day, which is actually a day to convey वो सारे emotions जो अक्सर हम जता तो देते हैं अपने छोटे छोटे gestures से पर कह नहीं पाते, है ना मुंह से. Like खाना खाया गरम कर लेना, घर पहुंच के टेक्स्ट कर देना, कहाँ गायब थे, मिले ही नहीं कब से, फोन कर लेते, चाय पियोगे, सर दबा दूं, या कॉलेज में आराम से हमें प्रॉक्सी लगा दूं. एंड लिस्ट इज रियली लॉन्ग ऐसी चीजों की, यू नो, जो हमने कही है, करी है या सुनी है या दूसरों को अपने लिए करते देखा महसूस किया है, जस्ट टू कन्वे वन सिंपल इमोशन, यू मैटर टू मी, है ना. सो ऑन दिस, ठीक है भाई, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये बात तो सही है, बट डोंट अंडरएस्टिमेट दैट पावर ऑफ शब्द वाली नोट. दिस इज स्वाति एंड हैरी ऑन फिल्मी नुक्कड़ सीएमआर 101.3 एफएम पर सेइंग कि हाँ, ना दोस्ती में शब्द होते हैं ना प्यार में कोई लॉजिक, पर किसी से दिल से बस इतना कह देना कि यू मैटर टू मी, इट हैज लॉट ऑफ मैजिक. वो कह दो कल का इंतजार ना ही करो, क्योंकि भाई कह गए हैं ना शाहरुख बाबा इन द फिल्म, क्या मालूम कल हो ना हो.

ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना। अब ऐसे में सोचें, अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके 400 से 500 डॉलर्स की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू 2029 डॉलर्स, तो कितना अच्छा हो, है ना। यानी कि रेट्स भी सही मिल जाएं, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042 6478305042 विजिट filminukkad.com।
1: सिटी हॉल विच ब्रेड ब्रेडफर्ड ने तुहाडा टीटीसी किराया वधाया अते वार वार सर्विस विच कटौती की थी। उदों भी जदों उन्होंने कहा सी कि वो अजिहा नहीं करनगे, वो अपने वादियां तो मुकर गए। बिल्कुल उसे तरह जिवें उन्होंने सस्ते करा, किराया कंट्रोल, पुलिसिंग अते बाइक लेना दे मामले विच कीता। ब्रेडफर्ड कहंदे कुछ होर हन अते करदे कुछ होर, क्योंकि चोणा जित्तण लई वो कुछ भी कह सकते हन। वो इदां दे ही हन कि तुसीं सचमुच उन्हां ते भरोसा कर सकदे हो। अपने घर दे किराए लई, अपने टीटीसी किराए लई, अपनी सुरक्षा लई 26 अक्टूबर नूं फैसला तुहाडा है। Authorized by the Olivia Chow campaign.
0: क्या आप बिजनेस ओनर, ट्रक ड्राइवर या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और बैंक ने मॉर्गेज देने से मना कर दिया है? क्रेडिट स्कोर कम है या इनकम प्रूफ नहीं है? प्रॉपर्टी का अप्रेजल कम आया है और इसलिए क्लोजिंग नहीं हो रही? तो कॉल कुमार गौरव फॉर ऑल काइंड ऑफ मॉर्गेज सोल्यूशन, बीट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मॉर्गेज। बैंक हो या बी लेंडर्स, ही डील्स विद एवरीवन। प्राइवेट मॉर्गेज के लिए तो ही हैज लेंडर्स जो 48 आवर्स में क्लोजिंग करवा सकते हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव रेट्स पर। बेसमेंट बनानी है तो भी फंड्स अरेंज करा देंगे। अभी कॉल करें 6472220 94 6472220 94।
2: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888। दैट्स 9054608888।
2: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
0: अब हो जाए तैयार फॉर द 14th एडिशन ऑफ कैनेडा दिवाली राजमटर्स, जहां सेलिब्रिटी लाइनअप में होंगी इस साल रिचा शर्मा परफॉर्मिंग लाइव हर सुपरहिट सॉन्ग्स इन हर दमदार आवाज एट मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर, अक्टूबर 9, 10, 11। कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। फॉर डिटेल्स विजिट कैनेडा दिवाली डॉट।

0: 7 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: Let's turn it up.
2: Let's kick it up.

0: आज अगर कथक और रॉक में हो जाए संगम तो क्या होगा? बन जाएगा कथक रॉकर्स। सेलिब्रिटी परफॉर्मर कोरियोग्राफर कुमार शर्मा इज गोइंग टू परफॉर्म लाइव एट कैनेडा दिवाली राजमटास ऑन अक्टूबर 9, 10, 11 एट मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर। डोंट फॉरगेट टू विटनेस द मैजिकल फ्यूजन ऑफ रिदम कल्चर एंड रॉक। फॉर डिटेल्स विजिट canadadiwali.ca।
1: Fresh Breeze, new release on CMR at 5 p.m.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
3: क्या आप भी एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कमर या घुटनों में दर्द से जूझ रहे हैं, या आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, सिरोसिस जैसी किसी बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हैं? सभी बीमारियों का जड़ से इलाज करते हैं केरला वैद्य रत्न पीवी राज फ्रॉम सहज केरला आयुर्वेदा इन ब्रैम्पटन एंड स्कारबरो। ये सिर्फ नर्व्स देखकर ही सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा करते हैं। खानदानी गुण है इनके इलाज से बहुत सारे लोगों का बहुत फायदा हुआ बताया जाता है। कॉल इन टुडे एट 6473278111 6473278111।
4: फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, इट्स RJ Swati_Toronto।

0: आते हैं, छोटे बच्चों में भी स्नोरिंग वगैरह पाई जाती है। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वो हम नेजल पॉलिप्स एंड एडेनोइड्स दोनों के लिए हम हाईली रेकमेंड करते हैं, क्योंकि स्पेशलिस्ट कई बार आपको सर्जरी करवाने को कहते हैं कि यहाँ पे एडेनोइड्स भी निकाल देंगे तो साथ में टॉन्सिल्स भी निकाल देंगे। सो हमारे पास होम्योपैथी में इस तरह की मेडिसिन है जो इसके ग्रोथ को श्रिंक करती है और आप सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं।
1: ग्रेट
0: हमारे इतने सारे जो क्लाइंट्स हैं वो सर्जरी आज तक अवॉइड कर चुके हैं। सर्जरी करवाने से पहले हमारा ये जो ट्रीटमेंट है, ये ऑप्शन आप ज़रूर एक्सप्लोर करें, जिसका काफ़ी लोग बेनिफिट ले चुके हैं। सो नेजल पॉलिप से परेशान हैं, एडेनोइड से परेशान हैं, रिपीटेड कॉफ एंड कोल्ड हो रहा है, साइनोसाइटिस है, सीजनल एलर्जीज की प्रॉब्लम है या पोस्ट नेजल ड्रिपिंग की प्रॉब्लम है, कोई भी एक्यूट या क्रोनिक डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, आप काव्या होम्योकेयर से हमें ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। एंड नंबर टू कॉल इज 6477602779। थैंक यू सो मच स्वाति जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो।
1: दैट वॉज नाइस, थैंक यू मीता जी फॉर दिस जरूरी जानकारी। एंड गाइस, काव्या होम्यो केयर का नंबर अगेन 6477602779। ये थी मीता ओझा जी विद अस। एड्रेस इज 10 कोटरल बुलेवर्ड, ब्रैम्पटन। डू विजिट, डू कॉल एंड लेट योर हेल्थ गो फॉर अ गुड स्टार्ट।

सिटी हॉल विच ब्रेड रेडफोर्ड ने तुहाडा टीटीसी किराया वधाया अते वार वार सर्विस विच कटौती कीती। उदों भी जदों उन्होंने कहा सी कि वो अजिहा नहीं करनगे, वो अपने वादियां तो मुकर गए। बिल्कुल उसे तरह जिवें उन्होंने सस्ते करां, किराया कंट्रोल, पुलिसिंग अते बाइक लेना दे मामले विच कीता। ब्रेडफोर्ड कहंदे कुछ होर हन अते करदे कुछ होर, क्योंकि चोणां जित्तण लई वो कुछ भी कह सकते हैं। वो इदां दे ही हन कि तुसीं सचमुच उन्हां ते भरोसा कर सकते हो। अपने घर दे किराए लई, अपने टीटीसी किराए लई, अपनी सुरक्षा लई 26 अक्टूबर नूं फैसला तुहाडा है। Authorized by the Olivia Chow Campaign.

0: 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: थ्री इडियट्स हो या टू स्टेट्स, फिल्में तो दोनों ही हैं हमारी फेवरेट, और दोनों को ही लिखने वाले चेतन भगत से होंगी आपकी भेंट। फिल्म स्टोरीज इंस्पिरेशन सब पर करेंगे वो लाइव कॉन्वर्सेशन एट क्लासिक लीजेंस इंडियन फिल्म फेस्टिवल। सिनेमा से है प्यार तो इससे आप न कर पाएंगे इनकार। फॉर डिटेल्स विजिट mycliff.in।
2: रंगे

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवर्टाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353। And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
2: डांडिया या गरभा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना न भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
3: इस दिवाली होगी फुल ऑन मस्ती विद पंजाबी बीट्स एंड हैप्पी एनर्जी। कनाडा दिवाली राजमिटाज में लाइव परफॉर्म करेंगे अपने जसबीर जस्सी एट मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर, अक्टूबर 9, 10, 11। फॉर डिटेल्स विजिट canadadiwali.ca।

0: 5 से 8 तक बनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: एक्सक्लूसिवली पिक्ड नुक्कड़ एवरग्रीन हिट्स।

Well, that was from 80s ki Rocky. Panchayam ka music tha aur Sanjay Dutt ka debut as Rocky. Quite a rocking debut aap keh sakte hain because janta ne actually inhein bacha liya tha. But uske baad till Naam came, koi khas successful film inki nahi aayi thi. And then Sajan was a landmark and then Khalnayak and then came Vastav. Jiske liye ye kaha jata hai ki jo last scene tha na film ka, वो अब तक का इनका बेस्ट परफॉर्मेंस है एज पर हिम ओनली एक्चुअली. वेल वास्तव इज कंप्लीटेड रिलीज टुडे एंड दिस मेलोडी फ्रॉम द फिल्म बाय जतिन ललित स्टिल इज मेनीज फेवरेट.

क्या आप बिजनेस ओनर, ट्रक ड्राइवर या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और बैंक ने मॉर्गेज देने से मना कर दिया है? क्रेडिट स्कोर कम है या इनकम प्रूफ नहीं है? प्रॉपर्टी का अप्रेजल कम आया है और इसलिए क्लोजिंग नहीं हो रही? तो कॉल कुमार गौरव फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मॉर्गेज सॉल्यूशंस, बीट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मॉर्गेज. बैंक्स हो या बी लेंडर्स, ही डील्स विद एवरीवन. प्राइवेट मॉर्गेज के लिए तो ही हैज लेंडर्स जो 48 आवर्स में क्लोजिंग करवा सकते हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव रेट्स पर. बेसमेंट बनानी है तो भी फंड्स अरेंज करा देंगे. अभी कॉल करें 6472222094, 6472222094.

0: sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on, heal me.
1: To advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. your prime drive time show, call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time. अब फायदा उठाएं अक्टूबर के हॉट हॉट रेट्स का विद अमित खुराना. 5 इयर्स वेरिएबल 3.45% व्हिच इज प्राइम माइनस 1, 3 इयर्स फिक्स 4.29%, 5 इयर्स फिक्स 4.39%. साथ ही हॉट हॉट कैशबैक भी अप टू $5,600 और एक गिफ्ट कार्ड भी मिलेगा अप टू $1,500. कॉल अमित खुराना नाउ एट 647-341-2785, 647-341-2785 or visit amitkurana.ca.

0: 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: रेट्रो इन मेट्रो नुक्कड़ क्लासिक।

जब फ्लॉप मैट हिट, फिल्में डिजास्टर, गाने चार्टबस्टर। And in your flop met hits today, we have the film जो अपने नाम के अनुरूप ही निकली, मतलब बॉक्स ऑफिस पर बड़े बड़े स्टार कास्ट एंड प्रोडक्शन हाउस के लिए इट वॉज कलंक। तभी तो कहते हैं अच्छे अच्छे नाम रखने चाहिए अगर जो नाम के अनुरूप ही हो गया तो। कहानी में इसमें तीन लव स्टोरीज थी, कोई किसी को नहीं मिल सका वाली, और जो मिले कहानी में उनके बीच देयर वाज नो लव स्टोरी, बट इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स को एक अलग ही एंगल से देखा और दिखाया गया इस फिल्म में, जो कन्वेंशनल जनता को बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ। और क्रिटिक्स, वेल वो कब किसके हुए हैं, काम ही क्रिटिसाइज करना होता है, तो अच्छे से भरपूर तरीके से इस फिल्म को भी क्रिटिसिज्म मिला और फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई डिस्पाइट ऑफ ऑल ग्रैंडियर्स एंड बिग स्टार्स लाइक माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, वरुण धवन, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा। बट गाने फिल्म के कुछ जरूर हिट हुए। फिल्म देखने मतलब बेशक लोग नहीं पधारिए, बट दिस सॉन्ग गॉट अ प्लेस ऑन एवरी फंक्शन एंड एवरी स्टेज।

0: Advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: क्या आप भी एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कमर या घुटनों में दर्द से जूझ रहे हैं या आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, सिरोसिस जैसी किसी बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हैं? सभी बीमारियों का जड़ से इलाज करते हैं केरला वैद्य रत्न पीवी राज फ्रॉम सहज केरला आयुर्वेदा एंड ब्रैम्पटन एंड स्कारब्रो। ये सिर्फ नर्व्स देखकर ही सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा करते हैं। खानदानी गुण है इनके इलाज से बहुत सारे लोगों का बहुत फायदा हुआ बताया जाता है। कॉल इन टुडे एट 6473278111 6473278111।

0: सात से आठ तक बनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 647-453-5353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 647-453-5353 643-5353। And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 647-453-5353.
2: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888। दैट्स 9054608888।
2: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
1: फॉलो अस ऑन फेसबुक, फिल्मी नुक्कड़, इट्स द फ्री टाइम।

0: क्या आप बिजनेस ओनर, ट्रक ड्राइवर या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और बैंक ने मॉर्गेज देने से मना कर दिया है? क्रेडिट स्कोर कम है या इनकम प्रूफ नहीं है? प्रॉपर्टी का अप्रेजल कम आया है और इसलिए क्लोजिंग नहीं हो रही? तो कॉल कुमार गौरव फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मॉर्गेज सॉल्यूशंस, बीट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मॉर्गेज. बैंक्स हो या बी लेंडर्स, ही डील्स विद एवरीवन. प्राइवेट मॉर्गेज के लिए तो ही हैज लेंडर्स जो 48 आवर्स में क्लोजिंग करवा सकते हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव रेट्स पर. बेसमेंट बनानी है तो भी फंड्स अरेंज करा देंगे. अभी कॉल करें
1: 6472229 4, 6472229 4.
2: फॉर्मूला फिट फर्म हिट on CMR at 5 PM.
3: आरजे स्वाति एंड हासिल के साथ आप सुन रहे हैं CMR at 5 फिल्मी नुकर on 101.3 FM. अच्छा, इफ यू हैव नोटिस्ड फ्रॉम 1934 की क्लार्क गेबल एंड क्लोडेट गोल्डबर्ग की चार ऑस्कर्स जीतने वाली पहली फिल्म इट हैपेंड वन नाइट टू 1991 when Mahesh Bhatt ne utha li ye puri film, scene to scene copied, dialogue to dialogue translated, just made it more Indianized for our desi audience with Aamir Khan and Pooja Bhatt, aur dale khoobsurat se gaane and bana dali dil hai ki मानता नहीं. हालांकि इस बीच 1956 राज कपूर और नरगिस की चोरी चोरी आई एंड 1958 में देवानंद एंड वहीदा रहमान की 16 साल भी आई एंड दीज टू वर आल्सो इंस्पायर्ड, नॉट कॉपीड एग्जैक्टली फ्रॉम दिस हॉलीवुड फिल्म. पर आई गेस महेश भट्ट ज्यादा सीरियसली इंस्पायर हो गए थे कि पूरे का पूरा कॉपी मार डाला. वेल, एक बात तय है, फॉर्मूला था फिट तो ये सारी फिल्में रही सुपरहिट.

पे हमसे rjswati_toronto के अंडर में जुड़ सकते हैं. दैट्स माई हैंडल एट ऑल द सोशल मीडिया प्लेसेस. कई बार आप कोई विन जीतते हैं उसके बारे में बात करने, किसी स्पॉन्सर की कोई डिटेल चाहिए होती है, कोई फीडबैक देना है, और इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे कई बार मैं कुछ अलग अलग चीजें पोस्ट करती रहती हूँ. कॉन्टेस्ट होते हैं, बहुत सारे क्विजेस चलते रहते हैं, एंड देयर इज अ डिफरेंट स्टफ जो सोशल मीडिया पे हम लोग डालते हैं. तो इट्स इन्फॉर्मेटिव, इट्स एंटरटेनिंग, एंड इट्स गुड टू कनेक्ट देयर एज वेल, है ना. फैमिली है तो वहीं पे कनेक्ट होना भी अच्छा लगता है. सिर्फ 5 से 7 का इंतजार हमें रोज नहीं करना पड़ेगा एक दूसरे से मिलने के लिए. तो इट्स वेरी इजी टू स्टे कनेक्टेड थ्रू सोशल मीडिया. तो याद रखें rjswati_toronto. एंड इफ यू वॉन्ट टू बी अ स्पॉन्सर ऑन द शो, आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को हम करें प्रमोट, इसका फिल्मी नुक्कड़ फैमिली का स्पॉन्सरशिप्स का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल पर. माई नंबर इज 6478305042. That's 6478305042.

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कर। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042 6478305042। विजिट filminukkar.com।
1: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना न भूलें। आइए इंडिया सजा

टैन पूजा हट और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल हैं। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: टाइम्स नेशनल अवार्ड विनर पल्लवी जोशी से सीखे एक्टिंग के गुण और जाने सिनेमा की कहानी उनकी जुबानी इन अ स्पेशल कॉन्वर्सेशन विद हर एट क्लासिक लीजेंड्स इंडियन फिल्म फेस्टिवल। फॉर डिटेल्स विजिट myclif.in।
3: घर कहीं भी लेना हो या

वेल स्लोली स्लोली ये थे गुरु रंधावा पिटबुल के साथ। और फिलहाल अगला गाना मैं क्यों बजा के यहाँ से निकलना चाहती हूँ वो इसलिए कि गाना बहुत प्यारा है, जाने का वक्त हो गया है। और दूसरी बात ये कि आज उषा खन्ना का जन्मदिन भी है जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक कंपोजर रही है, बहुत ही जानी पहचानी और फीमेल म्यूजिक कंपोजर्स के नाम पे जो गिनी चुनी रही है उनमें से पहली तीन में से ये आती है। तो दिस इज स्वाति साइनिंग ऑफ ऑन दिस नोट, मिलते हैं फिर कल।

0: FM.
1: न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट. फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861.
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो. पेश खिदमत है सबसे पहले हेडलाइंस. DGISPR ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी दस्तों की मौजूदगी की तस्दीक कर दी. IMF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल. स्टाफ लेवल मुआहदा जल्द तय पा जाने का इम्कान. वज़ीर-ए-आज़म से अक़वामे मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस की मुलाकात. वज़ीर-ए-आज़म का मसले कश्मीर के पुरअमन हल की जरूरत पर जोर. पीपल्स पार्टी रहनुमा फारूक एच नायक जुडिशियल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी. पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को नामजद कर दिया. PTI की सूबाई हुकूमत के दहशत गर्दों से मिली भगत के शवाहिद मौजूद हैं. वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ. जब तक वजीर आला हूँ खैबर पख्तूनख्वा में फौजी ऑपरेशन नहीं होने दूंगा. सुहेल अफरीदी का लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब. पाकिस्तान अंडर 19 टीम के साबिक कप्तान हसन खान अमरीकी स्क्वाड में शामिल हो गए. ये थी अब तक की खास खास खबरें. खबरों की तफसील होगी ठीक 8 बजे. सुनते रहिए रेडियो पाकिस्तान टोरंटो.
3: खास खबरें आपके लिए बिलाज़मान साहब पेश किया करते हैं. स्टूडियोज में रबते के नंबर 4165930003. गैलेक्सी इंटरनेशनल एक्सचेंज का आज का रेट है 193.25 रुपये. डेबिट और ईमेल ट्रांसफर के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. पाकिस्तान के किसी बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर लीजिए. वहाँ अकाउंट नहीं है, कैश या बैंक डॉट भी हासिल कर सकते हैं. घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए. gondalbrothers.com पर आप लॉग इन हो जाइए. आज का रेट है 193.25 रुपये. कॉल कर लीजिए 9053060000. वेंसडे है आज. राजीव तलवार साहब मॉर्गेज की मालूमात लेकर आया करते हैं. आशा मनोवर साहब एडेट कॉन्सलेशन के बारे से गुफ्तगू करेंगी. ICICI इमिग्रेशन से हमारे साथ होंगे आज MD भाई और कोशिश करेंगे केयर इंश्योरेंस से आरिफ शेख साहब से भी आपकी मुलाकात करवाएं. तफसीली खबरें 8 बजे. लाइव कॉल आपके लेंगे तकरीबन 8:30 बजे के करीब. और भी कुछ मौजूद हमारी और आपकी बातें, लेकिन ये सबको सुनने के लिए हमारे साथ रहना है अब से 9 बजे तक. मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ. मेरे शेर प्यारे सामिन, अल्लाह रब करीम को पाने के हज़ारों अंदाज हो सकते हैं. अदब शर्त है, अदब होना बहुत ज़रूरी है. तौबा कर ली जाए तो एक अच्छे वक्त का आगाज़ हो सकता है. उम्र 100 कर गुजारी है, अब बकिया कम से कम बेदार रहने की तमन्ना में गुजारी जाए कि अगर सिर्फ इंसान बावजू होकर ही सो रहे तो नींद का अरसा भी इबादत गिना जाएगा. उसकी तलाश में पहला कदम ही आखिरी कदम है. काबे का एक नाम इंसान की पेशानी भी है और खुदा का एक नाम आजिज मस्कीन का आंसू भी. बेबस की आंख से टपकने वाला आंसू कितनी इबादतों पर फोकियत ले जाता है. अपना खुदा अपनी ईमानदारी से आप खुद हासिल करें. अपने मालिक को अपनी सदाकत से अपने दिल में पाएं. अल्लाह रब्बे करीम ने कह दिया कि मैं तुम्हारी सांसों में हूँ, तुम जहाँ हो मैं वहाँ हूँ. अपने आईने में झांको, यानी अपने दिल में झांको, मैं वहाँ मिलूंगा. जिस तरह आईने के सामने जाने से मालूम होगा कि जब हम सामने हों तो अक्स बनकर सामने आ जाता है. आगे हों तो आगे, पीछे हों तो पीछे. इसी तरह हम सामने से हट जाएं तो भी वह सामने नहीं रहता. अब यहाँ गौरतलब बात यह है कि जब हम उसके करीब होते हैं तो वह करीब हो जाता है, तो क्यों ना हम अपने रब के करीब तर हो जाएं. 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपको होस्ट हो दोस्त अरशद भट्टी हूँ.

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए। ऑयल चेंज, टायर चेंज, लाइट रिपेयर, ब्रेक्स, सस्पेंशन, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज, इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज टायर्स भी अवेलेबल हैं। ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी। मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782, 416-466-8782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस, 921 पेप एवेन्यू।
3: अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर काउंसलर कैंडिडेट नाइला सईद फ्रॉम वार्ड 7 मिसिसागा। आई एम एन एजुकेटर, मदर ऑफ 3 डॉटर्स, मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राउडली सर्विंग द कम्युनिटी लास्ट 28 ईयर्स। वोट एंड सपोर्ट, मैं 28 साल से कम्युनिटी के साथ जुड़ी हूँ और मैंने अपनी सक्सेसफुल बिजनेस यहाँ एस्टेब्लिश किया है, जिसके जरिए से हजारों सब्सिडाइज चाइल्ड केयर स्पेसेस क्रिएट हुए हैं, कई सौ जॉब्स क्रिएट हुई हैं। नाउ आई वांट टू मेक अ रियल चेंज इन व्हाट 7। आई एम ब्रिंगिंग दैट प्रैक्टिकल कंपैशनेट लीडरशिप ऑन द टेबल एंड आई नीड योर हेल्प टू बी योर वॉइस। आई नीड योर सपोर्ट टू बिकम योर रिप्रेजेंटेटिव फॉर व्हाट 7 मिसिसागा एज अ काउंसलर कैंडिडेट।
2: शबान हसन, फाउंडर ऑफ की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस इंक और उनकी टीम आपकी हर तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग में आपकी हेल्प कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, सुपरविजा इंश्योरेंस, विजिटर इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, RDSPs, RESPs, RRSPs, TSFAs, FHSAs के साथ साथ हेल्थ एंड डेंटल प्लान्स, डिसेबिलिटी एंड क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग और स्टेट प्लानिंग की प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए आज ही कॉल करें शबान हसन 6479977224। Let's secure your financial future together. Call Shabana Hassan 6479977224।
4: अपने मकान की next month closing है, कुछ सोचा है TV और appliances कहाँ से लेने हैं?
5: हाँ, Brampton TV and appliances, जहाँ special sale चल रही है, TV, fridge, washer, dryer, kitchen range और microwave सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही reasonable price पे।
4: Sale तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए next month।
5: आज के rate हम lock भी करवा सकते हैं।
4: That's wonderful।
5: वहाँ से cell phone और India भेजने के लिए 220 volt का सारा सामान भी मिल जाएगा।
4: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
5: ऑन बोवे हेड, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट brampton appliances.ca।
2: प्राइड ऑफ मिसिसागा बारबेक्यू टुनाइट रेस्टोरेंट, 35 डंडा स्ट्रीट वेस्ट, हाईवे 10 और डंडा के इंटरसेक्शन मिसिसागा में। बारबेक्यू का असली मजा बारबेक्यू टुनाइट पर। चरगा, लाहौरी फिश, चपली कबाब, कड़ाही गोश्त, चिकन टिक्का मसाला, चिकन बिरयानी, सीख कबाब, रेशमी कबाब, चिकन बोटी, चिकन टिक्का, बिहारी कबाब, लैम्ब चॉप्स, अफगानी टिक्का, नेहारी और बहुत कुछ। खूबसूरत कुशादा पैटियो, बारबेक्यू टुनाइट रेस्टोरेंट, 9052680088। इट्स 9052680088, हाईवे 10 और डंडास के इंटरसेक्शन मिसिसागा। सहजा केरला आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर, जहां केरला वैद्या रत्ना पीवी राज, जो कि खानदानी वैद्य हैं, नबज देखकर जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। बेशुमार मरीज उनकी हर्बल दवाओं से शफायाब हो चुके हैं। अस्थमा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, सोरसेस और सारी बीमारियों का इलाज करके उनका जड़ से खात्मा करते हैं। ब्रैम्पटन और स्कारप्रो दो लोकेशन से आपको सर्व कर रहे हैं। कॉल कीजिए 6473278111। इट्स 6473278111।
6: सिर्फ मॉर्गेजेस। दैट्स राजीव तलवार, द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस, चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ Leading edge mortgage experts, 9058191001, 9058191001, license number 12374।
7: जी हाँ, राजीव तलवार साहब के राबते का नंबर 9058191001 है। वेरी रेनाउंड, वेरी पॉपुलर, वेरी एक्सपीरियंस साउथ एशियन मॉर्गेज ब्रोकर हैं और मॉर्गेज के हवाले से इनका नॉलेज भी बहुत है। इनका अपना एक यूट्यूब पे भी इंफॉर्मेशन रेगुलरली ये देते हैं। तो मॉर्गेज का कोई भी मसला हो, आप इन्हें कॉल कर लीजिए। आपको फोन पे असेस करके बता देंगे कि आपका केस मुमकिन है या नहीं है, और कहेंगे अगर आपकी मॉर्गेज हो सकती है तो फिर फॉर श्योर हो जाएगी। कोशिश हमारी ये होती है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ जो है वो पहुंचाते रहें। नंबर नोट कर लीजिए 9058191001। खुश आमदीद कहेंगे राजीव भाई, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
8: थैंक यू बट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच। हाई लिसनर्स, कैसे हैं आप सर?
7: बहुत शुक्रिया आपका, भी आपसे बात हो रही थी तो एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आपकी, मैं चाहता हूँ वो अनाउंसमेंट आप पहले कर लें तो फिर कुछ क्वेश्चंस करता हूँ मैं। जी
8: ओके, सो सुनने वाले मेरे सारे क्लाइंट्स या जो आपके सुनने वाले हैं सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर साल फॉल में हमारी ये प्रपोजल आती है, बहुत लिमिटेड तरीके से आती थी, इस साल हमने उसको बिल्कुल चेंज करके डाला है। बड़ी जबरदस्त ऑफर है, कल 1st of October फेस्टिव सीजन चालू हो रहा है सर, कल 1st of October से 31st of December जो भी बिजनेस हम करेंगे, जितना भी बिजनेस हम आएगा, उसकी जो भी अप्रेजल की कॉस्ट होगी वी विल पे दैट, नो मैटर व्हाट इज द कॉस्ट, चाहे वो घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे अप्रेजल की कॉस्ट $500 हो चाहे $1500 हो चाहे $2000 हो। इस मुश्किल समय में जब कैनेडियंस पूरी तरह से जूझ रहे हैं पैसे को बचाने के लिए, ये मैं 25 साल से लगभग बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी तरफ से हेल्प है कि जो भी मॉर्गेज करेंगे, कम फ्रेंड्स, टेक एडवांटेज ऑफ दिस सुपर अपॉर्चुनिटी, ना सिर्फ आपको टॉप ऑफ द लाइन एडवाइस मिलती है हमारे पास, मुश्किल से मुश्किल डील को हम आसानी से हल करते हैं, ऑलमोस्ट 99.9% सक्सेस रेट है, और उसके बाद अगर आपको अप्रेजल के पैसे भी ना देने पड़े
7: क्या बात है?
8: ऐसे टाइम में ये सिर्फ 3 महीने की ऑफर है, आए टेक एडवांटेज ऑफ दिस ऑफर, अभी से लेके फेस्टिव सीजन चालू हो रहा है और क्रिसमस और नए साल तक ये ऑफर चलेगी। प्लीज कॉल मी बैक, इसका एडवांटेज लीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरत है आप सबको पैसों की, और हमारी तरफ से एक बहुत अच्छी हेल्प है। देखिए बट्टी साहब, पिछले साल तक हमारा ऑफर थी 2 मिलियन की प्रॉपर्टी होगी तो हम अप्रेजल के पैसे, आपको याद होगा, लेकिन इस साल हमने डिसाइड किया कि मार्केट इतनी ज्यादा खराब है, आई विल पुट आउट सम मनी फ्रॉम माई पॉकेट एंड हेल्प ऑल माई क्लाइंट जो मेरे पास आ रहे हैं, जो भी आपकी अप्रेजल की कॉस्ट है, ओनली ऑन अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ओनली ऑन न्यू बिजनेस जो आज से आ रहा है, हम हर अप्रेजल को करेंगे।
7: ठीक है, 1st October के बाद बिल्कुल। एक तो बहुत अच्छा जेस्चर आपका जी, बहुत जबरदस्त आपने किया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने इसको अब कहीं भी, चाहे वो 5 लाख का घर है, 4 लाख का, 4 मिलियन का, तमाम के अप्रेजल
8: कितने का भी, क्योंकि सर आज की डेट में घर 5 से 7 से ऊपर जा ही नहीं रहे, अप्रेजल आई नहीं,
7: बिल्कुल ठीक। और दूसरी बात,
8: हमने डिसाइड किया कि हर एक को पे करेंगे,
7: और दूसरी बात अप्रेजल के बगैर आजकल कुछ मामला है ही नहीं, अप्रेजल तो होनी बहुत जरूरी है,
8: अप्रेजल के बिना कुछ होना नहीं है, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता, मॉर्गेज मिल नहीं सकती किसी भी सूरत में, सो जो भी आपकी कॉस्ट होगी सर, कॉल बैक, टेक एडवांटेज, सुपर 3 मंथ्स में अगर आप जितना बिजनेस, अगर आपकी आने वाले 2 महीने बाद भी करानी थी मॉर्गेज, अगर अभी करा लेंगे
7: ठीक,
8: आई विल पे फॉर।
7: अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, एक तो बैंक अप्रेजल करते हैं, एक कुछ प्राइवेट जो लोग बी लेंडर्स, मतलब जो भी जहां से भी मॉर्गेज सर, वो तो आप करेंगे ना,
8: मॉर्गेज करी और उसकी जो भी अप्रेजल की कॉस्ट होगी
7: वो आप देंगे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मतलब
8: कॉस्ट होगी चाहे 500 चाहे 1500 चाहे 2000,
7: क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कुछ तो बैंक से हो जाती है अप्रेजल्स और कुछ जो है तो, लेकिन आप
8: चार्ज करता है,
7: नहीं नहीं वो मुझे पता है, मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब जहां से भी होगी आप, मतलब आपके थ्रू जो भी मॉर्गेज होगी,
8: बैंक आपसे $500 लेगा तो वो 500 हम देंगे सर,
7: आप देंगे, और
8: जो भी बैंक आपको चार्ज करेगा चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो बी लेंडर हो चाहे कैसी भी हो, अगर अप्रेजल होती है मॉर्गेज के लिए इन अगले 3 महीनों में
7: वो आप करेंगे। नहीं, बहुत अच्छा जैसे आपका, और बहुत जबरदस्त है, कुछ हेल्प हो जाती है आजकल के जो सूरत हाल है उसमें, तो आपको पता है कि मॉर्गेज के हवाले कितने रिन्यूअल्स भी आ रही है और बहुत से मसले हो रहे हैं,
8: लोग फंसे हुए हैं मॉर्गेज के लिए, रिन्यू बैंक्स नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मसला है, स्पेशली 905 एरिया कोड में अप्रेजल का बहुत ज्यादा मसला है, और लोग बेचारे $500,000 के लिए, इस आई हैव कम इन फॉरवर्ड, वी विल हेल्प यू सर, कम टेक एडवांटेज,
7: और फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड,
8: जो भी बिजनेस आएगा और जो भी क्लोज हो जाएगा 31 दिसंबर से पहले, हर एक को पे करेंगे, और सर खाली अप्रेजल नहीं है सर, हमारा नाम है, माई सक्सेस रेट इज 99.9% ऑलमोस्ट,
7: वही हम ये कहते हैं,
8: अलावा 25 साल लगभग हुए हैं, हजारों हजार मॉर्गेजेस हम कर बैठे हुए हैं, एक क्लाइंट नहीं है,
7: यही तो हम
8: thousands and thousands,
7: कहते हैं ना, जबकि आप जब कहते हैं कि हो जाएगा तो फिर हो जाएगा, जब आपसे बात हो जाती है तो लोगों के ये कि वो अपनी ये तसल्ली रखें कि मतलब अगर आपसे बात होगी तो समझे मॉर्गेज भी होगी और अप्रेजल भी होगी, दोनों चीजें जो है
8: बिल्कुल, मॉर्गेज भी होगी अप्रेजल भी होगी। यस, तो टेक एडवांटेज सर, बहुत अच्छी ऑफर है, अगले तीन महीने भी टाइम है आपके पास,
7: बिल्कुल
8: दो तीन महीने में जो भी काम होगा, लेकिन कल से जो भी कॉल आएगी एंड क्लोज बिफोर 31st December वी विल पे।
7: अच्छा, मैं एक बस एक सवाल और आपसे करना चाह रहा हूँ, बस उसके बाद। अच्छा, अब जैसे अभी तीन महीने के लिए आपने वक्त दे दिया, अब लोगों की अगर जो है वो रिन्यूअल्स आ रही हैं, टाइम है, तो कब आप कहते हैं कि दो महीने एक महीने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लें?
8: देखिए सर, रिन्यूअल जिसकी आ रही है वो तो छह महीने पहले काम शुरू करना चाहिए। देखिए भट्टी साहब, क्या है कि आज की डेट में जब आप बैंक के पास लोग वेट करते हैं रिन्यूअल का लेटर की, लेटर क्या आ रहा है लोगों को, खासकर ब्रैम्पटन में, लिख लीजिए साहब, ब्रैम्पटन के ऊपर बहुत नजरअंदाज है, ब्रैम्पटन में चिट्ठी क्या आ रही है, वी आर नॉट रिन्यूइंग यू,
7: हम रिन्यू नहीं करेंगे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
8: 15 दिन पहले पता लगा तो 15 दिन में तो कुछ होना नहीं है,
7: होना नहीं, बिल्कुल सही बात है,
8: स्टक बिग टाइम स्टक। अगर आप रिन्यूअल पे बैठे हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं आगे जाके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाला है
7: बिल्कुल, उसकी आगे
8: मोस्ट लाइकली रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाला है, तो और वैल्यू अप्रेजल की और कम हो जाएगी,
7: बिल्कुल ठीक है,
8: तो और एडवांटेज इसका, हाँ बिल्कुल, इसका एडवांटेज ले लें, पैसे भी मिल रहे हैं, हम पे भी कर रहे हैं, मॉर्गेज की भी लगभग गारंटी ही देते हैं अगर हम डील को हाथ लगाते हैं, तो कॉल अस बैक ब्रदर्स, टेक केयर एंड टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड वी विल गो फ्रॉम
7: देयर, बिल्कुल। और जनाब, बैंक से अगर आपकी रिन्यूअल है तो पहले आप रब्ता कीजिए, आपको बेहतर रेट बैंक से भी लेके देंगे, क्योंकि बैंक आजकल ज्यादातर जो है वो रिन्यूअल जो है प्रॉब्लम आ रही है। राइट, तो आपका नंबर नोट कर लें, 9058191001, 9058191001। राजीव भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अगले हफ्ते आप फिर
8: बात, यू आर वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच। कॉल बैक क्लाइंट्स, कॉल करें और एडवांटेज लें इस सुपर ऑफर का,
7: बिल्कुल इस सुपर ऑफर का फायदा उठा लीजिए, किसी भी कीमत का घर आपका है, अप्रेजल अगर आपकी है, मॉर्गेज आप राजीव भाई से करवाते हैं, तो फॉर श्योर आपकी अप्रेजल की जो भी वैल्यू होगी वो खुद राजीव भाई पे करेंगे। नंबर नोट कीजिए, 9058191001, 9058191001।
9: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, सीएमआर 101.3 FM। अजनब, सऊदी अरब के दो हवाई अड्डों पर हमलों में 3 अफराद की हलाकत तो 30 के जख्मी होने की इतलात हैं। सऊदी सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक दारुलहुकूमत रियाज के शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमले में एक शख्स हलाक हुआ है, 2 जख्मी हुए हैं। इस तरह से अभा एयरपोर्ट की तनसीबात पर हमले में 2 अफराद हलाक और 28 जख्मी हुए हैं। सऊदी हुकाम की जानिब से जारी करता बयान में कहा गया कि एक हमला बुध और दूसरा मंगल को हुआ। उधर यमन में सऊदी फौजी इतिहाद ने कहा कि दारुलहुकूमत रियाज पर हमले में इस्तेमाल होने वाला बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिया गया है। अमरीकी न्यूज वेबसाइट का दावा है कि शाम हौसियों के खिलाफ लड़ने के लिए यमन में फौज भेजने पर गौर कर रहा है। और इससे पहले सऊदी अरब, इसके अलावा सिविलेशन के हवाले से यह भी कहा गया था कि जो एयरपोर्ट्स में हमले हुए हैं उनमें 2 खवातीन समेत 3 अफराद की हलाकत की इतला है। 4165930003, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, सीएमआर 101.3 FM। और वक्त हो चला आपको ले चलने का आज की शायरी के सेगमेंट की तरफ।
10: कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को, दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न रही मेरे आशियाने को। मरी लहत पे पतंगों का खून होता है, हुजूर शमा न लाया करें जलाने को। सुना है गैर की महफिल में तुम न जाओगे, कहो तो आज सजा लूं गरीब खाने को। तबा के कब्र में सब चल दिए, दुआ न सलाम, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को। कमर जरा भी नहीं तुमको खौफ रुसवाई, चले हो चांदनी शब में उन्हें लाने को। कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, आवाज का सफर दिल से दिल तक। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ 6887 डिक्सी रोड में सिसागा। Information and booking, call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton May Queens Manor Event Center 2 Auction Lane, Brompton. For more information, call 416-814-3600.
1: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636. 625-2636.
2: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
3: Assalamu alaikum. My name is Alvin Tejo and I'm running for mayor of Mississauga. I believe our residents deserve better than more of the same. I'll stop endless tax increases and freeze your property taxes. I'll stop crime and restore safety in our communities. And I'm proud to have the endorsement of Mississauga Muslim Vote. As mayor, I will help religious communities enjoy more opportunities to gather and celebrate. As a child of Indonesian immigrants, I know just how important that is. Vote on October 26th.

0: की राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: One of the most amazing events for your family is happening this weekend, October 10th and 11th, the ICNA Canada Convention. It's going to be a great time for the family, bazaar, food, and beautiful lectures, inspiring talks, from knowledge to action, following the footsteps of the Prophet ﷺ. It's a really great opportunity. I really look forward to seeing you there. Don't miss out on this, October 10th and 11th. See you there, inshallah.
3: Apna Hum Safar Global Travel and Tour.
4: Global Travel and Tours, Mississauga.

0: स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 9052753555 9052753555
1: 918 Dundas Street East Unit 1C Mississauga Shinghar Banquet Hall 50 Kennedy Road South Unit 10 Brampton Melanie से अब नई लोकेशन पर मूव हुए हैं 20 साल से इसी बिजनेस में हैं 50 से 400 तक अफराद के लिए दो खूबसूरत हॉल शादी मेहंदी मंगनी बर्थडे अकीका या किसी भी कॉर्पोरेट इवेंट के लिए तशरीफ लाइए लजीज खाने वेज और नॉन वेज इसके अलावा केटरिंग के बहुत ही स्पेशल पैकेजेस हैं केटरिंग स्टार्ट हो रही है 1099 से कॉल आबिद अली 416-721-5000 इसके अलावा पाकिस्तानी स्टाइल गाजर का हलवा 5 किलो की ट्रे देसी घी और ताजा खोए के साथ सिर्फ $100 में रेडियो पाकिस्तान का हवाला देने पर तमाम सर्विसेज पे 10% डिस्काउंट शिंगार बैंक्वेट हॉल सहजा केरला आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर जहां केरला वैद्या रत्ना पीवी राज जो कि खानदानी वैद्य हैं नबज देखकर जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं बेशुमार मरीज उनकी हर्बल दवाओं से शफायाब हो चुके हैं अस्थमा एलर्जी स्किन प्रॉब्लम्स कमर या घुटनों का दर्द आर्थराइटिस हेयर प्रॉब्लम गैस प्रॉब्लम अल्सर लेडीज प्रॉब्लम वेट लॉस सोरसेस और सारी बीमारियों का इलाज करके उनका जड़ से खात्मा करते हैं ब्रैम्पटन और स्कारप्रो दो लोकेशन से आपको सर्व कर रहे हैं कॉल कीजिए 6473278111 It's 647-327-8111 अपने प्यारों

0: जी हाँ, ICSE इमिग्रेशन, आरडी भाई, एमडी भाई, उनकी पूरी टीम ऑलमोस्ट 2 decades से, ऑलमोस्ट 20 years से आपको सर्व कर रहे हैं। दुनिया भर से कहीं से भी आपके अजीज दोस्त, रिश्तेदार, प्यारे आना चाह रहे हैं कनाडा में, किसी भी सूबे में, किसी भी सिस्टम के तहत, एक बार आप इनसे रब्ता ज़रूर कीजिए। स्टूडेंट्स के मसाइल हों या इवन US में अगर आप यहाँ से वहाँ पर शिफ्ट होना चाह रहे हो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नंबर नोट कीजिए 905-461-2424, 905-461-2424, ICSEimmigration.cn की वेबसाइट है। एम डी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद डिटेल उन्हीं से लेंगे। एम डी भाई, वेलकम यू इन रेडियो पाकिस्तान टोरंटो।
1: अर्षद भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको और प्रोग्राम सुनने वाले तमाम भाई बहनों को MDRDA के जानिब से, ICSE इमिग्रेशन टीम की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस ऑन हियर सर।
0: बहुत शुक्रिया। अपडेट हम आपसे इमिग्रेशन की मांग करते हैं। कुछ लग रहा है कि कह रहे हैं कि इमिग्रेशन के हवाले से कुछ स्पीड अप किया जाएगा, कुछ मजीद लोगों को भी बुलाया जाएगा, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन क्या है और अगर कोई इस वक्त भी ड्रॉज हुए तो उसकी भी तफसील बताइएगा।
1: अर्षद भाई, लास्ट वीक हमने एक ड्रॉ देखा है जी, ये ड्रॉ ट्रेड्स का ड्रॉ था फरवरी, ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद ये ड्रॉ आया है। सो लास्ट ड्रॉ था 475 के ऊपर, अभी 475 के ऊपर अभी गया है, लास्ट 477 के ऊपर था। तो 3500 इन्विटेशंस दिए गए हैं विच इज अमेजिंग। सो जितने भी वेल्डर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, मैकेनिक्स हैं वो इस ड्रॉ में पिक हुए हैं।
0: okay.
1: और अर्षद भाई, दिस इज वेरी इंकरेजिंग बिकॉज काफी सारे दोस्त हमारे ट्रेड्स के ड्रॉ की काफी अरसे से वेट कर रहे थे। अब यहाँ पे एक चीज और जरूर ऐड करना चाहूंगा अर्षद भाई, बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जिनका स्टेटस खत्म हो रहा है, हो चुका है या होने जा रहा है। तो ऐसे तमाम बच्चों को हम कहेंगे कि भाई एक बार ICSE इमिग्रेशन के ऑफिस में आके हमसे अपनी ऑप्शन डिस्कस करें, बिकॉज बाज वक्त ऑप्शन होती है और आप उसको बिल्ड अप कर सकते हैं। आपको स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेंगी, उसमें को दो राय नहीं है। आपको एक्सपीरियंस कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जो ऑक्यूपेशन पिक हो रहे हैं, अगर आप उस ऑक्यूपेशन में काम करते हैं तो एब्सोल्युटली आपकी ऑप्शंस पीआर की बन जाती हैं। तो जिनका भी स्टेटस खत्म हो रहा है या जो भी अगर अभी पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट के ऊपर आए हैं, एक दिन भी प्लीज ऐसा वेस्ट ना कीजिए, बिकॉज एक दिन की भी अहमियत बाद में पता चलती है जब आपने उसके ऊपर काम करना होता है। ICSE इमिग्रेशन का हेड ऑफिस 1137 पे है, हमें तकरीबन 20 साल हो गए, 19.5 साल हो गए इमिग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हो रहे हैं। हेड ऑफिस मिसेस आगम है 1137 डेरी रोड पे और फोन नंबर है जी ICSE इमिग्रेशन का 905-461-2424, 905-461-2424। अर्षद भाई, ये भी कहना चाहूंगा जो हमारे दोस्त भाई बहन बच्चे शादी निकाह करने करके वापस आए हैं या शादी निकाह करने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, मिडिल ईस्ट में या कहीं पे भी, तो प्लीज जाने से पहले हो सके तो हमारे ऑफिस में होके डिस्कस करके जाइए और चेकलिस्ट अपने हिसाब से पहले लेकर जाइए। बिकॉज हम जब चेकलिस्ट देते हैं आपको, जेनेरिक चेकलिस्ट नहीं आपको हैंड ओवर करते, बट आपके पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस को देखते हुए आपको चेकलिस्ट बनाकर हैंड ओवर करते हैं, ताकि आप उस सूरत में उस हवाले से आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आए ताकि कोई भी इशू बाद में ना आए। ICSE इमिग्रेशन एंड एक चीज और यहाँ पे याद रखनी है अर्षद भाई, के एक भी अगर किसी का डाइवोर्स हो रखा है तो प्लीज मेक श्योर कि आप किसी प्रोफेशनल से अपनी एप्लीकेशन पुट अप करवाएं।
0: ओके।
1: बिकॉज कई बारी ऑफिसर को आपको समझाना जरूरी होता है कि पहली मैरिज या ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कनाडा आने के लिए या लाने के लिए नहीं है, बट समहाउ रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ जिसके कारण डाइवोर्स या सेपरेशन हुआ। हमारा ऑफिस मिसेस आगा में है, 1137 डेरी रोड ईस्ट। और बिल्कुल जाने से पहले एक चीज जरूर कहूंगा कि अगर कोई भी दोस्त, कोई भी भाई बहन US के बारे में सोच रहा है, US मूव करना चाहता है, यहाँ पे उनको लग रहा है कि ऑप्शंस कम हैं या अभी उनके हिसाब से चीजें नहीं चल रही, तो 100,000 USD इन्वेस्ट करके आप अपने लिए और अपने स्पाउस के लिए वर्क परमिट ले सकते हैं और उस बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। स्पाउस का जो वर्क परमिट होगा ओपन होगा, वो कुछ भी कर सकेंगे और बच्चों को स्टडी परमिट मिल जाएगा। और ICSE इमिग्रेशन टीम अकेला पेपर वर्क में, इमिग्रेशन के पेपर वर्क में हेल्प नहीं करती, बट इवन अगर आप कौन सा बिजनेस लेना चाहते हैं, किस स्टेट में, किस सिटी में बिजनेस लेना चाहते हैं, उसमें भी हेल्प करते हैं और इसको फाइनेंसिंग कराने में भी बाज वक्त हम हेल्प करते हैं। तो आप कोई भी एडवाइस लेना चाहते हैं इमिग्रेशन के हवाले से, कोई रिफ्यूज उलझा हुआ केस है, कोई कॉम्प्लिकेशन केटेड केस है, तो एक बार हमारी टीम से जरूर राबता कीजिए। ICSE इमिग्रेशन RDMD की टीम, नंबर है जी 905-461-2424, 905-461-2424।
0: थैंक यू वेरी मच एम डी भाई, बहुत शुक्रिया आपका, और अगले हफ्ते आपसे भी बात करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जनाब, हम हर हफ्ते ही बात करते हैं कि बहुत से लोग अमेरिका में शिफ्ट हो रहे हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ये बिजनेसेस एंड तमाम चीज़ें, बाकी वो भी ए टू जी तमाम चीज़ों को टेक केयर करेंगे, तो आप इनसे रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। 905-461-2424 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम। शौकत खानम फंड रेजिंग गाला डिनर सैटरडे अक्टूबर 10th को कैपिटल बैंकेट हॉल में सागा में होने जा रहा है। हमजा अली अब्बासी खासतौर पर पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं। टिकट्स या स्पॉन्सरशिप के लिए आप कॉल कर लीजिए वसीउद्दीन साहब को 416-566-3642 416-566-3642। रिपु दामन ढल्लू सिटी काउंसलर वार्ड 7 और 8 ब्रैम्पटन के उम्मीदवार हैं। अगर आप वार्ड 7 और 8 ब्रैम्पटन रहते हैं तो आप ज़रूर उनको सपोर्ट कीजिए, उनको वोट कीजिए। इस तरह से नाला सही सभा मिसागा वार्ड 7 से काउंसलर के उम्मीदवार हैं, और एडवांस पोलिंग शुरू महल में हो चुकी है, तो अगर आप वार्ड 7 में रहते हैं तो ज़रूर नाला सही सभा को सपोर्ट कीजिए। 24 घंटे माई निशादपड़ी पाकिस्तान .fm में सुन सकते हैं। हमारा टेलीविजन चैनल है टोरंटो 360 टीवी। रेसेट के वाले से कोई सर्विस चाहिए टीम भट्टी से रब्ता कीजिए, कॉल तला भट्टी 6472957861 6472957861। लिए चलेंगे आपको न्यूज़ की तरफ, जो पेश करने जनाब बिलाल जमान साहब।
2: You're listening to CMR FM 101.3।
0: न्यूज के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहब ने। खुदा नखास्ता आपका कार एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए, या आपको टिकट मिल जाए, कॉल कर लीजिए 416-570-0157। इट्स 416-570-0157। न्यूज के लिए हम तावन देते हैं आईकॉन इवेंट स्पेस 6887 डिक्सी रोड मिसागा, डिक्सी डेरी के इंटरसेक्शन, 3 खूबसूरत हाल, 1200 तक अफराद की गुंजाइश, एम्पल पार्किंग। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाइए आईकॉन इवेंट स्पेस के साथ। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 437-425-2500। इट्स 437-425-2500। आईकॉन इवेंट स्पेस। न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट। फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
3: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो। खबरों की तफसील लेकर बिलाल जमान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा SPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी फौजी दस्तों की मौजूदगी की तस्दीक कर दी है। CNN को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दफाई तालुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं, जबकि पाकिस्तान के दस्ते भी कई दहाइयों से सऊदी अरब में तैनात हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि मक्का मुआहदे के तहत सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी दस्ते मुख्तलिफ डोमेन से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे IMF के जायजा मिशन के दरमियान तौसी फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत चौथे इक्तसादी जायजे के बारे में मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं, और अमले की सतह पर मुआहदा जल्द तय पा जाने का भी इम्कान है। मुआहदे की मंजूरी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से ली जाएगी। मुज़ाकरात के हवाले से इज़राइल ने दावा किया कि IMF के वफद के साथ बातचीत मस्बत अंदाज में मुकम्मल हुई। IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है और रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। निजकारी के प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के नुकसान को कम किया जा रहा है, जबकि गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा भी कम करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान के दौरे पर आए अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़म का यादा करते हुए जम्मू कश्मीर के तनाज़े के अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों और कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया, और वाज़ेह किया कि सिंध तास मुआहदा एक बैनुल अक़वामी मुआहदा है जिसे यकतरफा तौर पर इल्तवा में रखने का भारत का फैसला किसी भी कानूनी बुनियाद का हामिल नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है,